अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है तारे की, जबकि वो गुरूब हुआ तुम्हारा रफीक न भटका है न बहका है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है, उसे जबरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है जो बड़ा साहिब हिकमत है। वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो बालाई उफक पर था, फिर करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया यहां तक के दो कमानों के बराबर या इससे कुछ कम फासला रह गया। तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो वही भी उसे पहुंचानी थी। नजर ने जो कुछ देखा, दिल ने उस पर झूठ न मिलाया। अब क्या तुम उस चीज पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है? और एक मर्तबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको उतरते देखा, जहां पास ही जन्नतुल मअवा है। उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था, निगाह न चुंधियाई न हद से मुतजावज हुई, और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अब जरा बताओ, तुमने कभी इस लात और इस उज्जा और तीसरी एक देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर भी किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां खुदा के लिए? ये तो फिर बड़ी धांधली की तकसीम हुई। दरअसल ये कुछ नहीं है मगर बस चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। हकीकत यह है कि लोग महज वहमो गुमान की पैरवी कर रहे हैं और ख्वाहिशात नफ्स के मुरीद बने हुए हैं, हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है? दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है।

आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफाअत कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाजत न दे जिसके लिए वो कोई अर्जदाश्त सुनना चाहे और उसको पसंद करे। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते, जो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं हालांकि इस मामले का कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं है, वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मबलग इल्म बस यही कुछ है। ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है। और जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जजा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैया इख्तियार किया है। जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले कबीह अफाल से परहेज करते हैं इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरजद हो जाए। बिला शुबह तेरे रब का दामन मग़फ़िरत बहुत वसी है। वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेटों में अभी जनीन ही थे। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे न करो, वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है।

قد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। फेफड़ों की हिफाजत यानी वो हमारी जो ब्रीथिंग है उसकी एक ताकत है। आलूदगी है, सिगरेट हैं और जो कमज़ोर फेफड़ों के लिए खतरात हैं, कुदरती तौर पर सांस बेहतर बनाने के जो तरीके हैं उन पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले ये है कि जो फ़िज़ाई आलूदगी और जो सांस के अमराज जैसे कि दमा है या ब्रोंकाइटिस है वो हो जाते हैं उससे। घर में अगर आलूदगी है यानी फ्राइंग ऑयल है या कुछ जो है वो डस्ट है या ये कि जो खुशबू है उससे भी जो फेफड़े हमारे मुतासिर होते हैं। इसी तरह से जो इसमें डीप ब्रीदिंग एक ऐसा नाम है या ब्रीदिंग जो है वो फ्रेश एयर में आप करें तो वो बेहतरीन है। फेफड़ों के लिए जो मुफीद ग़िज़ाएँ हैं वो हल्दी है, अदरक है, सब्ज चाय है। और इसी तरह अगर आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं मजबूत होंगे तो ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। मगर लिसनर्स, ब्रीदिंग हमारी ज़िंदगी की सबसे खामोश मगर सबसे अहम एक्टिविटी है। हम हर लम्हा सांस लेते हैं मगर शायद ही कभी सोचते हैं कि जो ब्रीथ हम कर रहे हैं ये सांस हमें ज़िंदा कैसे रखता है। आज हम बात करेंगे कि फेफड़ों की हिफाजत कैसे करें, कैसे रखें, अपनी ब्रीदिंग को महफूज, मजबूत और सेहतमंद किस तरह से रखें। फेफड़े हमारे जिस्म की ऑक्सीजन स्टेशन हैं, यही वो जगह है जहां हवा साफ होकर हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। मगर आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, कमज़ोर ग़िज़ाएँ हैं और एक्टिविटी की कमी है, ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा रही हैं। मगर ये कि हम ये सोचते हैं कि अब हमें करना क्या है, यानी हम रोज़ाना सुबह 10 से 15 मिनट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज अगर हम करते हैं तो हमारे लंग्स के लिए बेहतरीन होगा। इसी तरह से आपकी जो विंडो है उसको खोल कर ताज़ा हवा लीजिए, घर के अंदर की आलूदगी भी ख़तरनाक हो सकती है। इसी तरह से सिगरेट है, पान है और इस तरह शीशा जैसे जहरीले धुएं से मुकम्मल हमें दूर होना है। फेफड़ों को ताकत देने वाली ग़िज़ाएँ लीजिए, रोज़ाना वॉक कीजिए और अगर सांस फूलने लगे तो बार बार खांसी या सीने में भारीपन महसूस हो तो ये मामूली बात बिल्कुल नहीं है, फौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए। मगर अब कहेंगे कि अब करना क्या है हमें, तो ये है कि नाक से सांस लीजिए, 4 सेकंड रोकिए और मुंह को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दीजिए, ये 5 से 10 बार आप दोहरा लीजिए। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि क्या आप और हम जानते हैं कि डीप ब्रीथ करने से या गहरा सांस लेने से हमारा दिल भी सुकून में आ जाते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ लंग्स जो है नहीं, सिर्फ सांस नहीं है उनके लिए बल्कि ज़िंदगी की रवानी है। तो इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करना है। तो उससे होगा ये कि हम अपनी इस नेमत की जो कि फेफड़े हैं, जो कि अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है हमें, उसे हम महफूज कर सकेंगे। अपनी सांसों को, अपनी ब्रीदिंग को महफूज रखिए और जिंदगी के हर लम्हे को भरपूर जिए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। आज परवीन ने इतनी देर क्यों कर दी? हमेशा तो वो वक्त पर आ जाती है। अम्मी गुस्से में थी। अचानक दरवाजा बजा। मैंने जाकर पूछा तो घर का काम करने वाली मुलाजमा परवीन खाला आई थी। मैंने दरवाजा खोल दिया। उनके अंदर आते ही अम्मी ने उन्हें गुस्से में डांटना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है, कितनी देर कर दी तुमने आने में?
1: बाजी माफ कर दीजिए, आज देर हो गई।
0: ये कहकर उन्होंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद मैंने सुना परवीन खाला अम्मी का गुस्सा ठंडा होता देखकर उन्हें बता रही थी, बाजी आज सुबह मैं अपनी माँ की दवा लेने सरकारी अस्पताल गई थी। वहाँ किसी हादसे के बहुत से जख्मी लाए गए थे। मैं जहाँ बैठी थी वहाँ करीब ही स्ट्रेचर पर एक बूढ़ी खातून जख्मी हालत में लेटी हुई थी। मुझे देखकर रोते हुए कहने लगी, बेटा मैं एक काम से घर से निकली थी, जिस बस में थी उसके साथ ये हादसा हो गया। मैंने पूछा, कैसे हो गया ये हादसा? वो कहने लगी, ड्राइवर बस बहुत तेज चला रहा था, हम सब मुसाफिरों के मना करने के बावजूद मना नहीं हुआ और बस बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। बेगम साहिबा, शुक्र है उन्हें अपना नंबर याद था। मैंने करीब खड़े एक लड़के से दरखास्त की, वो लड़का किसी दूसरे जख्मी का रिश्तेदार था। मेरी दरखास्त सुनकर उसने अपने मोबाइल फोन से उनकी बात उनके घर वालों से करा दी। वहीं एक और लड़की को दवा की फौरन जरूरत थी, इसके घर वाले अभी पहुंचे नहीं थे। मेरे पास थोड़े पैसे थे, मैंने अस्पताल में दवा की दुकान से उसे वो दवा ला दी। बेगम साहिबा, और भी जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। पैसे खत्म होने की वजह से मुझे पैदल आना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। मैंने अम्मी की आंखों में हैरानी देखी। मैं खुद भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया परवीन, अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देगा तुम्हें, अम्मी परवीन खाला से कह रही थी।

मैं सोच रहा था कि मेरा जेब खर्च तो परवीन खाला की पूरे महीने की कमाई से भी शायद ज्यादा ही होता। वो जब काम खत्म करके जाने लगी तो मैंने अम्मी से पूछकर अपने जेब खर्च में से कुछ पैसे उठाकर परवीन खाला को देने की कोशिश की, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और बोली, नहीं बेटे, वो पैसे तो मैंने अल्लाह की रजा के लिए दिए थे, मैं तुमसे ले लूंगी तो मेरा अजर कम हो जाएगा। मैंने खामोशी से वो रकम वापस रख ली, ये सोचकर कि अब मैं भी अल्लाह ताला की रजा के लिए दूसरों की मदद करना अपनी आदत बना लूंगा इंशाल्लाह। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमदर्दी का जज्बा इंसानों को करीब लाता है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है बल्कि हम दुनिया में मोहब्बत और सुकून का पैगाम भी पहुंचा सकते हैं।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

FM 107. Time check. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01।

0: हाँ जी दोस्तों सलाम आदाब अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल है उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे नाजिया और महवेश हम दोनों आ चुके हैं आज के एकदम लास्ट वाले एपिसोड में
1: अस्सलाम वालेकुम टू ऑल और उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला आज बिल्कुल आखिरी एपिसोड है हमारी मैं अभी यही बोल रही थी ऑफ एयर कि ये शो तो शुरू हुआ और खत्म हो गया हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ सका तो
0: हम दोनों साथ नहीं रह सकते आपस में लेकिन साथ में हाँ बस हम चार और दो छह दिन रहते हैं
1: Right.
0: तो बस ये कह सकते हैं कि हाँ ये शो वाकई वन ऑफ दी बेस्ट और हम कह सकते हैं कि हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहा और वाकई हम सारे के सारे लिसनर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आपका कमाल का पार्टिसिपेशन रहा जिस तरह से आप ओवर अ कॉल या फिर मैसेजेस के थ्रू कॉल के थ्रू जिस तरह से आपने जो अपना पार्टिसिपेशन दिखाया जो आप जुड़े और हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को आपने हमने मिलकर एक्सप्लोर किया तो ये ऑल टुगेदर सुबह सुबह का एक लर्निंग सेशन भी था स्कूल कहने के लिए आज स्टार्ट हुए लेकिन आपके हमारे स्कूल ऑलरेडी स्टार्ट थे जा रहे थे और हम और आप मिलके कुछ ना कुछ नया हर रोज सीख रहे थे तो ये शो वाकई मेरे अपने पर्टिकुलरली मैं कह सकती हूँ दिल के बहुत करीब रहेगा हमेशा ही जब भी बात होगी तो समर मॉर्निंग्स हमेशा हम लोग जो हैं उसका कहीं ना कहीं जिक्र जरूर करेंगे
1: अच्छा होता है ये कि अब हमारे क्योंकि बहुत हर दफ़ा ही चेंज आता है ना मतलब कि हम कभी सुबह में होते हैं कभी शाम में होते हैं
0: राइट
1: और हो रहा होता है पहले कि यार ये चेंज के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे लेकिन जब वक्त ख़त्म हो रहा होता है शो बिल्कुल एंड हो रहा होता है तो आप कहते हो कि यार अच्छा रहा यार मज़ा आया काफ़ी ना तो ये हर दफ़ा होता है मुझे लगता है कि हर दफ़ा हर टाइम में जो मैंने डिफरेंट किया है पहले 10 से 11 मैंने बहुत अरसे किया उससे पहले मॉर्निंग बहुत अरसे किया लेकिन जब ये चेंज आता है तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है
0: हाँ मुझे लगता है वाकई शायद इसीलिए हमारी मैनेजमेंट ने इस चीज़ को एक बकायदा रूटीन बनाया हुआ है कि हर 3-4 महीने में एक चेंज आएगा और आएगा इनिशियली हम लोग को लगता है कि हमारी बॉडी या हम उस तरह से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता था एडजस्ट होने में चीज़ों को समझने में लेकिन फिर लगा कि शायद लोगों को भी अच्छा ही लगता है क्योंकि हर किसी को ना वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है और एक रिफ्रेशिंग सा एहसास मिलता है चेंज के साथ सो दैट वे हालांकि मॉर्निंग मेरे लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा हमेशा बिकॉज ऑफ माई स्लीप बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ स्लीपिंग लाइक जैसे कहते हैं सरवर मिर्जा भाई के भाई कम से कम इनको 10 घंटे चाहिए सोने के लिए तो नींद हमेशा मेरे लिए मसला थी बट मैं कहूँगी समर मॉर्निंग्स में नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह
1: अच्छा सर्दियों में ज्यादा इशू होता है जबकि सर्दियों में तो रात जल्दी हो जाती है
0: आई डोंट नो सर्दियों में मुझे हुआ इशू
1: अच्छा
0: मतलब या तो मुझे ऐसे एक था कि मैं आधी रात में चल रही हूँ आई डोंट नो दिस इज लाइक अ साइकोलॉजी व्हाट मतलब एक दिमाग में था कि सब सो रहे हो मैं आधी रात में निकल रही हूँ क्योंकि लिटरली उस वक्त जो 5 बजे आप निकलते थे घर से तो अंधेरा होता था
1: अंधेरा
0: अभी आप निकलते
1: इवन अभी भी मैं नहीं लग रही हूँ कि अब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है अगर निस्बतन शुरू के मुकाबले में देखा जाए तो कल और आज थोड़ा उजाला उस तरह का नहीं है से पहले अब नमाज का टाइम भी तो लेट हो गया ना अब पहले के मुकाबले
0: थोड़ा सा हाँ लेकिन काफी फिर भी लेट हो गया फिर भी तुम एक आते-आते बाय द वे तुम आते-आते बाय द टाइम एक धूप आ जाती है और लगता है कि लोग अच्छा लोग कितना होते हैं रोड पे इनिशियली मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो भाई जा रही हूँ सुबह लेकिन मैंने देखा कितने लोग और कितना ज्यादा
1: अच्छा ये तो मजे की बात यह है कि आप किसी वक्त भी आओ अभी जैसे पिछले हफ्ते मैं रात में यहाँ से स्टूडियो से कोई 3:30 बजे वापस गई हूँ सुबह के मतलब फजर के वक्त और उस वक्त आपको लगता है कि यार सिर्फ हम ही बेवकूफ हैं कि रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए ये वो अच्छा मजे की बात क्या है कि रोड पे तो आपको लोग मिलते ही मिलते हैं यहाँ बिल्डिंग में भी लोग मौजूद होते हैं मुझे लिटरली मतलब मैं पूरी बिल्डिंग मुझे लग रहा था खाली है गार्ड और मैं ही बैठे हुए हैं लेकिन फिर वहां से मैं कॉरिडोर से गुजरी हूँ तो मुझे किसी की बोलने की आवाज़ें आ रही ना किसी खातून की मैं डर गई मैंने गार्ड से बोला मैंने कहा कौन है अंदर मतलब कौन बोल रहा है या तो मुझे लगा रेडियो ही चल रहा है कोई स्टेशन चल रहा है क्या है लेकिन पता चला है खातून रात को 3:15 बजे बैठी हुई वो भी मजे की बात लाइट ऑफ करके तो मुझे उस दिन अंदाजा
0: कौन से रेडियो स्टेशन की
1: खोला तो मैंने कहा यार सिर्फ हम नहीं है और

0: लोग होते हैं मतलब जो आते हैं रात के वक्त में भी काम करने के लिए, तो हमें फील हो रहा होता है कि शायद हम ही हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं होते, और लोग भी होते हैं। यही मेरा एक्सपीरियंस रमजान में भी रहा।
1: अच्छा, मैंने कभी भी लेट नाइट कभी रिकॉर्डिंग नहीं की।
0: मैं तो इस साल तो मैंने बहुत की है। रमजान तो मेरा पूरा इसी तरह से निकला कि रमजान में मैं सहरी से जस्ट पहले जाती थी, मतलब तकरीबन कोई आधा घंटा पहले, और फिर हम जल्दी जल्दी सहरी करते थे,
1: और मैं इफ्तारी से जस्ट पहले जाती थी। कभी मैं रास्ते में ही करती थी, क्योंकि वही टाइम शायद मेरा सेट था रिकॉर्डिंग का। तो खैर,
0: अरे हम तो रात के जागने वाले लोग हैं ना, मतलब शुरू से पढ़ते भी रात में थे।
1: अच्छा, मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा डे पर्सन, मतलब मुझे रात सोने के लिए चाहिए और ठीक तरीके से अच्छी नींद, तो वो एक हमेशा मेरे लिए खुद के लिए बहुत चैलेंज था।
0: लेकिन ये जो चीज है ना, हम कराची में ये बात कहते हैं यूजुअली कि कराची कभी सोता नहीं, लेकिन यही बात मैं यहाँ पे शायद कराची वाले इसलिए एडजस्ट कर जाते हैं कतर में कि कतर भी कभी सोता नहीं है। ये मैंने इस साल में ज्यादा नोटिस किया कि आप किसी वक्त भी निकलो, आपके साथ मतलब इतने लोग होंगे रोड पर, किसी समझ में खौफ तो नहीं है। अच्छा, अपने तो खौफ तो अब है, मतलब आप रात को इतने
1: निकल सकते
0: चाहे जागता हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको कोई खौफ नहीं होता। मतलब आप एक मतलब
1: के दो बजे
0: दो बजे तीन बजे एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप कहीं पे, लेकिन आपको यहाँ पे इतना सिक्योरिटी का एहसास, आपको पता है कि आपको कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से आते हो आराम से जाते हो।
1: ये तो बात है, इस मामले में तो हैट्स ऑफ इस कंट्री को। तो चलिए आते के साथ, हम तो काफी थोड़े से इमोशनल भी हो रहे हैं, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। अच्छा भी लग रहा है कि चलिए एक हमने बहुत अच्छा शो काफी टाइम तक आपके साथ किया, आपके साथ जुड़े रहे, और आज ये समर मॉर्निंग्स का एकदम लास्ट वाला एपिसोड है। इंशाल्लाह वैसे मॉर्निंग्स में आपके साथ कभी जुड़ेंगे।
0: हमारे लिए इमोशनल भी है हमारे लिए, और मतलब एक तरह का है कि यार सुबह एक टेंशन होती थी सुबह सुबह उठना।
1: मुझे एक ही ख्वाब आता था कि मैं सोती रहे
0: मेरे साथ भी मेरे साथ भी। अभी बल्कि पिछले हफ्ते भी मैंने ये ख्वाब देखा था कि पहला शो हो गया मेरा निकल गया, मैं नहीं पहुंची,
1: मैं नहीं पहुंची।
0: लेकिन अब कल से ये वाली जो सिचुएशन है ये
1: माइंड कभी रिलैक्स हो जाएगा।
0: कभी फिर उधर आ गया,
1: माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि अब आप सोएंगे आराम से, आपको ये टेंशन नहीं है कि कहीं खुदा ना खास्ता आप नहीं उठ पाए तो क्या,
0: तो जाएंगे।
1: इस चक्कर में मेरी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी, तो मतलब मैं उठती रहती थी, चेक कर रही हूँ, हालांकि अलार्म मैं दो तीन लगाती हूँ, ऐसा तो नहीं कि रात में सोती रह जाए भरपूर नींद में, तो दो तीन अलार्म्स लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट फोन पे, और मैं उठती हूँ तो मेरे साथ पूरा घर एक टाइम पे उठता ही उठता है, सबके फोन बजते हैं और मेरी ड्यूटी के सबके फोन बंद करती हूँ। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये डर हमेशा हर वक्त रहा कि कहीं सोती तो नहीं रह गई।
0: बहुत बड़ा खौफ है
1: क्योंकि सुबह सुबह लोग भी नहीं होंगे जो कवर कर लेंगे, जो मतलब कुछ हेल्प हो जाएगी, तो ये एक और चैलेंज होता है। इसीलिए आपकी सुबह की जो ड्यूटी है वो वाकई बड़ी सख्त है, ये तो हम कहेंगे। तो बस हमने तो आज आते के साथ ही बहुत सारी अपने दिल की बातें शुरू कर दी, और बातें आज बहुत होंगी, होती रहेंगी, जारी रहेंगी। लेकिन हाँ, अब शो की शुरुआत करेंगे सुबह के असकार के साथ। वापस आएंगे तो कुछ मौसम का हाल चाल होगा, कुछ और बातें होंगी, और कुछ आपके पास भी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 666-22-107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहीं पर कॉल करने के लिए नंबर है 4434-4377।
2: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं विश्व नाजिया, हम दोनों आपके साथ हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो आज कैसा रहने वाला है मौसम वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस, बट ह्यूमिडिटी की वजह से आपको महसूस होगा 49। वेल ह्यूमिडिटी आज रहेगी 66%, जो कि ठीक ठाक है। वहीं पर यूवी इंडेक्स की बात की जाए तो अगेन इट्स 9, विच इज़ अगेन वेरी हाई। इसीलिए अगर आप धूप के वक्त निकलते हैं, यानी जो पीक आवर्स हैं उसमें अगर आप निकल रहे हैं, तो सनस्क्रीन और अपने प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखिएगा। वहीं पर सनराइज आज हुआ है 5:13 AM पर और सनसेट होगा 5:54 PM पर। वहीं विजिबिलिटी जो है वो ठीक

0: है, लेकिन हाँ उस तरह से नहीं है जैसे थी। आज थोड़ा सा है धुन। वहीं पर ओवरऑल देखा जाए तो मौसम जो है वो सनी रहेगा, ड्राई रहेगा, लेकिन हाँ जल्द से जल्द अब ये मौसम धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो मौसम की बात हो गई और अब मौसम की बात के साथ आज के दिन की बात कर लेते हैं। मेरा मतलब है आज है 31st of August और आज दुनिया भर में जो डिफरेंट अवेयरनेस डेज और जो ऑब्जर्वेंसेज हैं वो मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे। ये दिन ओवरडोज से होने वाली डेथ्स को याद दिलाने और अवामी आगाही को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वहीं पर आज एक और दिन है एंड दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। तो कहीं ना कहीं यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये अफ्रीकन कम्युनिटी कहें या अफ्रीकन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं उनके जो हुकूक़ हैं या फिर उनके जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए दिन मनाया जाता है। वहीं पर आज है मलेशिया का इंडिपेंडेंस डे, तो आज ये दिन भी मलेशिया में सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर वाकई जो है मलेशियंस बहुत प्राउडली इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और 1957 में उनको जो था आज़ादी मिली थी तो उसके बाद से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान का भी आज जो है वो इंडिपेंडेंस डे है, तो ये भी वो दिन है। इसके साथ है वर्ल्ड डिस्टेंस लर्निंग डे। एक टाइम होता था कि हम डिस्टेंस लर्निंग को उस तरह से मानते नहीं थे, ये कहें कि उस तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं आता था व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, लेकिन आज का दौर जो है वो देखिए ना, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली कोविड के बाद तो हम और आप देख ही रहे कितनी बढ़ चुकी है। तो ये दिन भी है और आज है नेशनल ट्रायल मिक्स डे, यानी कुछ हेल्दी स्नैक्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ आप इवनिंग्स में ही प्लान कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को प्रमोट करना और मिक्स करके अपने आप को किस तरह से एंटरटेन किया जा सकता है, ये वो दिन है। सो आज काफ़ी कुछ है 31st of August में, तो वो सारी चीज़ें हमने आप तक पहुंचा दी और अब आपका हालचाल हम तक पहुंचे तो मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं।
1: मैसेज राइट जी, तो मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। अभी तक हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं तो आप लोग भी हमें मैसेज कर सकते हैं 666-2107 पे आप सुन रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आरजे नासिया जी एंड आरजे महावश, और ये यूसुफ शमीम है, कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी ऑन एफएम 107। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि मलेशिया का इंडिपेंडेंस डे, जैसे अभी बताया इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे है और साथ ही अफ्रीकन डिसेंट डे है, तो ये सारे हैं। और इसके साथ जी मेरे पास एक और जो मैसेज है ये है गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोनों मैडम, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और ये नाम नहीं लिखा है नहीं, ये लेकिन मोहसिन है, मुझे याद आ गया कल का, हाँ मोहसिन है। तो जी ये मैसेजेस थे, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं 666-2107 पे और आप बता सकते हैं अपने बारे में और साथ ही साथ हम सवाल थोड़ी देर के बाद करेंगे।
0: हाँ, बस सबसे
1: आज का जो हमारा सवाल है वो हम आपसे थोड़ी देर के बाद बताएंगे और फिर उस पर इंशाल्लाह ताला बात होगी हमारी। और आज आखिरी शो है, जैसे कि हम मैं और नाजे हम दोनों बोल रहे हैं तो ये टाइम हम डेफिनेटली मिस करने वाले हैं। आप लोगों ने भी कुछ सवाल इसी से कुछ मिलता जुलता है, थोड़ी देर के बाद हम आपसे पूछेंगे कि क्या होने वाला है। खैर जी
0: बिल्कुल,
1: और क्या
0: बिल्कुल थोड़ी देर बाद सवाल होगा और भी कुछ बातें और कुछ लोकल अपडेट्स। फिलहाल आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है सुनते हुए शो समर मॉर्निंग्स।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर।
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाए।
4: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान, आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर।

0: सेप्टेम्बर 1 और सेप्टेम्बर 2 ट्यूसडे और वेडनेसडे को मुल्क भर में जो है वो स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टली विंड्स चलेंगी और इन हवाओं की वजह से जो है वो डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो महसूस आपको होगा. विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है. वहीं पर समुद्री इलाकों के लिए मरीन वार्निंग भी जारी कर दी गई है और साथ ही आवाम को कहा गया है कि वो हर तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लें वाइल दे आर ट्राइंग टू रीच दीज एरियाज. तो बस ये सारी अपडेट्स एंड एक और
1: खबर है हमारे पास, वो भी मैं बताती चलूँ कि अरब बुक अवार्ड, इनका ये कहना है कि उन्होंने 835 नॉमिनेशंस इनको अभी तक मिली हैं. दो कैटेगरीज रखी गई हैं फोर्थ एडिशन की इस अवार्ड के लिए 2026 का. और इधर जो है जो आपको नज़र आ रहा है कि जो अरब का जो एक इंटेलेक्चुअल आउटपुट है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक मतलब सबमिट किया गया, डाइवर्सिटी भी नज़र आई. और इनका ये कहना है कि 2023 में लॉन्च किया गया था ख़ासतौर पर कतर में ये, और ख़ासतौर पर ये डेडिकेट किया गया था बुक ऑथर्स के लिए, अरबिक में जो लिखते हैं, जो रिसर्चर्स हैं, पब्लिशिंग हाउसेस हैं और इंस्टीट्यूशंस, के वो यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकें और एडवांस कर सकें जो अरब बुक इंडस्ट्री है. और यहाँ ये बताया गया कि इतनी नॉमिनेशंस इनको रिसीव हुई हैं और इसमें साथ ही साथ इसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें लिंग्विस्टिक, लिटरेरी, क्रिटिकल स्टडीज़ और भी काफ़ी फील्ड्स हैं स्टडी की और जिसमें जो है वो देखने में आई हैं नॉमिनेशंस. तो ये है. और साथ ही साथ 27% जो है ना यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ और शरिया साइंसेस भी कुछ 19% तक है, सॉरी 27 हिस्टोरिकल स्टडीज़ है और उसके साथ ही सोशल एंड फिलोसफिकल स्टडीज़ भी यहाँ पे 15% उसमें देखा गया है कि लोगों ने अपनी जो इंट्रीज करवाई हैं वो इस तरह से हैं. तो ये अच्छा बड़ी अच्छी चीज़ नाजे मुझे लगती है कि अरब में जो अरब वर्ल्ड है ये अपनी लिंग्विस्टिक के ऊपर, अपनी जबान को प्रिजर्व रखने के लिए उसके ऊपर बहुत काम कर रहा होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर बींग मुस्लिम देखा जाए तो हम भी ये चाहते हैं कि ये लैंग्वेज इतनी हमारे दिलों में एक अकीदत है, चाहे हमें आती या नहीं आती. हाँ. तो हम ये चाहते हैं कि इस लैंग्वेज को अच्छी चीज़ है और कुरान में भी वादा किया गया है. तो डेफिनेटली तो ये मतलब ये अच्छी चीज़ और ये सीखना चाहिए हम लोगों को भी, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाए ना तो लैंग्वेज को अगर आप देखो तो यहाँ जब ये लोग अरबिक बोलते हैं ना तो आप देखो इनकी खालिस्तन अरबिक होती है, जबकि अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी जबान में आपको बेशुमार इधर उधर के लफ्ज़ मिलेंगे. हम लोग मुकम्मल तौर पे मतलब मिक्स लैंग्वेज है हमारी, हम मुकम्मल उर्दू नहीं बोलते, मुकम्मल हिंदी नहीं बोलते, लेकिन अरब वर्ल्ड की बात अच्छी है और इसी तरीके से अपनी जबानों को प्रिजर्व किया जाता है. तो ये खैर अवार्ड है, अवार्ड के हवाले से बात हो रही है और बहुत अच्छा अवार्ड और डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छी बुक्स, बहुत अच्छा लिटरेचर लोगों को पढ़ने को मिलेगा.
0: और सबसे ज़्यादा एंट्रीज पता है कहाँ है? इजिप्ट से.
1: हाँ,
0: हमेशा ही ज्यादा इजिप्ट से मैं देख रही थी कि एंट्रीज हैं. हाँ. फिर मोरक्को है, सऊदी अरेबिया है एंड देन कतर और फिर जॉर्डन. तो कहीं ना कहीं देखिए पता चलता है कि लोग जो हैं वो किताबों से कितनी किताबों से जुड़े हैं. हाँ. और इस जबान को प्रिजर्व करने इसमें कितनी इंटरेस्ट लेते हैं. और यहाँ तुमने कहा कि इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर्स वो भी हैं, उसके अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री भी डोमिनेट करती है.
1: Exactly.
0: तो देखिए लोग जो है कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज लाइक अ बोरिंग और समथिंग, अब हिस्ट्री को किस तरह से पेश किया जा रहा है इंटरेस्टिंग वे में वो जानना जरूरी है. और जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, तो ये एक चीज है कि अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ लेंगे तो आज के जो जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं और दूसरे सिनेरियोज हैं लेट्स से, उन्हें हमें समझना बड़ा आसान हो जाता है.
1: आसान हो जाएगा. और
0: पहले मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आता था, अब मैंने हिस्ट्री समझना शुरू की. समझना की
1: सही
0: पहले
1: अच्छा, मैं क्योंकि हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ तो मेरा हमेशा से हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है. और मैंने ये बात नोट की क्योंकि शुरू से हिस्ट्री में एक इंटरेस्ट रहा था मेरा. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना दुनिया को समझ में नहीं आ रही होती ना, इर्द गिर्द चल रही होती हैं, तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में पहले आ जाती हैं कि क्या मामला होगा, पीछे क्या है, किसी का नैरेटिव क्या है, वो बोल क्या रहा है और बोलना क्या चाह रहा है. तो वो सब कुछ आपको ना काफ़ी हद तक वाकई समझ में आता है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करती है.
0: मुझे लगता है हिस्ट्री को उस तरह से इंटरेस्टिंग वे में तब नहीं पढ़ाया जाता. अभी तो खैर पढ़ाया जाता है, अभी तो टीचर्स बहुत मैंने देखा अच्छे से समझा के पूरा सीन क्रिएट करते हैं एंड ऑल दैट. प्रीवियसली तो हमारी एक मैम हुआ करती थी एंड शी यूज्ड टू बी आवर प्रिंसिपल आल्सो हमारे स्कूल की. तो वो हिस्ट्री लेती थी जब पीरियड, तो क्योंकि वो प्रिंसिपल थी तो वो जब लेती थी तो वो लगातार दूसरों के भी पीरियड्स लेती चली जाती है दूसरों की भी क्लास. यानी अगर हमारी मैथ्स की है तो सर आते थे एंड यूज टू पीप एंड गेट, अच्छा मैम आप ले रही हैं, प्लीज प्लीज प्लीज कैरी ऑन.
1: अच्छा
0: बैक टू बैक तीन एक साथ इन रो वर्क लेती थी.
1: हाँ.
0: पक जाते थे हम. एंड आई स्टिल रिमेम्बर पूरी बुक हमारी जो होती थी ना वो मार्क्स में बनती थी. मतलब वो हर चीज को अंडरलाइन दिस, काइंडली अंडरलाइन दिस, पुट अ पॉइंट. और वो पढ़ाती बहुत अच्छे से थी लेकिन वो समझाती नहीं थी, वो पढ़ाया करती थी। अगर शायद स्टोरी बना के लोगों को समझाया जाए तो

0: हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा।
1: हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी एक मैम होती थी, मैम नसरीन, तो वो पढ़ाती थी ऐसे कि उन्होंने हमें पूरी जब मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर आपका ये ब्रिटिश इंडिया और सारा का सारा जो हिस्ट्री है, तो वो इस तरह से वो पूरे स्टेज पे, अच्छी एज की थी उस वक्त, मतलब 50s में होंगी, लेकिन वो पूरे स्टेज पे इधर उधर घूम फिर के पूरे मतलब हर तरह से क्रिएट करके वो हमें उस तरह से सिखाती थी। और अच्छा ये इंटरेस्ट आता है, और फिर थोड़ा मेरा SST में भी स्कूल के ज़माने में भी इंटरेस्ट था, उस जमाने में भी था, मतलब लोगों को बोरिंग लगता है लेकिन मुझे अच्छा लगता था, इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज भी मुझे अच्छा लगता था, तो वो एक वैसे भी इंटरेस्ट था। और फिर जब हम यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह अलग होते हैं, नो डाउट, मतलब अगर आप स्कूल के मुकाबले में देखो तो उनका बताने का अंदाज, उनका सिखाने का अंदाज वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस वजह से मेरा काफ़ी मतलब इंटरेस्ट रहा है, और मुझे लगता है हिस्ट्री हर किसी को पढ़नी चाहिए, लाजमी पढ़नी चाहिए।
0: वही तो मैं कह रही हूँ, आज के टाइम में तो इट्स लाइक क्वाइट मैंडेटरी।
1: एग्जैक्टली,
0: अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप वाकई चीज़ें कभी नहीं समझ पाएंगे, आप उसको वही नहीं कर पाएंगे विजुलाइज के आगे या कैसे क्या हुआ था, किस कॉन्टेक्स्ट में था। तो हिस्ट्री तो अब बहुत इम्पोर्टेंट, अब मैंने पढ़नी शुरू की है, मतलब देखनी शुरू की वीडियोस, कि समझ में आए कि अच्छा हाँ पास्ट में ये हुई, और कहीं ना कहीं वो लिंक है,
1: लिंक है
0: हर चीज में लिंक। अब हम सब कुछ बोल नहीं सकते,
1: बिल्कुल अच्छा, बहुत सारे रेवोल्यूशन ऐसे हैं जो कि हमें बहुत ही मतलब ना समझो कि फैंटेसाइज करके दिखाया गया, लेकिन उनके पीछे की भी, अच्छा मजे की बात यह है कि ये वाली जो चीज है ना, ये आपको कभी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं बता सकती। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि हिस्ट्री के बिहाइंड चल रहे होते हैं, मतलब एक साइड लाइन होती है स्टोरी, वो आपको फिर बाद में बाय द टाइम जब आप इंडिपेंडेंट ऑथर्स को पढ़ते हो तो वो फिर आपको समझ में आता है कि ओके मतलब जो ना हमें तो ये पढ़ाया गया था, असल में कहानी तो कुछ और थी,
0: कुछ और ही थी। और बहुत सारे ऑथर्स के अपने डिफरेंट नरेटिव्स हैं, तो अभी इस वक्त दुनिया में बहुत नरेटिव्स हैं, अब आपको ये भी जज कर पाना, पिक कर पाना, रिलेट कर पाना, ये कौन सा बेस्ट था या कौन सा सबसे ज्यादा रेलिवेंट है आज के हिसाब से, ये फिर आपकी अपनी जो है वो मैं कहूंगी कि आपका गुड माइंडसेट है या फिर आपकी अपनी इंटेलिजेंस है कि आप उसको कैसे ले पाते हैं।
1: अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नाज़िया, मतलब आप किसी का भी नैरेटिव एज इट इज अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है, मतलब हम लोगों को ना वो एक हर मामले में अपने कान आंखें और साथ में जो एक जो आपका मतलब क्या कहना चाहिए इसको, हाँ वो खुला रखना चाहिए और दिमाग को मतलब समझना चाहिए, क्योंकि आप किसी का भी नैरेटिव अगर एज इट इज ले लेते हो तो वो फिर गड़बड़ है।
0: हाँ,
1: आपको चीजें सारी देखनी है और उसमें से
0: एनालाइज करो,
1: हाँ एग्जैक्टली, उसमें से वो समझो जो तुम्हें सबसे ज्यादा लॉजिकल चीज लग रही है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है।
0: हम लोगों ने बहुत ज्ञान दे दिया, हालांकि आइडियली हमें हमारे क्वेश्चन की तरफ आना था।
1: मैसेज पढ़ देती हूँ,
0: एंड देन आज का जो टॉपिक है वो भी हम रिवील कर देते हैं।
1: बिल्कुल, तो आज हम आपसे पूछने के वाले हैं, अच्छा ये सवाल जो है ना इसकी दो लेयर्स हैं, तो एक लेयर मैं बता देती हूँ, दूसरी नाज़िया बता देगी, ठीक है। तो आज हमने आपसे पूछना ये है कि हमारा है लास्ट शो समर मॉर्निंग का, और समर्स में हमने आपके साथ ये शो किया, तो हम आपसे एक पता बड़ा मतलब आपके दिल से करीब, हमारे भी दिल के करीब जो हम बात कर रहे थे, वो पूछना चाहते हैं कि इस समर्स में समर मॉर्निंग के साथ आप लोगों ने क्या कुछ सीखा, मतलब अगर खास तौर पे हम इस शो की बात करें तो आप लोगों को क्या लगता है आपने क्या लिया, कोई ऐसी मेमोरी जो कि आप अपने साथ लेके जा रहे हैं इस शो से, तो वो आप हमसे शेयर करें। और दूसरी क्या है,
0: दूसरी क्या है, तो बस यही आज का हमारा सवाल है कि समर ने हमें और आपको क्या सिखाया, या फिर इस समर मॉर्निंग से हमने और आपने क्या सीखा समझा, या क्या हमारा आपका फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा तो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा विजिबल लगता है, जो समझ में आता है, कि हमने यहाँ पे गुड फ्रेंडशिप्स जो है वो क्रिएट की, एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, और इस बात से आप सबके सब जितनी भी हमारे लिसनर्स हैं सारे के सारे इस बात के साथ इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि आपने खुद इस चीज़ को हमारे साथ शेयर किया और हमें बताया कि हाँ समर मॉर्निंग्स के चलते आप लोगों के उसमें जो है वो आपका जो बॉन्ड है और ज़्यादा मजीद मजबूत हुआ है, तो ये एक चीज़ तो समझ में आई। अच्छा फिर मैं बहुत ही जेनरिक वे में देख रही थी कि समर हमें क्या सिखाता है, यू नो हर सीज़न से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे रेनी सीज़न हो, चाहे स्प्रिंग हो, ऑटम हो, जितने भी हैं, तो समर्स कहीं ना कहीं मुझे आई डोंट नो हाउ इट टीचर्स मी पेशेंस, मुझे ऐसा महसूस हुआ, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल, आप सबसे मैं पूछना चाहूँगी कि समर पर्टिकुलरली अ सीज़न, अभी ये गया नहीं है, अभी लास्ट फॉर अ मंथ हो, लेकिन हाँ फिर भी हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या आपको समझ जो है वो पेशेंस सिखाता है, क्या आपको समझ जो है वो बॉन्डिंग का एहसास एहसास दिलाता है विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास टाइम होता है कि आप घर में रहें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ उतनी एज सच होती नहीं है, या फिर समर्स जो है वो आपको लेटिंग गो वाले एटीट्यूड की तरफ लेकर जाता है कि अरे गर्मी है, एनर्जी नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, क्या ही बहस करूँ, सो चलो छोड़ो. सो व्हाट इज इट समर आपको क्या सिखाता है ये, एंड देन द सेकंड पार्ट इज जो महवेश ने पूछा कि आपकी समर मॉर्निंग्स की बेस्ट मेमोरीज, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. नंबर यू नो इज 666-22107 एंड कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77 और कोई जुड़ गया हमारे साथ इस वक्त. हेलो गुड मॉर्निंग.
2: हम जुड़ गए हैं, मैं आपके साथ ऐसे में गुड मॉर्निंग.
0: अरे मॉर्निंग. अरे हम भी जुड़े हुए हैं आपके साथ. वेरी गुड मॉर्निंग शहजादा जी.
2: जी जी हाँ गुड मॉर्निंग नाजिया मैम, गुड मॉर्निंग महवेश मैम.
1: जी गुड मॉर्निंग. जी जी गुड मॉर्निंग आपको भी.
2: फिफ्टी बिल्कुल जी. आज का आखिरी शो है ना तो काफी. हाँ ये आपके जो समर वेकेशन तो हमको तो बहुत कुछ सिखाता है. मोहब्बत सबसे पहली चीज, मोहब्बत अखलाक और डिसिप्लिन और नए दोस्त,
0: डिसिप्लिन
2: सिखाता है और अच्छे अच्छे बेहतरीन पार्टीज, खाने की यादें, खाने.
0: अच्छा, अच्छा ओके. ये भी सिखा रहा है चुपचाप आप तरीके से. हमें नहीं पता चला.
2: हाँ जी सारा. हाँ सारा कुछ सिखाता है. और आपके जो जो प्रोग्राम से तो दोस्त मिले और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मिले, एक होम सर्कल बहुत अच्छा बड़ा बना और कितनी ऐसे मिले ना जो हमारे में कुछ खामियां थी. हाँ उससे हमने ये गौर किया कि यार ये तो गलत किया था मैं उस टाइम पे. हाँ तो ये चीजें हमको है ना कुछ दिल को छू गई. ऐसी ऐसी टॉपिक, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी एडवाइस बहुत जबरदस्त. तो वो काफी कुछ है ना एक जिंदगी को आगे जा जा जिंदगी में कई कई जगह उतार चढ़ाव और कई जगह कुछ छोटा डैमेज कोई बड़ा डैमेज तो उनको वापस से इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफी कुछ मिला है. काफी कुछ मिला है.
0: नाइस.
2: नो डाउट.
0: दैट्स नाइस. बिल्कुल. और हमें खुशी है.
2: बिल्कुल बिल्कुल. और जो मतलब एक एक्सप्लेन करने का जो आरजेस का जो एक कैरेक्टर होता है ना ब्रिलियंट ब्रिलियंट बोलेंगे तो सुपर ब्रिलियंट. क्या कहने क्या हुआ आवाजें क्या लेजर वो भी गूंजते रहेंगे कई दिन है ना सुबह गूंजते रहेंगे कानों में. तो ये हमको मिला है. जी जी जी उसमें तो कोई दो राय.
1: बहुत बहुत शुक्रिया.
0: आपने वाकई हमें सिखाया कि किस तरह से पॉजिटिव हो, हम्बल हो, काइंड हो, दूसरों को अप्रिशिएट करो होल हार्टेडली. ये हमने आपसे सीखी. और आपकी आपकी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आप लॉयल रहते हैं एज अ लिसनर, हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं एज अ लिसनर, वो भी हमें कहीं ना कहीं टच करता है, मोटिवेट करता है. सो थैंक यू सो वेरी मच कि सुबह सुबह का टाइम होता है, बिजी होते हैं सब, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट आप वक्त निकालते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ. इट ट्रूली मीन्स अ लॉट. तो हम भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे सारे लिसनर्स के. थैंक यू वंस अगेन.
2: जिस तरह नाइट में हर एक बंदा, हर एक एम्प्लॉय, हर एक लेबर, हर एक वर्कर को सुबह ड्यूटी की फिक्र होती है ना, तो हम नर को स्पेशलिस्ट सुनने की फिक्र होती है. अच्छा. सुबह प्रोग्राम सुनना है तो हमको ये सब कुछ मिला है. बिल्कुल.
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का और आपकी कॉल का. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वंस अगेन. अल्लाह हाफिज़. और एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अब थोड़ी आवाज़ आपकी ठीक हुई, वरना हमें लग रहा था कि आप जो है वो शायद ड्राइव करते हुए हमसे बात कर रहे हैं.
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
1: अच्छा अच्छा. तो नाम क्या है आपका?
3: मैं काशिफ.
1: काशिफ बात कर रहे हैं. काशिफ पहली दफ़ा कॉल मिली है?
0: नहीं हुई है. बात
3: पहली बात मिली है नाजिया. हाँ हाँ
1: सही सही सही. क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं
3: अल्हम्दुलिल्लाह. आप
1: बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. जी काशिफ तो क्या कहना चाहेंगे आज हमने जो सवाल दिया है उसके बारे में?
3: سوال کیا ہے کیونکہ میں تو ابھی آیا ہوں.
1: سوال یہ ہے کہ سوال کیا ہے؟
0: سوال کیا ہے؟ آج ہم نے کوئی سوال ایسا رکھا نہیں ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو آج ہمارا سمر مارننگس کا یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. سو اٹس کائنڈ آف ری کیپ اور یو نو بیسٹ میموریز, جسٹ اے ریمائنڈر کہ اتنے ٹائم ہم اور آپ جڑے, آپ کی سمر مارننگس کی بیسٹ میموریز کیا ہیں. اینڈ دین دیر واز اندر سیگمنٹ جو ہم نے ایڈ کیا کہ سمرز آپ کو کیا سکھاتا ہے, کیونکہ ہر سیزن سے ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہوتا ہے. تو سیزن کیا آپ کو زیادہ پیشنٹ بنا رہا ہے, زیادہ آپ صبر ضبط کرنا سیکھے, یا آپ کا فیملی بانڈ زیادہ اسٹرانگ ہوا بیکاز بینگ ایٹ ہوم آپ کو ٹائم ملتا تھا فیملی کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرنے کا, یا اپنے آپ کو پہچانا, یو نو نوئنگ یور سیلف ورتھ سم ٹائمس, کہ یہ بھی ہمیں نہیں مل پاتا تھا ٹائم, تو چلو سمرز نے کہیں نہ کہیں سکھایا, یا پھر کچھ اور؟
3: جی ہوگا, پہلی بات تو یہ کہ لگتا ہے کہ آج آپ جو ہے نا وہ باہر نکلی تو آپ کو بھی محسوس ہوا کہ آج مارننگ کے جیسا کچھ ہے, کیونکہ ویسے تو باہر نکلو تو باہر نکلتے ہی پسینہ پسینہ, لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ آج مارننگ کے جیسا کچھ ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا.
0: جی جی جی ہاں, ورنہ گرمی تو خیر چلی رہی تھی,
3: ڈائریکٹ مارننگ نہیں آفٹرنون ہی آتا ہے.
0: ہاں یہ بھی تھا کہ مارننگ نہیں ہوتی تھی, مارننگ کاشف جی مارننگ ہوتی تھی, ارلی ہوتی تھی, وہ لوگ جو ارلی ہیں ارلی رائزر جو صبح ہی اٹھ جاتے ہیں اپنا واک شاک کرتے ہیں جاگنگ کرتے, تو ان سے آپ پوچھیں تو بتائیں گے بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈسکرائب کریں گے مارننگ کو, نیچر کامنیس.
3: چار بجے پانچ بجے سے پہلے کی ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن چار پانچ کے بعد کی ہو تو مجھے پتا ہوگا.
0: ہاں اگر دیکھیں چھ کے بعد ہے نا تو پھر تو واقعی صحیح کہا آپ نے, آفٹرنون میں ہی انٹری ہو جاتی ہے ایسا لگتا تھا.
3: بس وہی پانچ بجے ہی تو ہمارا کام اسٹارٹ ہوتا ہے, پانچ بجے اٹھ کے اس کے بعد جا کے نا.
0: ہاں صحیح صحیح.
3: باقی یہ ہے نازیہ بہن, ایک چیز تو ہے کہ میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے, یہی کوئی شاید سے لاسٹ ایک ڈیڑھ منتھ یا دو منتھ اتنا ہی ٹائم ہوا ہے, اس سے پہلے تو کبھی میں نے نہیں جے ایف ایم کی طرف میں گیا ہی نہیں, میں بس ایسے ہی گاڑی میں کچھ بھی وہ یوٹیوب سے لگا کے بس کانوں میں کچھ گھستا رہے تو چلتا تھا نظام, لیکن ایک دو ایسے ہی غلطی سے شاید وہ آن ہو گیا ریڈیو, تو میں نے ایک بار پروگرام سنا, دو بار پروگرام سنا, تو اس کے بعد ایک عادت سی بن گئی.
0: اوہ نائس.
3: وہ چیز ہے کہ ہاں وہ جو میں پہلے وہ ایسے ہی میرا یقین کرے نا نیٹ کی تباہی ہو جاتی ہے, پورا ڈسٹرائب لے گاڑی چلاؤ تو پھر جب تک کان میں کچھ گھسے نہ تو وہ نیند سے آنے لگتی, تو یہی رہنا تھا کہ کچھ نہ کچھ یوٹیوب سے کوئی پروگرام کچھ بھی لگا کے وہ کان کو جگاتے رہو دماغ کو کہ بھائی ہاں کھیل آئی. لیکن جب سے میں ایف ایم کے ساتھ آیا ہوں اس کے بعد سے ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ میں نے یہ لاسٹ ایک دو منتھ ہو گئے ہیں گاڑی اور موبائل کا بلوٹوتھ کنیکٹ بھی کیا ہے.
0: نائس, یہ تو بہت ہی اچھی پیاری بات.
3: ہاں یہ مجھے یاد رہے گا ہمیشہ, اگر اس کے بعد شاید سے ڈیوٹی چینج ہو جائے تو نہ بھی ہم بات کر سکیں برابر اسی ٹائم میں, کیونکہ ابھی جب تک یہ سمر بین چل رہا ہے نا 15 تاریخ تک نیکسٹ منتھ تک, تو ہاں یہ سیم ڈیوٹی رہے گی, لیکن اس کے بعد سے میں بھی نائٹ میں ڈال دیں وہ
0: ان کی بھی چینج
3: نائٹ میں جا کے پھر نائٹ میں پروگرام ہی سننے پڑتے.
1: صحیح صحیح.
3: اس چیز کا احساس تو تب ہوا نا یہ جب میں بھی فرائیڈے سیٹرڈے کو جب آپ لوگوں کو چھٹی ہوتا ہے تو یقین کریں اس دن میں اتنا بور کب وہ شروع ہوگا, کبھی کسی لسنر کی بات سننی ہوتی ہے, کبھی کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ میسج کر رہا ہوتا ہے, میسج میں کوئی شعر سنا رہا ہوتا ہے, کوئی جوک سنا رہا ہوتا ہے, تو وہی سب کچھ سنتے سنتے سنتے پتا ہی نہیں چلتا اور ٹائم پورا ہو جاتا ہے. لیکن جس دن چھٹی تھی نا اس دن ہر بار ایف ایم آن کروں دیکھوں آگے نہیں وہی پرانے پروگرام چل رہے, نہیں مزہ نہیں آتا. میں نے میسج بھی کیا تھا اس ٹائم سے دوسرے دن, تو یہی ہے کہ ہاں آپ لوگوں کے ساتھ اور جتنے بھی ہمارے بھائی جو کال کرتے ہیں بات کرتے ہیں میسج کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھی بونڈنگ ہوئی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, بہت کچھ. اور سمر کی بات رہی تو हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बात रही समर की, तो समर ने तो पहली बात तो गर्मी बर्दाश्त करना सिखा दी है।
0: बर्दाश्त, ये आपने सही कहा कि जो ना हम कहीं ना कहीं पेशेंट हुए हैं।
3: भाई जितनी भी गर्मी हो इंसान बर्दाश्त कर ही लेता है।
0: हाँ,
3: बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए।
0: यस, ये तो है।
3: अच्छी बात ये इसमें थोड़ा ड्यूटी टाइम शॉर्ट हो जाता है तो अपने लिए ज्यादा टाइम मिलता है मेरे हिसाब से। इसमें ज्यादा मसरूफियात नहीं रहती इसमें, बस ठीक है। एक तो पहली बात ये है कि आपको समर में अच्छा टाइम मिलता है दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत करने में, वक्त गुजारने में, क्योंकि समर में ऐसी सिचुएशन बनी होती है कि ना तो आप रात में

0: बाहर निकल सकते हो ना, दिन में बाहर निकल सकते हो।
1: सही,
0: वो चीज नहीं रहती। तो इसमें ये है कि आप लोग दोस्तों के साथ बैठ के जाहिर सी इधर भी जाएंगे तो या तो बंद गाड़ी में होंगे या तो बंद कमरे में होंगे, क्योंकि बाहर बैठना तो ना
1: पॉसिबल नहीं होता,
0: कोई मिल सकता।
1: सही,
0: एक साथ जब बैठे हो सारे बंदे तो फिर बहुत कुछ बात चलती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत दुख शेयर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। अभी उसका सुनो, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, कभी दूसरे की सुनो, फिर अपना कोई हंसी वाली बात बताओ, फिर उनकी सुनो। तो ये सब करके बात तो है कि हाँ समर को मिस तो करेंगे हम लोग। आगे जब आ गया सर्दियाँ आ गई तो उस टाइम में कुछ और ही सिस्टम होगा, क्या पता वो कुछ नया सिखाएगा, वो कुछ नया बताएगा, वो रूटीन ही नहीं चेंज हो जाएगी। लेकिन जो अभी का सिस्टम चल रहा है ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मैं मिस करूंगा इसको नेक्स्ट आने तक इंशाल्लाह।
1: हम भी आपको उतना ही मिस करेंगे जितना आप हमें मिस करेंगे, तो ये तो है सच, क्योंकि मॉर्निंग्स का एक अलग ही मुझे लगा कि अलग ही वाइब थी ऑल टुगेदर। तो बहुत ज्यादा आप सबको क्रेडिट चाहते हैं।
0: अभी वो शहजादा भाई ने एक बात की थी ना कि सुबह उठ के वो सबसे पहले वो गाड़ी स्टार्ट करने की फिक्र नहीं रहती है, फिक्र रहती है अभी अच्छे मौसम हो पहले।
1: जी
0: उन्होंने बिल्कुल दिल की बात की थी, बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे पहले उठ के वही रहता है, ऐसे मौन करो, देखो चल क्या रहा है, सवाल क्या है, टॉपिक क्या है, कोई गेम चल रहा है।
1: सही तो बस आज वाकई ऐसी फीलिंग है, और आप लोग इतना प्यारा प्यारा बोल रहे हैं तो हमारा दिल वाकई वो हो रहा है। मतलब हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको इस टाइम में। दो हमारे टाइमिंग्स रहेंगे, हम जुड़ेंगे आपके साथ लेकिन दूसरे टाइम में जुड़ रहे हैं, बट हाँ वी गोना मिस दिस मॉर्निंग, ये टाइम तो वाकई हम मिस करेंगे
0: इंशाल्लाह, ये टाइम तो मिस करेंगे बिल्कुल।
1: जी सुबह की अलग थी वाइब और एक मजा भी था, और क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी मिल जाता था 3 घंटे, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा था हमारा लिसनर्स के साथ, लिसनर्स को समझना।
0: जी
1: बिल्कुल यही बात। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स जो आपने हमारे लिए, हमारे शो के लिए, जिनको भी आपने कहा, जो कुछ भी कहा, हम तहे दिल से उसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड कि आगे भी आप हमारे शोज में जो है वो प्लीज़ जुड़िए, पार्टिसिपेट कीजिए।
2: थैंक यू जी, थैंक यू काशिफ, ख्याल रखिएगा अपना।
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। क्या करें, रुक जाए, इतना लोग इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं मगर बस क्या कर सकते हैं दोस्तों। मतलब होता है कभी कोई शो एंड होता है तो लगता है कि चलो अब ये एंड हो गया, नहीं कभी कभी ये वाली भी फीलिंग होती है मैं कि चलो ये फाइनली चलो अच्छा हुआ, ये एंड हुआ, अब कुछ नया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शो एंड हो रहा है तो लगता है नहीं एंड नहीं होता और ये थोड़ा सा और चलता, अभी हमें पास और कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए, और कुछ था बताने के लिए।
2: ये मुझे रिकॉर्डेड जो शोज होते हैं उसमें फील आती है, ओ अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो गए, ये उसमें आती है। लाइव शोज में थोड़ा सा कम होता है
1: क्योंकि वो एक कमाल का इंटरेक्शन है ना।
2: हां, असल जो चीज है ना वो इंटरेक्शन ही है कि आप जो लिसनर से बात करते हो सब कुछ, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बहुत स्ट्रेस होता है, नींद पूरी नहीं हुई थी सब कुछ, लेकिन वो सही हो जाता है सब कुछ।
1: सही का बिल्कुल सच है, तो लाइफ का अलग चार्म है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे कॉलर्स भी लाइन पे हैं, आपको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखूंगी, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।

0: प्रिंटी वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM समर मॉर्निंग में. एक दफा फिर हम आ गए और वक्त हुआ है 7:00 तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, बल्कि हो ही गए हैं. तो आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग और हम इस वक्त बात करने वाले हैं, हमारे साथ एक कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान.
0: कैसे हैं फैजान?
2: फैजान
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र.
1: जी बड़ा अच्छा लगा ये जो था आपका समर का शो. और मैं जब घर से निकलता था तो जो अपडेट होती थी ना वेदर की, वही मैं बस मतलब जो है वो सुन पाता था. फिर मैं क्या करता था, जल्दी जल्दी आके ऑफिस में पार्किंग में गाड़ी लगाई, कभी टाइम होता था तो आपको मैं कॉल कर लेता था और अदरवाइज इसी तरह मैं चला जाया करता था. बहरहाल ओवरऑल बड़ा अच्छा था, मैंने कॉल भी की, अपने ओपिनियन भी शेयर किए और एप्रिसिएशन भी मिली. और
0: तो मुझे तो फैजान याद रहेगा, आप बहुत अच्छा गाते हैं ये पता चला हमें समर मॉर्निंग में.
2: अच्छा गाते भी
0: बहुत अच्छा गाते हैं. इन्होंने पहले क्या किया, कहा कि मैं अच्छा गाता हूँ, तो मैंने कहा मतलब सभी को लगता है कि गा ही लेता है लेकिन जब इन्होंने गाया तो वाकई बहुत अच्छा गाया.
2: अरे हाँ मुझे याद है कि आप ही थे जो गिटार वगैरह भी बजा लेते हैं.
0: फैजान बड़ा अच्छा गाते हैं. और खासतौर पे ना फैजान का जो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी वो ये कि इनका और मेरा म्यूजिक टेस्ट बहुत मिलता हुआ है. इन्होंने वो हाँ फ्यूजन के गाने और वो पुराने सारे उस तरह के जो गाने हमारे पाकिस्तानी बैंड्स हैं, तो वो मुझे अंदाजा हुआ उसमें अंताक्षरी में कि फैजान के गाने मतलब उनको वो पसंद है.
2: Oh, nice.
1: और अभी जो थे मेरे से पहले वाले कॉलर, उन्होंने शेर व शायरी की भी बात की थी, तो मैं चाहता हूँ कुछ सुनाना थोड़ा सा.
0: बिल्कुल वाओ,
2: देखिए शेर व शायर भी अच्छे.
1: मुश्किल दिन भी आए लेकिन फर्क ना आया यारी में. हमने पूरी जान लगाई उसकी ताबेदारी में.
0: Great.
1: बेईमानी करते तो फिर शायद जीत के आ जाते. चाहे हार के वापिस आए, खेले अपनी बारी में.
0: क्या बात है,
1: मीठे होंठ हिलाए, कड़वी कड़वी बातें की, कीकर और गुलाब लगाया उसने एक क्यारी में. तेरी जानिब उठने वाली आंखों का रुख मोड़ लिया. हमने अपने ऐप दिखाए तेरी पर्दादारी में.
0: ओए होए होए,
1: जाने अब वो किसके साथ निकलता होगा रातों को. जाने कौन लगाता होगा 2 घंटे तैयारी में.
0: ओए होए होए, क्या बात है. बहुत आला.
2: गाना ही नहीं
0: शायरी भी अच्छी करने पे. जबरदस्त.
2: चलिए आपका काफी छुपा हुआ टैलेंट लास्ट डे में निकल के आया. एटलीस्ट जाते जाते आपने बताया कि नहीं मैं बहुत अच्छी शायरी भी.
1: एक दफा मैंने जो ना कबीर भाई को भी सुनाई थी, तो इतने सारे जो थे कॉलर वो साथ मैसेज करने लगे थे कि भेज दें. तो फिर
0: नहीं भी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी कलेक्शन,
2: बहुत अच्छी जबरदस्त. चलिए जी
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू फैजान, बहुत ख्याल रखिएगा अपना. और इसी तरह से अब हम 10 बजे होंगे, नाजिया जो है 1:30 बजे होगी, तो वहाँ पे भी मिलते रहिएगा.
1: जी जी जी
0: कुछ मैसेजेस जल्दी जल्दी से शामिल कर देती हूँ, फिर हम कॉल भी ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छा हूँ और ये अच्छे हैं. आरिफ अंसारी कैसे हैं भाई? मतलब इनका भी कुछ जाने आने का सीन था, मुझे याद पड़ता है जाने से पहले कि ये भी जा रहे थे, इन्होंने कहा था इंडिया जाऊँगा, पता नहीं कुछ शादी का भी तस्करा हुआ था, इनका था या किसी और का था, मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ. खैर बताइएगा भाई क्या रहा आपका इस दौरान. इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, और ये शाम का मैसेज है और हम साथ में कॉल ले लेते हैं.
2: यस हमारे साथ कॉलर है. हेलो
3: जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू. आपका नाम?
3: नौशाद अहमद.
2: नौशाद अहमद, ओहो कैसे हैं आप? खैरियत से?
3: बढ़िया अल्लाह करम है, आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र.
2: तो आज हमने कोई ऐसा बहुत सवाल नहीं रखा है, जस्ट लाइक कि एक तो समर मॉर्निंग्स ने आपको क्या सिखाया, क्या आपने सीखा उससे, और दूसरा समर्स आपको क्या सिखाता है.
3: जी
2: तो यही आज के हमारे सवाल है.
3: प्रोग्राम से तो बहुत कुछ सीखा है, तीन चीज का मैं तस्करा कर दे रहा हूँ.
2: जी जरूर.
3: ये कि जावेद साहब से मैंने ये सीखा कि अपना

0: کس طرح مختصر انداز میں بالکل جامع طریقے سے دے سکتے ہیں آپ.
1: نائس, یہ تو میں نے بھی انہیں بولا تھا کہ بہت ہی اچھا, ٹو دا پوائنٹ.
0: زیادہ لمبا نہ کر کے بالکل اچھے انداز میں کس طرح آپ پیش کر سکتے ہیں وہ جاوید صاحب سے سیکھا. اور ایک نازیہ جی میں نے یہ سیکھا کہ جو آدمی جب انسان سیڈ ہو بالکل کس طرح سے تسلی دی جاتی ہے. ایک بنگالی بھائی کا کال آیا تھا کہ ہم بہت پریشان ہیں, ہماری چھٹی نہیں ہوتی ہے ہفتے میں,
1: جی
0: پورے سال کے سال
1: جی.
0: کو آپ نے اس طرح اس انداز میں, اتنے اچھے انداز میں سمجھایا تھا, وہ بیچارہ دوسری مرتبہ پھر کال کیا اس نے, اور وہ خوش ہو کر کے گیا یہاں سے. آپ نے ان کو یہ کہا کہ آپ خوش رہنا سیکھ جائیے اور اس کو برداشت کرنا سیکھ جائیے, اللہ کوئی ضرور راستہ نکالے گا. پھر اس نے دوبارہ کال کیا تھا. میں نے یہ سیکھا کہ جب آدمی سیڈ ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے تسلی دی جاتی ہے, اس کا دل کس طرح سے بڑا کیا جاتا ہے.
1: زبردست, بہت ہی اچھی بات, مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ والی بات یاد ہے.
0: میں نے بہت کچھ سیکھا.
1: جی
0: جی جی رئیس صاحب ہیں اور بھی بہت سارے جو ہے, ہاں خاص طور سے گاوا صاحب, یہ گاوا صاحب بہت لاجواب انسان ہے,
1: بہت ہی بالکل صحیح کہا آپ نے, اور بہت ہی پریکٹیکل. ان کے سارے جتنے بھی آنسرز ہوتے ہیں تو وہ کلوز ٹو ریالٹی, بہت پریکٹیکل, ہاں اگزامپل کے ساتھ سمجھاتے ہیں.
0: جی جی
1: جی جی بالکل. تو واقعی خوشی ہے کہ ایز اے ٹیچر میں آپ لوگ کو فل مارکس دوں گی آج, کیونکہ آج آپ ٹیسٹ میں سب پاس ہیں, سب کو سب کچھ یاد ہے, جو اتنے ٹائم ہم لوگوں نے پڑھا وہ سب یاد ہے. بھائی اچھی بات ہے, ماشاء اللہ, امپریسو,
0: شکریہ. آپ سب کا خوش رہیں جہاں بھی رہیں.
1: تھینک یو جی, اور ہم چاہیں گے کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ جڑیے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کا ہمارا بانڈ کسی بھی طرح سے ٹائم کی وجہ سے, کہ ٹائم چینج ہوا تو ہمارا آپ کا بانڈ کمزور ہو, نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سارے شوز میں.
2: انشاءاللہ تھینک یو, بہت بہت شکریہ نشاط صاحب آپ کا, تھینک یو
1: سو مچ, تھینک یو, تھینک
2: یو, اللہ حافظ,
1: اللہ حافظ.
2: اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ.
1: اوکے
2: ہاں, ہیلو, السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
2: جی بھائی نفیس بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
3: جی ٹھیک ٹھاک. پیاری بہنیں دونوں ماشاء اللہ اتنی خوش آئیں بات کہ ایک ہی ٹائم پہ دو خوبصورت آوازیں سننے کو مل رہی ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے. اچھا میں
1: آپ کو بھی,
3: آپ چھوڑے کوئسچن چھوڑے یار,
1: میری چھوڑا
3: بتائیے. زندگی خود ایک سوال ہے, آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے بندہ ہزاروں سوال کرتا ہے, زبان پہ نہیں لا پاتا انسان پوری لائف میں, اپنے آپ سے سوال چلتے رہتے ہیں یار, اندر ہی اندر دل دماغ سے سوال کر ہوتا ہے اور دماغ دل سے, لیکن زبان سے آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. اس کے پیچھے گہری بات ہے, میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ریڈیو آن کیا آج اور میری کانوں میں پہلی آواز بلا کیا پڑی, تو یہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہے یار. زندگی خراب کر دی یار یہ کیا یار, یہ صبح صبح میں آپ کو پہلے بھی پتا کتنا سینسٹیو ہوں, چھوٹی سی چیز زندگی اگر بنتی ہے اور چھوٹی سی, لیکن یہ چھوٹی ہے بھی نہیں, یہ بڑی چیز ہے.
2: لیکن نفیس ہم ہوں گے نا, ہم 10 بجے ہوں گے, نازیہ جو ہے 1:30 بجے ہوگی.
1: ہاں مارننگز میں لاسٹ
3: ساری فیل کا نا وہ ستیا ناس ہو گیا, پورا ٹائم چاہیے, لائف چاہیے ہوتی ہے ایک مومنٹ بنانے کے لیے. یہ صبح کی ایک گاڑی میں آفس کے اندر پہنچتے تک آپ کی آوازیں سنتے سنتے کمپیوٹر آن کرو, کیا کر دیا
2: ہم, کیا کریں, ہمارے ساتھ خود ہو گیا.
3: میں آپ لوگ سوال کرتی ہوں, میں ایک منٹ مجھے دیجیے گا ایز اے لسنر, ایز
1: اے آج میں سوال کروں گا.
2: ہاں بالکل بالکل,
3: ضرور سوال. کیا ہوا ہے, کیوں یہ کیوں چینجنگ آ رہی ہے؟
2: یہ تو ہماری مینجمنٹ ہے جو ہمیں کبھی ادھر کبھی ادھر, ان کو لگتا ہے ہم بور نہ ہو گئے ہیں تو وہ پھر کہیں پہ کہیں
1: ادھر ادھر چینجز ہوتے رہتے ہیں, اور شاید یہ ہمارا روٹین ہے, پارٹ آف روٹین ہے. ابھی یہ تو بہت ٹائم سے چل رہا ہے, اب دیکھیں آپ کو پتا چلے گا,
2: 2-3 سال تو ہو گئے,
1: 2-3 سال ہو گئے اس چیز کو کہ چینج ہوتا ہے, ہر 3-4 مہینے میں چینج ہو جاتا ہے. اور مجھے آپ یاد رہیں گے, پتا کیوں یاد رہیں گے نفیس جی؟
3: آپ لوگوں کو
1: ہمیشہ مجھے یہ اس لیے یاد رہیں گے کہ ساری دنیا ہوتی تھی رائٹ سائڈ, He's on the left side.
2: अच्छा नफीस
1: ये guts होना बहुत बड़ी बात है
2: और मुझे इसलिए याद रहेंगे कि बहुत ही जिंदा दिल बंदा है ना मतलब हर वक्त हंसते मुस्कुराते और हर चीज को पूरी पूरी की पूरी ना मतलब एक होता है कि आपने बस थोड़ा सा फील किया लेकिन ये पूरी शिद्दत के साथ हर चीज को लेते हैं मुझे बहुत अच्छी लगी
1: और मुझे इनके बारे में भी बहुत चीजें आपके बारे में बहुत अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत कम लोगों में इतना guts होता है कि जहां लोग जो चीज फॉलो कर रहे होते हैं यूजुअली लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं हाँ. लेकिन आपकी अपनी थॉट ऑफ क्लैरिटी ये मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि आज इस शो का लास्ट डे है तो मुझे भी बनता है कि मैं आपको अप्रिशिएट करूं ये चीज बहुत ज्यादा टचिंग थी हाँ. हमेशा ही क्योंकि आई हैव गॉट अ चांस टू सी टू नो कि आप जो है थोड़े से डिफरेंट बंदे हैं मतलब इनका ये कि जो मेरा है पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज माय पीओवी और मैं औरों के साथ इत्तेफाक नहीं रखता हूं
2: मुझे पता चला था इसी दौरान कि फैजान अभी जो आए थे फैजान और नफीस जो हैं पहले से एक दूसरे को जानते हैं
1: अच्छा
2: पीछे से इनका कनेक्शन है
1: ओके अच्छा
3: फैजान की हमारी सिटी से हम लोग अपने इलाके से
1: हैं अच्छा
2: नहीं लेकिन हम इंतजार करेंगे नफीस भाई ऐसा नहीं चल रहा कि आज यहाँ पे गुड बाय कह दिया आपने मेरा 10 बजे हाँ हम लोग अलग अलग टाइम पे आएंगे ना
3: अरे नाजिया आप होंगी 10 बजे
1: नहीं मैं
2: 10 बजे
1: डेढ़ बजे 1:30 आफ्टरनून
3: देखेंगे क्या तार बनती अच्छा बस ऐड करते फिरते हैं क्योंकि आज दिल वो नहीं है जैसे आपने जो तरीके की है ना वो आज गलत फीकी फील हो रही है कुछ
2: क्यों
3: बनता है ना तो मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि जिंदगी बनती है तो जिंदगी खराब भी होती है कुछ वजह से तो ये आप लोगों में से एक चीज ऐड करूंगा मैं ना कुछ चीज होती है मतलब अल्फाज नहीं बयान कर सकता आपको मौका याद दिला सकता है मैं आपको एक बात याद दिलाऊं अगर अल्लाह करे पीटीवी के टाइम पे होश थी पीटीवी देखा है किसी दौर में पीटीवी होता था पाकिस्तान में
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: क्या बात तो उस दौर में ना अच्छे भले ड्रामा अच्छे भले कोई मजेदार किस्म के कसम खुदा की बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ अच्छे खास किस्म के प्रोग्राम के अंदर एक एड आता था नी नी ती ती ती ती नारे नी ना नारे नारे नी नारे यार तो ना हंसने वाली बात ये
2: नहीं नहीं नहीं यार
1: बड़ा नहीं नहीं बोलिए बोलिए आप
3: यार वो काले काले से बंदे हाँ और मुंह पे वो लगाए हुए
2: चुंबन
3: और एक रेड कलर की लड़की छोटी हेयर वाली दरमियान से गुजरती थी यार वो डेढ़ दो मिनट म्यूजिक और वो एड ना मैं उस वक्त था 9th class में या 8th class में होगा मैं बहुत अच्छा चल रहा होता था रिलैक्सिंग कजनों के साथ लड़ाई चल रही है मैं मेरे मोहन मुझे तो ये मैं टीवी के आगे बैठते हैं समझ नहीं आया वो लड़ाई वाला सीन चल रहा है और ये एड एड गुजर के ना डिप्रेशन का वो पहाड़ आता था
2: सीरियसली मेरा तो बहुत फेवरेट एड है ये
3: यार चली जाए क्या कर रही है अच्छा हो गया मैं आपको बिल्कुल नहीं मिस करूंगा दोनों को
2: हाँ मुझे तो बहुत पसंद एग्जैक्टली मुझे बहुत पसंद है हाँ ये शूज का था ना
1: मैं तुम बता सकती हूँ तुम्हारा फेवरेट क्यों था
2: यार उसका म्यूजिक बड़ा अच्छा था म्यूजिक अच्छा था उसकी थीम बड़ी जबरदस्त थी और वो अपने टाइम से ना बहुत आगे का एड था मतलब मैं दिखाऊंगी अगर मुझे मिलता है तो
1: इसलिए महविश को पसंद था और आपको पसंद नहीं था
2: हाय हम दोनों तो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के लोग हो गए नफीस
3: म्यूजिक डिफरेंस कर देता था
2: हाँ अच्छा डॉन कॉलर्स का था वो
3: तो आज ना बड़े अरसे बाद सेम वही डिप्रेशन आया है जब मैंने ऐसे सुना ना रेडियो ऑन करते
1: कहां से रिलेट किया इन्होंने
2: देखो जरा देखो कहां से लेकर आए मैं नाजिया को दिखाऊंगी जरूर तुम फिर नाजिया से राय लेंगे इस पे
1: प्लीज मुझे दिखा
3: नाजिया की मैंने फील चेक किया ये भी डिप्रेस हो जाएगी ना दिखाइएगा लेकिन
1: चलिए ये तो हम बाद में ही बता पाएंगे वाज तो कैसे लेकिन अभी देखते हैं
2: भाई नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी थी वो
3: कसम से मैं भी छोड़ दे ना करें
2: अरे हाँ ना भाई नफीस थी
1: अभी मैं डिसाइड
3: करूंगी काले काले मथे पे अच्छा सुने नेक्स्ट लेवल के वो काले काले मुंह बना के पंजे बना के नेक्स्ट लेवल मतलब वो क्या दोजख का सीन दिखा रहे थे कि दोजख में ऐसे डॉन कालर डाल के जाए कम ऑन हद है जिंदगी खराब हो जाती थी कसम से अच्छा वाला मैं देख रहा था ऐने को जिन दरमियान में डी टी टी टी ना रे नी ना ना नी ऐसे था ना
2: हां बिल्कुल ऐसे ही था
3: क्या थी वैसे मुझे जरूर बताइएगा मेरे नंबर आप लोगों के पास है मुझे टेक्स्ट करके ना लिख के दीजिए बता तो आप पाई
2: भी बताते बिल्कुल बता
1: नहीं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मुझे देखना है
2: अच्छा ये अभी इतना एग्जैक्ट कॉपी किया ना मैं फौरन मिनटों सेकंड्स में समझ गया ये किसकी बात कर रहे
1: हैं
3: आप अभी देख सकते हैं क्योंकि मैं रेडियो थोड़ी देर तक ऑन में रखता हूं फिर आप थोड़ा सा उसके बारे में भी बता
1: दीजिए बिल्कुल बता
2: दें बिल्कुल
1: आपने हमें इतना हंसा दिया ना हम क्या बताएं आप कोई हमें कोई
3: देखो यार मेरे दर्द की वो दास थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए
2: हाय हाय हाय हाय क्या बात
3: कर रियाज था वो जो गीत तुमने सुना नहीं मैं मतलब अपना डिप्रेशन शेयर कर रहा हूं और आप कह रही हैं हंसा दिया
1: यही तो बात यही आपका टैलेंट है कि अगला बंदा डिप्रेशन में हो लेकिन वो एकदम हैप्पी हो जाए
2: ये सही आपका टैलेंट मतलब ऐसा वाला डिप्रेशन तो सबको चाहिए ये वाला तो हम सबको चाहिए
1: इस पे हंसी आती रहे
3: हमें मिस करूंगा आप टाइम साहब एक बाउंडिंग होती है आपने बड़ी अच्छी बात की
1: हम भी आपको इक्वली उतना ही मिस करेंगे बट इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आवाज में भी जो
2: हम आपको जोड़ लेंगे ना प्लीज आप बेफिक्र रहें
1: हम जोड़ लेंगे हम खुद ही जोड़ेंगे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह
3: जज़ाकअल्लाह और सब दोस्त भाई जिनसे आपकी वजह से हमारी जो ना दोस्तियां बनी टू बी ऑनेस्ट सब ये जो सब कॉलर हैं सब के हम आपस में सलाम दुआ दोस्ती हैं गपशप लगी बाजवा साहब हैं वली शहजादा तौफीक भाई और सब मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा दैट ये देखें यार लाइफ तो वो मेरा डिप्रेशन में जाना थोड़ा नेचुरल था तो 10 बजे किसी दिन कॉल करके इंशाल्लाह जिंदगी बनाऊंगा
2: यार
3: लाइफ का हां
2: लेकिन 10 बजे भी 1:30 बजे भी इंशाल्लाह
1: हां 1:30 बजे
3: भी और 10 बजे
2: हां बिल्कुल
1: इंशाल्लाह
2: थैंक यू नफीस बहुत ख्याल रखिएगा
3: आप ख्याल रखिए बहुत खुश रखिएगा बहुत खुश रहिए जी
2: बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू जी
3: अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज
2: वालेकुम सलाम
1: भाई बहुत ही सही कहा था तुमने कि ये वाकई जिंदा दिल इंसान
2: बहुत मजे की बात है मैं तो वाकई पर्सनली नफीस को जो है ना बहुत मिस करने वाली हूं
1: हां नहीं मैंने भी जैसे बताया ना कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती थी इनका जवाब बिल्कुल अलग आता था
2: बिल्कुल
1: और ये मैं इनको हैट्स ऑफ इसीलिए कहती हूं क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती हमारे दिल में होता है कि हम इस साइड रहें पर जब हम लोगों को देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी के साथ ही लोग इन्फ्लुएंस होकर चले भी जाते हैं बट ही इज दैट ओनली पर्सन ना इफ आई एम ऑन दिस साइड लेफ्ट पे हूँ तो लेफ्ट पे ही हूँ और ये मुझे बहुत यूनिक भी बात लगी एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने में विश हेलो गुड मॉर्निंग
4: वालेकुम
1: सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ये तो नूर जी हैं मेरे साथ ये तो है तो नूर जी आज हमारा ये एकदम लास्ट है समर मॉर्निंग्स का शो एपिसोड क्या कहेंगे
4: तो
2: ये होए
1: तो हमने आपकी नींद में खलल
4: नहीं नहीं खराब नहीं है बस मुझे बस बात करना था आज के दिन तो बस करना था हालात जैसे मेरी समझ जा आज मेरा ड्यूटी है
1: अच्छा
4: अलार्म लगा दी
1: अच्छा अच्छा अच्छा सही तो कुछ कहेंगे कुछ याद आ रहा है समर मॉर्निंग्स के हवाले से समर्स के हवाले से कुछ ऐड करना चाहेंगे
4: आप लोग तो मेरे गाना सुना देता हूँ पूरा टीम के ऊपर
2: ओए होए होए गाना सुना देते हैं
1: चलिए शायरी तो सुनाते थे गाना भी सुनाते हैं
4: सबको बनाया दीवाना सबको बनाया दीवाना
1: शुरू में तो मुझे लगा कि कुछ शायद तारीफ हो नहीं रही लेकिन दीवाना समझ में आया
4: जावेद आ नहीं करता है तो हो जाते हैं बदनाम, यहाँ पर हम लोग कत्ल भी करते हैं पर आ नहीं निकलते।
1: जरूर जरूर जरूर ऐसा कीजिएगा। और हम आपकी शायरी मिस करने वाले हैं ये तो कहेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे।
4: एक
1: हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी की, कहीं भी रहिएगा व्हाट्सएप पे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है? और वॉइस नोट भेज दीजिएगा, ठीक है?
4: और वो मैं अगर मैं अपने नेपाल में सुनना चाहूँ तो किस तरह से सुनूंगा?
1: आप सुन सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है urduradio.qa। आप हमें हाय लेके भेजिए तो आपको लिंक शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप आराम से नेपाल से सुनिए हमें।
4: ठीक
1: है, अच्छा ठीक है, हम अभी आपको लिंक भेजते हैं तो यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो लिंक शेयर। ठीक है जरूर,
2: थैंक यू
1: सो मच, अल्लाह हाफिज। तो ये थे हमारे साथ नूर सारे लिसनर्स जो हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ऐड करते हुए हमें जो है वो अच्छा फील कराते हुए।
2: अब अच्छा समीरा का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा है और सुबह सुबह आप दोनों की आवाज बहुत मिस करेंगे, यू बोथ हैव अ वेरी हैप्पी एंड काम वॉइस, माशाल्लाह तबारक अल्लाह और लाहौला वाला कुव्वत अल्लाह बिल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया समीरा, थैंक यू सो मच।
1: एक और कॉलर हमारे साथ है, डू यू वांट टू टेक अ मैसेज या हम कॉल की तरफ चले जाएं?
2: अवेज खान का मैसेज बस पढ़ देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजिया महावशी, आई एम अवेज, और आतिफ असलम का न्यू वाला सॉन्ग अगर प्ले हो सकता है तो चला दें। न्यू वाला
1: आतिफ असलम, चलो
2: अभी जो चल रहा था।
1: ठीक है, हम इसे ढूंढ के रखते हैं, हम फौरन चला देंगे
2: चले।
1: जैसे ही, और अगर हमें पता चलता है कौन सा सॉन्ग है तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि अब आतिफ डाला तो इतने सारे आ गए। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
5: सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सबह अल खैर।
1: वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग।
5: भैया आज आप लोग कोई गाना वाना नहीं चलाओ, समझ में आया? हम इतना कसम से खुश थे कि आप दोनों का एक साथ में, लेकिन आप दोनों कहाँ साथ में बैठे, खाली लो हम लोग को बेवकूफ बनाया गया है। थोड़े दिन साथ में रह के आप निकल गई उधर, वो निकल गई उधर, हम सुनने में थोड़ा सा मतलब खुशी फील कर रहे थे कि कम से कम चलो ना, दोनों ये लाजवाब है माशाल्लाह, दोनों बात करने का अंदाज दोनों लाजवाब है। किसी का एक का तारीफ मैं नहीं करूंगा, दोनों का मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं दोनों का फैन हूँ मैं। हाँ तो ये लास्ट में आप लोग मतलब करते करते करते फिर दोनों अलग हो के और दो टाइम इतना दूरी मतलब बना के और इस तरीके से करके जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा बहुत मतलब अजीब फील हो रहा है भाई, तो मजा नहीं आ रहा है। तो हालांकि सुबह सुबह का जो आप लोग जितने बजे बताते हो उठने वाला, ये है तो बोलते हैं ताकि क़यामत अगर मुझे सोना पड़े तो मैं नहीं उठूंगी, तो उनका भी मैं याद करके बताऊँ का है ये, अगर मैं सोती रहूँ तो कोई जगह तो क़यामत तक सोती रहूँगी।
1: ये तो मुझे बदनाम कर दिया सर्वर भाई ने,
2: ये मुझे कह रहे हैं
1: बदनाम करके रखा है, कहते कम से कम 14 से 15 घंटे के सोती हैं, हर जगह यही कहते हैं, जबकि मुझे मिल ही नहीं रहे सही 14 घंटे।
5: आपने खुद कहा था, अपने शो में कहा था, तो बहुत जमाना पहले कहा था, अभी जल्दी का बात नहीं है। हालांकि बहुत जब से आई है तब से मैं इनको सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत साइलेंट हो गई है, आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब मैं ज्यादा कुछ और नहीं मतलब आप लोगों से उसमें कि आप लोग इतने दिन में आके थोड़ा दिन रहे थे अच्छा था, लेकिन तो समझ लो ये करके अब आप लोग फिर अलग होके और अलग अलग हो सकता है कि उसमें 10 बजे वाले में महवेश वाले में तो शायद मैं, लेकिन 1 बजे वाले में भी भाई ड्यूटी अगर जिस तरीके से रहा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जुड़ने का ये तो, लेकिन आप दोनों हमारे फेवरेट हो गए फिर एकदम आगे पीछे इतना मतलब ये हो जाते हो तो थोड़ा सा
2: क्या करें, हम हमारे तो खुद इख्तियार में नहीं है।
1: नहीं, हम फिर आएंगे इंशाल्लाह,
2: इंशाल्लाह जिंदगी रही
1: तो जरूर फिर मॉर्निंग्स में, और आप तो हैं ही हमारे साथ तो बस इंशाल्लाह।
5: जिसको गाड़ी में जब ड्यूटी पे होते हैं तो बिल्कुल हम लोग सुनते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, और हमारे पास और दूसरा जरा तो कुछ है नहीं, बाकी यही सब सुन के देखते हैं भाई बातचीत करना। आप यही कहेंगे कि भाई आपके रेडियो से जुड़ के थोड़ा बात करने का सलीका आ गया, थोड़ा मतलब सारा चीज को इतने बड़े तो हम लोग ये है नहीं हाँ कि मोटिवेशनल मतलब ये बात इतने बड़े ये है
1: कि हम मोटिवेशनल स्पीकर तो है नहीं लेकिन बन गए
5: भाई रहते रहते भाई लोगों से सीखते सीखते हमारे भाई जो आते हैं ना तो जो आप कहा था ना कि वो सब कोई दाएं जाते हैं तो वो बाएं जाके मतलब कुछ ना कुछ नया लाके हाँ। वो फिट भी कर देते हैं
1: हाँ, वो फिट कर देते थे ये तो टैलेंट था इसीलिए शायद कुछ लिसनर्स याद रह जाते हैं हमारे जहन में भी रह जाते हैं जैसे नफीस जी फॉर हिज यूनिकनेस तो उनकी ये है और आपकी यूनिकनेस ये रही हमेशा मैं कहूंगी एक तो जुड़े हमेशा हर बार हमारे साथ भरपूर कोशिश और एक बहुत ही कहते हैं ना थोड़ा सा फ्रैंक अंदाज है इनका हाँ। बड़ा फ्रैंकली बात करना एकदम
2: जो दिल में होती है वो बोल देते हैं
1: बस बोल दिया जो आ रहा
5: है नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं भाई सीखे हैं थोड़ा सा तो उसको जाहिर मतलब ये भी करना पड़ता है ना खाली बस अपने अंदर रख के मजा नहीं आता ना तो सीखते हैं और भाइयों से और आप लोगों से ही कुछ ना कुछ करने के लिए तो इसमें अपना अपना भी बात अपना रखने का मौका मिलता है इससे ये बहुत बड़ा ये था अब हाला कौन भाई हमारे आने वाले हैं 6 बजे से ये
2: कबीर भाई
1: कबीर भाई
5: कबीर भाई कबीर भाई अकेले हैं कि मतलब कोई है उनके साथ
2: नहीं अकेले हैं वो अकेले ही काफी है
5: नहीं नहीं नहीं हर कोई भाई किसी के मतलब मैं नहीं करूंगा हर कोई अपना उनका अंदाज होता है बेहतरीन होता है लेकिन ये जो बात करने का हम लोग का ये चल गया था ना कुछ दिनों से तो ये थोड़ा सा अलग मतलब माइंड बन चुका था कि हाँ सुबह जाएंगे तो थोड़ी देर कुछ मतलब इस मौजू पे और ये करके कुछ ना कुछ सोच के कुछ सुन के लोगों से हमारे गावा जी आते थे हमारे मतलब और जावेद साहब सलीम साहब और जितने भी लोग हैं सब एक से बढ़कर एक बाकी माशाल्लाह
1: तो ये तो है कि कहीं ना कहीं सुनना हाँ ये भी हम लोग मिस करेंगे और एक जो बॉन्ड क्रिएट हो गया
5: तर्ज पे चलेगा कि नहीं अब तो वक्त बताएगा अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि
1: नहीं,
5: मतलब
1: अच्छा चलेगा, हाँ, नहीं इंशाल्लाह अच्छा चलेगा और मजा आपको आएगा
2: कबीर के बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हमें ये था कि आप लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली अब वेद और कबीर करते
1: रहे आ रहे थे
2: तो हर बंदा अच्छा ही करता है
5: कहाँ छुट्टी पे गए छुट्टी पे है वेद भाई क्या
2: नहीं वो बेसिकली नहीं वो चले गए हैं
5: कोई ये नहीं हमारी पुरानी शामियां थी और कई लोग मतलब चले गए हैं अब मिस कर रहे हैं उनको
2: बिल्कुल
5: सबका मतलब बेहतरीन था हमारी आयशा मैम थी सारे लोग थे तो अच्छा लगता था सुन के हाला
1: मुझे याद है रही जी ने आयशा जो थी उनकी उनका शो आता था ना अंदाज अपना अपना
2: हाँ
5: बिल्कुल
1: ये इन्होंने कहा था ख्याल अपना अपना था इन्होंने कहा अंदाज अपना अपना
5: रही
1: जी मुझे याद है इस बात अपना अंदाज अपना अपना
5: आप भी कंफ्यूज हो गए कि यार अंदाज अपना अपना कौन सा शो हमारे उसमें चलता था
1: नहीं कह रही ये भी आया अंदाज अपना अपना फिर मुझे तो ख्याल अपना अपना
5: अपना अपना अंदाज पेश कर लो भाई के अपने अपने आमिर खान सलमान खान के उसमें चली गई थी ये रात और ये दूरी
1: बिल्कुल वही वही
5: बड़ा पुराने उसमें
1: वही मैंने कहा कि ये भी शो चला हमारे साथ अंदाज
5: नहीं नहीं ख्याल अपना अपना और बड़े बेहतरीन अंदाज में माशाल्लाह वो भी पेश करती थी और उनका अंदाज बड़ा अच्छा लगता था सुनने में
1: बिल्कुल
5: भी मिस करते थे उनको
1: जी जी
5: जहाँ भी रहे अल्लाह ताला अच्छे से मतलब खुशी और उसमें मतलब कामयाबी को उसमें रखे
1: हमेशा
5: में रखे
1: इंशाल्लाह
5: हम दुआ करते हैं बाकी और तो कुछ बात नहीं करेंगे बस हम आप लोगों का दाद ही क्योंकि भाई हो सकता है अब एक साथ में दोनों को बात करने का मौका मिले कि ना मिले हाँ अल्लाह खैर करे अब हो सकता है ईद उद में होता है हाँ ये सब सारे लोग ज्वाइंट होते हैं नहीं तो बाकी शो के उसमें हो सकता है दो चार महीने में फिर
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल
1: इंशाल्लाह बहुत जल्द
5: और तमाम हमारे सुनने वाले जितने हमारे भाई हैं सारे लोगों को सलाम और आदाब और खासकर आप लोगों को भी चलो खुश रहे अल्लाह ताला आप लोगों को
1: आप भी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी
2: बहुत शुक्रिया
1: शुक्रिया आप भी खुश रहिए थैंक यू जी बहुत शुक्रिया
5: ओके
1: वालेकुम अस्सलाम अल्लाह हाफिज आई थिंक अब हमें एक गाना तो चलाना चाहिए और एक भाई हमसे सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है
2: बस सुनना रहो हमारे रेडियो से ये ना हो कि वो पक्का पक्का दे ही दे हम लोगों को शो सुबह का
1: मैं बस धीरे बोलो धीरे बोलते
2: सुबह सुबह का सोच के मतलब थोड़ा सा एक वो
1: एक गाना अभी अभी सुबह आई ना फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, आतिफ असलम की आवाज़ में।

0: गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है तो वो गाना प्ले करेंगे, वापस आएंगे। तो आज बहुत ही हल्की फुल्की आपसे हमारी बातचीत चल रही है, जस्ट द रीकैप द मेमोरीज जो हमने और आपने यहाँ पर बनाए हैं समर मॉर्निंग्स में। सोच के रखिएगा, नंबर्स हैं 666-22-107, कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-888-806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया और आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: राइटी, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM समर मॉर्निंग में एक दफा फिर हम लोगों का आपके साथ, और हमारे साथ भी कोई मौजूद है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
3: ये तो आरिफ जी की आवाज़
2: आरिफ लग रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ। बड़ी दूर से आवाज आ रही है।
4: कैसे हैं आप लोग?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल चाल है? क्या
3: मुझे लग रहा है कहीं और भी बात कर रहे हैं आप?
4: मैं अभी

0: ओके खैरियत है, क्यों उड़ रहे हैं?
1: बस मजा आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है।
2: क्या बात मतलब है, आज हवाएं ज्यादा है
0: तो आप आधे आए हुए हैं, पूरे आ जाएं जरा, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें।
1: अच्छा अच्छा, बात करने के लिए जमीन जाना पड़ेगा।
0: जी जी बिल्कुल ऐसे ही है।
2: लैंडिंग करिए, हो जाए इनकी सेफ लैंडिंग।
1: हेलो।
0: हाँ जी भाई, जी भाई
2: देखा, जमीनी लोगों की आवाज ही बदल जाती है। हाँ। अलग ही आवाज है अब आपकी। तो बताइए कैसे हैं आप, खैरियत से?
0: जबरदस्त जबरदस्त जी। तो आरिफ क्या कहना चाहेंगे भाई, शो के बारे में कुछ बताएं और ये भी बताएं कि समर से आपने क्या कुछ सीखा, क्या लेके जा रहे हैं साथ?
1: साथ तो कुछ लेके नहीं जाना, खाली हाथ जाए थे, खाली हाथ जाना है पर जो
0: और कुछ लेंगे ही नहीं।
1: नहीं मतलब इधर जो करना है इधर ही लेके रख के फिर चले जाना है ना।
0: हाँ वो तो है, वो तो है,
2: ये तो है।
1: तो आप तो यही की जाए फैमिली की तरह, आप लोग हैं, आप लोग इतना सुबह सुबह उठ के आज मेहनत करते हैं, हम लोग सपोर्ट दिखाते हैं और फिर हम लोग का टाइम भी अच्छा निकल जाता है ना। क्या इधर तो फैमिली है नहीं, तो आप लोग को भी फोन करके हम लोग बोलते हैं, हम लोग से चेक करते हैं, हम लोग का भी मन हल्का होता है थोड़ा। जो टेंशन है स्ट्रेस रहता है काम का वो थोड़ा कम होता है।
2: ये तो है,
0: सही सही।
2: टाइम अच्छा और कुछ ना कुछ सीखते हुए वक्त हमारा और आपका जो था वो जाता था, तो ये बहुत अच्छी बात है।
1: इतने सारे अच्छे कॉलर साथ में, वो लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप लोग कितना अच्छा सा टॉपिक पे जुड़ने के आते हैं, आप लोग
2: शो की बात हुई, हम वैसे समर्स की भी बात करें, अभी समर्स का एंड नहीं हुआ, इट्स गोना लास्ट फॉर वन मोर ईयर, जैसा सॉरी वन मोर मंथ, अभी एक और महीने रहेगा समर अच्छे से। लेकिन समर्स जो है वो बहुत सारी चीजें हमें और आपको सिखाता है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, कहीं ना कहीं हम थोड़े से पेशेंट हो जाते हैं, फैमिली बॉन्ड हमारा स्ट्रांग हो जाता है, हम जो है अपने दोस्तों को अच्छे से जानने पहचानने समझने और वक्त देने लगते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हैं। या कुछ और कुछ है ऐसा जो आपको समर ने वाकई टीच किया?
1: सबर
2: सबर
0: सबर
2: स्ट्रेट अभी नहीं सबर।
0: अच्छा ओके,
1: थोड़ा बहुत मेरे को गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, ठंडी उतर मैं ठंडा चीज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और फिर भी जो इधर का गर्मी है वो अलग ही लेवल का है, बस सबर
2: सबर करना होता है और इतनी गर्मी को बर्दाश्त करना हम सीख जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस चीज को हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए कि हम अपने गुस्से को भी बर्दाश्त करें।
1: हाँ जी आउटडोर का काम है।
2: अच्छा अच्छा,
1: गाड़ी में भी है पर आउटडोर भी रहना पड़ता है, मार्केट में जाओ तो टाइम नंबर आएगा तो तुम आओ, फिर धूप है बाहर तो वो लोग कुछ छाव भी नहीं होता या कुछ चेयर भी नहीं होता, खड़े रहो आधा घंटा एक घंटा हर एक मार्केट जाने में, तो धूप में पड़े रहो। गाड़ी में भी गाड़ी कंपनियों को बहुत सारी कंपनी की गाड़ी की अच्छी अच्छी होती है, हमारे कंपनी का नहीं है, जो हमने जो गाड़ी चलाता हूँ गाड़ी रोक दूंगा तो वो फिर गर्म हवा देने लगता है,
2: उसमें
1: भी सही बनता है बैठना, तो इसीलिए उसको बर्दाश्त करना सीख लिया मैंने कि चलो ये भी सह लेंगे,
2: बर्दाश्त करना सीखा। चलिए बहुत ही अच्छा कि समर्स ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे आगे भी।
1: हाँ जब एक चीज पे सबर आ जाए तो इंसान बाकी चीजों पे भी उसको अमल कर ही लेता है।
2: ये तो है सही बिल्कुल। चलिए जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत
0: सो मच आपकी कॉल के लिए
2: जी
0: और आपकी जमीन पे आने के लिए भी।
2: जमीन से जुड़े
1: रहिए, अभी थोड़ा उड़ने का दिल कर रहा है, थोड़ा
0: वापस चले फिर उड़ जाइए।
1: मैं थोड़ा 15-20 दिन बहुत डिस्टर्ब था, आज से थोड़ा मैं खुश लग रहा हूँ, अपने आप को मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ।
0: माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी खुशी बरकरार रखे हमेशा।
2: आमीन ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और खुश रहिए थैंक यू जी अल्लाह
0: हाफिज बाय
2: बाय
0: अच्छा जी मैसेज पढ़ देती हूँ मोहम्मद मुशीद आलम का है ये अस्सलाम वालेकुम शायरी बहुत जबरदस्त थी इसके साथ ही डॉन कार्लिस का एड था और उसकी म्यूजिक रिंग टोन में भी थी और ये बोला है किसने ये है जी F16
2: मैंने अभी देखा मुझे इतना बुरा तो नहीं लगा नफीस जी जितना आपने कहा
0: अच्छा मतलब बुरा लगा तुम्हें
2: नहीं मतलब इस तरह के देखे बुरे नहीं लगे
0: हाँ.
2: बहुत अच्छा भी नहीं लगा मुझे
0: और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था मुझे मतलब बिल्कुल डिफरेंट लगता था क्योंकि उस वक्त सारे एड्स एक जैसे आ रहे होते थे
2: हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट था उस टाइम में हाँ. शायद अच्छा हो
0: हाँ.
2: मेरा अभी तो बहुत कॉमन
0: 98 97 इस तरह के वक्त की बात
2: है तब के लिए नया हो अभी तो इस तरह के बहुत कॉमन है तो मतलब इसीलिए मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा बट ऐसे बहुत
0: कॉमन हो गया है अब मतलब बेसिकली वो कह रहे थे ना काले काले लोग अलग सा फैशन तो अब वो उस वक्त में थोड़ा ऐसा लगता था कि डिफरेंट है और अब तो हमने ऐसे ऐसा देख लिया है
2: तो ये तो कुछ भी नहीं है
0: तो
2: कुछ भी नहीं अच्छा एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
2: वालेकुम अस्सलाम
3: एहतराम से आप दोनों खवातीन को जो है मेरा सलाम
0: अरे भाई आप थे कहाँ
2: मैं तो थे
0: बाद में शुरू में छुट्टियों पे गए हुए थे शायद
3: मैडम आप कहाँ थे ये बताएं मुझे आप
0: अरे भाई आप मुझसे पहले चले गए थे फिर मैं चली गई मैंने कहा आप नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँगी रह के
2: तो शायद ही आ गए होंगे वेकेशन से तो आज हमारा
3: नाजिया मैडम जो है ज्वाइन कर लिए
0: हैं
3: चलो ठीक है
0: कहाँ गए इस दफा ये बताएं कहाँ निकल गए थे आप
2: हम दोनों का साथ में ये जो है शो इस वक्त लास्ट शो है लास्ट एपिसोड है तो एक तो इस शो की कोई बेस्ट मेमोरी है आपकी तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और फिर हम ऐसे ही पैरेलली ये भी पूछ रहे हैं कि समर आपको और हमें क्या सिखाता है या आपको पर्टिकुलरली समर ने क्या थी
3: अब शो की तो मेमोरी जो है बहुत अच्छी है माशाल्लाह आप दोनों भी बहुत बखूबी अपना काम अच्छा बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं सबको एंगेज करके रखते हैं और बहुत प्यारी प्यारी टॉपिक्स लेकर आते हैं और सब लोग अपने अपने नजरियात रखते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला जज़ाकुमुल्लाह खैर और कुछ टॉपिक्स है जिसमें जो है बहुत सारे शायद लोगों के सवाल के जवाब जो है मुख्तलिफ अंदाज में जो है मिले हैं वो बहुत अच्छा लगा और ये एक शो की खासियत थी जो बहुत अच्छी लगी और
2: थैंक यू कहना चाहिए आपको
3: नहीं इट्स ओके आप लोग बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं इसीलिए जुड़ जाते हैं हम सब और जो है ऐसा कुछ खास वैसा नहीं है और कहना ये है कि समर की रही बात समर तो खैर बहुत ही हर मौसम अल्लाह का दिया हुआ होता है बहुत प्यारा होता है अपने मकसद से आता है तो ये भी एक जो है पहली चीज तो हमारी बॉडी जो है अल्लाह ने इस तरीके से बनाई है कि वो हर चीज अडॉप्ट कर लेती है ना चाहते हुए भी आपको अडॉप्ट हो जाती है आपकी बॉडी तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये मौसम नहीं बनता है मुझे वो ये सब फर्जी बातें होती है नखरे होते हैं और
2: ये बात तो आपने सच की सच्चाई तो यही हम सब कुछ कर लेते हैं
3: आपको सबर करना पड़ता ही है जिंदगी का दूसरा नाम सबर है तो आप गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो तो आपको सारे मौसम को झेल के निकलने की अल्लाह ने वो ताकत बनाई है इसीलिए दुनिया में भेजा है आपको वो सारी चीजें जो दुनिया में होती है उसके हिसाब वो फॉर्मेट से ही बनाकर भेजा गया है जैसे आपके शो का फॉर्मेट है ना इसी तरीके से हमारा भी फॉर्मेट इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि ये चीजें होंगी तो ये चीजें तुम्हारी झेल पाएंगे ऐसे कुछ खामा खा नहीं हुआ है तुम कौन मैं खामा खा वाला टाइप नहीं हुआ है तो जो भी लोग बोलते हैं ना कि एसी में बढ़ जा रहे हैं गर्मी में कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई जान थोड़ा सा याद करें कि कयामत वाले दिन जब फैसले होंगे तो सूरज कितने नीचे आ जाएगा क्या कुछ नहीं होगा तो हमें ऐसे मौसम से जो है दुआ करना है कि अल्लाह कयामत के दिन जो है हमारे साथ रहम का मामला करे जहां हम याद से बचा कर रखे हैं अब ये गर्मी खबर में एसी तो नहीं रहेगी ना, यहाँ से निकले एसी में बढ़ गए, वहाँ से निकले एसी में बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है, बर्दाश्त करना सीखना होता है। और बारिश होती है या ठंड होती है तो जहन्नुम के हिस्सों में से भी एक हिस्सा जो है ठंडी का है, उससे भी हमें दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह ये ठंड से भी जहन्नुम की ठंड से बचा, बहरहाल जहन्नुम से बचा कर।

0: कहने का मतलब ये मोरल ऑफ द स्टोरी, ज्यादा लंबा नहीं लिख जाऊंगा, आप लोग का आखिरी दिन है, सब लोग बेचारे बात करने के लिए बेचैन होंगे क्योंकि इतना साथ अच्छा रहा सबका, तो बस यही था मेरा नजरिया कि बर्दाश्त कर ले, सब चीज अच्छी होती है, हर चीज अपने साथ कुछ बेहतर लेकर आती है, तो समर भी जो है बेहतर लेकर आता है, छुट्टियाँ होती है बच्चों की और जो है हम समर में वाटर पार्क जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, सब चीज होता है, जो कहीं कुछ नहीं कर पाते वो समुन्द्र चले आते हैं, तो सबका अपना अपना एक नजरिया होता है, वो अपनी तरीके से हर मौसम को इंजॉय करें, अल्लाह ने जो भी दिया है उसे इंजॉय करें, खुश रहें, खाए पिए, आराम करें, बस कोई चीज का लोड ना लें, सब अपनी टाइम पे अपनी चीजें हो जाएंगी।
1: सही कहा आपने, और कोशिश करते रहे चीजों को करने की, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रही है तो फिर अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा बेहतर सोचा है हमारे लिए,
0: मायूस नहीं होना,
1: मायूस नहीं होना, ये बहुत अच्छी बात, उम्मीद रखनी है, कोशिश करते रहना है और थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उसका बहुत फर्क पड़ता है, मैंने देखा, आजमाया है, एकदम टेस्टेड बात है कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको रास्ते नजर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व आप कर पाते हैं आसानी से, अगर आप बहुत नेगेटिव और रिजिड माइंडसेट के साथ बढ़ रहे होते हैं तो वाकई बहुत चैलेंजिंग हो जाता है।
2: एग्जैक्टली, और बिल्कुल बात आपकी सही है कि हम जैसा भी हालात हों, जैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, इंसान को अल्लाह ताला ने वाकई ऐसे तख्लीक किया है कि हम हर जगह एडजस्ट कर जाते हैं, हमें लग रहा होता है कि नहीं कर पाएंगे लेकिन हम कर जाते हैं, और अपने आप को हमेशा, हम लोगों को ना मतलब ये चीज़ समझनी चाहिए बाय द टाइम, और अपने खासतौर पर बच्चों को समझानी चाहिए, यंगर जनरेशन को समझानी चाहिए कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें सोचने में बहुत डिफिकल्ट लगती हैं लेकिन डिफ़िकल्टीज होती नहीं है, अगर आप उनके ऊपर मतलब कंट्रोल करना चाहो तो आप कर लेते हो, अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है इंसान को।
1: बिल्कुल,
0: अब ये प्रॉब्लम्स जो होती है ना मैडम, प्रॉब्लम की खासियत है वो जब आते हैं तो अपने साथ सोल्यूशन भी लेकर आता है।
1: Exactly.
0: लेकिन हम सोल्यूशन को देखते नहीं है, हम प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करते हैं,
1: सोल्यूशन
0: जो है हमको नजर नहीं आता है, तो ये एक इंसानी फितरत होती है, तो असल सारी चीजें जो है ना जिंदगी की कला यही है कि जो है हार्ड टाइम्स में, मुसीबत के वक्त में सही फैसले लेना, असल इंसान की पहचान वही होती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, और जैसे आपने रिलेट करके भी बताया कि समर्स यानी गर्मियां जो हैं वो वाकई हमें ये सिखाती हैं कि हो सकता है दिन बहुत मुश्किल हो, सख्त हो, चीज़ें अपने वक्त पे ना हो, लेकिन फिर भी हर प्रॉब्लम का हम जो है ना फौरन सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, कभी रुक कर, ठहर कर, इंतजार करके, पॉजिटिव होकर भी हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढेंगे तो डेफिनेटली उनका सोल्यूशन हमें मिलेगा, तो बस ये चीज़ हमें पेशेंस जो कहा ना, सब्र, वाकई ये सीज़न हमें ये वाकई सिखाता है, और वैसे तो हर चीज़ ही हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, बट हमने इसे रिलेट ऐसे किया है सीज़न के साथ, तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात आपने कही।
0: जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आप लोगों को जो है सहायत अता फरमाए, और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर नाजिया मैडम और मेविस मैडम,
1: थैंक यू जी, वी विश यू द सेम,
0: जैसे भी वक्त होता है
1: जी
0: इंशाल्लाह जुड़े, वैसे टाइमिंग्स क्या रहेंगे आप लोग की, क्या है शेड्यूल?
1: हाँ बता देते हैं,
2: मेरा और सफा का होगा 10 बजे, 10 से 11, और नाजिया और सरवर भाई,
1: हाँ
2: कब से हैं
1: हम? 1:30 बजे से,
2: 1:30 से 2:30
1: जी।
0: अच्छा
2: जी,
0: तो मतलब कि भाई आप लोग से बात ना ही करो, बल्कि RJ 107 का ऐसा कुछ सिस्टम रखा गया है ना?
2: नहीं नहीं, क्यों ना करो, बात ही तो करनी है।
1: बात तो ये आपका रियल टेस्ट है कि आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ पाते हैं कि नहीं।
0: ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग है ये पूरी ऑफिस वाली टाइमिंग होती है,
1: हाँ, ये सूट
2: ये बात है, जब ऑफिस में
0: स्टेप इन करते हैं तो फिर चेकआउट के टाइम पे
2: चले, जब भी मौका मिले, कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा,
1: हाँ
2: इतनी देर से हम आपको मिस करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। तो फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम जो है वो कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रखेंगे, सुनते रहिए, हाँ मैसेजेस भी हम जो है वो आपके लेते रहेंगे, आप हमें 6622107 पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल करने के लिए नंबर है 4434377।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: राइट तो एक दफा फिर हम आ गए आप लोगों के साथ समर मॉर्निंग और वक्त हुआ है 8:03 हमारा आपके साथ 9 बजे तक रहना है। कॉल्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं।
3: तो पहले हमारे साथ यहाँ पे कॉलर जो है वो जुड़ गए हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग।
3: वेरी गुड मॉर्निंग
4: मैम। मैं कुमार पुंग बोल रहा हूँ आपके साथ।
2: कुमार
3: बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हैं कुमार आप? खैरियत से?
4: बस मैम अभी तो ठीक है, बस नेपाल में थोड़ा मुश्किल है अपना इलाका में। जो चाइना से जो आया और स्लैब का थोड़ा प्रॉब्लम है मैम बस।
3: चलिए हमारी बहुत सारी
2: दुआएं हैं
3: आपके साथ, बेहतर होंगे हालात और अभी तो खैर काफ़ी स्टेबल हैं भी और भी बेहतर होंगे और कोशिश जारी है कि दुआएं और साथ में जैसे भी जो भी जिसकी मदद कर सकते हैं जो लोग वो भी करें। तो यही अच्छा आज हमारा जो है समा मॉर्निंग्स का एकदम लास्ट वाला ये एपिसोड है, तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारी समा मॉर्निंग्स की आपकी कोई बेस्ट मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें?
4: मतलब कौन सा टॉपिक है मैम?
2: मतलब ये कि समर मॉर्निंग हमारा चला जून से अगस्त तक,
3: तो इस दौरान लोगों को पता है नाम इसका कि नहीं समर मॉर्निंग्स का शो,
2: तो आपको इस दौरान आपने कॉल किया, पार्टिसिपेट किया, तो सबसे अच्छी चीज क्या लगी इस शो की और दूसरा ये कि इस सीजन से भी आपने क्या सीखा, क्या लिया
3: समर से, गर्मियों से?
4: हमारे सिस्टम है मैं अभी तो बस यही चाहता हूँ मैम, बस अपना देश में जो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उसी का सोचता हूँ, सुबह उठता वही सोचता है, रात में वही सोचता है, बस अभी बस दिमाग में तो वही चलता है मैम क्या करेंगे इतना बस।
2: ये बात तो है,
3: सोच ही नहीं ज्यादा करके प्रार्थनाएं कीजिए।
4: जी मैम जी,
3: क्योंकि हमारे सोचने से तो कोई चीज ऐसा चेंज होगी नहीं, हम परेशान ही होंगे, सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो अच्छा ये कि हम जो है ना प्रेयर्स करें, प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें, तो उससे हमें भी सुकून मिलता है और फिर शायद दुआ लगती है तो बेहतरी भी आती है। तो आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करें और इतना ना सोचें कि फिर आपकी जो हेल्थ है चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल वो खराब होने लगे।
2: एग्जैक्टली, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स जो है ना इसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, हम कुछ कर नहीं सकते इन
3: लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि जिस तरह से हम डेवलपमेंट के नाम पे जो पहाड़ काट काट के रोड्स बना रहे हैं वो भी एक बड़ा रीजन
2: वो है, लेकिन काफी डिबेटेबल भी मतलब है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम उन जगहों पर भी अब जाके रह रहे हैं जो हमारी बनती भी नहीं थी,
3: बनती नहीं थी,
2: लेकिन उससे हटकर भी कोई भी जैसे जलजला है वो एकदम से अर्थक्वेक आता है तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें लग रही होती हैं कि शायद हमारे फेवर में नहीं है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया, डेफिनेटली होता भी है उसका नुकसान, लेकिन ये कि हम सबर कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ और है नहीं।
3: लेकिन मैं तुम्हें एक मैविश वीडियो भेजूंगी, जस्ट गो थ्रू कि जो डिजास्टर्स हैं ये काफी सिस्टमैटिक हैं, बहुत सारी चीजें बहुत प्लान्ड वे में भी हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू से एवरीथिंग ऑन एयर, बट चलिए फिलहाल तो बस हम यही कह सकते हैं कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, उसमें हम सबका एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों को गवाया है, जो फैमिलीज हैं जिन जो पूरी तरह से डिस्प्लेस हो गई हैं, हम सोच भी नहीं सकते, हम तो सिर्फ वीडियोज देख रहे हैं, हम सोच नहीं सकते वहाँ की क्या किस तरह की क्योटिक सिचुएशन है, कैसे लोग उन चीज़ों को इनकाउंटर कर रहे हैं। बस हमारी दुआएं ही हैं, हम सिर्फ दुआ दे सकते हैं और जो अपने तौर पर जो छोटी मोटी मदद कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुआएं और प्रार्थनाएं जो हैं वो ही करनी चाहिए और थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए ये कि हम डेवलपमेंट के नाम पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अब खैर हमारी तो और आपका और हमारा तो खैर बोलना भी नहीं बनेगा क्योंकि ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं, लेकिन अफसोस है कि

0: इस तरह की चीजें शायद पहले भी हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2024 में भी आया था ना फ्लड बहुत जबरदस्त
1: आया था मैं
0: है ना हाँ देखो दो साल तो खैर ये सारी चीजें हो रही हैं चलिए लेकिन हमें अफसोस है अगर हम आपके लिए कह सकते हैं कि आप उतना परेशान ना हो उसके बदले प्रेयर्स करिए ठीक है परेशान होने से कुछ नहीं होगा सोचने से भी कुछ नहीं होगा ठीक है
2: शुक्रिया भाई
0: अपना ख्याल रखिएगा ओके बाय बेचारे एकदम परेशान है और जाहिर है भी कितनी परेशानी हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं हम तो जो ग्राउंड लेवल पे जो चल रहा होता है हम तो सोच ही नहीं सकते बट अभी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा मैं तुम्हें शेयर करूंगी दैट वाज सच एन आई ओपनर मतलब इतनी सारी चीजें खुली हैं उसे देखने के बाद कि मुझे लगा कि
2: बहुत कुछ
0: इंसान
2: ऐसा
0: क्या क्या कर रहा है क्या क्या कर सकता है किस लेवल तक कर सकता है फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं हेलो ओ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कैसे हैं शिमोन आप
3: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं और महविश
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक कैसे हैं आप
0: और महविश मैंने इनको नाम दिया है मिस्टर इंटेलेक्चुअल
2: हाँ तुम बता रही
0: हाँ हमेशा इन्होंने एक बहुत ही अच्छी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिटेल में समझाते हुए हमेशा ऐसा एक एंगल एक ऐसी बात लाके रखी जो समझने में भी आसान है क्रैश करना भी आसान था और बहुत ही ज़्यादा जो थी वो हमें और सबको लगती थी कि हाँ ये एकदम एप्रोप्रिएट है
2: ज़बरदस्त
0: सो दैट वे आपके साथ हमारा इंट्रैक्शन बहुत कमाल करा ये तो मैं कहना चाहूँगी
3: थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन नाज़िया लेकिन ऐसा कुछ है भी नहीं है एक्चुअली वो सारी जो भी बात होती है वो लोग वही कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ आप उसको थोड़ा सा इधर उधर स्ट्रक्चर कर देते हैं दैट्स ऑल नथिंग बियॉन्ड दैट आई गेस बट ओवरऑल इट वाज अमेजिंग एज आई सेड यू नो अर्लियर आल्सो इट हैज यू नो इट इज एडिक्टिव टू टॉक टू यू नो गाइस सो वो चीज थी बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम आप लोगों का और मतलब खास तौर से जो अलग अलग जो टॉपिक्स जो आप लेकर आई थी उसमें उससे उस पर बात करना उनको डिस्कस करना उनसे सीखना बाकी और लिसनर से सीखना कॉलर से सीखना इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड एज यू आस्क्ड फॉर यू नो कि भाई क्या सीखा और क्या तो सीखने के ताल्लुक से जो है मैंने सीखा तो नहीं है अभी तक लेकिन हाँ मेरी कोशिश ये है कि सीख जाऊँ जस्ट तो सीखने के उसके ताल्लुक से ये है कि मेरे साथ एक इशू ये है कि मैं जो हूँ वो ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ ये प्रॉब्लम आ जाती है मेरे
0: अच्छा चलिए फिर तो हम लकी हैं हम लोग उस केस में
2: ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते
0: और हमसे कर पाए
2: चैलेंज गुड जबरदस्त बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने बात की हमसे और अमूमन ऐसा होता है यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि अमूमन बहुत अच्छा जैसे तुम तारीफ करेंगी कि बहुत अच्छा जो बोलने वाले जो लोग होते हैं उनमें ना दो तीन चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं एक तो ये कि वो हमेशा एक लर्निंग अपने आप को समझते हैं कि प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो कभी भी मतलब ये नहीं समझते कि मैं कोई अफलातून हूँ और ये सबको जो नज़र भी आ रहा है बातों में और दूसरी चीज़ ये कि वो हमेशा मतलब जो है ना इंट्रोवर्ट मोस्टली होते हैं आप देखो तो वो वाली जो चीज़ है वो डेफिनेटली लेकिन ये कि अच्छी बातें जो होती हैं जो आपने सीखा हुआ होता है जो आपकी नॉलेज होती है वो शेयर करनी चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने कॉल करना शुरू किया
3: जी एक्चुअली यहाँ जो रीज़न है मेरे बात ना कर पाने का बहुत से लोगों का वो ये होता है कि जब आप किसी से किसी टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है लोगों का एक प्री कंसीव नोशन होते हैं उस टॉपिक को लेके ज्यादातर नॉट ऑलवेज बट ज्यादातर अब उसमें अगर आप कोई बात ऐसी कहें जो कि उस प्री कंसीव नोशन के खिलाफ हो उससे अलग हो उससे है ना तो ज्यादातर लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको सुनना नहीं चाहते हैं ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर
0: जबकि ये भी दो चीजें हैं सुनना अलग है और एक्सेप्ट करना अलग है सुन लीजिए एक्सेप्ट मत कीजिए है ना ये हाँ, भी हो सकता है क्योंकि listen for the sake of listening हाँ सुन लिया but accept नहीं किया
2: क्योंकि differences तो आपके रहेंगे लेकिन हाँ ये बहुत important चीज़ है कि आपने दूसरे को इतना कम से कम आपके अंदर ना patience हो इतनी हिम्मत हो कि अगले का पॉइंट ऑफ व्यू आप सुन सकते हैं
3: सुन सके हैं आप और उसमें जो है ना खास तौर से जो होता है कि लोग जो है फिर आपको ये जज करने लगते हैं कि भाई इस तरीके से जो है ये किसी भी बात को लेके जो है वो आप चाहे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए एनी टॉपिक फॉर दैट मैटर और किसी से भी आप बात करें उसके ऊपर जो उसका जानकार हो मिसाल के तौर पे उसके एक नोशंस होंगे उसको लेकर अगर आप उस पर वार करेंगे, उस पर कार्ड करेंगे, तो फिर वो कटेगा और फिर आपसे ना आपसे

0: वो ताल्लुकात भी शायद उतने अच्छे हो चुके यार, ये आदमी ऐसे ही है इस तरीके से. This is what happens. This is what I've experienced in my life. I am an extremely extrovert person, not introvert. Extremely extrovert person. और मैं बहुत social भी हूँ, लेकिन यहाँ पर ये discussion की बात आती है. वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है कि आप ठीक है, आप बात वैसे करते रहे, आप सब हर किसी से जिससे भी मिल रहे हैं मुलाकात कर रहे हैं, आप अच्छे से बात करें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनसे अच्छा करें, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी विद यू, ठीक है. लेकिन जहाँ आपने उनके वो नोशंस को थोड़ा सा जो उस पर वार करा, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती. शायद मुझे लगता है वो पेशेंस, फिर मैं भी पेशेंस लूज कर देता हूँ, छोड़ यार कौन बात करेगा.
1: लेकिन मैं बताऊँ शिमोन, एक बहुत अच्छा तरीका है कि यू नो आप जब भी बात करें और आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं महविश को ये बात कन्वे करूँ, ये चीज मैं उसके बीच यू नो उसको मैं रेक्टिफाई करूँ, नॉट दैट कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, आई जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल. तो मैं अगर मैं बात करना चाहती हूँ, करेक्ट करना चाहती हूँ महविश को यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग महविश ऐसा कर लो करा लो या मैंने ऐसा किया कराया, आई विल यूज थर्ड पर्सन एग्जांपल कि सर्वर भाई ऐसा करते थे वंस अपॉन अ टाइम, फिर वो इस सिचुएशन अगर आप रखें अपनी बात लेकिन उसे डायरेक्ट ना दिखाएं किसी को, तो मैंने देखा कि लोग जो है सुन तो लेते हैं, एक्सेप्ट करें ना करें बट सुन लेते हैं वो. तो ये पहले मैं भी बहुत स्ट्रगल करती थी अपनी फैमिलीज में, आप देखते हैं बहुत स्ट्रगल करती किसी से कुछ कहना चाहा, एंड आई हैव सीन स्पेशली विद द किड्स, दिस इज समथिंग आई हैव सीन, आई हैव लर्न ओवर द पीरियड कि भैया ऐसे नहीं ऐसे बोलो, किसी थर्ड फोर्थ का नाम लेके तो सुन लेगा.
2: उससे हटकर भी जैसे अगर शिमोन जिस तरह से कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी किसी ने कोई ऐसी बात की है जो कि एक मतलब ना मास लेवल पे बहुत एक कहना चाहिए मेजॉरिटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट करी उसके खिलाफ कोई बात कर दी ना, तो लोग उसको एक्सेप्ट तो नहीं करते, मतलब इनिशियली तो कभी भी नहीं करते, उसमें टाइम लगता है. तो हमें अगर हमारी बात, हमें ऐसा लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक है और हम उसको वैलिड समझते हैं, लगता है कि दूसरों का इसमें कुछ भला भी होने वाला है अगर वो समझे उस चीज को, तो हमें बहुत ही ज्यादा सब्र रखना पड़ेगा शिमोन, फिर उसके बाद हम वो बात पहुंचा पाएंगे उन तक.
0: लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सही है, इशू नहीं, इशू ये है कि मेरी बात सही है. मैं तो ये कहता हूँ जब किसी से भी ये बात कोई स्टार्ट होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो मैं सबसे पहली जो बात कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि मैं 100% गलत हो सकता हूँ इस बात में, 100%
1: सही.
0: और मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ये होती है वहां पर कि वो पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो काट रहा होता है सामने वाले इन प्रीकंसीव नोशंस को. तो वो हो सकता है मैं गलत हूँ बट स्टिल ये वो काट रहा होता है,
2: तो कम से कम वो एंगल देखो, तो मतलब सोचो तो हो तो सकता है,
0: देखना नहीं चाहते वो लोग देखना. अब उसमें क्या होता है जब वो लोग देखना नहीं चाहते हैं तो फिर आप कटने लगते हैं, लाइक यू ठीक है यार छोड़ो कौन बात करे, लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि भाई बहुत कमी से मैं लोगों से बात कर पाता हूँ, बट दिस वॉज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर आई वॉज एबल टू स्पीक माई हार्ट आउट.
2: हमें तो ऐसे लोग चाहिए, हम तलाश में है इस तरह के लोग.
1: और पता है सबसे अच्छी बात क्या होती थी शिमोन, आप किसी पॉइंट पे बात करते थे क्योंकि ज्यादातर चॉइसेस मैंने दिए, ऐसे क्वेश्चंस दिए जो ऑप्शनल बेस्ड होते थे, यू नो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें मैंने देखा कि एक अलग क्लास है जो रिस्पेक्ट के साथ था, कुछ लोग एकदम एक अलग लॉजिक के साथ जो थे वो ट्रस्ट के साथ जुड़े, मतलब सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे लेकिन कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा और कोई किसी को जो है वो लेट डाउन भी नहीं करने की कोशिश कर रहा था. दिस इज द बेस्ट थिंग, मतलब एक बहुत ही हेल्दी डिबेट हम कह सकते हैं मॉर्निंग में होती थी.
2: 107 के लिसनर्स की खास बात है कि वो कोई भी जैसे शिमोन है हमारे साथ जुड़े हैं और लोग हैं तो वो उनको ना सुनते हैं और हमारे सब लोगों में लिसनर्स में खासतौर पर एक ये शौक है कि कुछ नई सुन के नई चीज सीखना और ये सब कुछ ना, तो ये एक बड़ी अच्छी हमारी कम्युनिटी है जिसमें सब लोगों में एक्सेप्टेंस भी है काफी हद तक. और बड़े कम लोग ही है कि किसी बात से बहुत रिजिडली इख्तलाफ करते हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता. तो ये भाई आप कहीं और बात करें ना करें लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जरूर आए, हम आपको हमेशा सुनना चाहेंगे.
1: बिल्कुल
0: इसी वजह से ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अप्रिशिएट एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न आल्सो बिकॉज़ ये दिस इज व्हाट आई सॉ इन नाज़िया कि भाई वो जो है आई मीन शी हैड कॉलर्स फ्रॉम वेरी डिफरेंट यू नो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, वेरी वेरी डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, और उसमें उन्होंने जो है जिस

0: तरीके से हर कॉलर को सुना और उसको उसके साथ बात की, उसको साथ उसके जो है उसको उसका डिस्कशन को जो है इंगेज किया. तो इट इज मैं नहीं कर सकता वो इंगेजमेंट लाइक, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न.
1: चलिए नहीं, बहुत कुछ हमने भी आपसे सीखा. इट्स लाइक जैसे कहा हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे से. तो आपका तो अभी मैं नाम भी ले रही थी, आई वाज टॉकिंग टू महविश, आई वाज टेलिंग हर कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कुछ कॉलर्स के साथ, सभी के साथ, लेकिन कुछ जहन में रह गए,
2: रह जाते हैं बिल्कुल ऐसे
1: वो एक हो जाता है. सो वी गोना मिस यू, बट प्लीज आप कोशिश कीजिए कि हमें हमारे साथ जुड़े हमारे डिफरेंट आवर्स में हमारे शोज में.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और ये एक एक जस्ट कोई क्वेरी है, वो पहले एक मॉर्निंग में वो आते थे वेद, अब वो वेद इज देयर विद द
2: नहीं, एक्चुअली वो चले गए.
1: हाँ
2: वो चले गए. जी जी बिल्कुल
1: जी.
0: ओके, तो अब कौन करेगा मॉर्निंग को?
2: अभी कबीर होगा.
1: कबीर भाई.
0: अच्छा कबीर हूँ. चलिए ऑल द बेस्ट यू गाइस, आप लोग बहुत खुश रहे और
2: इंशाल्लाह अभी बहुत खुश रहे,
0: और हमारी हमारे सारे कॉलर्स लिसनर्स की शुभकामनाएं आपके साथ हैं. वी रियली होप दैट यू लिव अ वेरी गुड लाइफ, और आपकी जिंदगी आपकी हो इंशाल्लाह, आप खैर के हो, अच्छी सेहत के साथ हो.
2: थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू जी. और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं.
2: थैंक यू.
1: थैंक यू जी.
0: टेक
2: केयर. बाय. तो जल्दी जल्दी से कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं, कॉल लेते हैं. गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप दोनों मैडम? और मैं पिछले 9 मंथ से एफएम सुन रहा हूं, लेकिन उनमें से कोई सीखने को नहीं मिला, लेकिन जब से इधर आया हूं बहुत कुछ सीखने को मिला. अच्छा अच्छा. मतलब कहीं और से नहीं मिला, यहां से मिला
1: मुझे लगा.
2: और अलग लेवल का मजा आता है, और जब भी ये एफएम चल जाता है तो बहुत मजा आता है. अच्छा ये हैं कौन? ये इन्होंने नाम नहीं, मोहसिनी है. मोहसिनी. हाँ हाँ सही सही. मोहसिन है इसके साथ. लतीफ खान. लतीफ खान कहते हैं, इन्होंने कुछ वीडियोस भेजी हुई हैं, चले हम देखते हैं थोड़ी देर में. मुमताज अहमद का कहना है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? गुड मॉर्निंग.
1: अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड मॉर्निंग.
2: और समर का सबसे यादगार दिन जब महावश मैम हम लोगों को समर के बीच रास्ते में छोड़ के चली गई थी. लेकिन एफएम 107 से एक फायदा ये हुआ कि नए नए दोस्त मिल गए. 107 से बेस्ट जोड़ी नाजी मैम और महावश मैम की मिली है. आप दोनों किधर भी शो करो, चाहे मॉर्निंग इवनिंग, हम आपके साथ हैं. मुमताज बहुत बहुत
1: शुक्रिया.
2: और तौफीक अस्सलाम वालेकुम कहते हैं से, दुआएं भी दी हुई हैं उन्होंने. इसके साथ ही हमारे पास मैसेज है, माय बिग सिस्टर यू हैव ऑलवेज लेड विद स्ट्रेंथ एंड लव, शोइंग मी हाउ टू ब्रेव काइंड एंड ट्रू टू माई सेल्फ. और ये मैसेज किसका है जो उन्होंने भेजा है? तनसीम नाम है इनका. तनसीम इस तरह से कुछ है. बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, आई विल गो टू इंडिया बट देयर I unable to listen FM 107.
1: Link no, you can listen.
2: लिंक में आपको भेज देती हूँ, आप बिल्कुल सुन सकते हैं. भेज दिया मैंने आपको. इसके साथ ही गुड मॉर्निंग रविंदर सिंह सिद्धू कहते हैं UAE से, अभी इन्होंने मैसेज किया है और कहते हैं सलाम गुड मॉर्निंग. मोहम्मद नफीस. मोहम्मद नफीस का मैसेज उस पर आगे, हाँ बहुत बुरा लगता था भाई, समझ लोग भी समझ नहीं सकते थोड़ा सा. हाँ यार फिर वही डिप्रेशन आ गया है. आपने कहा अगेन आज लास्ट शो है मॉर्निंग का और सेम जॉन कॉलर्स वाली फीलिंग आ रही. क्या
3: रऊफ
1: जी है हमारे साथ ना.
3: जी
2: जी
3: कैसे आप? ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
3: आप छुट्टी से आ गई और ज्वाइन कर लिया.
2: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब.
3: बस वो प्रोग्राम के बारे में यही था कि अच्छा प्लेटफॉर्म फ्राहम किया नाजिया ने, और इतनी एक कहते हैं लफ्ज़ बिंदास लोगों को मौका दिया जिससे अक्सर कॉलें लंबी भी हो जाती थी. लेकिन एक ज्यादा कॉलर्स जुड़ने का रीजन भी यही था कि उन्होंने छोड़ दिया लोगों पे, आप कॉल करें जितना बोल सकते हैं बोलें. एक लफ्ज़ जो हमने सुना वो मतलब बहुत था. तो उनके नाम बताने की जब वो मतलब कहते थे पता चलता है रही साहब हैं.
1: ये तो है. तो
3: वेट रही और बैलेंस था सारा कुछ ही. और सीखने का यही है कि अच्छी जो राय हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, सुनना चाहिए. जाहिर है पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना ही होता है हर एक का. और ये है कि इन लोगों को परेशानी होना चाहिए. आप सब इधर ही हैं, ये तो चेंजेस आती हैं क्वार्टरली,
2: आप तो जानते हैं इतने अरसे से.
1: ये तो है.
3: तो ये हो सकता है इतना लंबी कॉल है या इतने लोग ना जुड़ सके क्योंकि एंटरटेन करना होता है बीच में.
1: जी जी टाइम कम है हमारे पास.
3: तो

0: बाकी ये है कि वो रोज रोज का आना कदर खो देता है, रोज रोज कॉल करनी भी
1: नहीं नहीं ऐसे मत कहिए प्लीज राहुल जी, ऐसा नहीं कहिए, रोज रोज कॉल करने से आपका हमारा और रिश्ता मजबूत होता है, ये मत कहिएगा
0: जी जी,
1: हमारे लिसनर पता चला भटक जाए नहीं तो जितने भी जुड़ते हैं ना हम उनकी बहुत कदर करते हैं, पता है हमें मालूम है आप कितने मसरूफ हैं, तो आसान नहीं होता कि वक्त निकालना छोड़ना,
0: इस वक्त ड्यूटी आवर्स होते हैं और ड्यूटी आवर्स में टाइम निकाल के बात करना, और बॉसेस का भी डर रहता है कि पकड़े ना जाएं कि आप ड्यूटी कर रहे हैं काले
1: बातें कर रहे हैं जी तो उसके बाद भी रिस्क पूरा लेके आप कॉल कर रहे हैं
0: जी। गर्मी ये है कि काफी कुछ सिखाती है बर्दाश्त, पहली जो इस सीजन में गर्मी पड़ी है कतर में वो काफी सालों बाद इतनी ज्यादा गर्मी हुई है,
1: सही कहा,
0: और आपको मौका मिल जाता है, गर्मी में अक्सर लोग बाहर जाते हैं और अपना टाइम पास करके, ये कि हर मौसम जैसे कह रहे थे ये कालर के, हर मौसम अल्लाह ताला का बनाया हुआ, उसने फायदे भी हैं और किसी बेहतरी के लिए होते हैं हर काम, तो ये है कि ज्यादा परेशान नहीं होने चाहिए, गर्मी का भी तोड़ है, पानी पिए और शेल्टर में रहे अगर जरूरत नहीं है तो, बहरहाल अभी इंशाल्लाह तब्दीली की तरफ जा रहा है मौसम
1: इंशाल्लाह, तो बिल्कुल बेहतर होगा और बेहतर होगा मजीद, अक्टूबर से तो खैर बहुत ही अच्छा हो जाता है, बस यही एक मंथ और है सितंबर,
0: तीन चार माह तो यार अंडरस्टूड ही है कि कतर में तो गर्मी रहती है बल्कि गल्फ पूरे में इसी तरह का मौसम होता है, तो ठीक है बाकी कैरी ऑन आप करें, मेरा ख्याल से 11 होंगी मैं विश और डेढ़ से ढाई, तो ठीक है इंशाल्लाह
2: इंशाल्लाह जरूर सुनिएगा और जब मौका मिले कॉल भी कीजिएगा,
0: पार्टिसिपेशन भी करेंगे इंशाल्लाह,
1: थैंक यू,
0: अल्लाह
1: हाफिज, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ होते थे कॉलर अज्जू जी, अज्जू जी नहीं मुझे सुनाई दे रहे बहुत टाइम से,
2: बिल्कुल अच्छा एक गाने की रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो चला देना, ये डेडिकेट करना चाहते हैं आरिफ अंसारी अपनी वाइफ को, दिल ये पागल दिल मेरा माफिया मूवी से,
1: अच्छा
2: ठीक है, ये अगर आप निकाल दें।
1: ओके एक और कॉलर हमारे साथ है यहाँ पे, हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है
1: आपके, जमाल जी है ना
3: जी जी बिल्कुल
1: कैसे हैं आप,
3: आज तो माशाल्लाह से दो दो महारथी
1: आज ही है बस
2: आज हमारा लास्ट डे है,
3: अरे नहीं ऐसा मत कहिए,
2: मतलब इस शो का
1: लास्ट एपिसोड है
3: ये कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा नहीं बहुत कुछ हासिल करने को मिला, तो लफ्जों में मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ किसी फारसी एक मुअर्रिख का एक कॉल याद आता है कि मुल्क बिना सियासत के और इल्म बिना बहस के वो पुख्ता नहीं होता, तो मैं उस चीज पर यह है कि पूरी तरह से एग्री करता हूँ, अगर मुझे नंबर देना हो तो मैं लाजम उनको मतलब लामहदूद नंबर दे दूं जो मौजूद ही नहीं है गिनतियों में।
1: हाँ वाकई हमने इस दौरान बहुत अच्छी खासी डिबेट की
3: जी जी वही तो
1: बड़ा मजा भी आता था,
3: मतलब ये कह रहा हूँ कि लोग है ना जिसे आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये बात तो है, एक चीज मैंने भी नोटिस की है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी कॉलर आते हैं लिसनर जितने भी लोग शामिल होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर एक मतलब हर कॉलर को सुनने का एक जज्बा भी है, और वो जज्बा भी कैसा है बिना किसी नक्द के बिना किसी तनकीद के,
1: है ना,
3: अब जैसे मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि एकदम बेहतरीन पहलू लोगों के दरमियान से मिलते थे, हालांकि मेरा अपना भी सही है नजरिया एक अलग होता था, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपने नजरिए पे बात करता है लेकिन अगर कोई दूसरा बात कर रहा हो तो उससे पता चलता है कि नहीं यार सही बात है, ये भी बात किसी ना हद तक इस मामले को लेकर जो है ना बहुत दुरुस्त है पुख्ता है, तो यही वो तमाम मतलब शिक होती है जो इंसान को हासिल होती है, जाहिर है अगर फर्ज कर लीजिए हम सिर्फ सुन रहे हैं तो भी उससे हासिल होता है, लेकिन अगर हम डिस्कस करने बैठते हैं तो जरा पुख्ता हो जाता है वो, और बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं, तो ये तो सुनने वालों का कमाल नहीं है, मुझे लगता है कि ये वो जो लेकर आते हैं जिसके सारी जिम्मेदारियां आप लोगों पे है, तो जो भी कुछ है वो आप ही लोगों को मिलना चाहिए उसका श्रेय, जो
1: जमाल जी कई बार होता है हम टॉपिक तो लाते हैं और फिर

0: हमें खुद को नहीं आइडिया होता था, मुझे स्पेशली जब मैं लाती थी कि ये रिस्पांस मुझे इस टॉपिक पे इतना अच्छा मिला,
1: बड़ा दिलचस्प दिलचस्प टॉपिक इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत अच्छा लगा सच में। ऐसे ही अगर आप दिन और प्रैक्टिस करवा दें तो बंदे जो है ना क्या कहते हैं वो टीवी शो पर जाकर और डिबेट कर सकते हैं और उसमें क्या कहते हैं अच्छी खासी महारत हासिल हो जाए।
0: हाँ, ये तो हम लोग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई सुबह सुबह और बकायदा डिबेट होती है। एक कॉलर थे उन्होंने कहा था हमने बड़ी अच्छी डिबेट कर रखी है सुबह। लोग हर कोई जो था ना चाहता है कि हम अपना ये वाला पॉइंट और अलग रखते हैं
1: पहलू निकल के सामने आते थे किसी एक टॉपिक से। जिस तरह से होता है ना कि कभी कभी तो मुझे ये अंदाज होता था कि जैसे मतलब ये होता है कि एक शागिर्द और एक उस्ताद को ये फैसला करना मुश्किल हो जाता था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे जैसे उस्ताद की एक हैसियत रखते हो, हर टॉपिक पर एक गहरी नजर, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन बातें। तो ये महसूस होने लगा था, किसी ने कहा था कि ये मदरसा है तेरा, मैकदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तो अच्छा लगता था बहुत और ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत बड़ा आपका रोल रहा है। और ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 107 में सभी आर्जेस बहुत कुछ दे गए हैं और दे रहे हैं और इसी लिहाज से ये कहा जा सकता है कि भाई अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत याबी के साथ साथ एक लंबे वक्त तक यहाँ रखे, हम ही लोगों के साथ हमें भी तौफीक दे कतर में लंबे वक्त रहने की। दुनिया के हालात देखने के बाद ये लगता है कि नहीं यार बड़े शांति वाला मुल्क है, यही
2: सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही,
1: सारी आजादियाँ सारी सहूलतें यहाँ जो मैं किसी और जगह पे देखने को
2: बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल
1: ये तो शायद दूसरा टॉपिक है, मैं उस टॉपिक से हटना भी नहीं चाहता कि अगर आज आप लोग जा रहे हैं तो दुख तो बहरहाल होगा। और
2: नहीं कोई बात नहीं, हम दूसरे शो में मिल जाएंगे आपको, दुख ना कीजिए।
1: मिलिएगा। मेरा मसला क्या है पता है आपको, मैं जब शुरू होता हूँ तो सब सो चुके होते हैं।
2: अरे
1: जब
2: वो तो
1: सब
2: है।
1: जागते हैं तो उनके साथ में जागता रहता होता हूँ, लेकिन फिर थोड़ा ही वक्त जैसे ये सूरज अपनी तपिश दुनिया वालों पर मतलब बहुत तेजी से बिखेरता है और हर आदमी ये कहता है कि यार मैं बाहर निकल के शराबोर हो गया, तो उस वक्त मेरे सोने का वक्त होता है।
2: सही है।
1: पिछले तीन सालों से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि दिन क्या रात क्या, मेरी ड्यूटी ऐसी है रात में भी और दिन में भी, समझ नहीं आ रहा है।
2: इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, लेकिन वही है कि आपका रोजगार भी बरकरार रखे, उसमें ही अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। इंशाल्लाह
1: नहीं है कि उससे मुझे कोई शिकवा है, इसलिए कि ये मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ।
2: बिल्कुल
1: काम को तो तलाशते तलाशते मैं सात समंदर पार यहाँ भटकते हुए पहुँचा हूँ।
2: सही बात।
1: और कुदरत मेरे लिए अगर वो चीज रखी है तो उसके अंदर भलाई है।
2: बिल्कुल
1: ये है कि कम से कम मेरा घर चल रहा है उससे, है ना। बिल्कुल जो हासिल था वो मिला हुआ है। तो अच्छा एक तनहा पता है आपको नर्जा जी, आपके तमाम कॉलरों में एक तनहा मैं ऐसा रहूंगा शायद कि वो कोई कहता है ना कि तेरी रह गुजर पे हम आंखें बिछाए ऐसे बैठे हैं, गुमा होता है हराहट पे जैसे आप आए। तो आपका शो अगर 6 बजे शुरू होता था मैं आपको 5:30 बजे से इंतजार कर रहा होता था।
2: क्या बात है,
0: ये सारी चीजें वाकई हम भी बहुत मिस करने वाले हैं, ये तो सच है। और जैसे आपने कहा कि आपके तो टाइम ही इस तरह के हैं कि आपका तो फिर सोना बनता भी है क्योंकि आपको फिर काम करना है, तो चलिए हम आपको मिस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करेंगे जब हमारी टाइमिंग्स चेंज हो तो वापस से आपका हमारा कनेक्शन हो पाए
1: इंशाल्लाह।
0: नहीं मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, अपनी हेल्थ के साथ एकदम भी वो कॉम्प्रोमाइज या किसी तरह का कोई भी लोड ना डालिए, पहले आपकी स्लीप आपकी हेल्थ है।
1: मैं खाते पीते घर आने से हूं, बहुत तगड़ा खाता पीता हूं, मुझे कुछ फर्क
0: नहीं। नींद आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ना, नींद को लेके मैं बहुत ज्यादा पजेसिव हूँ, मैं अपनी नींद को लेकर भी हूँ।
1: नींद मेरी मुकम्मल नहीं होती है, ये तो मैं कह सकता हूँ।
0: वही तो मैं चाह रही हूँ,
1: ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी नींद मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि चलो अगर तकदीर का एक हिस्सा कुछ दिनों के लिए शायद यही लिखा हुआ है तो फिर वो क्या मसला है, देखते हैं उसको भी।
0: चलिए देखिएगा कब भी आपको लगे ठीक तो जुड़िएगा, अदरवाइज रेस्ट इज फर्स्ट, वो पहले होना चाहिए।
1: आप लोगों के लिए नहीं मेरे लिए भी लगता है मुझे होगा, पर न सिर्फ मुझे होगा बल्कि बड़ा खसारा होगा और आज के

0: खाने में खटारा कौन चाहता है।
1: चलिए जी, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लिसनर्स जो हैं हमारे साथ इतनी शिद्दत से, इस मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, और हमारी दुआ है कि वो जुड़े रहें इंशाल्लाह आगे भी।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब।
0: मैम देखिए ये सही भी है, जब हो या मोहब्बत हो दोनों भरपूर होना चाहिए।
1: हाँ ये तो है, ये बात तो सही कही आपने, बिल्कुल।
0: आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हम भी आपके शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो मच कि आप इतने मसरूफ होते थे फिर भी वक्त निकालते थे, जुड़ते थे, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप अपनी बात रखते थे हमारी ऑडियंस के साथ। सो थैंक यू सो वेरी मच, वी आर गोना मिस यू, बट इंशाल्लाह वी होप कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह।
2: बहुत शुक्रिया जमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी,
1: थैंक यू, अल्लाह
2: हाफिज़,
1: अल्लाह हाफिज़। तो मैं भी कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो वो एक्सप्लेन हम अभी करेंगे, वो मुझे करेंगे, फिर मैं आप लोगों तक करूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला
2: इंशाल्लाह जारी रहेगा।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.

0: FM 107 पर दिल से देसी।
1: रेडी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग और हम एक दफा फिर से आ गए। कुछ गाने हमने कहा कि हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। गेम का भी वक्त है और गेम के लिए कॉल हमारे पास आए, इस दौरान मैं आपको कुछ मैसेजेस भी आपके पढ़ के सुना देती हूँ। अफरोज सन चकवा ने मैसेज किया था, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड गुड मॉर्निंग आरजे नाज़िया आरजे मावश, कैसे हैं आप? होप आप दोनों अच्छी होंगी और बेस्ट ऑफ लक आप दोनों के न्यू शोज के लिए।
2: थैंक यू।
1: वर्किंग टाइम भी 15 सितंबर से ये चेंज होगा। ओके। और अब्दुल्ला का मैसेज, इन्होंने जो है एक पिक्चर हमें भेजी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक जी। इसके साथ ही सलाम फ्रॉम रोड, सुबह सुबह इतनी मुश्किल बातें और ये हैं कौन उस्मान। ओके। और इसके साथ ही जी मोहम्मद यूसुफ खान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुड मॉर्निंग नाज़िर जी एंड मामा जी, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल।
2: यूसुफ जी से बोलिए कि कॉल करें, आप
1: कॉल करें। यूसुफ आप सुन रहे हैं,
2: आपको तो गेम खेलना है।
1: और बहुत सी यादें, हमेशा समर की तरह इस समर में मेरी फैमिली वेकेशंस पे गई थी और मैं यहीं था। और हाँ, मौसम क्या है कि आते हैं जाते हैं और इंसान को हर मौसम में ढल जाना चाहिए, हर मौसम को एडजस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए और हर मौसम चाहे अच्छा हो या

0: और एज यू नो वेल, आप दोनों कहीं भी किसी शो में रहें, शो तो हिट ही रहेगा और मैं तो सुनूंगा ही और पार्टिसिपेट भी करूंगा इंशाल्लाह. और मैं हर आरजे से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं. और कहते हैं रऊ साहब मतलब हम आपको याद करते रहेंगे. मेरा तकिया कलाम है आपके मुंह में, मेरा क्या लड़का खो गया आपके मुंह में, अगर मिल गया आपके मुंह में ऐसा क्या, मुझे को समझ में नहीं आ रही बात क्या है भाई, कौन सा लड़का खो गया आपका. और आरिफ अंसारी ने थैंक यू बोला है गाने के लिए, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू जी. और इसके साथ ही जी
1: इसके साथ हमारे साथ एक कॉलर, हेलो
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: हमने आपको याद किया
0: और आप आ गए, उम्र लंबी आपकी माशाल्लाह.
1: अच्छा सुन के कह रहे हैं मैं आया हूँ, ये बात है. आज मैंने सोचा कि आज आप अल्टीमेट स्कोर करके ना इस चैप्टर को यहाँ पे बहुत अच्छे नोट पे क्लोज करें, मेरा मतलब गेम में आपके अलावा कोई और मेरे पास जुड़ पाएगा, टाइम भी बहुत कम है मेरे पास, तो लेट्स सी. अच्छा कम से कम 10 तक जाइएगा, ओके लेट्स सी, कम से कम नहीं, बस बस एक ऐसी मेरी ख्वाहिश है, लेट्स सी आप शायद कर पाए, शायद
2: सेकंड में नहीं हो पाएगा वो,
1: नहीं पाएगा. चलिए 8 तक तो जाइएगा, ओके चलिए ट्राई करते हैं ओके. और आपके लिए जो है वो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब पहला,
3: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हैं,
4: प्रियंका चोपड़ा,
1: राइट,
5: एक्सेलेंस का पीछा करो,
1: बिल्कुल सही
6: जी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश,
1: आई कैन
7: नॉट, सही. हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते,
4: अमिताभ बच्चन,
1: सही.
8: गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बन,
4: अभिषेक बच्चन,
1: बिल्कुल सही.
8: अगर ऐसा न हुआ,
4: पृथ्वीराज कपूर,
1: सही.
9: बाप का, दादा का, भाई का, सब का बदला,
1: सही.
10: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले,
1: ओह माय गॉड क्या बात है, हमने कहा कम से कम 8 का स्कोर कीजिएगा, बिल्कुल आपने 30 सेकंड्स में 8 का स्कोर किया है, क्या बात है, क्या बात है. देखा जहाँ पे चाह है वहाँ राह है, where there's a will there's a way. और अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया था कि मैं परफॉर्म अच्छा करूंगा तो विदिन सेकंड्स आप बता रहे थे सारे के सारे सही,
0: जबरदस्त.
1: ये मैं चाहती थी ये लास्ट हो ना तो बिल्कुल एकदम बैंग ऑन तरीके से हो लास्ट इस गेम में, तो आपने वो किया एंड थैंक यू सो मच. और यू हैव बीन ऑलवेज काइंड, यहाँ पे मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, जैसे आप और हम जानते हैं कि शो में हमें बहुत कमाल का रिस्पॉन्स मिलता है, टॉपिक पे लोग बहुत आते थे, जुड़ते थे, बात करते थे, पर थोड़ा सा घबराते थे गेम में कि हार जीत यू नो, तो आप थे या कुछ और, रईस जी हैं, राज हैं, कुछ लिसनर्स हमारे मकसूद जी जो हमारे साथ जुड़ते थे एंड पर्टिकुलरली सरफराज, ये लोग गेम में हिम्मत दिखाते थे, वो खेलते थे, तो ये बहुत बड़ी बात है.
2: जैसा कि मैंने लिखा है ना मैसेज में कि तो मैं तो सुनता हूँ कभी भी, आप कोई भी शो में रहो तो मैं तो सुनता हूँ.
1: हाँ, ये बात है यूसुफ,
2: ये जोड़ी बहुत हिट रही है और बहुत अच्छी रही है, आप दोनों की आवाजें मिलती जुलती है, सब लोग कंफ्यूज होते हैं लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छा शो किया माशाल्लाह से, आप दोनों को
1: घबराए
2: थे मॉर्निंग्स में दोनों बहुत घबराए थे, मुझे याद है
1: ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्योंकि वो ये था ना कि एक ऑडियंस होती है तो कबीर भाई जी, के बाद पता नहीं
2: माशाल्लाह, हाँ फिर नेक्स्ट समर बहुत मजा आया, फिर दोनों मिलेंगे तो
1: इंशाल्लाह जरूर जरूर इंशाल्लाह जी. थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया भाई,
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वालेकुम अस्सलाम. हालांकि मेरे पास कॉल है पर टाइम नहीं है, सो अब अल्टीमेटली वक्त हो गया है कि आपसे इजाजत ली जाए. इस वादे के साथ हर रोज मैं कहती थी कि अब मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, नहीं लेकिन अब मेरी यानी नाजिया की मुलाकात होगी 1:30 आफ्टरनून, और महविश की
0: मेरी इंशाल्लाह 10 से 11 कल आपसे मुलाकात होगी. और 10 से 11 का वक्त तो कुछ ऐसा है कि अपना ही लगता है, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं आपसे
1: इंशाल्लाह. बिल्कुल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107.
0: थैंक यू जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान

और आज हम बात करेंगे कतरी आर्चर रीम अल साई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कतर की टैलेंटेड आर्चर हैं और रीम अल साई ने रिकर्व आर्चरी में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से अपना नाम बनाया है। वन ऑफ द वेरी फ्यू आर्चर जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करके दिखाया। रीम ने दोहा में होने वाले GCC गेम्स और अरब वीमेंस क्लब्स गेम्स में रिकर्व आर्चरी के मुख्तलिफ इवेंट्स में कई गोल्ड मेडल जीत कर कतर का नाम रोशन किया। उनकी कामयाबी सिर्फ मेडल्स तक महदूद नहीं दोस्तों, बल्कि ये कतर में वीमेंस आर्चरी के बढ़ते हुए स्टैंडर्ड का भी सबूत है। रीम अपनी कंसिस्टेंसी, फोकस और प्रेशर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की सलाहियत के लिए पहचानी जा रही हैं। रीजनल लेवल पर उनकी परफॉर्मेंसेस ने उन्हें कतर की प्रॉमिसिंग आर्चरी टैलेंट्स में शामिल कर दिया है। दोस्तों अब नजरें रीम अल साई पर हैं कि वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी अपनी इस कामयाबी को कैसे आगे बढ़ाती हैं। एक बात तय है, कतर की आर्चरी में रीम अल साई एक ऐसा नाम है जिसे मुस्तकबिल में जरूर फॉलो करना होगा। कतर स्पोर्ट्स लेजेंड में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से।

0: आज हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस के बारे में जो हमारे दिल को मजबूत बनाने, ब्लड प्रेशर को काबू में रखने और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। दिल हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है। ये हर लम्हे खून को पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। अगर हम अपने दिल की अच्छी देखभाल करें तो दिल की बीमारियों, फालिज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे मसाइल के खतरे को कम किया जा सकता है। कार्डियो या एरोबिक्स वो एक्सरसाइजेस हैं जिनसे दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार कुछ देर के लिए बढ़ जाती है। ये एक्सरसाइजेस दिल और लंग्स को मजबूत बनाती हैं। दिल के लिए जो बेहतरीन एक्सरसाइजेस हैं उनमें सबसे पहले वॉक है कि रोज़ाना 30 मिनट तेज रफ्तार में चलना दिल की सेहत के लिए बेहतरीन और आसान एक्सरसाइज है। साइकिलिंग करना जोड़ों पर कम दबाव डालता है और दिल को मजबूत बनाता है। स्विमिंग पूरे जिस्म की एक्सरसाइज है और दिल और फेफड़ों की कारकर्दगी को बेहतर करती है। जॉगिंग सेहतमंद अफराद के लिए मुफीद है, लेकिन आगाज आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। एरोबिक्स अगर आपको पसंद है तो ये भी दिल की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। माहिरीन के मुताबिक हफ्ते में कम से कम 115 मिनट दरमियाने रफ्तार की एक्सरसाइज कीजिए, यानी तकरीबन 30 मिनट रोजाना हफ्ते में 5 दिन। और अगर एक साथ 30 मिनट मुमकिन ना हो तो 10-10 मिनट के तीन हिस्से भी किए जा सकते हैं। वर्जिश करने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए, आरामदेह शूज पहनिए, पानी अपने साथ रखिए, आहिस्ता आगाज कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता वक्त और जो रफ्तार है उसे बढ़ाते जाइए। याद रखिए, हर कदम आपके दिल को सेहतमंद बनाने की तरफ एक कदम है और आज ही से वॉक शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिल की हिफाजत आज से ही शुरू होती है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360,
1: कतर बिजनेस 360
2: जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: आप जिनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: सलाम आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नाजिया आपके साथ और वेलकम टू द शो कॉल कतर बिजनेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हमने बात की थी कतर के बिजनेस की, इकोनॉमी की, इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की, मार्केट ट्रेंड्स की, और हर गेस्ट ने अपने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इन टॉपिक्स पे अपने इंसाइट्स शेयर किए। सो आज का एपिसोड एकदम खास, एकदम लास्ट, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो कुछ चंद अहम और मकबूल एपिसोड्स का कंपाइलेशन जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। पिछले प्रोग्राम्स में हमने कतर की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एसएमईज की कामयाबी की कहानी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे अहम टॉपिक्स पर बात की थी। हमारे साथ इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए गेस्ट जुड़े और आज के इस खास सफर में उन्हीं डिस्कशंस को, उन वैल्यूबल इंसाइट्स को, उन इंस्पायरिंग मोमेंट्स को दोबारा याद करेंगे। अगर आप किसी एपिसोड को मिस कर गए हैं तो ये आपके लिए आज एक बेहतरीन मौका है कि उनके हाईलाइट सुने। अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं तो आई एम श्योर आप उन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे जो आपने सुन रखी है इस शो के हवाले से। तो चलिए आज की इस एकदम लास्ट वाले इस सीजन के, आई मीन इस ईयर के कह सकते हैं, इस लास्ट एपिसोड में कतर बिजनेस के आप सबको मैं वेलकम कहना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारा बहुत खास है एपिसोड, क्योंकि

0: आज हमारे पास जो है वो स्पेशल कंपाइलेशन है उन सभी अच्छे प्यारे मोमेंट्स की, उन सारी अच्छी बातों की, उन सारे अच्छे डिस्कशंस की जो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए एक इन्फॉर्मेटिव इंस्पायरिंग सफर के लिए, जहां हम मिलकर नजर डालेंगे कि कतर का लैंडस्केप, उनके अहम पहलू और मुस्तकबिल किस तरह से बिजनेस का शेप होने वाला है। तो आइए आगाज करते हैं। So, Mr. Ronak, to tell me, how do real estate company like yours grow from managing just one property to building a large portfolio?
1: So, I would, it's always been a thumb rule for me that growth comes from trust. Trust and results. So, you can give the best of the service, you can give the best of the consistency, but at the end of the day, investors are looking for results. So that is something that we've been focused on from day one, is giving the right results to our investors and being completely truthful and trustworthy when it comes to it. I've always told all my team that it starts with helping one client successfully. You know, it can be something as buying his property, leasing his property, or finding the right property for a tenant to lease, or managing the right building for the right, managing the building correctly for the owner. But as long as they see positive results, ripples just flow through after that.
0: Wow, that's really inspiring, really inspiring. Finally, what advice would you give to people here in Qatar who are thinking about investing in property for the very first time?
1: My most simple advice would be don't buy a property, buy a strategy. So start by understanding what your objective is, and then either you're looking for a monthly rental income, you're looking for long-term wealth creation, are you looking for residency benefits, are you looking for capital gains? Once you have your goal clear, then you move on to buying the right property.
0: That's an excellent advice to end on. अच्छा, आपको आई एम श्योर, आप तो खैर एडवाइस देते ही है लोगों को, लेकिन किसी ना कभी किसी पॉइंट पे आपको एक बेहतरीन बिजनेस एडवाइस दी होगी, तो वो कौन सा शख्स था जिन्होंने आपको एक बेहतरीन बिजनेस एडवाइस दी, और वो क्या दी जो आपको लगता है कि आज भी आप उस एडवाइस को अपने साथ रखते हैं?
2: मैं, मेरे लिए आइडियल मेरे बॉस मिस्टर लाल गनवानी है और उनके पुत्र मिस्टर जयंत गनवानी है, उनकी एडवाइस हमेशा मैंने अपने साथ बांध के रख दिए कि रमेश, जो भी स्टाफ तेरे पास काम कर रहा है और जो भी स्टाफ है वो अपने एसेट्स हैं और वो अपने ही लोग हैं, अपनी फैमिली है, ये ध्यान रखो। तो वो चीज मैंने समझो एक प्रकार से स्टार्टिंग से ही गांठ बांध के रख दी है।
0: ये बेस्ट एडवाइस आपको मिली आपके बॉस से, और आप इसको आगे फर्दर जो है वो मुझे लगता है कि बढ़ा भी
2: मैं चलाता रहता हूँ ये।
0: वेरी नाइस। अच्छा, जब आप अपने रिटेल सफर को देखते हैं तो अगले जनरेशन के रिटेल लीडर्स के लिए किस किस्म की लेगेसी आप छोड़ना चाहेंगे, खास तौर पे कतर में?
2: यंग जनरेशन के लिए एक चीज है कि नथिंग कम एज यू वांट, यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू हैव द मेनली ऑनेस्टी, एंड main thing is required in your life, intention is neat and clean and tidy. Believe me, God will also help you in this matter. If your intention is neat and clean, किसी के लिए भी आप कुछ ना गलत सोच रहे हो ना कुछ, जो करना है उसने सामने वाले ने करना, लेकिन आप अपनी तरफ से intention neat and clean करो कि आज मेरे को ये काम करना है, तो आप अपने लिए करो। You should have the satisfaction, not the other to it. जैसे कोई काम करता है, आज मैंने कोई काम किया तो शाम को मेरे को लगता है अरे यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, वो अगर आपके मन में आ गया तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि आपको खुद को खुशी मिली, किसी ने बोला नहीं बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको खुशी मिली कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया।
0: बहुत ही अच्छा।
2: तो वो जो चीज है ना, बहुत फर्क ला देगी आप। तो आप अपना इंटेंशन नीट एंड क्लीन रखें, ऊपर वाला भी आपको मदद करेगा।
0: बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ओके, नाउ दिस इज लाइक अ क्विक क्वेश्चन, इट्स कमिंग इन माय माइंड, सो व्हाट इज दैट वन हेल्थ केयर मिथ दैट यू वुड विश पीपल वुड स्टॉप बिलीविंग?
3: द डिजीज़ आर नॉट, ईच पर्सन इज डिफरेंट, राइट? सो इट इज नॉट द वन शर्ट फिट्स ऑल, it is not that kind, healthcare is never like that, it is all individually, like for each individual. For me, if I'm having

0: काफी लोग पढ़ लिख के बड़े बड़े पढ़े लिखे दोस्त हैं मेरे. आई विल नॉट से कि उन लोगों ने अचीवमेंट नहीं किया. दे लव दैट लाइफ. बोले भाई सैलरी आ रही है, आई एम रिलैक्स, भी बच्चे हैं और इन्जॉय करो. मुझे वो पसंद नहीं ज्यादा कि रिलैक्स पर जाऊँ मैं, बिकॉज मुझे पता है कि
1: मुझे काम
0: पैसे की वैल्यू क्या होती है. कि मेरे जनरेशन को भी वही सिखाता हूँ मैं, डोंट बिकम आराम पसंद नहीं बनाओ.
1: शायद ये एक फंडा भी है कामयाबी का.
0: तो आराम पसंद क्या करोगे आप? एक्सरसाइज आज भी करता हूँ मैं, स्विमिंग घर में करता हूँ, घर में ही है मेरे, जिम भी घर में है, मेरे वाइफ भी, मैं भी. और जो कहा मैंने कि जो गिफ्ट है अल्लाह का सबसे बड़ा वो है जिंदगी अपनी. अगर हम लोग ना शुक्रे और गैर जिम्मेदार होंगे अगर हम अपनी जिंदगी को खुद ही खराब कर लो कि इतना खा रहे हैं, ऑयल खा रहे, मीट खा रहे, पता नहीं जो जो नुकसानदार चीजें हैं. सो ही इज नॉट गोइंग टू लिसन और दुआ, ही विल से गेट लॉस्ट. आपको अकले सलीम दिया था मैंने और उसके लिए किताब दी थी मैंने. अपने किताब में लिखा है 33% खाए, 33% पानी, 33% खाली रखे. आपको बीमारी बीमार होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. तो देर आर मेनी थिंग्स और दीन इज टीचिंग अस. ओके, और आप पढ़े लिखे आज तो आज की दुनिया में क्या नहीं है, आपको एक क्लिक करो आपको हर चीज का सोल्यूशन है. सो वो खुद के हाथ में है. वेरी सिंपल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिजास्टर, ओके, और प्रॉस्पेरिटी और एंड एंड एंड योर सक्सेस. योर सेल्फ यू आर रिस्पॉन्सिबल. अल्लाह हैज गिवन यू ब्रेन and you can learn through those people who are success, your friends, your circle in our country here, around the world. There are billions of people, they are the examples. So this life is very easy. We make it easy or we make complicated.
2: True.
0: This is what I learn, and we can't blame anybody for the disaster. We are responsible. This is what many time I did mistake and I've been punished. I lost lot of money in terms of business, and that was errors. Okay, and we believe in straightforward business and in market. The best customers, they love us. They are best and very very strong companies. Belongs to semi-government, government, and private as well. Because we don't play. As I told you, you know, I'm like a military man. I punish people if they do little bit mistakes or some stupidity. And somebody call me, they are all my friends, clients, consultants, and say, oh, what happened? Why you did this? Your people are not professionals. Same day I sack people. I can't. You can't tolerate this type of nonsense, and you'll put yourself in the trouble. Business is like a naked sword on your head, 24 hours. When you are not mistaking, you are scared. You enjoy life. Mistakes will punish you like a hell.
1: That's a big lesson, I think, to all my viewers who also are keen in, you know, exploring their selves into business.
0: Gujarati mein kuch aisi dialogue hai, jane kam to jane bija kare so gota khaya. Iska matlab hai jiska kaam jo hai usi ko strongly expand karte hai. You must be skilled.
1: Yeah.
0: You must know what you are doing.
1: True.
0: Otherwise people will make your life miserable. They will cheat you. Hmm. Okay? Aur aap sign karte rahoge checks. कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है. यू विल नेवर नो विद इन कपल ऑफ इयर्स यू विल गेट बैंकरप्ट. बहुत सारे लोग हैं. तो मैं रिस्क नहीं लेता ज्यादा क्योंकि आई लव टू लिव लाइफ. इंसान वाली जिंदगी चाहिए मुझे. मशीन वाली लाइफ में बना सकता था बट मैं बहुत सीखता हूँ लोगों से. अब देखता हूँ अंजाम क्या क्या हो गया लोगों के. तो जो टिक गए, जो बड़े बड़े बन गए, वो टिक गए. उस उतनी स्ट्रेंथ उनकी बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर है.
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा. डियर लिसनर्स, तो आज के इस स्पेशल कंपाइलेशन एपिसोड में हमने कतर के बिजनेस, एनवायरमेंट, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ से मुतालिक हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ कन्वर्सेशंस को आप तक दोबारा पहुंचाया. हम उम्मीद करते हैं कि इन डिस्कशंस ने आपको वैल्यूबल इंसाइट्स दिए होंगे और कतर के डायनामिक बिजनेस सेक्टर को बेहतर समझने में आपकी मदद की होगी. वेल, हमारी कोशिश रहती है कि हम

0: आप तक सारी मालूमात पहुंचाएं जितनी हम आप तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आप इंस्पायर हों और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप तक पहुंचे जो आपकी प्रोफेशनल बिजनेस जर्नी में आपके लिए मददगार साबित हो। हम आपके फीडबैक और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी, चाहे बिजनेस की बात हो, इकोनॉमी की बात हो या किसी और टॉपिक पे बात हो, कमाल का आपका हमें प्यार मिलेगा। वेल, कतर बिजनेस का ये लास्ट एपिसोड इस साल का, इस सीजन का, बट इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि एक और नए सीजन 2 को लेकर हम बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होंगे। वेल, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नासिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
1: प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। गेम चेंजर
2: सीजन 2। हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।

0: सफर भाई से छुटकारा मिलने वाला है।
1: देखो कितना खुश हो रहे हैं, इनको दुख लगा दुख। वो याद है अंदाज
2: अपना,
1: याद है अंदाज अपना अपना मूवी याद है? अरे भाई बेस्ट टाइम, मतलब एवरग्रीन मूवी, ठीक है। उसके एंड में जिस तरह से सलमान खान हंस रहा होता है ना आमिर खान के ऊपर, जब उसे हकीकत पता चलती है, आपकी वो आपकी बिल्कुल वही वाली हंसी है इस वक्त।
2: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अलविदा यूं कहा हमने क्योंकि शायद आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दें आज शुरुआत से ही कि इंशाल्लाह ताला कल से हमारे प्रोग्राम से जो है वो चेंज होने वाले हैं। नया सीजन FM 107 पे स्टार्ट हो रहा है और जहां और भी ज्यादा आपको मजे आने वाले हैं, नॉलेज मिलने वाली है, एंटरटेनमेंट होने वाला है और काफी कुछ जैसे कि मैंने बताया कि आपको फायदा भी होगा, तो जरूर जुड़े रहिए आप FM 107 के साथ। FM 107 के तमाम प्लेटफॉर्म से भी जुड़िए, सोशल मीडिया पे हम हर जगह, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, एक्स पे आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है, FM 107। तो अगर आपने अभी तक हमें वहां फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो जरूर कीजिए और अपनों अपने अपनों से भी कहिए कि हमारे साथ जुड़े।
1: एग्जैक्टली।
2: और जैसा कि हम बताते आए हैं कि भाई हमारा जो वेब एड्रेस है वो भी बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो उससे भी कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वहां पर भी आपको स्टेशन के बारे में, FM 107 के बारे में तमाम मालूम जो है वो मिल जाती है। कौन सा प्रोग्राम किस वक्त होगा, नए प्रोग्राम से में क्या है, कौन से आरजे आपके फेवरेट आरजे, जैसे कि मैं और
1: जैसे कि
2: मतलब जैसे कि सफर जी एंड
1: सर भाई आप करें मुंह जैसे कि मुंह
2: तो आपको ये सारी जानकारी वहां पर मिल जाती है। तो हमारे वेब एड्रेस पे जाकर हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और वो बहुत आसान है, www.urduradio.qa। बल्कि अगर आप नेट पे जाकर लिखेंगे भी FM 107 या उर्दू रेडियो कदर तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
1: तो भाई आज जिस जिसने मजे लेने ना सरवर भाई और मेरी गुफ्तगू की, वो ले लो, क्योंकि कल से मेरी क्लास, अभी तो मैं सरवर भाई की क्लास ले रही हूँ, लेकिन कल से मेरी क्लास लेना मेरे साथ, जो जिसने आना है ना
2: उसके तो आगे सब,
1: हाँ मॉर्निंग में, और जिसने मेरे साथ आना है ना सरप्राइजिंगली, वो जब जब मेरे साथ आएंगे तब तक तो भाई मैं मेरी हालत आपकी वाली होती है फिर।
2: तो भाई जो इनकी उस्ताद हैं उनका नाम महविश है,
1: हाँ,
2: तो
1: इंशाल्लाह कुछ ऐसा ही नाम है उनका।
2: कल सुबह से आप सफा और महविश को सुबह 10 बजे
1: इंशाल्लाह ताला
2: समात फरमाएंगे ओनली ऑन FM 107। और वहीं मेरी मुलाकात आपसे जो है, एक्चुअली ये आखिर के नोट थे मगर हमने कहा पहले ही ले लेते हैं ताकि उसी हिसाब से बातचीत और प्रोग्राम बन जाए। तमाम हमसे जुड़ने वाले, बात करने वाले इस बात को जहनशी करते हुए हमसे बातचीत करें और गुफ्तगू करें। तो आइए पहली कॉल से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो, सलाम वालेकुम।
3: सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं हुसैन बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली इसलिए कॉल किया हूँ कि सरवर भाई
2: जी,
3: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई पैसे वालों को क्यों नहीं पैसे मतलब खर्च होते, बताइए। सफर आप ही की गाड़ी पास हो गई यार बिना खर्च किए
1: मेरे भाई, बिना बिना खर्च किए मैं एक बात बताती हूँ, मैं उन खातीन में से एक हूँ जो अपनी सुर्खी पाउडर के ऊपर एक रियाल नहीं लगाती। मेरे आई एम अ वेरी मिनिमलिस्ट पर्सन, मेरी जेब से सिर्फ दो चीजों के लिए पैसा निकलता है, एक खाना और एक मेरी गाड़ी। और मैं उसके अंदर अक्सर औकात, पहले मैं भी, मुझे गाड़ियों का बेइंतहा शौक है और मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरा ना मिजानिया कुछ हिल जाता है अगर मेरी गाड़ी में से एक भी चूं चाँ की आवाज़
2: मतलब ये कहीं और भी ज्यादा हिल जाता
1: और भी ज्यादा हिल जाता है, ये सही कहा इन्होंने। तो मैं ना गाड़ी को मेंटेन रखती हूँ। देखो शहजादी को रोड पे उतारना है ना तो आपको उसके ऊपर खर्चा आने से पहले लगाना पड़ता है, तो मेरा ये मानना है मेंटेनेंस मैं उसकी इतनी अच्छी और लगती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मेंटेनेंस करना जो है ना वो मुझे भारी नहीं पड़ता। मेरी गाड़ी मुझसे बात करती है, मुझे वक्त से पहले पता चलता है इसका ब्रेक पैड ख़त्म हो रहा है, इसका ब्रेक शू आवाज़ कर रहा है, या फलाने जो है ना इसका ये वाला मसला हो रहा है, इसका ये वाला रॉड का मसला हो रहा है, तो वो काम मैं करवाती रहती हूँ। सर ही मेरी जेब से नहीं जाता भाई, सबकी जेब से जाता है, जिसके पास गाड़ी है। अगर आपको अपनी गाड़ी से प्यार है तो वो आपको बताती है कि मेरे अंदर क्या मसला चल रहा है।
3: असल में मैंने पास करवाई थी तो मुझे खर्च हुआ ना, तो एक होता है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन पास हो जाए तो ज्यादा
2: दुख।
3: अब आप बता रही हो तो वन शॉट में पास हो गई तो ज्यादा दुख हो रहा है कि आपका खर्च नहीं, नहीं,
1: नहीं,
3: भाई,
1: मेरा, मेरा
2: नहीं तो आप इसके लिए दुआ करिए।
1: नहीं नहीं, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी फहास पे जाने से पहले मैंने गाड़ी का जो पीछे वाली जो रिवर्स लाइट होती है ना, वो एक लाइट फ्लिकर कर रही थी मेरी, तो मैंने वो जाने से पहले सही कराई है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरी गाड़ी में फॉल्ट है,
2: करोड़ों रियाल खर्च कर दिए।
1: नहीं नहीं, एक बात है ना सौरभ भाई, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग इंतजार करते हैं एन वक्त का। मेरे अपने पड़ोसी हैं, मैं उनको हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन एक बात है, उनकी गाड़ी रद्दी वाला भी नहीं खरीदेगा भाई, वो गाड़ी का उन्होंने ये हाल किया हुआ है। तो वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला चाहे कोई भी गाड़ी हो, मुझे प्यार है गाड़ियों से। मैं बोनट खोलती हूँ ना गाड़ी का, तो आपको मेरी गाड़ी का, कुछ लोगों को मैंने देखा है जब वो बोनट खोलते हैं ना, तो ऐसी डस्ट जमी हुई होती है, ऐसा गंद मला हुआ होता है। मुझे इधर पता है कि गाड़ी का रेडिएटर कहाँ है।
3: तो आप ही एक काम क्या करो ना, गाड़ी में चाबी लगा के गाड़ी घर के बाहर छोड़ा करो प्लीज, और मुझे लोकेशन भेज दिया करो।
1: मेरे भाई माशाल्लाह, सच में एक बात बताऊं, सच में मैं बहुत भुलक्कड़, मैं सच वाली गजनी हूँ। कितनी दफा ऐसा हुआ है कतर, माशाल्लाह माशाल्लाह, नॉट टू ब्रैग अबाउट इट, कितनी दफा ऐसा हुआ है मैं गाड़ी की चाबी लगी हुई भूल गई हूँ। अब तो ये है कि वो टूट टूट वाली गाड़ी की चाबी हो गई है तो अब नहीं भूलती, लेकिन कितनी दफा ऐसा हुआ है गाड़ी की चाबी दरवाजे में लगी भूल गई हूँ। मैं सुबह आई हूँ, पूरी रात गाड़ी के दरवाजे में चाबी जो है ना लगी रही है, सुबह आई हूँ तो मैंने आकर उसी घर में ढूंढती फिर चाबी नहीं मिल रही, सुबह आकर देखा तो चाबी दरवाजे में लगी हुई। ये मेरी नॉर्मल रूटीन रही है ये, और मैं नॉर्मल एरिया की बात कर रही हूँ, मैं किसी हाई फाई एरिया में नहीं रहती, मैं अबू अमूर में रही हूँ। सबको पता है कि भाई अबू अमूर का भी माहौल बिल्कुल नॉर्मल सा है, मतार कदीम का बिल्कुल नॉर्मल सा है, तो नहीं जाती भाई चीज़, नहीं जाती, जिसकी नहीं जानी होती ना अल्हम्दुलिल्लाह सी नहीं जाती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो
3: यहाँ
1: पर
3: वैसे भी आज तो मैं नफील के नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि अब कल से आप मॉर्निंग में और वो भी मैं भी शापी के साथ आएंगी
1: भाई, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना प्लीज, मेरे लिए दुआ करना।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तहज्जुद भी पढ़ लूंगा आज इंशाल्लाह।
1: प्लीज मेरे लिए डबल दुआ, मुझे डबल बैंडेजेस की जरूरत पड़ने वाली
2: भाई। देखिए ये इतनी तमीज हमने इसलिए बांधी कि पहली चीज और अपनी पहली सवारी जो है वो बड़ी यादगार रहती है, तो उसी हवाले से आज हम ये भी बात करना चाहेंगे कि आपकी पहली बाइक या पहली स्कूटी या पहली गाड़ी आपको कितनी याद है, और उसके साथ आपकी क्या क्या याद जो है वो जुड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर?
3: इसके ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ सर्वर भाई, मैंने मतलब मैं पापा ने ही खरीदी है जो बाइक, वो आज तक मतलब मैंने संभाली है और अभी भी मैं संभाल रहा हूँ बाइक को।
2: क्या बात है यार, क्या बात है,
3: बिल्कुल।
2: मैं
3: अपने आप को मेंटेन रखता हूँ, वैसे मैं अपनी बाइक को उसको मेंटेन रखता हूँ।
1: माशाल्लाह,
3: मुझे शौक भी है उस बाइक का, मुझे शौक।
2: कितने साल हो गए?
3: एक होते ना कि पैशन में उसके लिए क्रेज, चाहे मार्केट में कितने भी टॉप मॉडल क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे वो पसंद है,
2: वो एक मोहब्बत अलग ही होती है। कौन सी है ये तो बताइए
3: जी? वो रॉयल इनफील्ड 350cc क्लासिक।
2: वाह, है भी अपने आप में शानदार सवारी और जानदार सवारी। तो ये बताइए कि कितने साल हो गए उसको?
3: जी उसको करीबन हो गए अभी 12-13 साल, 12-13 साल हो रहे हैं,
2: 12-13 साल हो गए।
1: सही सही सही।
2: चलिए भाई क्या बात है, कोई ऐसी याद दो और शेयर करना चाहते हो, वो क्यों दिलवाई गई थी आपको, कुछ तो खास हुआ होगा?
3: जी खास ये हुआ था कि 10th का रिजल्ट गलती से अच्छा आया था।
1: गलती से अच्छा आया था। अच्छा, लड़कों के लिए ये वाकई में गलती होती है।
3: पूछा गया कि क्या चाहिए, मुंह से निकल गई। अब मुंह से निकल गई तो माशाल्लाह वो पूरा भी हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ब्लेस्ड फीलिंग हुआ कि चलो फाइनली। फिर मैंने उसको अभी तक संभाला है और अभी भी संभाल रहा हूँ।
2: मगर उसके पीछे
3: मैं 3 भाई हूँ, लेकिन किसी को मैं छूने नहीं देता हूँ, नहीं, ये मेरी पर्सनल है।
2: तो ये उसमें कोशिश तो बहुत करी होगी, ऐसा थोड़ी कि एक बार कहते ही मिल गई।
3: जी कोशिश करी, ऐसी नहीं है, बहुत मतलब करना पड़ा, थोड़ा सा पैर हाथ दबाने पड़े।
2: लेकिन ये है ना,
1: लेकिन
3: पापा
1: अच्छा
3: हमेशा मेरे फेवर में रहे। मैं मम्मी को नहीं मना पाता, लेकिन मैं पापा को हमेशा मना लेता हूँ।
2: चलिए नसीब वाले हैं आप, और अल्लाह ताला आपके वालिदैन को खुशोखरम रखे, सेहतियाब रखे, और जितनी भी आपकी यादें हैं इसी तरह तरोताजा रहें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
4: बहुत याद है। मैं पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गया हूँ, उनको लेके मैं मतलब जाता हूँ हर जगह, वो कार प्रीफर नहीं करते।
1: आपके पास जिगरा है जो आप राइड पर अब्बा को ले जाते हैं। हम तो अपने अब्बा को गलती से एक आधी दफा बिठा दिया था अपने साथ, तो अब्बा ने जो क्लास लिए, ऐसे चलाते हो गाड़ी, ये करते हो, इधर ब्रेक मारो, इधर ये करो, इधर वो करो। मैंने कहा बस अब्बा ये आखिरी राइड थी आपकी। और
4: मेरे साथ उल्टा है, मुझे ना अम्मी से ज्यादा डर लगता है अब्बा से नहीं।
2: ओ
1: हमारे तो दोनों ऐसे, हमारे तो दोनों ऐसे चल रहे।
4: अब फिर मेरे भाई लोग हैं, पापा से ज्यादा डरते हैं, लेकिन अम्मी से फिर जो है ना बहुत अच्छा। यहाँ कोई भी चीज अगर उनको चाहिए होती है, पहले अम्मी को खबर होती है फिर पापा को।
2: पहले अम्मी को खबर होती है फिर पापा को, क्या बात है यार। चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ख्वातिनों हजरात, दोस्तों बुजुर्गों बच्चों, बात हो रही है पहली गाड़ी, पहली बाइक, पहली स्कूटी के हवाले से।
1: आपकी क्या थी पहली गाड़ी?
2: मेरे ख्याल में लड़कों के साथ तो सबके एक ही सिचुएशन और कंडीशन और जो भी कह लो पोजीशन और हालात रहते हैं कि हाई स्कूल के बाद भाई बाइक दिलवा दीजिए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, तो मेरी भी पहली बाइक मुझे हाई स्कूल पास करने के लिए, और जैसे कि उन्होंने बताया भाई ने, हुसैन भाई थे ना या हसनैन भाई थे, कि गलती से नंबर अच्छे आ गए थे, तो भाई काम हो गया। मतलब वो ट्वेल्थ में मिलनी थी एक्चुअली वो ट्वेल्थ में जाके मिलनी।
1: मेरी बड़ी फनी स्टोरी है सरा भाई, मेरी स्कूटी बहुत फनी। ना ना ना ना, स्कूटी नहीं, मैं चलाती थी 9 सीटर बस, कहते थे मेरे दोस्त सारे मुझे, कहते थे तो बस चलाती है, मुझे ना मेरा मामला
2: ही है।
1: हाँ वो उसे ना सब कह, मतलब वो मेरा नाम ही रखा था बस ड्राइवर। मेरी यूनिवर्सिटी में दोस्त मिल गए थे बस ड्राइवर।
2: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिर्फ सलाम करूँ और वापस बोलूँ की अल्लाह से तकरीबन अभी 12-13 मिनट से मैं कॉल पे कॉल वेट पे वेट पे इंतजार। असल में ये है ना कि देखो एक बात अगर 2-3 बार रिपीट की जाए तो वो बात अच्छी नहीं लगती। एक बात ये हो गई, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग ये फोन जो इसको आप टाइमर पे लगाओ, 3 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं होनी चाहिए।
1: ये तो कॉल सेंटर का निजाम हो गया।
5: एक और चीज मैं बताऊँ, इसलिए कि हमारे जो FM 107 के लिसनर्स हैं, ये हजारों के हिसाब से नहीं, ये लाखों के हिसाब से, बल्कि मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा है। ये
2: वाह
5: बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ इधर ये नहीं कि कतर में लोग सुनते हैं, इंडिया में पाकिस्तान में भी ये सुनते हैं। तो ये 3 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं होनी चाहिए।
2: क्या बात है यार खादिम भाई, आज ही से लोग।
5: शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भाई ये थे खादिम भाई हमारे साथ कहते हुए कि 3 मिनट से ज्यादा किसी से बात न करें, अपनी बात 3 मिनट में खत्म करें। हेलो सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व
2: बरकातहू। आसिफ भाई।
6: सदर भाई कैसा है? बस पैसा ही पैसा। सदर भाई मैं चाहता हूँ तुमसे घंटों बात करूँ भाई FM पे, सिर्फ मैं और तुम।
1: अभी अभी, अभी तीन मिनट का टाइम मिला है,
2: लोग कानून लगा रहे हैं भाई।
6: मैं मानता ही नहीं 3 मिनट में, मैं मानूंगा नहीं 3 मिनट में भाई। दिल की बात है, मैं तो चाहता हूँ कि आज सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे सर्वर भाई और मैं सिर्फ बस गुफ्तगू लगा।
1: क्यों आखिरी शो करवाओगे सर्वर भाई का?
6: आखिरी बड़े अरे मैडम ये समझ लो भाई और मेरा दिल का एकदम
1: कंट्रोल।
2: कैसे आज भाई?
6: कसम से भाई मैं तो चाहता हूँ तुमसे बात करते रहो।
2: अरे ये मोहब्बत है आपकी और हम भी ऐसा चाहते हैं।
1: टेंशन नहीं, शो खत्म होने के बाद अभी पार्सल कर देते हैं सर्वर भाई को आपके पास।
2: हम भी ऐसा ही चाहते हैं आसिफ भाई। तो आसिफ भाई बात हो रही है आज पहली सवारी की और उससे जुड़ी यादों की, तो उसके हवाले से क्या कहना है?
6: नहीं भाई अपनी पहली सवारी तो अपनी बाइक थी, वो तो खत्म हो गई अपनी बाइक, अभी खत्म हो गया शौक बाइक का।
2: अच्छा मतलब शौक खत्म हो गया, उसको सेल आउट कर दिया?
6: नहीं शौक खत्म हो गया भाई। आपको मैंने ये सवाल आपने पहले भी मुझसे पूछे थे।
2: अच्छा
6: देखो याद है, रिमेम्बर।
2: अच्छा
6: ये आपने सवाल पहले भी पूछे थे लिसनर लोग से, बहुत लोगों का लिसनर लोग का जवाब भी आया था माशाल्लाह, और उस टाइम पे मैं भी मौजूद था, मैंने भी आपको जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब था। ये
2: क्या क्या था, क्या कौन सी बाइक थी?
6: बाइक के बाप नहीं है, RX 150 मेरी पहली बाइक, और मेरे को मिली थी 10वीं के बाद।
2: सबको देखो टेंथ के बाद
1: लड़कियों को क्यों सेकंड ईयर की बात मिलती है?
6: घरवाले
2: भरोसा करने में टाइम लगता है।
6: स्टार्टिंग से घर वाले लोग पीछे लग रहे थे ना, बेटा दसवीं पास कर ले तेरे को ये दूंगा, बेटा दसवीं पास कर ले तेरे को ये दूंगी।
1: हम लीगलाइजेशन से चलते हैं ना, हम यहाँ
2: हाई स्कूल एक ऐसी मतलब छाप होती है ना कि
1: नरेंद्र हमें यहाँ पे 18 साल के बाद मिलता है लाइसेंस। हम लाइसेंस वाले लोग हैं,
2: हमारे वाले की बात कुछ और है। हाँ
6: बम्बई वालों की तो बात ही अलग है भाई, सबसे अलग बम्बई वाले लोग है
2: क्या? बिल्कुल यार वो तो है, सबसे अलग भी है और सबसे प्यारे भी।
6: मेरे भाई ने, छोटे भाई ने मेरे, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तुम यकीन नहीं मानोगे सरोज भाई, आज मैं उसके पास दो एक्टिवा खड़ी है।
1: ऐसा ना करे ना, ऑनियन ऐसी बात ही ना करे ना।
6: सच्ची बता रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं बोलता भाई क्या कर रहा है तू, तेरे पास कुछ है नहीं फिर भी लेके घूम रहा है।
2: हमारे मुल्क की बात हो रही है तो मतलब ठीक है, खरीदने में कोई हरज नहीं है, बट चलाना जब भी चाहिए जब आप पूरे तरीके से लाइसेंस वगैरह आपके पास हो, और क्योंकि एहतियात और लोग जो चल रहे हैं सड़क पर उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की।
6: मैं आपकी बात से एकदम एग्री करता हूँ, आपकी बात एकदम एग्री करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मतलब एक चीज है, हम लोग के उधर कल्चर है, मालूम नहीं क्या है, बच्चा दसवीं में पहुंचा भी नहीं उससे पहले गाड़ी खड़ी है घर के बाहर।
1: भाई जिम्मेदारियों के बोझ तले,
2: काम भी उसी से ही चलते हैं ना ज्यादातर,
6: जिम्मेदारी नहीं बोलते
2: घर बोलते ज्यादा होते हैं और लोग ज्यादा होते हैं तो काम भी ज्यादा होते हैं घर के, जाहिर बात है। चलिए साहब बहुत ही बढ़िया आसिफ भाई, और कैसा रहा आज का दिन, कैसा गुजरा, सब खैरियत है
6: भाई? बहुत बहुत बढ़िया गुजर रहा अभी तक का, तो बस वो मैडम सफदर की, क्या सफा सफदर की एक बात सुन के मेरे को हंसी आ गई।
1: हाँ।
6: वो जो आपने कहा ना कि मतलब मेरा तो एक ही चांस, एक ही बार में मेरा वो पास हो गया।
1: हाँ।
6: आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे मुदीर की गाड़ी है, उसके पास लैंड क्रूजर है, उसने ना टायर बलून टायर लगवाया और गाड़ी में यानी क्या क्या करवाया मुझे नहीं मालूम है, दो हफ्ता पहले और अगले हफ्ते ही उसका वो आ गया, टाइमिंग आ गया
1: भाई, सब कुछ उतरवाना पड़ा होगा, मुझसे पूछो,
6: सब कुछ करना पड़ा उसका, वो मेरे को बोलता है
1: ये काम मैंने भी किया आज, ये काम मैंने भी आज किया,
6: पैसा खर्चे करके आया बोले, और बाद में देखो यहाँ पर
1: मैं उनका दुख दर्द समझ सकती हूँ, उनसे कहना आई फील इट, मैंने बहुत सुर्खी लालियां लगाई थी अपनी गाड़ी को, सब उतारी है, सब उतरवाई गई है, सब फड़े जाएंगे भाई, सब फड़े जाएंगे।
6: सभा मैडम दूसरी बार बेचारा कॉलेज लेके आता है, अभी की गाड़ी दो दिन से घर पे खड़ी है,
2: खैर का मामला करे ज्यादा पुल मत खोलो
1: आसिफ भाई, देखो सोच समझ के बात करो, कुछ देखभाल की बात करो, ऑन एयर कुछ और ना बोल देना आसिफ भाई, हमारे लिए लाले पड़ जाएंगे।
6: अरे नहीं नहीं नहीं,
2: अभी कहाँ पे हैं आप आसिफ, कहाँ हैं अभी?
6: मैं रोदतुल हमामा में हूँ।
2: क्या हाल है इस वक्त, ट्रैफिक वगैरह?
6: माशाल्लाह गर्मी गर्मी बोलती मेरा काम।
2: हाँ गर्मी तो है ही है, और ट्रैफिक के इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि अब हाफ डे के करीब पहुंच गया।
6: अभी कुछ ट्रैफिक नहीं है जनाब, अभी जनाब कुछ ट्रैफिक नहीं है, इंशाल्लाह ट्रैफिक मिलेगी तो शाम में मिलेगी और कुछ नहीं, और दोपहर में
1: इंशाल्लाह मिलेगी।
2: चलिए साहब अल्लाह ताला खैर करे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। ये थी कुछ अभी तक की बातचीत, अब बढ़ते हैं आगे और वेदर का हाल जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या है, और उसके बाद आपको आज का पहला नगमा भी सुनाएंगे।
7: वेदर का हाल 107 दिनाल।
2: तो भाई गरम गरम वेदर में क्या है इस वक्त हाल अहवाल सफा सफदर जी?
1: देखो भाई गरम गरम वेदर में हम परोसे जा रहे हैं, 41 से 42 नहीं हाँ तकरीबन 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना वो आज टेम्परेचर अभी का बता रहा है, और अगर ये बताया जाए कि कितना हाईएस्ट जा सकता है तो ये कहा जा रहा है कि 44 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है, और लोएस्ट जो है वो हाईएस्ट 44 डिग्री और लोएस्ट जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा, एंड इट ऑलरेडी फील्स लाइक 49, जो कि मैं कहूंगी कि प्रोग्रेस है क्योंकि कल 50
2: कल हमने यही बात करी थी कि डेली देखिए फील्स लाइक में भी फर्क आता चला जा रहा है, इंशाल्लाह ताला खैर
1: और
2: आफियत
1: का मामला होगा। और ह्यूमिडिटी भाई, ह्यूमिडिटी तो कल से हायर है, क्योंकि मैं खड़ी हुई थी गाड़ी के लिए बाहर गाड़ी से, तो मैं पिघल गई थी, ऑल ऑफ बन गई थी मैं, तो भाई 33% पर ह्यूमिडिटी आई हुई है, इसको हमारे पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा, हवाएं जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्पीड चल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई तकरीबन 8 से 13 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर हवाएं चल रही है।
2: क्या बात है भाई, और इधर QMD का क्या कहना है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक पहली और दूसरी सितंबर यानी कल और परसों यानी मंगल और बुध के रोज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज से बहुत तेज शुमाली मगरबी हवाएं जो हैं वो चलने वाली हैं, इसके इम्कान हैं। जिससे क्या होगा भाई कि जाहिर बात है गर्मी में कमी आएगी और इन हवाओं की वजह से यह है कि गर्द व गुबार भी उड़ सकता है, धूल मट्टी डस्ट का जो है मसला हो सकता है कुछ इलाकों में और विजिबिलिटी भी इसकी वजह से ख़राब होती है। तो कहना यही है कि भाई ड्राइविंग वगैरह के वक्त जब कभी ऐसी सूरत हाल आप के सामने पेश आए तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और बड़े एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। वहीं समुंदरी इलाकों के लिए भी वार्निंग जारी की गई हैं और तमाम शहरियों को, हम सबको, ड्राइवर्स को यही मशवरा दिया गया है कि भाई मौसमी सूरत हाल जो है इस पर नज़र रखें और एहतियात से सफ़र करें, अपनी ड्राइविंग एहतियात से करें और तमाम जो कानून हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप ड्राइविंग कीजिए। चलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल है तो एक कॉल और लेते हैं फिर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये तो सफा जवाब दे सकती है, बहुत अच्छा।
6: सपा के साथ में हो चुकी है पंजाबी में बात, हो
2: सब पता सी
1: रईस भाई ना इस वक्त, पता क्या रईस भाई ना, वो जैसे हमारे पास चाट मिलती है ना उसके अंदर दही भी होती है, उसके अंदर चने भी होते हैं, उसके अंदर भटोले भी होते
2: हैं, हो रहे हैं इसका मतलब।
1: तो ये मिक्स प्लेट चल रहे हैं इस वक्त, चाट हो रही है इस वक्त।
2: क्या बात है भाई, कैसे हैं रईस भाई?
6: अल्हम्दुलिल्लाह यार भाई, लगे हैं बहुत दूर लगे हैं दोस्त आपके साथ, कैसे हम 107
2: कहाँ है एग्जैक्टली अभी?
6: अभी अलखोर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूरी पे, यही एक
2: बहुत दूर पहुंचे,
6: आज बहुत दूर चले आए आज।
1: मेरा इतने दिनों से दिल कर रहा है अलखोर जाने को और खास तौर पे वो जो जू है ना वहाँ जाने को दिल कर रहा है, सोच रही हूँ इस हफ्ते वहीं जाया जाए।
2: वो बेचारे खुद वहाँ पे जानवर सारे छतरी लेके खड़े हुए, भैया कलाला छाव से भारी नहीं आ रहे, कह रहे कलाला कल। तो चलिए भाई,
1: शेर की हालत देखने वाली थी, शेर की जो शेर होता है उसकी हालत देखने वाली
2: कौन होती शेर
6: ये सारे इधर मजरे सारे है ना, इधर साग सब्जी वाले इसी इलाके में लगे हैं, थोड़ा एक कंपनी में आए माल लोड करने के लिए।
2: अल्लाह ताला खैर करने वाले, अल्लाह ताला आसानी करे, आपके काम में आसानी हो। तो रईस भाई अपनी पहली गाड़ी याद है कुछ कह रहे?
6: जी जी
2: मैं कह रहा हूँ कि अपनी पहली गाड़ी आपको याद है, मोटरसाइकिल वगैरह बाइक वगैरह?
6: बिल्कुल, मैंने खुद अपने मेहनत से खरीदा था, कोई मतलब किसी ने दिलाया उलाया नहीं था भाई।
2: अच्छा,
6: मैं हाँ अपने मेहनत के कमाई से मैंने खरीदा था, ना मैंने शादी में लिया ना मतलब किसी के उस पर रहा, मैंने अपने मेहनत से सबसे पहले मैंने मतलब बाइक खरीदा था, स्प्लेंडर सुपर स्पोर्ट उस टाइम में उसका आता था, हीरो होंडा का। तो अभी तो अलग हो गए दोनों कंपनी, लेकिन उस टाइम में दोनों साथ में थे, शायद आपको पता होगा इस बात।
2: चलिए साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है और यादगार इसलिए क्योंकि खुद अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी। तो अब तो मेरे ख्याल में नहीं रही होगी आपके पास वो बाइक, क्या है अभी भी?
6: नहीं, अब मैंने जिसको बेच दिया था यहां? वो अभी तो मैंने दूसरा सब एक्सचेंज कर लिया, वो अभी भी रखा हुआ मेरी निशानी को मेरे गांव में ही।
2: वही तो वही बात क्या
6: हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है यार, ये कभी कभी लेके आता है तो देखते बोलते यार बड़ा पुराना याद हमारा रखा हुआ है, सब समझ लो
2: क्या
6: हमारा जो पहला पसंद हमारा पहला ये बड़ा बड़ा प्रसन्न होता है ना बाइक जब जिस टाइम पे चलाने का मतलब ये होता है कुछ अलग ही होता है चलाने का।
2: सही बात है, शुरू में तो सभी को अच्छा लगता ही है और वो यादगार भी ताज़ा कर देती हैं चीज़ें यादें। बहरहाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंशाल्लाह ताला आगे भी आपसे बात होती रहेगी। असल में अजान का वक्त हो रहा है तो अब इंशाल्लाह ताला इसलिए हमें ब्रेक भी लेना है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: सर भाई 125 चलाई आपने?
2: 125 शायद हमारे किसी और नाम से होती होगी, शक्ल देख के याद आएगी।
1: 125 मैं आपको दिखाती हूँ,
2: अभी देख लेते हैं भाई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
8: पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा
1: क्या गाना है दिलाया
2: भाई, मैंने कहा बातचीत ऐसी ही हो रही है तो धागड़ बना भी अपना अपना याद कर लिया जाए। एंजॉय कीजिए पुष्पा पुष्पा, मीका सिंह, नकाश अजीज, सन एंड साउंड पे इस वक्त सर्वर और सफा आपके साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।

जवाब देने को अवॉइड कीजिए। कभी भी जाती मालूमात या डेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें और सिर्फ

0: हो
1: एंड ही इज हुक दैट अवे दैट्स फोर रन
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM
2: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की
3: स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की

0: फिर रूम करा शेकअप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो, वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह,
0: वेक अप।
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर, दिल से देसी।
4: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
5: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
6: प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
7: चले तो कट ही जाएगा सफर।
6: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
8: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से,
9: 7:15 बजे से
8: FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ,
9: दोहा वाले कबीर के साथ।
10: FM 107 पर हर गाना हिट,
11: हर गाना हिट,
10: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
8: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लीजिए साहब, हुई हमारी वापसी और वापसी के साथ ही साथ आप लोगों की कॉल भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
12: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
13: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? वैसे मुझे पहचान में आ गई आवाज, लेकिन मैं फिर पूछूंगी, सरवर भाई को पहचान में नहीं आ रही।
8: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
12: मैं शोएब बात कर रहा हूँ।
8: बिल्कुल शोएब भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं?
13: शोएब भाई, क्या आप ये बात मान सकते हैं कि सरवर भाई को आपकी आवाज याद नहीं है?
12: हाँ, हो सकता है।
13: अरे भाई, सरवर भाई गिरे तौली में लपेट के मारा है।
8: अम्मी जान ने कहा था कि
12: हो जाता है समटाइम।
8: चलिए साहब, ये तो अच्छे सच्चे आदमी शोएब भाई। तो शोएब भाई, कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
12: भाई सब बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल अभी अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है।
13: अल्लाह खैर करे, बताने के लायक है भाई रेडियो पर।

0: देखिए अभी स्कूल स्टार्ट हो गए, सबको पता है,
1: अल्लाह खैर करे। हाँ जी,
0: अब स्कूल की जो बसेस होती है, जब उनमें जब बच्चे उतरते हैं, उधर बोर्ड होप सब होता है, तो अगर मतलब उनको पहले रास्ता देना है, मैं सबसे ये कहना चाहता
1: हूँ। एग्जैक्टली।
0: तो अभी क्या है कि मैं अभी जैसे कि मेरे सामने एक स्कूल की बस है, तो जब बच्चे उतर रहे हैं, उनका बोर्ड स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने गाड़ी रोक ली।
1: हाँ जी, पीछे वाला है।
0: जो मेरे पीछे है और आगे है, उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, और वो अब इतना ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है, हद से ज्यादा, कि बंदे उल्टे सीधी गलियों में गाड़ी मतलब लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, वो ट्रैफिक।
1: ये कोई एक करता है, कोई एक जो है ना बहुत बहुत इररिलेवेंट हरकत करता है, कोई एक, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक कचरा हो जाता है, कोई एक होता है।
0: बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भाई थोड़ा ध्यान रखे सब बच्चों के, स्कूल की बस का
1: दो मिनट कितना ही लगेगा,
0: उनको पहले रास्ता दे दे।
1: ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात मानती हूँ। मैं खुद अपने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो ये हाल होता है, भाई दो कितना मिनट लगेगा एक वैन को खाली होते हुए या एक बस को खाली होते हुए। स्कूल की बसेस तो अंदर खाली होती हैं, चले एक वैन होती है, जो बच्चों का अक्सर औकात होता है ना कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं, तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाली वैन वगैरह होती है, कितना ही बच्चा बैठा होगा, 20 बच्चा बैठा होगा, चलो ठीक है, तो उसको कितना ही टाइम लगेगा, मुश्किल से 3 मिनट।
0: इतना थोड़ा सा सबर कर ले तो सबके लिए जो है ना आसान हो जाएगा।
1: कहाँ समझ में आती है मोटी अकल वालों को भाई, ये बात कहाँ समझ में आती है, मुझे समझ, मैं क्या बोलूँ अब, ऑन एयर बैठकर कुछ बोला नहीं जा सकता, सिर्फ हिदायत दी जा सकती है और प्लीज किया जा सकता है कि भाई प्लीज अपना अपना जो आपका ये मामला है ना, पेशेंस लेवल इसको बढ़ाएं, बड़े होने का मुजाहरा करें, हम आप छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े होने का मतलब, मेजोरिटी का मतलब यही होता है कि आप जरूरियात को समझते हुए, सिचुएशन को समझते हुए रिएक्ट करें।
2: बेहद ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और खास तौर पे जब आप स्कूल वगैरह के आसपास इर्द-गिर्द होते हैं, तो वहां पर वैसे तो स्पीड लिमिट भी हुकूमत की तरफ से 30 किलोमीटर पर आ रहा है, और वो उन औकात में है जब स्कूल वगैरह खाली हो या शाम का वक्त हो या बच्चे ना गुजर रहे हों। जिस वक्त बच्चे आ जा रहे हैं तो उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि ज़ब्त तहम्मुल से काम लेना है, भले ही आप जितना भी लेट हो रहे हों या जो भी आपने काम हो और जो भी आपके साथ परेशानी हो, मज़ीद परेशानी अपनी और दूसरे की मत बढ़ाइए। तो शुएब भाई क्या कहते हैं, अपनी पहली मोटर बाइक मोटरसाइकिल याद है, स्कूटी, शुएब भाई निकल लिए,
1: कट लिए क्या?
2: नहीं है तो ऑन एयर दिख रहे हैं मुझे,
1: भाई म्यूट पे चले गए, याद कर रहे हैं
2: भाई, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप
0: सॉरी माय बैड
2: म्यूट पे लग गया था शायद, हम समझ गए थे
0: म्यूट पे लग गया था, वो भी
1: ऐसी बातें ना किया करें ना कि फोन ऑटो म्यूट पे चला जाए।
2: आपने हमारी बात सुनी, मेरा सवाल सुना आपने,
0: बिल्कुल मैंने सुना आपका सवाल, और मैं एक बोल रहा था कि आज आपने दुखते हुए नफ्स से हाथ रख दिया। मैं एक अच्छा खासा बाइक लवर, स्पोर्ट्स बाइक लवर, और बहुत जबरदस्त मतलब मुझे बहुत शौक है बाइक से लंबे लंबे टूर पे जाने का। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पोर्ट्स बाइक भी है, और जो पिछले 4 साल से मैंने लॉक करके रखी हुई है।
1: अरे भाई ये हमारे घर,
0: मैंने उसको 4 साल से मतलब अभी लास्ट टाइम मैं अभी वेकेशन पे गया था, मैंने उसको साफ किया और फिर दोबारा से लॉक करके खड़ा कर दिया।
1: सही
2: तो मतलब उसको खाली नहलाते धुलाते हैं और फिर खड़ा कर देते हैं।
0: हाँ बस नहलाता धुलाता हूँ और उसको
1: ये मेरे साथ हो चुका है, मैं एक दफा गिरी बाइक से।
2: ऐसा क्यों, मतलब उसका इंजन रनिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, एक
0: इंजन में उसका रनिंग होता है, मैंने अपने भाई को बोल रखा है, वो कभी कभी इंजन उसका रनिंग स्टार्ट करके थोड़ी देर छोड़ देता है, फिर उसके बाद वो वैसी खड़ी हो जाती है।
1: ये मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी हुआ था, तो एक दफा गिरी थी और ऐसा गिरी थी बाइक से कि उसके बाद मैंने 6 महीने बाइक खड़ी रखी और उसके बाद मैंने सेल आउट कर दी, मैंने कहा नहीं भाई बाइक चलाने का ही नहीं मेरे को अब।
0: नहीं मेरे साथ थोड़ा ज्यादा हुआ था, चलो छोड़ो उस पर कभी हम बाद में बात करेंगे। बाकी मेरी पहली बाइक जो थी, मैंने पहले बाइक ही ली थी, तो आई थिंक मेरे पास कुछ हीरो होंडा की थी, सीडी डिलेक्स कुछ ऐसे ही करके नाम था, वो मैंने ली थी। और जो सबसे पहले मैंने बाइक चलानी सीखी थी मैंने सर्वर साहब
2: जी,
0: वो थी यसडी। आपने नाम सुना यसडी का?
2: बिल्कुल बिल्कुल सुना है भाई, सुना क्या है मतलब अगर ना चलाएं उस बाइक को तो फिर जवानी अधूरी।
0: बहुत पावरफुल जबरदस्त बाइक है, लेकिन अब बहुत कम मिलती है देखने में,
2: कम तो मेरे ख्याल में पिछले 15 साल से भी पहले की बात हो रही है। और

0: और काफी कम जभी होना शुरू हो गई थी, बल्कि 20 साल पहले भी कह सकते हैं, और
1: 20
0: साल पहले भी कह सकते हैं, और जभी से ही कम होना शुरू, जाहिर बात है क्योंकि पेट्रोल का कंजम्पशन इतना है उसके अंदर कि यूजुअली वो नहीं चलाई जा सकती। वो जभी तक सही थी जब पेट्रोल 15 रुपए लीटर था और इस्तेमाल किया जा सकता था, उसके आगे फिर पॉसिबल नहीं रहा।
1: जब पापा ने ली थी वो, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, 15 साल की एज थी मेरी, उसी से मैं बाइक चलाना सीखा, मेरे पैर भी नहीं आते
0: थे। होए बाइक चलानी भी सीखी तो अरे हैवी ड्राइवर लग रहे हैं भैया, हैवी ड्राइवर निकले तो आनी। जब आप ऐसी गाड़ी से चलाना सीखें तो फिर मसला ही अलग है भाई, फिर तो आप कुछ भी चला सकते हैं ऑब्वियसली।
1: फिर उस ऊपर से उसकी एक फीलिंग जो होती है ना, आज भी जो है ना वो मिस करता हूँ मैं उस चीज को, उसकी उसको चलाने का एक अलग ही ऑरा था।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, खूबसूरत यादें और खूबसूरत बाइक आपकी, और आज जो खड़ी हुई है वो भी खूबसूरत रहे, मगर यह है कि चलाते वलाते रहे उसको आराम से ही सही, क्योंकि खड़े खड़े तो फिर खराब ना हो जाए, मेरा तो नहीं कहना है। तो भाई फिलहाल के लिए कहाँ है अभी आप, कहाँ है शुएब भाई, कहाँ से गुजर रहे हैं? अच्छा, वहीं पे आपने बताया कि स्कूल के आसपास जो मसला था अभी के ट्रैफिक लग गया है, तो अभी कुछ ट्रैफिक बेहतर है हमसे बात करते करते?
1: नहीं, निकल गया आपसे बात करते करते निकल गया, उसके बाद मैंने गाड़ी भी अपनी पार्क की, आपसे बात की।
0: वेरी गुड। तो भाई अभी देखिए, इससे ये पता चला कि फिलहाल अलसद के अराउंड आप निकल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें तो। और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं शुएब भाई?
1: नहीं, आज के लिए इतना काफी है।
0: इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल आपसे मेरी तो दोपहर में मुलाकात होगी 1:30 बजे इंशाल्लाह नाजिया के साथ, और सफा से आपकी सुबह मुलाकात होगी 10 बजे महविश के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे शुएब भाई हमारे साथ। तो अब कर लेते हैं मैसेजेस का रुख और फिर कॉल की तरफ।
2: कितने मजे की चीज होती है ना सर भाई, अपनी अपनी चले। एक तो होता है ना अब्बा की कमाई से ली हुई बाइकें गाड़ियां, लेकिन एक और मुख्तलिफ फीलिंग होती है कि जब आप अपनी पैसों से खुद खरीदते हो, वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होती है।
0: वाह, जैसे कि बताया था अभी भाई ने, कहते गुड मॉर्निंग सर और भाई एंड सफा मैम।
2: गुड वाली मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग।
0: ओके, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, और एक पोस्टर भेजा है हमें, हम जरूर देख लेंगे। नाम आप लोग जरूर लिख दिया करें, मजहर खान है हमारे साथ, क्योंकि जो नाम हमारे पास सेव नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ईस्ट और वेस्ट। ओ सरूर भाई इज द बेस्ट, सफा तारीफ हो गई मेरी।
2: ये हम बचपन में कहते थे लोगों को खुश करने के लिए, और बताता था ये झूठ है,
0: और ऐसे ही खुश हो रहे होते थे जैसे आज मैं हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरो भाईजान एंड सुपर सफा बहन, यू बोथ विल बी मिस्ड इन सन एंड साउंड आर्स, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर एंटरटेनिंग अस, अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश और सलामत रखे, आमीन। मेरा भाई कैसा, मेरा भाई कैसा, क्या नाम है, तनसीम भाई पे पैसा ही पैसा भाई दे दिया मैंने, लुटा दिया आज जितना था।
2: ओके, चवनिया।
0: ये क्या कहने हैं, दिखा रहे हैं टेम्परेचर इतना है, कौन है हमारे साथ? अच्छा, इस नंबर पे भी कॉल आ रही, कॉल किस नंबर पे नहीं करनी हो, किस पे जरा
2: देखो भाई, 666-22-107 वाला जो नंबर है वो मैसेज का है, वो तुहाडी मेहरबानी प्रावा। 666-22-107 पे मैसेज करना है प्रावा, ये इतने कॉल नहीं करनी है।
0: सैयद बकाली है हमारे साथ, साद बकाली साहब, और बकाली बड़ा काफ को ज्यादा मैंने गाढ़ा कर दिया, और अपनी शादी की शेरवानी में खड़े हुए हैं। साद भाई, साद भाई कहाँ जा रहे हो, तैयार हो के एकदम, टेम्परेचर दिखा रहे कितना है।
2: ये या बेस्ट फ्रेंड की शादी हो सकती है या खुद की हो सकती है।
0: सरवर एंड सफा अस्सलाम वालेकुम, तौफीक अलवाकरा से वालेकुम अस्सलाम
2: रहमतुल्लाह। तौफीक भाई कैसे हैं?
0: अल्लाह आपको तौफीक दे के आप हमें कॉल भी करें कभी।
2: तौफीक भाई ना वो वाले, वो उन लिसनर्स में से जो एक अटेंडेंस लगवा देते हैं कि मैं हाजिर हूं, हां सुन,
0: और हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मेरी ड्यूटी पे हूं, काम पे हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग सफा जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड, दिल से देसी यूसुफ खान, हैप्पी मंडे मॉर्निंग सबको विश करते हुए यूसुफ भाई। क्या बात है भाई, बढ़ते हैं आगे। माई स्टिल विद मी बट नॉट इन यूज है क्या, बाइक की फोटो है। ओए होए होए होए होए, गुड मॉर्निंग सरवर भाई एंड सफा सिस्टर, अमजद निसार पाकिस्तान नाउ दम्माम सऊदी अरब, अल्लाह पाक आपको खुश और खुर्रम रखे। सबसे पहले तो सऊदी से जुड़ना है, और इतनी प्यारी फोटो भेजी है, माई फर्स्ट बाइक यामाहा 2005, दैट टाइम आई बाई, पैसे भी लिखे हैं, 25,000 की खरीदी थी और अभी तक है बाइक के पास।
2: अरे भाई
0: क्या,
2: ये एक बहुत इनक्रेडिबल वैल्यू होती है।
0: अरे भाई, जबी तो मैंने कहा कि इसके बारे में बात करना तो बनता ही है यार। दिल तोड़ दिया आप लोगों ने अपनी علیحدگی کا اظہار کر کے.

0: तो भाई देखे, जान छूट रही है, जान छूट रही सरवर भाई से।
1: सरवर भाई ये वेद भाई किधर हैं आजकल? भाई वेद भाई मूव्ड फॉर गुड, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ान में रखे और खुश रखे। उनको आप लक विश कर सकते हैं। इकराम भाई हमारे साथ, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, बोथ आर हीरो दिस शो, वी आर मिसिंग दिस शो, गॉड ब्लेस ऑन बोथ। इकराम भाई हमारे साथ, और कल उन्होंने आयशा की फोटो भी भेजी थी, वही वाले इकराम भाई जो स्कूल जा रही थी माशाल्लाह। ओके यस जी, दोबारा से रीजेविनेट होके आ गई है। ओ हो, अच्छा जरा फोटो वगैरह शेयर करें उसका यार, कहाँ है, कैसी है, कैसी लग रही है। गुड मॉर्निंग, वेरी मॉर्निंग अली भाई हमारे साथ हैं। हाँ सही वक्त पे मॉर्निंग का मैसेज पढ़ दिया भाई, मतलब बड़ी बात पढ़ती। प्लीज सेंड मी कॉल नंबर सना सफा।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो ऑफ एयर पता चलेगा आपका, थोड़ा जाते जाते भी आपने अपनी खैर ले ली है। 443-443-77 इज द नंबर और मेरा नाम सफा है। 443-443-77 गजनी का इफेक्ट हो रहा है आपको।
1: सारे सीन और स्वाद हैं हमारे पास।
0: सरवर भाई मैं सबसे अलग हूँ।
1: सारा क्या, सरवर क्या, सना क्या, और कौन है सीन स्वाद से हमारे पास, कौन है?
0: आपके जितने पेज ढीले हुए हैं ना सारे दुरुस्त करने पड़ेंगे, लेकिन वो ऑन एयर नहीं हो सकते।
1: ये भाई मैंने नंबर भेज दिया आपको, एक कौन थे हमारे साथ, बिलाल भाई थे। बिलाल भाई आपको नंबर मिल गया है, मुझे मालूम आप लोग की कॉल आ रही है मगर मैसेज भी निपटाना जरूरी है। सलाम सरवर भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और सफा भी अच्छी है। फैसल मलिक है हमारे साथ। ओए होए होए, ये तो यार मलिक वाला ही लुक दे दिया भाई।
0: भाई वो रईस भाई वाला लुक है।
1: ओ फैसल भाई ये तो बिल्कुल रईस वाले शाहरुख खान लग रहे हैं। वाकई अम्मी जान कहा करती थी कोई भी फोटो अच्छा बुरा नहीं होता, वैसे ये फोटो अच्छा है आपका। अच्छे लग रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप दोनों? कल आपने 3 या 4 सॉन्ग चला दिए थे दिलबर वाले, आज नहीं चलाना प्लीज। यार दिलबर अभी लो यार बात, मैं कॉल उठाता हूँ। सफा आप सलाम दुआ करें, मैं दिलबर का गाना निकालूंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम जी, तुहाडी मेहरबानी।
0: गाबा भाई कैसे हैं?
1: ओके
2: पंजाबी में बात करो जी, की हाल चाल तुहाडा?
0: मेरी जे की पंजाबी हैगी ना वो बहुत टुटल भगल हैगी। मेरी ऐसी वाली पंजाबी, इसको बोलकर मैं खुद हंस पड़ती हूँ, मुझे बहुत बहुत मुख्तसर सी पंजाबी आती है मुझे तो भाई।
2: सफा जी एक बात तो है, सरवर भाई पे मैं बाद में आता हूँ। देखिए आप जैसे भी है मुंह के बट बोले हैं, ये बात तो है सही है ना, ये चीज तो नेचुरल ही है
0: भाई। ऐसी ऐसी
2: मगर भाई आपका जो दिल है ना सफा जी,
0: हाय हाय हाय, सुनहरा दिल
2: एज ऑलवेज,
1: काला पड़ चुका है बेचारा।
0: अभी पॉलिश करवाने भेजती हूँ, टेंशन नहीं ले, गोल्ड प्राइसेस ऊपर होंगी, टेंशन नहीं ले सर। अभी हम इसको पॉलिश करवाएंगे। देखिए ऐसे सरवर भाई जैसे लोगों की नजर लग जाती ना, थोड़ा बहुत डस्टी
1: नहीं,
0: शस्टी
1: नहीं,
0: हो जाता
1: का
0: है।
1: दिल बड़ा भाई अच्छा साफ सब शफाफ है। अभी अभी उन्होंने निकाला था मुझे, हाँ। दिखाया फिर दोबारा खा गई, वो अपनी जगह लग गया है जाके, ऐसी बात नहीं है मगर अच्छा है। चलिए हाँ गाबा भाई,
2: इनको थोड़ा बताओ रामपुर के बारे में जहाँ से धार लगती है।
1: इनको तो जबान पे लगवा ले भेजना पड़ेगा।
0: मुझे बिल्कुल जहाज घूमता हुआ आया मेरे सर के ऊपर। सौरभ भाई बाद में पूछूंगी क्या मामला था, ये माजरा क्या है।
2: बिल्कुल बाद में पूछना।
1: बाद में पूछना। तो गावा भाई क्या कहते हैं पहली बाइक की कुछ याद ताजा करिए।
2: सरवर भाई क्या है, देखिए हाई स्कूल वगैरह में या जवानी के टाइम में तो हमें इतनी चीजें मसूल नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो घर की कंडीशन है वो ज्यादा इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे।
1: ओके ओके ओके ओके।
2: तो उस टाइम मेरे पिताजी ने ही ली थी जो स्कूटरी होती थी ना,
0: हाँ जी
2: लूना।
1: ओह
2: शायद पैंथर भी बोलते थे उस टाइम पे।
1: हाँ हाँ लूना, सही सही सही सही सही।
2: जी जी जी, तो वो ली थी उस टाइम पे पिताजी ने।
1: ओके,
0: वो जिसे हम वेस्पा कहते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, ये उससे भी पहले का मॉडल है, उससे भी पहले का मॉडल।
0: लेकिन गाबा भाई एक बात है, उस जमाने में वो भी लेना ना
1: भाई, आप कह रहे हैं कि हालात
0: हमारे लिए आज के जमाने में होगा होगा, लेकिन हमारे वालदैन के जमाने में ये मोटर बाइकें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज
1: यार। मैं आप लोग को याद दिलाऊं, लमरेटा अगर किसी को याद है। नाम भी पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं होगा मगर मुझे याद है कि ये भी हुआ करता था, और ये वो चेतक वेतक से पहले का टाइम है ये जो मैं बता रहा हूँ ना। देखिएगा आप लोग लिखिएगा भाई लमरेटा।
2: बिल्कुल मुझे तो पता है लमरेटा जी।
0: फोन हो गया किसी के घर में, फोन होना किसी घर में, टीवी होना किसी घर में, बाइक होना
1: मोटर बाइक
0: बहुत बहुत बड़ी बात होती थी भाई। मैंने खुद वो टाइम देखा है अपनी नानी दादी के दौर में, तो वो इट वाज समथिंग वेरी ह्यूज बिग। वो आज हम जमाने में

0: बोल देते हैं कि हाँ हमारे पास ना उस वक्त ऐसी वाली हाई क्वालिटी चीज नहीं थी, लेकिन वो उस जमाने की भी हाई क्वालिटी थी भाई।
1: सफा जी एक्चुअली चक्कर पता क्या है, जब ये चीजें बनी थी ना आज से 15-20 साल पहले, चले जाए अगर हम ये डिजिटलाइजेशन होने से पहले, तो ये हर किसी के यूज के लिए थी। तो बाद में जैसे जैसे समय बदला, जैसे मैं इस लूना की बात कर रहा हूँ, इसको बुजुर्ग ही ज्यादा चलाते थे।
0: सही सही सही, वो यूज टू थे ना चीज के लिए।
1: नॉर्मल फैमिली वाला बंदा जैसे एक्टिवा होगी उसको लेडीज प्रेफरेंस देती थी, तो हर किसी ने अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया इन चीजों।
0: सही सही, जैसे
1: 125 की बात कर रहे हो, मेरे को लगता है यामा की बात कर रहे थे ना आप
2: जी।
0: 125
2: मतलब वो उसके करीब ही समझिए वैसी
0: थोड़ी। 125
1: जी जी, जिसके सलंसर में आवाज आती थी।
0: हाँ, का, इसको उसको भी कहते हैं ना, उसको लोग अक्सर औकात कहते हैं बुलेट बाइक, हमारे पास कहते हैं बुलेट बाइक।
1: तो बाद में आई है बुलेट, तो मैडम डिफरेंट है, मगर उसकी आवाज भी अच्छी होती थी जिसकी आप बात कर रहे हो ना। 125 की
2: सही।
1: सर्वर भाई एक छोटा सा सवाल है मेरा।
2: ओके पूछिए
0: सर्वर भाई से।
1: आपने भी कार भी ड्राइव की है, टू व्हीलर भी चीजें ड्राइव की है आपने कभी सर्वर भाई?
2: मैंने
1: वो वाला मोटरसाइकिल ट्राई किया जिसको दूध वाले लेके आते हैं, जिसके आसपास में ड्रम लगे होते हैं।
2: यार ये यजदी तो होती थी मेरे ख्याल में, वो
1: होती थी यजदी, मगर उसको अगर मिलक के लिए यूज किया
2: मतलब जाता उसमें डोलचियां टंगी, आप ये कह रहे हैं उसमें डोलचियां टंगी हुई हैं और फिर मैंने चलाई हो।
1: हाँ,
2: काम सारे अंजाम दिए भाई, छोड़ा नहीं है ऐसे भी चलाई है। मैंने ट्रैक्टर चलाया है, मैंने जुगाड़ चलाया है, मैंने 407 चलाया है, और ये वो चीजें बता रहा हूँ मैं बाइक के अलावा, मतलब जो ख्वाहिश रहती है लड़कों को करने की, और मैंने खूब इसमें मजे किए और शिकार भी किया एक्चुअली उन हालात में। तो छोड़ा तो कुछ नहीं है।
1: अभी मत बोल देना सर्वर भाई, इंडिया में जाके मैंने शिकार किया।
2: नहीं, मेरा मतलब ये है कि जहरीली चीजों का।
1: सही सही सही सही सही।
2: नहीं तो बात भी तो हो रही है 1947 की यार, जब
0: तब तो कोई रूल रेगुलेशन ऐसा था नहीं।
2: तो क्या बात है भाई, बेहतरीन यादें। गावा भाई कहाँ है अभी इस वक्त?
1: इस वक्त हूँ मैं IND एरिया
2: है। यार मैंने कहा कोई इंडिया का कोई खास यहाँ पे कुछ ऐसा खुल गया जो हमें पता ही नहीं है।
0: मैंने कहा कोई सुपर मॉल है क्या है?
2: IND से मुझे ऐसा लगा। क्या बात है भाई, चलिए जबरदस्त। ट्रैफिक वगैरह के क्या हाल है वाले उस तरफ?
1: ट्रैफिक नॉर्मल ही है सर्वर भाई,
2: ट्रैफिक नॉर्मल
1: नहीं है ट्रैफिक।
2: वेरी गुड, चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया गावा भाई। और आज हम दोनों आपसे इजाजत लेते हैं क्योंकि कल आप हमसे अलग अलग बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं और नाजिया वापसी कर रहे हैं 1:30 बजे से प्रोग्राम में, जिसका नाम है एनर्जी आर, जो पहले भी रहा है, और सफा और
0: महविश
2: सुबह के औकात में आपके साथ होंगी 10 बजे से इंशाल्लाह ताला। तो
1: जरूर जुड़िए। सर्वर भाई आपका और सफा जी का साथ था, ये भी अच्छा रहा, ये भी कुल मिला के ठीक रहा भाई,
0: कुल मिला के ठीक रहा, बढ़िया। देखिए देखिए हमारा मामला ये था कि हम दोनों का एक मुद्दा था कि भाई एक दूसरे को जिंदा छोड़ना है स्टूडियो से बाहर निकलते हुए, तो हमने वो सर्वाइव कर लिया। सर्वर ना फटे किसी का, किसी का हाथ पाथ ना टूटा हो।
2: बहुत बहुत शुक्रिया गाबा भाई, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके ओके ओके एंड फॉर नाउ

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड, आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा।

0: जी वेलकम बैक, हेलन बस सहलन, खुश हमदीद, स्वागतम। और स्टूडियो की घड़ी में 11 बज के सही 12 मिनट और हुए 12:12। क्या बात है, क्या है घड़ी पे मारा। और यहाँ पर कुछ मैसेजेस, उसके बाद आपके लिए अपडेट और फिर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं। ओके कहते हैं हेलो सफा बहन। ओके आपको हेलो कहते हैं। सलमान भाई हैं हमारे साथ, क्या बात है भाई सलमान भाई की। सरवर आज आपके साथ मेरी बात होना लाजमी है, लेकिन सफा को साथ ना लाइए। हैं क्यों भाई ऐसा? बिलाल भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? रईस भाई हमारे साथ और फोटो भेजी, वाह ओ गुड यार। रईस भाई क्या आप हैं ये मेरे बराबर में? नहीं। ओके दिस इज खादिम भाई, और बराबर में कौन है मैं नहीं याद कर पा रहा हूं। और ये हम हैं गालबन इंडस्ट्रियल एरिया के बराबर में, वो जो टाउन है मैं नाम भूल गया हूँ यार उसका। बट ये तो यार बड़ी शानदार याद आपने मेरे साथ शेयर करी रईस भाई, जबरदस्त। ये जो मेरे बराबर में क्या आप ही नहीं, आप नहीं हो सकते, ये कुछ और नाम था इनका, मैं भूल गया हूँ, बताइएगा मुझे ज़रूर। ओके अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, क्या हाल हैं आपके? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और ये लिखते हैं नियाज अहद। ओके नियाज है हमारे साथ और सफ़ा को बता रहे हैं नाजिया, तो कल ये मैसेज ज़्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत आज के। ओके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, क्या हाल है? मैडम नूर जहां का गाना लगाएं, घुंघरू मंगा दे तेरा प्यार। एजाज अहमद, क्या बात है यार, क्या जबरदस्त इस वक्त निकाल के लेके आए गाना। हाय हाउ आर यू, व्हेन द रमजान क्विज प्राइस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ लॉन्ग टाइम कैन बी टेकन। हाँ मलिक है हमारे साथ, मलिक भाई इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एंड इंशाल्लाह ताला यू विल रिसीव इट सून। इतनी ही मालूमात है हमारे पास भी, और जैसे ही रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह आपको कॉल भी आ जाएगी। मिल्क के लिए यसडी नहीं राजदूत यूज होती थी, प्लीज यसडी की बेइज्जती मत करो। नहीं भाई, मैं कौन है हमारे साथ, मिस्टर जैदी। ओके जैदी भाई हमारे यहाँ जो हैं दोनों ही मेरे ख्याल में यूज़ हुआ करती थी जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि यसडी तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और माइट भी हाँ, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया, शायद ये बात 15 साल पहले की है और उस वक्त मैंने राजदूत ही चलाई होगी, जो कहने का मतलब ये डोलचियाँ साथ में टंगी हुई थी। सरवर भाई राजदूत बाइक में किक मारते हुए चोट खाई है पैर पर, नील है आज तक मेरे दोनों पैरों पे, क्योंकि इस तरफ से भी आकर किक लगाई जाती थी ना, मतलब जब नॉर्मली बैठ के किक नहीं लगती तो खड़े होके किक लगाई जाती थी, उसमें भी लग जाती थी स्लिप होके। और ये RX 100 के साथ बहुत होता था, और यूजुअली ये पुरानी गाड़ियों में ऑब्वियसली। सॉरी गाड़ियों के बारे में मैं कुछ पता नहीं है, मुझे ड्राइविंग टू व्हीलर करना अच्छा नहीं लगता, बहुत बोरिंग लगता है, आई है पता नहीं क्यों, गाड़ी चलाना बड़ा अजाब लगता है, अक्सर औकात मेरा कजिन चलाता है मेरी गाड़ी, मैं जस्ट पीछे बैठा रहता हूँ, इंडिया में छुट्टी पे होता हूँ तब। यूसुफ भाई
1: छुट्टी में होते हैं तो फिर छुट्टी में तो किसका दिल करता है भाई, हमें भी अभी कोई ये दे दे के नहीं नहीं मैं अपनी गाड़ी ना दूंगी, नहीं, मुझे याद आ गया एकदम से।
0: के जुड़ गए हमारे साथ, काशिफ फ्रॉम कश्मीर, और कहते हैं बाइक लवर्स यहाँ पर एक वीडियो भेजा है, हम जरूर देख लेते, कुछ हंसने हंसाने का ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोनों कैसे? मुझे पहली बाइक 10th के बाद मिली थी सर, रिजवान निसमीर।
1: अच्छा ये लड़कों का क्या चक्कर, 10th के बाद इनको बाइक मिल जाती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आप लोगों के लिए।
0: ख्वाहिश हुआ करती थी, कहते हैं मुंबई में रईस खान। आप इस वक्त बॉम्बे में हैं? आई मीन अमची मुंबई में हैं आप, और वहां से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रईस भाई ने कुछ हमारा एक फोटो भेजा है पुराना, मैं आपको दिखा दूं। और ये इसमें शहजादा सलीम साहब हैं, बराबर में कौन है, मैं इनका नाम नहीं याद, एहतराम भाई हैं या कौन है, और ये कुछ वहां पर चल रहा था उस दौरान, कोई मैच वगैरह गालबन मुझे ऐसा लगता, एशियन टाउन का ये फोटो राइट, अब याद आया मुझे, एंड उस टाइम पे मुलाकात हुई थी मेरी भाई लोगों से, तो ये जब का है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: इतनी मध्यम आवाज भाई, खाना खा लिया है कि अभी खाना है?
2: नहीं, मोबाइल थोड़ा दूर रखा था।
1: इतने प्यार से अगर आप इतने तहम्मुल से बात करेंगे तो फिर मजा ना आएगा ना, सरवर भाई और मेरी एनर्जी मैच ना होगी।
2: अच्छा
1: बेचारे,
0: अरे हैं कौन, अच्छा हैं कौन, नाम तो बताइए।
2: सादिक बात कर रहा हूँ जी।
0: अरे सच्चा भाई,
1: अच्छा सादिक भाई है तो फिर ऐसे ही होंगे,
0: फिर कोई मसला नहीं है। कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। कहाँ हैं अभी, कहाँ तशरीफ फरमा हैं?
2: फिलहाल मैं गाड़ी में हूँ।
0: नहीं तो
1: ये गाड़ी कहाँ है,
0: मेरा सवाल भी यही था, आपने सही बताया, मैंने तशरीफ फरमा ही पूछा था, कौन सी जगह पे अब ये बताइए।
2: फिलहाल मैं जगह यहाँ पे हूँ, अलखीसा में हूँ।
0: अलखीसा, ओ यार मुझे अलखीसा से मेरी कुछ यादें भी हैं एक्चुअली कनेक्टेड, तो इसलिए बड़े दिनों बाद सुना कोई अलखीसा में इस वक्त।
1: हम बड़ी दूर
2: के तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं,
1: चलते
0: कतर में, तो आप ही दोहा की तरफ हो रहे हैं ये कहिए।
2: नहीं नहीं नहीं, जामिया कतर के तरफ, मतलब
0: जामिया कतर की, ओके ओके माय बैड। चलिए साहब, अल्लाह ताला सफर भी आसान करे। तो क्या कहते हैं सादिक भाई, पहली गाड़ी याद है फटफटी?
2: जी जो पहली गाड़ी है जो अभी तक वही चला रहे हैं अभी।
0: अरे हो, तो मतलब करीबी खरीदी है या फिर इतने साल से उसको मेंटेन किया हुआ है?
2: मैं करीब ही पैदा हुआ, मतलब मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, 21 साल से।
0: हाय हाय हाय अल्लाह,
1: मैं कहाँ भी बड़ा हूँ, मैं तो सिर्फ 19 साल का हूँ।
0: तो कितना बताया, 21 22 में
1: पहले
0: तो
1: यार 22 बोल रहे हैं,
0: तो मेरे से कितना मतलब 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 होती है यार, 5 साल बड़े हैं आप मुझसे, कम ऑन, कैसी बातें कर रहे हैं यार।
1: मैं तो पैदा ही नहीं हुई अभी तक
0: सादिक भाई, 5 ईयर सीनियर, 5 साल यार, आप छोटे नहीं है, ऐसा मत सोचिए।
1: अगर सोचे मैं सरवर भाई से 10 साल छोटी हूँ तो मैं तो अभी लिस्ट में आई नहीं।
0: तौबा करिए सफा अल्लाह से, ये सफेद बाल अपने देखिए, और उसके बाद
1: बाल तो उसी सफेद होते हैं, इस बारे में कहा जाता है कि अम्मा अब्बा से बहुत प्यार करते हैं।
0: अच्छा तो,
2: ये बात,
0: तो अब सच्ची बात बता देता हूँ, ये सफेद थोड़ी है तो लाल है, अब इसका मतलब क्या होता है कि अम्मा अब्बा का लाल है?
1: ये अम्मा अब्बा की लाल है।
0: चलिए साहब, सादिक साहब बहुत ही बढ़िया और बड़ा मजा आया आपसे बात करके, क्या कहते हैं गेम खेलेंगे?
2: जी जी बिल्कुल।
0: चलिए साहब ठीक है, तो
1: आज मुझे बताएं कि आज कौन सा नंबर थोपा जा रहा है सादिक भाई के ऊपर। सादिक भाई मतलब आपने कभी जल्दी में बात करने की कोशिश की है?
2: जल्दी में?

0: हाँ जी, हाँ 3 मिनट का टाइम दिया है ना किसी ने?
1: 3 मिनट का
2: वो आज खादिम भाई की बात ऐसी हुई
1: सबने सुनी है,
2: सबने सुन ली,
1: इंटरनेशनल न्यूज बन गई खादिम भाई की।
2: चलिए साहब, सादिक साहब, आज हम 300 की दौड़ में हैं और आपने बहुत ही आसान सा 346 से लेके 336 जाना है।
0: 46 से 36
2: जी।
0: अच्छा जी,
1: ठीक है, 46 होता है 46 है ना?
2: बहुत आसान है, बहुत आसान है, रेडी है?
1: 46 कितना होता है सर भाई, जरा बताना मुझे।
2: या 46 टू 36।
1: हाँ, मेरी उर्दू अच्छी होती जा रही है।
2: रेडी है?
0: एक मिनट, मैं थोड़ा पार्किंग करता हूँ।
2: अरे यार, 22 साल की उम्र में भी ये बात समझ नहीं पा रहे?
0: नहीं, ऐसा ना कैमरा वगैरह होते हैं ना, मोबाइल अगर हाथ में पकड़े तो।
2: अरे कैमरा क्या होता है भाई, ये सही नहीं है, हमसे बात ही नहीं करनी है आपको अगर आप ड्राइव कर रहे हैं।
1: हमने इनसे बात नहीं की।
0: अरे जी, आप लोग से बात करने के लिए गाड़ी पार्किंग कर लेंगे तो क्या?
2: हाँ, वही वही वही सादिक भाई, वो असल में सच्चे है ना, तो मसला यही है कि आप गाड़ी पहले पार्क करें और हम होल्ड पे हैं, आप पहले पार्क कर लीजिए।
0: जी जी, हो गई पार्किंग।
2: अच्छा, हो गई इतनी जल्दी?
0: जी जी।
2: चलिए ठीक है, तो आज के आंदा इंशाल्लाह ताला गाड़ी पार्क करिए, या फिर अगर ब्लूटूथ हेडसेट है तो ही हमारे साथ, मतलब तो फिर तो ही नहीं, मतलब तो हमारे साथ कनेक्ट जरूर होगी,
1: सेफ्टी होती है ना,
2: बट इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है? ध्यान बहक जाता है ना, असल में मेरी बातें ऐसी हैं कि जहन जो है वो
1: बातें इतनी अच्छी है, इंसान महसूर हो जाता है।
2: तारीफ कर रहा, सच्चे आदमी से बात कर रहा हूँ ना। तो चलिए सादिक भाई, रेडी?
0: कहाँ से बोले थे? 346 से है ना?
2: 346 से लेके 336।
1: इतना सन्नाटा क्यों हो गया?
2: ठीक है, रेडी?
1: प्रेशर बरकरार।
2: आपका टाइम शुरू होता है अब।
0: 346, 345, 344, 343, 342, दोबारा रिपीट करें, रिपीट।
2: अरे रिपीट में तो
0: स्पीड थोड़ी कम हो गई थी, स्पीड कम हो गई थी मेरी।
2: अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं कि दोबारा से पीटो, मारो मुझे, मारो, रिपीट कहा ना आपने तो। अच्छा, हम दोबारा से कर लेते हैं। ओके, आपको दोबारा पहले कॉलर है इसलिए चलिए कर लेते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
0: 346, 345, 344, 343, 342, 341, 342, 349, 338, 336.
2: 37 गिर गया, जमीन पे उठा लीजिए,
1: आपका
2: 37 गिर गया भैया। कितने चांस दूं अब सच्चे भाई,
1: सौतेलो वाला सुलूक हो गया 37 के साथ कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते
2: सच्चे भाई।
0: जी जी,
2: मुझे लग रहा है कोई हिसाब बाकी है किसी पे जो आपको याद आ रहा है, बार बार बोलना भी नहीं चाह रहे कि देना पड़ जाएंगे। सादिक भाई,
0: मिक्स कर दिया था।
2: नहीं, मिक्स तो अच्छा है,
1: बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है ना मिक्सिंग की, उसकी तारीफ ही नहीं।
2: मिक्स बहुत अच्छा है, मगर आप एक दो खा भी गए, सुबह नाश्ता किया था,
1: दोपहर का टाइम हो गया ना, भूख लगी होगी।
0: नहीं नहीं, पूरा बोला ना, पूरा बोला, कहाँ खाया?
1: अच्छा, वो जो 27 था, वो जो नीचे जमीन पे गिरा, सॉरी 37 नीचे जमीन पे गिरा पड़ा है, ऊंधा पट्टा हुआ वहाँ,
2: इंग्लिश में वो भी मिस कर गए।
0: 37 गिर गया,
2: ये क्या हो गया भैया?
1: ये तो 50-50 का वो सीन याद आ गया, हमारा ड्रामा चलता था कि वो जरा बंदा अपने 10 बच्चे गिन रहा होता है और जो ना नाम भूल जाता है बच्चों के बीच में, तो वो नाम भूल गया, 27 वाले का नाम भूल, 37 वाले का नाम भूल गए।
2: चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला फिर खेलिएगा और जरूर आप चैंपियन बनेंगे एक दिन, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है।
0: मतलब कितना रिकॉर्ड कितना था पिछले हफ्ते?
2: इसमें हमेशा का रिकॉर्ड 6 सेकंड का रहा है एक्चुअली, आज तक जब से मैंने शुरू किया है ये खेलना।
0: अच्छा
2: ठीक है, तैयारी करके
0: आइए। रिकॉर्ड तोड़ता है वो विनर वगैरह भी होता है फिर?
2: हाँ हाँ, और क्या, आप अगर तो इंशाल्लाह जल्दी से तैयारी करके आइए, जिस दिन आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे उस दिन इंशाल्लाह ताला आप मुझे लेके चलेंगे ट्रीट पे।
1: मैं भी बोलने वाली थी, सरवर भाई को बारबेक्यू पसंद है।
2: दोनों चलेंगे इंशाल्लाह ताला, यही इसका इनाम है
1: अगले हफ्ते।
2: ठीक है,
1: आप
0: रिकॉर्ड टूटेगा तभी तो।
1: हाँ, नहीं नहीं, रिकॉर्ड बाद में टूटेगा, हम पहले चलेंगे।
2: नहीं, आप पहले वादा कर लीजिए, मैं रिकॉर्ड भी तोड़वा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ये तो मेरे हाथ में। ठीक है, चलिए सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।
1: भाई रिकॉर्ड तो टूटते ही रहते हैं दुनिया में, पहले तो दावा दिखा ले हम।
2: तो चलिए एक चैंपियन को लेते हैं क्योंकि अभी तक कोई चैंपियन बना ही नहीं है एक्चुअली। हेलो सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: अरे भाई ना, अरे भाई ना, अरे भाई,
2: अरे भाई, अरे भाई,
1: अरे भाई, ये टैलेंट कहाँ से आया है? मतलब ये टैलेंट कहाँ से आया है कि खुद ही सलाम करना, खुद ही जवाब देना?
0: ये टैलेंट आया किधर से आया होगा, आप लोग से ही सीखा है।
1: कौन से किनारे पे जाकर सर लगा था, कौन से बलून पे सर मारा था आपने अपना?
0: बलून तो याद नहीं है पर सीखा तो आप लोग से, टीचर आप ही लोग है ना।
1: सरवर भाई
2: टीचर आप लोग हैं,
1: आप आप आपके सिखाए हुए लग रहे हैं ये।
2: नहीं उन्होंने
0: फीमेल हेडमास्टर और आप क्लास का क्लास के हेड टीचर।
1: बहुत ही बुरी क्लास टीचर बनाई आपने।
2: ओह माय गॉड। अरे भाई कैसे हैं, खैरियत से?
1: बेटा सेक्शन चेंज करने का टाइम आ गया है
2: अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो रेडी हैं गेम खेलने के लिए? हाँ अब हम दोनों अलग हो रहे हैं।
1: देखिए इससे ज्यादा ना आवाम हमें झेल नहीं सकती थी, सबको पता था इससे ज्यादा लोग बर्दाश्त ना कर पाएंगे, ये खुद ना बर्दाश्त कर पाएंगे।
2: चलिए तो रेडी
0: रेडी।
2: ओके देन स्टेडी। आपने जाना है 378 से 368 378 to 368।
0: ओके
2: क्लियर है, रेडी है?
0: रेडी हूँ।
2: चलिए ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब।
0: 378
1: खिचड़ी खाई थी क्या सुबह को?
0: अभी नाश्ता किया, अभी जस्ट नाश्ता करके फोन किया,
1: तभी ये हाल है कि सब कुछ उगला उगला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है हाजमे हुआ क्यों हो गए
2: यार। एक तो आपकी आवाज ऐसी आ रही है जैसे आप इस वक्त चांद पे ट्रेवल कर रहे हैं।
1: नहीं, हेलो, आई एम अंडर द वाटर।
2: आवाज भी क्लियर नहीं है आपकी, और क्लियर नहीं थी यार गिनती। अरे भाई सॉरी, फिर से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है? बट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? मैं आप दोबारा से,
0: ठीक है? ठीक है
2: ओके। तो चलिए शुरू हो जाइए, आपका टाइम शुरू होता है अब।
0: 7 seconds।
1: अरे भाई इतने
2: 7 seconds
1: इतनी मेहनत की माशाल्लाह। एक दो सेकंड और छोटा कर लेते, छोटा कर लेते, एक दो और सेकंड।
2: अच्छा खेले, अच्छा खेले, वेरी नाइस। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे।
1: नेक्स्ट टाइम अंडर द वाटर जाकर नहीं खेलेंगे। देखा मैंने कहा ना ये अंडर द वाटर है। क्या कहा जाए खेलेंगे, कहाँ अमेज़न के जंगलों में?
0: आसमानों में,
2: आसमानों में। ओहो
1: भाई सर्वर भाई
2: परवाज कर,
1: सर्वर भाई को उठाने के लिए ना।
2: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो भाई थे आरिफ भाई हमारे साथ, और क्या कहती हैं सफा, एक ब्रेक ले लिया जाए?
1: जी हाँ, एक ब्रेक लाजमी है क्योंकि मेरी जो ना बस नाक की बस हो गई है।
2: एक लाजमी है, एक एक और, एक और चैंपियन, क्योंकि दोनों लाइन पे इस वक्त लोग कोशिश कर रहे हैं।
1: मैंने आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी?
2: शक्ल बता, आवाज रही भाई की सुन रही हो तुम सुबह से आज?
1: यहाँ पे मिलता नहीं, दस्तियाब नहीं है कतर में, कौवे नहीं होते, तो वो तो आपने खाया नहीं होगा सुबह सुबह।
2: भाई यार जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको ऐसी हमेशा खुश रखे।
1: क्या इम्पोर्ट कराया था क्या माल?
0: मैंने वो जो तस्वीर भेजी है वो शहजादा सलीम साहब ने भेजा था, तो मैंने आपको रिव्यू कर दिया। मैंने अपना जो भेजा वो 5 साल पहले का मुंबई का मैंने तस्वीर डाला था कि वो मैं मुंबई में गया था उस टाइम घूमने के लिए।
2: ओके ओके ओके ओके ओके।
0: वो तस्वीर का जो मामला मैं वाला क्लियर कर देता हूँ आपको।
2: क्या बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी याद हमारे साथ शेयर करी।
0: अच्छा, और आप थोड़ा सा मतलब चलो गेम का भी थोड़ा हो जाए।
2: वही वही वही वही
1: रईस भाई ना डेजा वू की तरह वापस आए। अगला कहे अरे पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे रईस भाई से बात हुई थी।
2: तो आप 388 से
0: समझ में आया था कि कुछ की को क्या बड़बड़ा रहे हैं।
2: हाँ बिल्कुल हमें आया ना, अब आगे और समझेंगे। 388 से 378 जाना है।
0: 388 से
2: आईवा
0: ओके चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करें।
2: हाँ बिल्कुल, आपका टाइम शुरू होता है अब।
0: 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 379, 378।
2: हाँ सही है, पहुंच गए। यही रोक लिए, यही रोक लिए, सीधे हाथ वाला मकान है, यही रुक जाइए।
0: नहीं जल्दी जल्दी, असल में ना ये क्या है ना, उर्दू की जो गिनती होती है ना वो जल्दी जल्दी जबान से थोड़ा सा आप वो एक्सपीरियंस जैसे पहले गिनती करवाते थे ना स्कूल में।
2: हाँ बिल्कुल। नहीं मगर अच्छा अच्छा किया आपने यार, 11 सेकंड में कर लिया रईस भाई।
1: नॉट बैड,
2: नॉट बैड एट ऑल।
0: और कर लिए ना कुछ ना कुछ, हम तो आते हैं आपसे थोड़ा गप सप करने के लिए, बाकी ये जीतना हारना ये तो यार कोई मसले नहीं है यार, हम आप लोग के फैन हैं।
1: दिल बड़ा होना चाहिए बस,
0: बस बिल्कुल। ये क्या हारना जीतना,
2: बिल्कुल
0: अरे हार जाएंगे तो चलेंगे बार भी खिला देंगे हमारे
1: सरवर भाई।
2: अच्छा रईस भाई आवाज नहीं आ रही, हेलो आवाज कटने लगी।
0: आप पक्के हो? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो आगे चलो आगे चलो चलो ठीक है
2: ओके। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। Alright then, चलिए साहब अब हुआ ब्रेक का टाइम, ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं तो बिल्कुल आपके साथ गेम भी खेलेंगे और मैसेजेस भी आपके हम जरूर लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, छोटा सा ब्रेक, यूं गए और यूं वापस आए। सुनते रहिए FM 107,
1: दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी।
2: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी, ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: इंटरनेशनल डे टुडे,
5: और वो क्या है साहब, आज खासम खास दिन है, वर्ल्ड डिस्टेंस लर्निंग डे। ओ हो हो, और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, हवाले से, ये एक खास आसानी जो अब दुनिया में बढ़ती चली जा रही है और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो आज वर्ल्ड डिस्टेंस लर्निंग डे है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि तालीमी सफ़र जो है ये सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं रहता। आज इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बदौलत लोग घर बैठ के कोर्सेज कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख रहे हैं और वहीं अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं बहुत ही आसानी से। सो डिस्टेंस लर्निंग ने स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को और उन लोगों के लिए भी तालीम के दरवाजे खोल दिए हैं जो किसी ना किसी वजह से रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते या कुछ और उनकी मजबूरियां होती हैं।
6: लॉन्ग डिस्टेंस को भी कम कर दिया है।
5: बिल्कुल सही। तो ये दिन ऑनलाइन तालीम के फायदे, उनकी सहूलियात और जिंदगी भर सीखने के जज्बे को सेलिब्रेट करने का दिन है। सफा, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ लर्निंग से किया?
6: हाँ, मैंने, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक है तो मैंने HR की जो डिप्लोमा है वो वहाँ से ऑनलाइन डिस्टेंस से किया हुआ है। और इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने जो है वो पढ़ा हुआ है डिस्टेंस लर्निंग पर। अच्छा, वर्ल्ड डिस्टेंस डे जो है ना, वो हमें ये भी याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, जो हम लोग पूरा दिन अंगूठा घुमाते रहते हैं ना फोन के पास, के लिए नहीं होती, बल्कि एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव बनाने का बहुत पावरफुल टूल होता है। इंक्लूसिव का मतलब समझ रहे हैं ना?
5: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
6: बहुत सारे मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो नहीं अटेंड कर पाते मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, कुछ सेहत की वजह से, कुछ बजट की वजह से, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की वजह से। तो ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आज के डिजिटल जमाने में कि क्लासरूम की बाउंड्री सिर्फ एक बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है, अब एक स्टूडेंट अपने घर से ही दुनिया की किसी भी कोने पर कोई भी चीज सीख सकता है।
5: क्या बात है भाई। तो इंशाल्लाह ताला जिनको भी शौक है वो इस चीज का फायदा भी उठाएं और जरूर आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। आजकल तो हर जगह सहूलत और सहूलियात आसानी से हैं। तो यहाँ पर कोई हमारे साथ

0: porque nada bas aisa hai ki sapo khila.
1: सरवर भाई ये बात बिल्कुल सही कही है मुदस्सर भाई आपने, आपने
2: बिल्कुल वाली बात, मोहब्बत वाली बात है। तो मुदस्सर भाई रेडी गेम खेलने के लिए?
0: रेडी
2: हैं। तो चलिए साहब, तीन सौ
0: मैं पहले से बोलता हूँ, 360 से लेकर 390 तक ये नहीं देना है।
2: 360
1: से लेकर 390 तक,
0: क्योंकि ये लिखोगे ना मैं ये नहीं पढ़ सकता हूँ, ऐसे कैसे पढ़ूंगा फिर।
2: अच्छा चलिए, तो फिर आप 346 से 336 चलिए, अब ठीक है?
0: 346 से 336 सही है,
2: ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप
1: ये वो वाला बच्चा है क्लास का जो टीचरों कहता है मेरी मर्जी से मुझे टेस्ट देना वरना ना देना वरना मैं नहीं आता,
2: ये खुद लिख के आते हैं कॉपी पे जो लिखना होता है। चलिए साहब, तो आप रेडी हैं मुदस्सर भाई?
0: जी, 346 336
2: 346 से 336 की 346 to 336 आपका टाइम शुरू होता है अब।
0: 346, 345, 344, 343, 342, 341, 342, 349, 338, 339, 340.
2: Very good, very good. और 7 सेकंड में किया मुदस्सर भाई ने, not bad at all.
1: Good.
0: 7
2: सेकंड में हो गया, 7 सेकंड आ गए भाई, आप जबरदस्त खेले यार,
1: नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड,
2: जबरदस्त। दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है,
1: लेकिन आज का आखिरी दिन था,
2: आज का नहीं, इंशाल्लाह आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, गेम तो चलते रहेंगे।
0: आपने बोला कि सफा में 10 बजे आएंगे, आप किस टाइम आएंगे?
2: मैं आऊंगा 1:30 बजे इंशाल्लाह ताला।
0: अच्छा 1:30 बजे, और के साथ महवेश खान है?
2: मेरे साथ नाजिया आमिर है।
0: अच्छा अच्छा, सफा के साथ महवेश है?
2: सफा के साथ महवेश है जी।
0: अच्छा ठीक है, महवेश खान की आवाज बहुत टाइम के बाद सुनेंगे, क्योंकि हमारा मेरा जो पहला आज था वो महवेश था।
2: अच्छा अच्छा, तो आपकी सुबह इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी जरूर, और जब आप सुबह नाश्ता वगैरह उनके साथ कर लें तो दोपहर के खाने पे फिर 1:30 बजे हमारे साथ तशरीफ लाइएगा,
1: और जो कुछ हो वो जेब में डालकर ले आइएगा, हम भी खाएंगे।
0: मैं एक बात बोलूंगा सफा मैम को,
1: जी जी,
0: वो सफा मैम को एक रखे थे तुम क्या था ना, उसको बोला था कि आपका गाड़ी कैसे पास हो गया ना, ये जो सफा मैम ने जो बात बोली थी ना कि मैं मेंटेनेंस का काम नहीं छोड़ता हूँ ना,
1: जी जी,
0: तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पास पहले बड़ी गाड़ी था तो उसमें मेंटेनेंस का काम ज्यादा होता था, तो हम गाड़ी पहली बार नहीं पास करवाते थे, जब छोटी गाड़ी होता था तो मेंटेनेंस का काम, ये तो जितना मेंटेनेंस का काम करोगे फहस में पहले आपकी गाड़ी पास हो जाती
1: है। हाँ एग्जैक्टली, और फहस का मकसद भी यही होता है ना कि आपकी गाड़ी रोड पे निकलने के लायक है भी कि नहीं है।
0: जैसे आपने बोला कि मैंने पीछे का लाइट जो पहले से बनाया था, मुझे पता था कि इसकी वजह से मेरा गाड़ी फेल हो जाती है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप फहस से पहले मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाओ।
1: बिल्कुल, मेरा मानना ये भाई, देखिए जिन लोगों को गाड़ियों का शौक होता है ना, सिर्फ वो ये बात समझ सकते हैं कि गाड़ी आपसे बात करती है।
0: बिल्कुल पता चलता है,
1: जो शख्स स्टेयरिंग व्हील पे बैठता है और उसको गाड़ी की आवाज ना आए कि गाड़ी किस चीज पे मेंटेनेंस मांग रही है, तो उसको गाड़ी से मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ गाड़ी चला रहा है।
0: चलो ठीक है,
1: चले
2: भाई, चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
1: सर भाई आप क्या कहते हैं,
2: मजे मजे के मैसेजेस आ गए हैं, पहले वो कहूंगा सफा, और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर्वर मैम एंड सफा सर।
1: सर्वर भाई मैं, मेरी जो ना
2: मारो मुझे मारो,
1: मैं बस आज मेरी तबीयत वैसे ही खराब चल रही है,
2: ये अरबाज है जो ये हरकत करके गए हैं, अभी हमें छेड़ के गए। अच्छा भाई देखो, इतनी मतलब यार हद हो गई है, तो यार मैसेज लिखा और मिटा दिया,
1: इसे कहते हैं मौत को छू के से वापस।
2: ये मोहम्मद भाई मिस कॉल मार के चले गए मैं मैसेज में। हाँ।
1: अच्छा ये मैंने मैंने मैंने अक्सर लोगों से सुना कि अगर आपके कोई मैसेज जवाब ना दे रहा हो ना, तो ये ट्रिक आजमाओ, अगले को आप जो है ना वो हम कहते हैं ना माचिस की तीली, वो वाला हिसाब है कि अगला फिर पलट के पूछेगा तो ऐसा क्या था जो डिलीट कर दिया,
2: दिल तोड़ दिया आप लोगों ने अपने अलग होने का बता के, कहते हैं रोहेल, और यहाँ पर वॉइस नोट भी भेजा है हमें, तो
1: आप टेंशन ना लें सर भाई, हमारे सर पे ही मुसल्लत रहते हैं
2: भाई। ये भाई पहली बार बोला,
1: कौन बोला, क्या बोला, किसने क्या बोला,
2: इजाज भाई कुछ कह रहे हैं। अच्छा पता नहीं यार, कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद एनी आओ आगे बढ़ जाते हैं। 82 बोला नहीं, 80 तो बोला नहीं, मतलब अच्छा किसी ने 80 मिस कर दिया, तो शायद हमने पकड़ ही लिया होगा। सर एक गाना प्लीज, काली काली जुल्फें,
1: हाय हाय हाय हाय मेरी तो रेड है

0: रियाज अहमद के सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड सफर जी, कैसे हैं आप? बहुत टाइम के बाद आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। होप सरवर भाई मुझे ना भूले हों। आप लोग सोशल मीडिया पे नजर नहीं आते। सफर जी का तो जब अकाउंट आईसीयू पहुंच जाता है तब एक पोस्ट करती है। मैं बोलता हूँ इसको अगर याद हो।
1: हाँ हाँ हाँ, ये मुझे मैसेज भी करते हैं, कहते मुझे पोस्ट के पढ़ा, कहते आईसीयू से बाहर निकलने का टाइम आ गया है।
0: क्या बात है रियाज भाई, कौन से मॉल में पहुंच गए, क्या कह रहे। नहीं, हम इंशाल्लाह ताला आप मैसेज वगैरह अगर कुछ भेजते हैं तो जरूर आपको उसका जवाब मिलेगा और हम सोशल मीडिया में आप लोगों के लिए
1: पर्सनल सोशल मीडिया का पेज के बारे में बोल रहे हैं।
0: हाँ ओके, उसमें भी आप हमें ढूंढ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
1: नहीं, वो मेरा वही तो बता रहे, जब मेरा सोशल मीडिया का जो अकाउंट है ना वो बिल्कुल आईसीयू पहुंच जाता है ना तब मेरा एक पोस्ट आता है।
0: नहीं, हम बिल्कुल आपको याद करते हैं और आप हमें याद हैं। और क्या आप अभी खतर में नहीं है, ऐसी बात है। मैम एंड सरवर भाई, आई एम बिलोंग टू पाकिस्तान सिटी फैसलाबाद। मैम नो
1: के वो सिटी
0: जो टू के शहर है, जुगनू लिखना चाहते होंगे। मैंने बहुत टाइम ड्यूरिंग आपके प्रोग्राम में आपको 3 से 5 टाइम
1: कॉल किया है।
0: यार ये क्या लिखे हुए हैं, ये क्या लिखते हैं 3 से 5 टाइम?
1: रुके, शहर में मैंने आपको ड्यूरिंग आपके प्रोग्राम में 3 से 5 टाइम
0: कुछ और मत पढ़ देना, सुबह तुमसे मुझे उम्मीद भी है।
1: अच्छा, जो मैंने जुगते मारी है।
0: अच्छा तो
1: ओके,
0: ये क्या मार रहे हैं?
1: ये पंजाबी में बोल रहे हैं, जुगते मारी है। जुगते मतलब जूते नहीं। अच्छा। जुगते हम कहते हैं जोक्स को।
0: ओ,
1: स्लैंग, रैंडम जोक्स होते हैं।
0: हो, बात बुरी लगी हो तो इसके लिए आई एम सॉरी। ओ इकराम भाई, क्यों कह रहे हैं ऐसा यार? क्या हुआ
1: भाई, क्या मेरे सर के ऊपर से जहाज घूम गया? हाँ, था समझ में ना आया।
0: आपने जोक किया तो फिर वो जोक ही होगा, जैसे कि हम
1: नहीं पंजाबियों का होता है ना, हम लोग पंजाबियों कहते हैं। देखें फैसलाबाद की बता रहे हैं, फैसलाबाद की तो पंजाब में ना बड़े रैंडम जोक्स आप कह लें, स्लैंग रैंडम जोक्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एयर आप बिल्कुल अच्छे गए। ऐसा
0: अच्छा कह रहे हैं, मुझे तो खुशी है आप दोनों अलग हो रहे हैं,
1: है ना? मुझे भी है
0: मोहम्मद भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं।
1: नहीं वही तो मैं कह रही ना, मुझे भी है।
0: अच्छा
1: लास्ट
0: प्रोग्राम बहुत अच्छा, ये माजरत कर रहे हैं हमसे कि कुछ कहा सुना भूल चूक लेनी देनी। तो इकराम भाई बहुत मोहब्बत आपकी भाई, थैंक यू सो मच। यहाँ पर इतने सारे जीन्स, कहाँ से पढ़ूं यार मैं ये वाले मैसेज, कहाँ से शुरू करूं? ये मोबाइल भी तो बदल गया, सफा लेना जरा क्या कह रहे हैं, देखना।
1: मैं चलो भाई, कहां से मैसेजेस
0: लास्ट कॉलम ले लेते हैं। हेलो सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हुसैन भाई
2: जी मैं हुसैन भी बात कर रहा हूँ। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, अभी जो आप लोग मैसेज पढ़ रहे हैं जिनका है।
1: जी जी।
2: और आप सफा अभी को बोले जा रहे हैं कि
1: ये क्या वर्ड है, ये कुछ ना पढ़ लेना।
2: मुझे पता है, मतलब सर्वर भाई आपको पूरा यकीन है यार?
0: मुझे पूरा यकीन है भाई,
1: मेरे भाई सर्वर भाई ने मेरा वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखा हुआ है जो दूसरों ने नहीं देखा, जो और मेरा नहीं देखा गया। वो दिखा नहीं सकते।
2: सफा भी वही बच्चा है भाई, तुम ये काम मत करो, रहने दो।
1: मैं जो ना वो वाला बच्चा हूँ जिसको अम्मा अब्बा ना बाहर लेकर जाने से डरते हैं, क्योंकि उसको पता है, उनको पता होता है कि ये बच्चा ऐसा तो कोई रैंडमली कुछ बोल देगा ना कि हमें लोगों से मुंह छुपाना पड़ेगा।
2: आप पे मुझे 100% यकीन है, आपके बच्चे से ज्यादा आप सीरियस हो, क्योंकि मैंने आपकी रील्स भी देखी है।
1: मेरे भाई हमारे मेरे बच्चे तो मुझे छुपाते फिरते हैं अलमारियों में और दरवाजों के पीछे।
2: मेहमान आ रहे हैं, मम्मी को छुपा दो।
1: मेरी बेटी तो ये पोस्ट डालती है कि जो है ना, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू पेरेंटिंग माय मदर।
0: यार आप लोगों ने ऐसी बात करी है कि अब मैं और सफा सेल्फी भी लेने जा रहे हैं।
1: वाह सर, देखो ये बैठे बैठे सेल्फियां ले रहे हैं यहाँ पर,
0: और वो भी आप लोगों के साथ साथ। तो चलिए भैया बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वक्त हो रहा है, तो जल्दी से
1: गेम खेल लेते हैं। गेम
0: गेम कर देते।
1: अच्छा, एक मैसेज गेम के साथ साथ पढ़ लेते हैं। फैसल भाई ने भेजा है कि सरवर भाई जुगतों का मतलब होता है ट्रॉलिंग अदर।
0: हाँ यार फैसल भाई,
1: स्लैंग जोक्स होते
0: हैं। माय बैड, मुझे नहीं पता था, मगर आज के अंदर नहीं भूलूंगा मैं। तो हुसैन भाई रेडी?
2: बिल्कुल।
0: 333 से 323 जाएंगे वापस, ठीक है?
2: 333 से 323।
0: हाँ
1: उन्होंने कहा था काले बालों वाला गाना लगा था, आप काले चश्मे पहन के बैठ गए सरवर भाई।
0: कौन है? अच्छा यहाँ पे चलिए सर, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 333 ओके
2: चले
0: नाउ
2: 333, 332, 330, 330, 329, 327, 329, 330, 325, 326, 330.
0: क्या बात है यार, थोड़ा सा टाइम लग गया मगर करा अच्छा, 8 सेकंड हो गए पूरे.
1: नॉट बैड.
2: चले कोई नहीं.
0: अच्छा खेले भाई, और बड़ी अच्छी आपकी बातें भी, अपना ख्याल रखिए. इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी दोपहर के 1:30 बजे. भूलिएगा मत अपना. ओके बाय, अल्लाह हाफिज. तो यहाँ पर क्या कहती हैं सफा, अभी है हमारे पास इतना टाइम कि हम
1: एक और कॉल ले लें,
0: चैंपियन को कनेक्ट कर दें.
1: हाँ सर भाई, मैसेज आया आपके लिए. सर एक अच्छी सी सेल्फी तो सेंड कर दीजिए, लास्ट वाली, क्योंकि कॉल फिर पता नहीं चलेगा.
0: किस किस को चाहिए सेल्फी, किस किस को जल्दी, अभी अभी
1: सुन पाएंगे आपको या नहीं कल
0: बताइए. जिस जिसको सेल्फी चाहिए अभी भेजता हूँ मैं. हेलो सलाम वालेकुम.
1: और जिस जिसको यकीन नहीं आता ना कि मैं जैकेट पहन के बैठती
0: हूँ. हाला कौन है हमारे साथ?
3: आपका भाई मुदस्सर.
1: मुदस्सर भाई फिर आ गए क्या? ये दूसरे वाले
0: मुदस्सर
1: भाई?
0: नहीं, ये मुदस्सर भाई टू द पावर टू.
1: 2.0.
0: ये हमारे पड़ोसी वाले मुदस्सर भाई ना?
3: जी सर भाई, पड़ोसी.
0: आज तो आवाज
2: बड़ी. मैंने तो कॉल कट नहीं करी.
1: ये तो दो कनेक्ट हो गए, ये दोनों कनेक्ट. ये सरवर भाई के हाथ में फोन बस
0: यार.
3: दूसरा पड़ोसी कौन है?
0: ये हुसैन भाई है हमारे साथ, अभी तक गए नहीं. अरे हुसैन भाई, अल्लाह हाफिज. दूसरा घर देखो यार, कहीं और को चाय नाश्ता ना आपको.
1: ये वो वाले मेहमान है जो दरवाजे पे खड़े होके अल्लाह हाफिज ही बोलते रहते हैं.
2: नहीं, मैं तो ऐसा मेहमान हूँ कि मैं एक बार आ गया मैं तो नहीं जाऊंगा. मैं सीधा.
1: अरे भाई, दूसरा बंदा कॉल पर है. दूसरा बंदा
2: अल्लाह हाफिज.
0: ओके देन, सो नाउ मुदस्सर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं?
3: ठीक ठाक, अल्लाह का करम है.
0: तबीयत वगैरह, सेहत वगैरह आपकी अच्छी है?
3: अल्लाह का करम है. बस उस दिन आपको मैंने बोला था वो दांत का थोड़ा इशू था, दर्द था.
0: अल्हम्दुलिल्लाह. यस यार, मैं पूछना भूल गया. आई एम सॉरी. कैसी है अभी तबीयत, दांत कैसा है? जो मैंने इलाज बताए थे आपने किए.
1: आप गाना गा के सुना रहे हैं. नहीं, तू लॉन्ग ने मैं लाची.
0: मैंने कुछ इलाज बताए थे इनको.
3: बिल्कुल, आपने जो ये क्रेज नुस्खा बताया था वो मैंने लिया है. अभी भी मेरे पास है वो.
0: वाह,
3: जो
0: हकीम सरवर मिर्ज़ा
3: ऑयल थे.
1: डॉक्टर
0: हकीम सरवर
1: मिर्ज़ा.
3: आपसे पहले भी कुछ लोगों ने बोला था इस ऑयल का, ये लौंग का जो ऑयल है, लेकिन आपने जब बोला तो यकीन हो गया कि चलो सरवर भाई ने बोला था लाजमी ला लेना.
1: बाकी लोगों ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद की 8-8 साल पढ़कर.
3: नहीं,
1: टेक्नोलॉजी फेल हो गई.
3: मेरी बात सुनो. नहीं, ऐसी बात नहीं है. जब हम FM 107 सुनते हैं ना, तो इसलिए सुनते हैं कि यहाँ से सच्ची खबर निकलती है. लोग यकीन करते हैं बातों पर.
1: वाकई में लौंग का जो तेल होता है वो वाकई में क्योंकि उसकी अंदर एक खासियत होती है कि थोड़ी देर के लिए दांत का उदार होता है ना, वो सुन कर देता है.
0: अब आप मेरी बात सुनिए, मैं सफा से कह रहा हूँ ये बात. आप कल लौंग के तेल में ऑमलेट बनाइए, खा के देखिएगा कैसा लगा, फिर मुझे
1: बताइए. सफा से कह रहे हैं.
3: वो
0: भी खा के देख सकते हैं. तो चलिए साहब,
3: इंशाल्लाह
0: टाइम हुआ पूरा, जल्दी से खेलते हैं गेम. और मुदस्सर भाई ने जाना है बहुत ही आसान गिनती में, 392 से 382.
3: ओके, जब स्टार्ट मैंने करना है आप बोले बस मैं स्टार्ट करता हूँ.
0: ओके देन, मैं कर लेता हूँ घड़ी सेट. आप रेडी हैं?
3: जी सर भाई,
0: जरा एक फोटो खींच लूँ उसके बाद बात करता हूँ.
3: बाद में करते हैं.
0: ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब.
3: ओके, 392, 393, 398, 388, 389, 386, 386, 385, 384, 382.
0: हाय हाय हाय हाय यार, 6 सेकंड में खत्म कर रहे थे, 2 सेकंड हो गए ज्यादा. वो बीच में जो आप रुक गए ना,
3: फोटो मांगते ना, फोटो के बीच में वो 2 सेकंड रह गए, मतलब इधर उधर हो गए.
0: چلیے صاحب زبردست اور بڑا اچھا آپ کا ہمیشہ کا ساتھ اور ہمیشہ کے پڑوسی آپ, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. کل انشاءاللہ 1:30 بجے ملاقات ہوگی آپ.
3: جی جی جی آپ لوگ اچھے اس لیے ہم اچھی باتیں کرتے ہیں, اچھی باتیں سنتے ہیں. آپ لوگوں کی مطلب تربیت ہے, آپ لوگوں کی مطلب وہ سبق ہے, ہم لوگ سیکھتے ہیں. آپ دونوں کو بہت شکریہ. چلو مزید ٹائم نہیں لیتا, اللہ
0: بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے, کل 1:30 بجے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے.
3: انشاءاللہ اگر زندگی رہی اللہ
0: انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ. All right then, okay, صفا تو کیا کہتی ہیں, اجازت لے لی جائے. کچھ میرے خیال میں میسیجز ہوں گے,
1: سیلفیز کے میسیجز آ رہے ہیں. اپنی سیلفیاں بھیجیں, سیلفیاں ہم آخری شو میں اپنی سیلفیاں بھیج رہے ہیں بھائی, دیکھ لو پھر نہ کہنا.
0: اوکے سو آپ کو سیلفی بھی مل جائے گی اور تھوڑی سی دیر میں. فی الحال یہ کرنا ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہمارے ساتھ آپ نے دوبارہ جڑ جانا ہے کیونکہ میری اور نازیہ کی آپ سے ملاقات ہوگی 1:30 بجے.
1: 1:30 سے 10 بجے ہوگی,
0: 1:30 سے 2:30 ہمارا ساتھ رہے گا اور مہوش اور صفا 10 سے 11 آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اسی خوشی کے ساتھ, اسی پلان کے ساتھ کہ ہنسیں بولیں سیکھیں سکھائیں ایک دوسرے کو
1: اور خوش رہیں بھائی, خوش رہیں نہ سفر کو ہمیشہ
0: خوشی کے ساتھ,
1: جو ہے نا نہ ٹینشن لینے کا نہ ٹینشن دینے کا بھائی. اپنا تو سمپل
0: لینے کا نہیں دینے کا نہیں. کچھ میسجز آخری چلتے چلتے ہم اگر
1: سب سیلفی مانگ رہے ہیں, آپ نے سیلفی کا شوشہ چھوڑا تھا.
0: اوکے تو صفا کو میں کام پہ لگاتا ہوں,
1: بیٹھی ہوں سیلفی کی.
0: ایکسٹرا پیسے دیے میں نے صفا کو اس کام کے لیے تو آج چلیے ان کی بھی وصولی ہو جائے گی. تو فی الحال آپ لوگوں سے لے لیتے ہیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنوں کا خیال رکھیے, غصے پہ قابو پانے کی کوشش ہم سب نے کرنی ہے, میں بھی کر رہا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ قابو پا لیا تو پھر وارے اور نیارے ہی نیارے. تو اس کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں, آپ کے لیے خاصم خاص گانا ہے بھائی, رہنے لگے تم دل میں. اسٹیبن اینڈ ایشوریا پنڈت. تو دس از سرور اینڈ صفا سائننگ آف. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, سنتے اور دیکھتے رہیے FM 107
1: دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Women in Sports, RJ Safa के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम और बहुत सा प्यारा सा वेलकम हमारे तमाम लिसनर्स के लिए जो हमें कतर और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सुन रहे हैं. आप ट्यून्ड इन हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन एफएम 107 पर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा. साथियों, अगर देखा जाए तो जिंदगी भी एक रेस की तरह होती है. कभी हम तेज दौड़ते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन असली कामयाबी उस इंसान की होती है जो फिनिश लाइन तक पहुंचने का हौसला नहीं छोड़ता. और आज की हमारी कहानी एक ऐसी एथलीट की है जिसने सिर्फ ट्रैक पर दौड़ नहीं लगाई बल्कि अपनी मेहनत, अपने हौसले और अपनी आवाज से एक ऐसा रास्ता बनाया जहां से आने वाली जनरेशंस भी गुजर सकें. साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी विमेन एथलीट की जिनका नाम एथलेटिक्स की हिस्ट्री में हमेशा चमकता हुआ रहेगा. एक ऐसी रनर जो हवा से मुकाबला करती नजर आती थी भाई. एक ऐसी चैंपियन जिनके लिए ट्रैक सिर्फ एक जगह नहीं था कोई मामूली सी, बल्कि एक कैनवस था जहां वो अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और पैशन की तस्वीर बनाती थी. आज की हमारी स्पॉटलाइट है एलिसन फेलिक्स. साथियों, जब हम स्प्रिंटिंग की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमें सिर्फ स्पीड नजर आती है. हमें वो चंद सेकंड नजर आते हैं जब एथलीट फिनिश लाइन क्रॉस करता है और स्कोर बोर्ड पर उसका नाम चमकता हुआ नजर आता है. लेकिन भाई, हर मेडल के पीछे ना एक लंबी चौड़ी कहानी होती है. एक ऐसी कहानी जिसमें सुबह के अंधेरों में की गई प्रैक्टिस होती है, थकान के बावजूद की गई मेहनत होती है और वो जज्बा होता है जो कहता है कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ. और एलिसन फेलिक्स की कहानी भी इसी जज्बे की कहानी है. वो सिर्फ एक एथलीट नहीं थी, वो एक एग्जाम्पल थी कि किस तरह टैलेंट को डिसिप्लिन से पॉलिश किया जा सकता है और किस तरह एक इंसान अपनी सक्सेस को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर फ्यूचर बनाने में इस्तेमाल कर सकता है. साथियों, एलिसन फेलिक्स का नाम एथलेटिक्स की दुनिया में एक्सीलेंस, कंसिस्टेंसी और ग्रेस के साथ लिया जाता है. उन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिकॉर्ड बनाए और दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में अपना नाम शामिल किया. लेकिन उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू सिर्फ उनके मेडल्स नहीं है. उनकी कहानी का असल हुसन ये है कि उन्होंने हर स्टेज पर एक नया चैलेंज एक्सेप्ट किया. एक यंग एथलीट के तौर पर चैलेंज था अपनी पहचान बनाना. एक वर्ल्ड क्लास रनर के तौर पर चैलेंज था दुनिया के बेस्ट एथलीट्स का मुकाबला करना. और एक मदर यानी कि एक माँ बनने के बाद चैलेंज ये था कि ये साबित करना कि मदरहुड और एथलेटिक एक्सीलेंस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है. साथियों, एलिसन फेलिक्स की जर्नी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी एक एथलीट सिर्फ रेस नहीं जीतता, वो सोच बदल देता है. कुछ लोग मेडल्स जीतते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं, कुछ लोग ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि उनके बाद आने वाले लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाता है. भाई, एलिसन फेलिक्स उन्हीं लोगों में से एक है. उनका सफर कैलिफोर्निया के एक सिंपल घर से शुरू हुआ और फिर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम तक पहुंचा. बचपन में उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वो ओलंपिक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगी. लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह उनकी कहानी भी एक छोटे से कदम से शुरू हुई. एक छोटी सी लड़की, एक रनिंग ट्रैक, एक बड़ा सा ड्रीम और फिर सालों की मेहनत. साथियों, एथलेटिक्स में स्प्रिंट रेस अक्सर कुछ सेकंड की होती है, लेकिन उन चंद सेकंड्स के पीछे 22 सालों की तैयारी होती है. ये बिल्कुल एक आइस माउंटेन की तरह होता है. दुनिया को सिर्फ ऊपर का छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा होता है, एक आइसबर्ग की तरह, लेकिन असल मेहनत का बड़ा हिस्सा नीचे छुपा हुआ होता है. एलिसन फेलिक्स के मेडल्स भी इसी छुपी हुई मेहनत की कहानी सुनाते हैं. उन्होंने अपने करियर में स्पीड के साथ साथ इंटेलिजेंस भी दिखाई. स्प्रिंटिंग सिर्फ तेज भागने का नाम नहीं होता, इसमें टाइमिंग,

रिदम, बॉडी कंट्रोल और मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, एक एथलीट को ये पता होना चाहिए कि कब अपनी एनर्जी बचानी है और कब अपनी पूरी ताकत फिनिश लाइन के लिए इस्तेमाल कर देनी है। एलिसन फेलिक्स इस आर्ट में माहिर थी, इसी वजह से उनका करियर इतना लंबा और सक्सेसफुल रहा। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन साथियों, आज का एपिसोड सिर्फ एक चैंपियन रनर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने स्पोर्ट्स के जरिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया कि वीमेन एथलीट सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा नहीं होती, नो, वो लीडर्स भी होती हैं, वो चेंज मेकर्स भी होती हैं और वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंस्पायरेशन भी होती हैं। देखिए, कतर जैसे मुल्क में जहाँ स्पोर्ट्स की बहुत इम्पोर्टेंस है और उसको आजकल और इम्पोर्टेंस दी भी जा रही है और जहाँ विमेन्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हैं, एलिसन फेलिक्स जैसी एथलीट्स की कहानियाँ यंग गर्ल्स के लिए बहुत मीनिंगफुल हैं। आज कतर में एथलेटिक्स, फुटबॉल, स्विमिंग और दूसरे तीसरे स्पोर्ट्स में यंग लड़कियाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंटरनेशनल लेवल के एथलीट उन्हें ये दिखाते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, नो, बल्कि एक करियर है, एक पैशन है, एक प्लेटफॉर्म भी बन सकता है भाई ये। अच्छा, एलिसन फेलिक्स की जर्नी ये भी मैसेज देती है कि अगर आप अपने टैलेंट को डिसिप्लिन के साथ जोड़ देते हैं ना, तो कोई भी ड्रीम बहुत दूर नहीं होता। साथियों, मुझे इसी पर एक बहुत ही खूबसूरत बात याद आती है कि ट्रैक पर हर एथलीट अपने पैरों से दौड़ता है, लेकिन चैंपियंस अपने यकीन से दौड़ते हैं और एलिसन फेलिक्स ने अपने यकीन के साथ एक ऐसी रेस लगाई जो सिर्फ स्टेडियम तक महदूद नहीं रही। आज भी हम उनके बचपन से लेकर ओलंपिक ग्लोरी तक का सफर उनका तय करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह एक शाई सी बच्ची दुनिया की सबसे डेकोरेटेड फीमेल ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में शामिल हुई। हम बात करेंगे उनके रिकॉर्ड्स, उनके चैलेंजेस, उनके मदरहुड जर्नी और उस फ्लाइट के बारे में जिसने विमेन एथलीट के लिए एक नई डिस्कशन शुरू कर दी। तो हमारे लिसनर्स, आज का सवाल आपके लिए ये है कि आपके नजदीक एक चैंपियन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? उसका स्पीड, उसका टैलेंट, उसका डिसिप्लिन या फिर मुश्किल वक्त में भी खड़े रहने की हिम्मत? अपनी राय हमें जरूर पहुंचाइएगा। चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर और चाहे तो हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar। कहीं मत जाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं एलिसन फेलिक्स की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जहां हर दौर में सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि हिम्मत, सेक्रीफाइस और डिटर्मिनेशन भी नजर आएगा। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM107। तो भाई साथियों, अब वक्त आ गया है हमारे आज के खास सेगमेंट का जो कि है स्टोरी ऑफ द वीक का, जहां हम सिर्फ एक एथलीट की अचीवमेंट्स नहीं देखते बल्कि उस सफर को भी समझते हैं जो किसी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। क्योंकि हर चैंपियन के पीछे एक कहानी होती है साथियों, एक ऐसी कहानी जो अक्सर मेडल सेरेमनी के शोर में कहीं पीछे रह जाती है। वो कहानी होती है सुबह से उन लम्हों की जब दुनिया सो रही होती है और एथलीट ट्रेनिंग ग्राउंड पर अपने ख्वाबों को मजबूत कर रहे होते हैं। वो कहानी होती है उन चैलेंजेस की जो कैमरा के सामने नजर नहीं आते और वो कहानी होती है उस यकीन की जो एक इंसान को बार बार कोशिश करने की हिम्मत देते हैं। एलिसन फेलिक्स की कहानी भी ऐसी ही है साथियों, एक ऐसी लड़की जिसने शुरू में सिर्फ रनिंग को एक पैशन के तौर पर देखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पैशन एक मिशन बन गया, एक ऐसा मिशन जिसने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स तक पहुंचाया और एथलेटिक्स हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा के लिए लिख दिया। लेकिन साथियों, ग्रेट एथलीट्स सिर्फ इसलिए ग्रेट नहीं होते कि वो कितनी तेज दौड़ते हैं, वो इसलिए भी ग्रेट बनते हैं क्योंकि वो मुश्किल रास्ते पर भी रुकते नहीं हैं। और एलिसन फेलिक्स के बारे में क्या ही कहा जाए, उनका सफर भी एक सीधी लाइन नहीं था कभी, इसमें चैलेंजेस थे, प्रेशर था, एक्सपेक्टेशंस थी और ऐसे मोमेंट्स भी थे जब उन्हें सिर्फ रेस नहीं बल्कि अपने हक के लिए भी खड़ा होना पड़ा। आज हम चलेंगे उस सफर पर जहां एक कैलिफोर्निया की यंग एथलीट ने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की सबसे सक्सेसफुल स्प्रिंटर्स में से अपनी एक अलग ही जगह बना ली। हम जानेंगे किस तरह उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस ने उनका कैरेक्टर बनाया, किस तरह उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, किस तरह उन्होंने ओलंपिक स्टेज पर हिस्ट्री क्रिएट की और किस तरह उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया बल्कि दूसरी विमेन एथलीट्स के लिए भी किया। तो भाई आज हम बात करेंगे एलिसन फेलिक्स के बारे में, द चैंपियन
बियॉन्ड द फिनिश लाइन। तो साथियों, एलिसन मिशेल फेलिक्स एक ऐसी एथलीट जिसके लिए रनिंग सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं था बल्कि एक जरिया था अपने आप को डिस्कवर करने का, अपने लिमिट्स को चैलेंज करने का और दुनिया को ये दिखाने का कि डिटर्मिनेशन के सामने कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। उनकी पैदाइश 18 नवंबर 1985 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। उनका बचपन कैलिफोर्निया के सेंटा करेटा विलेज के इलाके में गुजरा। उनका घराना स्पोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं था साथियों, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने हमेशा उन्हें अपनी पसंद और टैलेंट को एक्सप्लोर करने का मौका दिया था। उनके वालिद पॉल फेलिक्स एक पास्टर और प्रोफेसर थे जबकि उनकी वालिदा एक स्कूल टीचर थी। दोनों ने अपनी बेटी को सिर्फ एथलीट बनाने के लिए नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड और डिसिप्लिन इंसान बनाने के लिए तरबियत दी। अच्छा, एलिसन का बचपन एक इंटरेस्टिंग मिक्स था। वो नेचुरली बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थी लेकिन शुरू में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये एनर्जी एक दिन ओलंपिक मेडल में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, स्कूल के दिनों में ना अक्सर औकात एलिसन को अक्सर उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से अंडर एस्टिमेट किया जाता था। वो पतली सी ही, दुबली पतली सी जो बच्चियां होती हैं वैसी थी और उनके क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाया करते थे, चिकन लेग्स उनको कहते थे। लेकिन भाई, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो होती है जिसे दूसरे लोग वीकनेस समझ रहे होते हैं। चिकन लेग्स तो बोल दिया लेकिन ये समझना भूल गए कि चिकन कितनी तेजी से दौड़ती है। तो भाई फिर बिल्कुल एक छोटे से बीज की तरह जो जमीन के नीचे होता है और लोग उसे देख नहीं पाते ना, लेकिन वक्त आने पर वही बीज एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है। एलिसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो रनिंग ट्रैक पर उतरी तो लोगों ने जल्दी ही ये महसूस कर लिया कि ये दुबली पतली सी लड़की दिखने वाली भाई अंदर से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड और डिटर्मिनेशन छुपाए हुए बैठी है। हाई स्कूल में उन्होंने एथलेटिक्स शुरू की और बहुत जल्दी अपने टैलेंट से सबको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। उन्होंने लॉस एंजलिस बैप्टिस्ट हाई स्कूल के लिए कम्पीट किया और स्कूल लेवल पर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि वो भाई नेशनल अटेंशन हासिल कर गई। अच्छा, फिर आया दौर 2003 का। 2003 में उन्होंने हाई स्कूल के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया जब उन्होंने 200 मीटर्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अच्छा, इस साल उन्हें यूएसए ट्रैक एंड फील्ड की तरफ से बहुत इज्जत मिली और वो एक प्रॉमिसिंग यंग एथलीट के तौर पर सामने आई। साथियों, हर सक्सेसफुल एथलीट की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट होता है और एलिसन के लिए वो मोमेंट था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने टैलेंट को प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाएंगी। भाई देखिए, हाई स्कूल के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यानी यूएससी में एडमिशन लिया, लेकिन उनका उनका जो फोकस था ना वो सिर्फ एकेडमिक्स तक महदूद नहीं रहा, वो अपनी रनिंग भी कंटिन्यू करती रही और आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल स्टेज के लिए तैयार होने लगी। अच्छा, मजे की बात ये कि सिर्फ 18 साल की उम्र में एलिसन ने अपना ओलंपिक डेब्यू किया 2004 एथेंस ओलंपिक गेम्स में। जरा सोचिए, एक यंग एथलीट जो अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में है और अचानक दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि ओलंपिक्स के स्टेज पर आकर खड़ी हो जाती है। ओलंपिक सिर्फ कंपटीशन नहीं होता साथी, ये ध्यान में रखिएगा। ये बात हम सबको पता है कि ओलंपिक सिर्फ कंपटीशन नहीं होता, ये वो जगह होती है जहां दुनिया के बेहतरीन एथलीट एक दूसरे के सामने आते हैं, जहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और जहां एक छोटी सी गलती भी मेडल और डिसअपॉइंटमेंट के दरमियान का फर्क क्रिएट कर देती है। एलिसन ने एथेंस ओलंपिक्स में 200 मीटर्स इवेंट में कम्पीट किया और सिल्वर मेडल जीत कर दुनिया को बता दिया कि ये सिर्फ एक टैलेंटेड यंग रनर नहीं है बल्कि भाई ये है सुपरस्टार, फ्यूचर की सुपरस्टार। ये उनके ओलंपिक जर्नी का पहला कदम था।

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: लेकिन एलिसन फेलिक्स की खास बात ये थी कि वो कभी भी एक अचीवमेंट पर नहीं रुकती थी ना, उनका माइंडसेट हमेशा इम्प्रूवमेंट का था। अगर एक रेस में कामयाबी मिलती तो वो अगले चैलेंज के लिए तैयार हो जाती थी। ये क्वालिटी चैंपियंस को अलग बनाती है। साथियों, स्प्रिंटिंग को अक्सर लोग सिर्फ स्पीड का गेम समझते हैं, लेकिन असल में स्प्रिंटिंग एक साइंस है। देखिए, हर मूवमेंट का अपना ना एक टाइमिंग होता है, हर स्टेप का अपना पर्पस होता है। एथलीट को अपनी बॉडी और माइंड के दरमियान का जो परफेक्शन कनेक्शन होता है ना, वो बनाए रखना होता है। एलिसन फेलिक्स इस कनेक्शन की एक बेहतरीन मिसाल थी। उनकी रनिंग स्टाइल बहुत ग्रेसफुल थी। वो ट्रैक पर सिर्फ तेज नहीं भागती थी, बल्कि कंट्रोल और रिदम के साथ मूव करती थी। इसी वजह से फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, उनको बहुत पसंद करते थे। अच्छा, फिर आया दौर 2005 का। 2005 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल जीता, और फिर 2007 में ओसाका जापान में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने 200 मीटर गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, ये उनके करियर का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अब दुनिया उन्हें सिर्फ एक प्रॉमिसिंग एथलीट नहीं समझ रही थी, अब वो वर्ल्ड चैंपियन थी। लेकिन एलिसन का सफर अभी बहुत लंबा था, उनका असली इम्पैक्ट अभी बाकी था। फिर आई बारी 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। उन्होंने फिर से अपनी एबिलिटी प्रूव की। उन्होंने 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीता और 4x400 मीटर्स रिले टीम के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, रिले इवेंट्स एलिसन के करियर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बने, क्योंकि रिले सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का गेम नहीं होता, इसमें टीम वर्क, ट्रस्ट और टाइमिंग सब कुछ होता है। अच्छा, एक रिले टीम बिल्कुल एक आप कह लें कि कैसा समझाया जाए, ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है। लिटरली हर मेंबर का अपना एक रोल होता है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी अपनी टाइमिंग मिस कर दे तो पूरी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। एलिसन फेलिक्स रिले इवेंट्स में इसी टीम वर्क और कंसिस्टेंसी की वजह से बहुत सक्सेसफुल रही। अच्छा भाई, वक्त गुजरता गया, फिर टाइम आया 2012 लंदन ओलंपिक्स। उनके करियर का एक और हिस्टोरिक चैप्टर बना। लंदन में उन्होंने 200 मीटर्स में गोल्ड मेडल जीता और 4x100 मीटर्स रिले में भी गोल्ड मेडल हासिल किए। देखिए भाई, सीधी सी बात है, ये बात तो हम सबको पता है कि एक ही ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल्स जीतना कोई आम अचीवमेंट नहीं होती। ये वो मोमेंट था जब एलिसन ने ये साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेस्ट स्प्रिंटर्स में से एक हैं। लेकिन साथियों, लेकिन चैंपियंस की पहचान सिर्फ उनके बेस्ट मोमेंट से नहीं होती। असल टेस्ट तब होता है जब जिंदगी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस सामने रखती है, और एलिसन फेलिक्स की जिंदगी में भी ऐसा वक्त आया। यानी कि 2018 में उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ जब वो माँ बनी। प्रेगनेंसी और मदरहुड का सफर हर औरत के लिए यूनिक होता है, और प्रोफेशनल एथलीट के लिए इसमें अपने करियर के हवाले से बहुत से सवालात होते हैं। एलिसन ने मदरहुड को अपनी वीकनेस नहीं बनाया, उन्होंने इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाया। 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में, जो कोविड-19 की वजह से डिले हुए थे, एलिसन फेलिक्स ने एक और हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की। उन्होंने ओलंपिक मेडल जीत कर अपना नाम ओलंपिक एथलेटिक हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल फीमेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में शामिल कर लिया। भाई, हमें ना उनका सफर ये दिखाता है कि करियर के डिफरेंट फेजेस के बावजूद एक्सीलेंस हासिल की जा सकती है। लेकिन एलिसन की लेगेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा उनका एक्टिविज्म भी है। मदरहुड के बाद उन्होंने फीमेल एथलीट्स के लिए स्पॉन्सरशिप पॉलिसीज और मैटरनिटी प्रोटेक्शन के हवाले से अपनी आवाज उठाई। उनका मानना यह था भाई कि विमेन एथलीट जो होती हैं, उनको अपने करियर और फैमिली के दरमियान इम्पॉसिबल चॉइसेस नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव चेंज के लिए यूज किया, और यही चीज उन्हें सिर्फ एक चैंपियन रनर नहीं बल्कि एक लीडर बनाती है। साथियों, एलिसन फेलिक्स की कहानी हमें ये बताती है कि कुछ लोग फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिनिश लाइन के बाद दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। एलिसन ने दोनों काम किए, उन्होंने रेसेस जीती उन्होंने एक लेगेसी बनाई, एक ऐसी लेगेसी जो सिर्फ रिकॉर्ड या बुक्स में नहीं होती बल्कि उन तमाम यंग गर्ल्स के दिलों में है जो आज किसी ट्रैक पर खड़ी हैं और अपने ख्वाबों का पीछा कर रही हैं। साथियों, एलिसन उन एथलीट्स में से थी जिन एथलीट्स के बारे में कहा जा सकता है कि एथलीट्स का असर सिर्फ स्कोरबोर्ड्स पर खत्म नहीं होता, कुछ एथलीट्स का असर लोगों की सोच बदल कर रख देता है। उनकी कहानी हमें ये समझाती है कि एक एथलीट के पैर सिर्फ ट्रैक पर दौड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन उनका यकीन और उनकी हिम्मत कई लोगों के लिए रास्ता बनाती है। एक यंग गर्ल जब पहली बार किसी ग्राउंड कोर्ट या ट्रैक पर कदम रखती है ना, तो शायद उसे अंदाजा ही नहीं होता कि वो

एक्सपीरियंस उसकी पर्सनालिटी को कितना बदल सकता है। देखिए, स्पोर्ट्स सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाता, स्पोर्ट्स सोच को स्ट्रांग बनाता है। और एलिसन फेलिक्स की जर्नी इस बात की एक बहुत खूबसूरत और उमदा मिसाल है। सबसे पहली चीज जो स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स को देती है वो ये है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सबके सामने बोल सकें और अपनी तारीफ करवा सकें। असल कॉन्फिडेंस होता है जब आप मुश्किल सिचुएशन में भी खुद पर भरोसा रखें। जब एक एथलीट स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी होती है ना, तो उसके सामने सिर्फ ओपोनेंट्स नहीं होते, उसके सामने प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं और अपनी खुद के डाउट्स भी होते हैं। उसी मोमेंट में जो एथलीट अपने आप पर यकीन रखता है वो मेंटली स्ट्रांग होता है। एलिसन फेलिक्स की जिंदगी में भी ऐसे कई मोमेंट्स आए जब उन्होंने खुद को प्रूव करना था। हर कॉम्पिटिशन एक नया चैलेंज था, हर रेस एक नया टेस्ट था, लेकिन उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया सबको। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, कॉन्फिडेंस हर ट्रेनिंग सेशन से बनता है, हर छोटी इम्प्रूवमेंट से बढ़ता है, हर उस वक्त से बनता है कॉन्फिडेंस जब आप मुश्किल के बावजूद कोशिश कर रहे होते हैं। यही वजह होती है कि स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स के लिए इतनी पावरफुल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। जब एक लड़की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है ना, तो वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही होती, वो अपने अंदर लीडरशिप डिसीजंस या आप कह लें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी क्वालिटीज डेवलप कर रही होती है। साथ ही स्पोर्ट्स का दूसरा बड़ा लेसन है डिसिप्लिन। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, मैं मानती हूँ कुछ लोग बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वो क्वालिटी होती है जो टैलेंट को अचीवमेंट में बदल देती है। अगर आप नेचुरली गिफ्टेड हैं और आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, यकीन जाने आपका टैलेंट किसी काम का नहीं रहता। एक एथलीट के लिए सक्सेस सिर्फ कॉम्पिटिशन वाले दिन डिसाइड नहीं होती साथियों, असल सक्सेस उन हजारों घंटों में तैयार होती है जो वो प्रैक्टिस ग्राउंड पर गुजारते हैं। सुबह जल्दी उठना, ट्रैक के लिए तैयार होना, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, अपनी वीकनेसेस पर काम करना, ये वो चीजें हैं जो चैंपियंस को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। एलिसन फेलिक्स का करियर इसी डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करता है। उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें इतनी लंबे अरसे तक दुनिया का टॉप लेवल मेंटेन करने दिया। स्पोर्ट्स हमें ये समझाता है कि कामयाबी एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। अक्सर हम रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं देखते, मेडल देखते हैं, लेकिन उस मेडल के पीछे की मेहनत तो हमें दिखाई देती। बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह का खूबसूरत स्ट्रक्चर सबको नजर आ रहा होता है, लेकिन मजबूत बुनियाद जमीन के नीचे होती है साथियों। एथलीट की बुनियाद भी डिसिप्लिन होता है साथियों। एंड फेलिक्स की लेगेसी का एक, मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा पब्लिक विजिबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन है। जब विमेन एथलीट दुनिया के बड़े स्टेजेस पर परफॉर्म करती है ना, तो वो सिर्फ अपनी कॉम्पिटिशन नहीं दिखा रही होती, वो एक मैसेज दे रही होती है। वो मैसेज होता है, ये जगह आपके लिए भी है। बहुत सी यंग गर्ल्स अपने आसपास एक आप कह लें कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर वो किसी विमेन को लीडरशिप पोजीशन में देखती हैं, किसी एथलीट को चैंपियनशिप जीतते हुए देखती हैं, तो उनके लिए पॉसिबिलिटीज का दायरा बढ़ जाता है। पहले जो चीजें इम्पॉसिबल लगती थी वो पॉसिबल नजर आने लगती हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन की पावर होती है साथियों। कतर जैसे इंटरनेशनल और मल्टीकल्चरल मुल्क में ये मैसेज बहुत मीनिंगफुल है। कतर ने पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स को नेशनल डेवलपमेंट का एक आप कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया है। यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और विमेन एथलीट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड किया जा रहा है। दोहा ने एथलेटिक्स के वर्ल्ड स्टेज पर भी अपनी पहचान बनाई है, जहाँ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स ने लोकल एथलीट्स को दुनिया के बेहतरीन प्लेयर दिखाने और उनसे इंस्पायर होने का मौका दिया है। देखिए, जब कतर की यंग गर्ल्स इंटरनेशनल एथलीट्स को परफॉर्म करते हुए देखी है ना, तो उनके लिए स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं रहता, उन्हें नजर आता है कि स्पोर्ट्स एक करियर भी बन सकता है, एक आइडेंटिटी भी बन सकता है और एक प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। साथियों, एलिसन फेलिक्स की स्टोरी का एक और पावरफुल लेसन है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कैप्टन बनना नहीं होता, लीडरशिप का मतलब होता है जब आपके आसपास के जो आपके लोग हैं उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकें, तो आप उसे पॉजिटिव चेंज के लिए यूज कर सकते हैं। एलिसन फेलिक्स ने अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ पर्सनल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रखा, उन्होंने विमेन एथलीट के चैलेंजेस पर आवाज उठाई और ये बात हाईलाइट की कि फीमेल एथलीट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट मिलना चाहिए। खासतौर पर मदरहुड और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक वक्त था जब बहुत सी फीमेल एथलीट्स ये फील करती थी कि भाई फैमिली और करियर

देर में से एक ही चूज करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एलिसन फेलिक्स ने अपनी जर्नी से ये मैसेज दिया कि एक औरत एथलीट, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी, कि एक औरत एथलीट भी हो सकती है, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी हो सकती है और एक अच्छी माँ भी हो सकती है। दोनों आइडेंटिटीज एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। ये सच में एक बहुत बड़ी तब्दीली थी साथियों, और यही लीडरशिप होती है। देखिए कभी कभी ना लीडरशिप आवाज बुलंद करने से नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल सेट करने से होती है, और लीडर तो वही होता है ना हु लीड्स बाय एग्जाम्पल। साथियों स्पोर्ट्स का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हेल्थ। अच्छा आज के ज़माने में ना जब टेक्नोलॉजी और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं, स्पोर्ट्स हमें याद दिलाता है कि हमारी बॉडी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। अच्छा एथलेटिक्स में ये सिखाया जाता है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, फिटनेस मेंटेन करनी है और हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हेल्थ फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एथलीट्स प्रेशर फेस करते हैं, एक्सपेक्टेशंस फेस करते हैं और उन्हें भी अपने इमोशंस को समझना होता है। एलिसन की जर्नी हमें ये बताती है कि स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस ना आए, स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि चैलेंजेस के बावजूद आप आगे बढ़ते रहें। साथ ही वैसे अगर देखा जाए ना मेरे लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स का सबसे खूबसूरत लेसन रिस्पेक्ट है। ट्रैक पर रेस खत्म होने के बाद एथलीट्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटर ने अपनी जर्नी में कितनी मेहनत की है। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि कॉम्पिटिशन और रिस्पेक्ट एक साथ चल सकते हैं। आप अपने ओपोनेंट को चैलेंज कर सकते हैं और फिर भी उसकी इज्जत कर सकते हैं, ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप। आज जब हम एलिसन फेलिक्स को याद करते हैं ना तो हम सिर्फ एक रनर को याद नहीं कर रहे होते, हम एक ऐसी औरत को याद कर रहे होते हैं जिसने ये दिखाया कि स्पीड से ज्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होती है। आप कितनी तेज दौड़ते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी जर्नी से कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। एलिसन फेलिक्स की जर्नी एक मेडल कलेक्शन की कहानी से ज्यादा है, कहीं ज्यादा। वो उन तमाम यंग गर्ल्स के लिए एक रिमाइंडर है कि भाई उनके ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास पैशन है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और अगर आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं तो आप अपनी फिनिश लाइन खुद डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे लिसनर्स, हमारा आज का सवाल आपसे यही है कि आपके ख्याल में स्पोर्ट्स इंसान की पर्सनालिटी में सबसे बड़ी पॉजिटिव चेंज क्या लेकर आता है? क्या स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस देता है? क्या स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाता है? तो एक इंसान सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बदलता बल्कि दूसरों के लिए नया रास्ता बना देता है। तो भाई हमारे यंग लिसनर्स के लिए एक छोटा सा, आपका ड्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर आप उसके लिए सिंसियर हैं तो लगातार मेहनत करते रहें तो भाई हर दिन आपको अपनी मंजिल के करीब लेकर जा सकता है। याद रखिए किसी भी फील्ड में चैंपियन बनने से पहले इंसान को अपने आप पर यकीन रखना जरूरी होता है। आज का एपिसोड हमें ये सिखाता है कि एथलीट किस तरह सिर्फ मेडल्स नहीं जीतते बल्कि लोगों की सोच भी बदल कर रख देते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन एफएम 107 कतर। आपके मैसेजेस, आपके ओपिनियंस और आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए दुनिया भर की इंस्पायरिंग विमेन एथलीट्स की कहानियां लेकर आते हैं। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और फीमेल एथलीट की कहानी जिन्होंने चैलेंज को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और अपनी मेहनत से दुनिया में अपनी पहचान बनाई। तब तक के लिए ये याद रखिए कि रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो भाई हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन एफएम 107 कतर। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे कॉन्फिडेंट और अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते रहिए और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: FM 107 Time Check.
2: यस चेक चेक चेक टाइम चेक. इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़ यानी वक्त हो चला है.
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
2: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है. हाँ 3, 2, 1 भाई देखो काउंटडाउन शुरू हो चुका है. एस्केप रूम का आज आखिरी एपिसोड है इस सीजन का. यस, क्योंकि कल से हम आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाले हैं. शो के दौरान बताऊंगी कि मैं आपको कहाँ मिलूंगी हमारे एफएम 107 पर, है कि नहीं. लेकिन आज का एपिसोड क्योंकि आखिरी एपिसोड है तो कहूंगी कि बिल्कुल इंजॉय कीजिएगा एस्केप रूम की सिचुएशन को, इंजॉय कीजिएगा. और जो भी आपको लगता है क्लू 1, 2, 3 के सही जवाब हो, इमेजिन कीजिए, सोचिए, समझिए और दीजिएगा. बस कोशिश करना है कि आज के सेशन से हमें बाहर निकलना है. आज हम जिस कमरे में कैद होने वाले हैं ना, वहाँ हर तरफ आईने हैं और चेहरों पर ना नकाब है, यानी कि मास्क हैं. द हॉल ऑफ मास्क में हम एंट्री करने वाले हैं. ये वो जगह है जहाँ हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मास्क है और हम उधर हैं तो किसी तरह से अपने आप को मैनेज करेंगे. हाँ, इस सिचुएशन में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है, बस आज की सिचुएशन डिटेल में कुछ ही देर में आएगी. तो आपने कहीं नहीं जाना है कि नहीं. फिलहाल ये नंबर नोट कीजिए 6622107 6622107. इस नंबर के जरिए हमारी बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाली है तो मिस मत कीजिएगा. और अभी के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक आपकी राहों में आ चुका है. वाह क्या गाना है, अरिजीत सिंह एंड शाश्वत सिंह का ये ग्रेट कॉम्बिनेशन है भाई. मतलब ये गाना सुन के तो दिल खुश हो जाता है. तो वॉल्यूम बढ़ाइए, स्टे ट्यून्ड.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में।

0: آپ کے ذہن میں وزارت داخلہ یا اس کے مختلف شعبوں سے متعلق کوئی سوال ہے؟ وزارت داخلہ کی کسی سروس کے بارے میں معلومات چاہیے؟ یا پولیس کے کسی شعبے کی ذمہ داریوں اور خدمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو سنیے پروگرام پولیس اور عوام، جس میں ہر ہفتے وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے متعلق نمائندے اپنے شعبے کی ذمہ داریوں، خدمات، قوانین اور عوام سے متعلق اہم امور کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں، ہر پیر رات 8 بجے سے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پولیس اور عوام، پولیس اور عوام، جانیے، سمجھیے اور باخبر رہیے۔ اونلی آن ایف ایم 107۔
1: آپ سن رہے ہیں اسکیپ روم اے فور امیتا کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیکھیں۔
2: Yes, now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज का एस्केप रूम बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज का हमारे सीजन का ये आखिरी एपिसोड है। तो जनाब, आज हम कहाँ कैद होने वाले हैं? आज हम द हॉल ऑफ मास्क। यस, हर जगह नकाबी चेहरे हैं, मास्क वाले चेहरे हैं, वहाँ पर हम कैद होने वाले हैं। ठीक है, तो आज जब हमने यहाँ कदम रखा इस ब्यूटिफुल बॉल रूम में, तो चारों तरफ सोने की कारीगरी, सर के ऊपर हजारों क्रिस्टल शैंडलियर्स या यूं कहें झूमर चमक रहे हैं। यहाँ हर किसी ने रेशम और वेलवेट के कपड़े पहने हैं और चेहरों पर चमकदार खूबसूरत मास्क लगे हुए हैं। सब हंस रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, खुश हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन क्या आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में वो थोड़ी सी सनसनी महसूस हो रही है? अब भले ही आपने महंगे कपड़े, भले ही आपने महंगे लिबास पहने हो, मगर अंदर से ना आपको लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा कुछ झूठा या फेक, यूं कहें फ्रॉडपन दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि किसी भी पल ये म्यूज़िक रुक जाएगा और कमरे में सन्नाटा छा जाएगा और कोई आप पर उंगली उठाकर ये कह देगा कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। ओफो, इस हॉल के दरवाजे बहुत भारी हैं जनाब और मजबूती से बंद हैं। ये दरवाजे किसी मास्क के लिए नहीं खुलेंगे, ये सिर्फ उस इंसान के लिए खुलेंगे जो उस मास्क के पीछे छुपा है। अकेले आप ही हैं, आप ही नहीं हैं जो ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपको पता है कि दुनिया के काफ़ी ज़्यादा कामयाब लोग, उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो बस लोगों की आंखों में कभी कभी यू नो फेकनेस दिखा रहे हैं या धूल झोंक रहे हैं। ये कुछ एक अजीब सी चीज़ है, ऐसा होता नहीं है बट ऐसा महसूस होता है। ये दिमाग की एक ऐसी, वो कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल चाल है जहाँ आपका ब्रेन आपकी सारी मेहनत को नज़रअंदाज कर देता है और कहता है कि आपकी सक्सेस बस किस्मत या लक है, आपकी मेहनत नहीं। ये आपको ना एक, वो कहते हैं, एक थीफ की तरह महसूस करवाता है। बताओ ज़रा, हमारा दिमाग भी कितनी कमाल की चीज़ है कि नहीं? तो चलो इसी बात पे क्लू नंबर 1 हमें सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लू है और इसके ज़रिए हमें कुछ पता भी चलेगा। ठीक है, तो अपने गैसेस करने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्लू नंबर 1, मैं वो साइकोलॉजिकल सिंड्रोम हूँ जो कामयाब लोगों को ये फील करवाता है या ये लगवाता है कि वो सिर्फ किस्मत वाले धोखेबाज हैं। मेरा नाम उस शख्स पर रखा गया है जो वहाँ घुसता है जहाँ उसका हक नहीं होता। हाँ, तो मैं क्या हूँ, मैं कौन सा सिंड्रोम हूँ? चलिए मैं आपको ना ऑप्शन दे देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये कौन सा सिंड्रोम है? ठीक है, इम्पोस्टर है, पोस्टर है या रोस्टर है? ठीक है, फिर से मैं दोहराती हूँ, ये कौन सा सिंड्रोम है? इम्पोस्टर, पोस्टर, रोस्टर? हमारे लिसनर्स कह रहे हैं अमिता क्लू नंबर 1 कंफ्यूजिंग लग रहा है। चलो ठीक है, क्लू नंबर 1 पे फिर से ध्यान से सुनो ये क्या कह रही हूँ मैं। ठीक है, कि मैं वो साइकोलॉजिकल सिंड्रोम हूँ जो कामयाब लोगों को लगवाता है कि वो सिर्फ किस्मत वाले धोखेबाज हैं। ठीक है, मेरा नाम उस शख्स पर रखा गया है जो वहाँ जाता है या वहाँ घुसता है जहाँ उसका हक ही नहीं है। ये सिंड्रोम को क्या कहते हैं, इम्पोस्टर, पोस्टर या रोस्टर? ये तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, सोचें समझें, क्लू नंबर 1 का सही जवाब दें 666-22107, 666-22107 पर अपने नाम

0: और झुमका।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
2: हां जी वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज के एस्केप रूम की कहानी बड़ी कमाल की है। आज हम हॉल ऑफ मास्क्स में आकर कैद हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा बॉल रूम है, चारों तरफ सोने की कारीगरी है, खूबसूरत झूमर है, चमचमाते हुए लोग हैं, रेशम और यूं कहे वेलवेट के कपड़े पहने हैं और चेहरों पर चमकदार खूबसूरत मास्क है। ये इस तरह का लिबास हमने भी पहना हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें डर है क्योंकि हम इस हॉल ऑफ मास्क में हैं जहाँ पर हम बिलोंग नहीं करते, जहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम आ गए हैं क्योंकि ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो हमें अंदर डर भी लग रहा है कि कहीं ये भीड़ एकदम से रुकी, किसी ने हमारी तरफ उंगली दिखा कर ही कह दिया कि तुम यहाँ के नहीं हो, तो फिर तो और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अब हमको यहाँ से निकलना है, एक एक करके पड़ावों को सॉल्व करना है, पार करना है, क्लू सॉल्व करने हैं। तो क्लू नंबर वन हमारे लिए था कि मैं वो साइकोलॉजिकल सिंड्रोम हूँ जो कामयाब लोगों को लगवाता है कि वो सिर्फ किस्मत वाले धोखेबाज हैं। मेरा नाम उस शख्स पर रखा गया है जो वहाँ पर जाता है, या यूं कहें वहाँ घुसता है जहाँ उसका हक नहीं होता। तो मैं कौन सा सिंड्रोम हूँ? मैंने आपको हिंट दी, या यूं कहें मैंने आपको ऑप्शन दिए, इम्पोस्टर, पोस्टर या रोस्टर। तो सही जवाब बता देती हूँ, सही जवाब है इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये वो सिंड्रोम है जो कि हमें ये फील करवाता है कि हम किस्मत के धोखेबाज हैं या किस्मत वाले धोखेबाज हैं। तो जिन्होंने इम्पोस्टर सिंड्रोम लिखा है, ज़ोरदार तालियाँ उनके लिए भाई, ज़ोरदार तालियाँ। क्या बात है, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। आइए ज़रा देखें उनके नाम जिन्होंने सही जवाब देने की हमें कोशिश की। फरजान है, जेम्स हैं, जमील, आफ्ताब, रफ़ीक हैं और सादत अफरीदी भी हैं, और कौन है, अनम एंड रूहान भी हैं। ओके, ये भी हमारे साथ जुड़े, वेरी गुड। और आरिफ ने भी हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी नाइस। और कौन है, मिसम ने भी हमें सही जवाब दिया है। सो गुड जॉब गाइज, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, फैंटास्टिक। इस पहले पड़ाव को पार करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब आप आगे बढ़े, ये हॉल इतना रियल क्यों लग रहा है आपको? मतलब जाहिर सी बात है, खूबसूरत है, खूबसूरत लोग हैं, बट चेहरे छुपे हुए हैं, लेकिन बहुत रियलिस्टिक फील है क्योंकि यहाँ हर कोई अपना सबसे बेहतरीन अवतार, या यूँ कहें अपना रूप दिखा रहा है। और आप उस चमक धमक को अपने अंदर के डर से ना कंपेयर कर रहे हो।

आप उनके ग्लिटरिंग मास्क देख रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ अपने पसीने से भीगे हाथ महसूस हो रहे हैं। ओहो हो, हम अक्सर दूसरों की हाईलाइट रील को ना अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हैं। अगर इस एग्जिट की तरफ बढ़ना है तो हमें एक जहरीले वर्ड को ना रोकना होगा, एक जहरीली चीज को रोकना होगा जो हर इंसान के अंदर एकदम से पैदा हो जाती है जब वो किसी और शख्स की बेहतर जिंदगी को देखता है। जाओ चलो क्लू नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से ये आप चुटकियों में गैस कर लेंगे। मैं खुशियों का चोर हूँ, मैं तब पैदा होता हूँ जब आप अपनी कदर या अपनी वर्थ किसी और के मास्क से नापते हैं। ठीक है, तो मैं क्या हूँ? आइए मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, इम्प्रेशन, कंपैरिजन या इन्फ्लेमेशन। इन तीनों में से क्या सही जवाब हो सकता है? ठीक है, क्लू नंबर टू, मैं खुशियों का चोर हूँ, मैं तब पैदा होता हूँ जब आप अपनी कद्र भूल जाते हैं, या यूँ कहें आप अपनी कद्र किसी और के मास्क से नापते हैं। मैं क्या हूँ, इम्प्रेशन, कंपैरिजन या इन्फ्लेमेशन? इन तीनों में से क्या सही जवाब है? सोचिए सोचिए और लिखिए 6622107, 6622107 पर अपने नाम के साथ, एंड लेट मी चेक कि आप में से कितने लोग इस दूसरे पड़ाव को पार कर पाते हैं। और अभी के लिए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक को हम लेंगे, और उसके बाद वापस आके देखेंगे कि आज क्लू नंबर टू कितने लोगों के दिमागों में सही तरीके से चढ़ा और सही जवाब मिला। So stay tuned to FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: यस जनाब, एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं 2:02, यानी कि ये वो वक्त है जहां पर हम ये विश करेंगे कि आज के एस्केप रूम की सिचुएशन, इन नकाब वाले चेहरे या इन मास्क के चेहरों की असलियत से हम बाहर निकलें और यहां पर एस्केप कर पाएं।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ Only on FM 107, दिल से दी।
2: हाँ जी जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज के एस्केप रूम की सिचुएशन, हर कोई अपने असली चेहरे को छुपा रहा है। बड़ी खूबसूरत सी जगह है, पार्टी वाला माहौल है, खूबसूरत सा बॉल रूम है, सबने बेहद कीमती और कमाल के लिबास पहने हुए हैं, लेकिन चेहरों पर नकाब है। अब यहाँ पर हम भी उन्हीं लिबास में हैं और हमारे भी चेहरे पर नकाब है। अब हम किसी तरह यहाँ से आगे पीछे जा रहे हैं क्योंकि एग्जिट हमको चाहिए, क्योंकि ये जगह हमारी नहीं है, बस हम यहाँ पर संभाव आ गए हैं। ये चैलेंज बहुत चैलेंजिंग है। वेल, क्लू नंबर वन हमने सॉल्व किया, सही जवाब था इम्पोस्टर। क्लू नंबर टू की तरफ हम बढ़े और ये था कि मैं खुशियों का चोर हूँ, मैं तब पैदा होता हूँ जब आप अपनी कदर या अपनी वर्थ किसी और के मास्क से नापते हैं। तो मैं क्या हूँ? कंपैरिजन हूँ, इम्प्रेशन हूँ, इन्फ्लेमेशन हूँ, क्या मतलब मैं हूँ क्या? चलिए, हमारे कुछ लिसनर्स लिख रहे हैं इम्प्रेशन। ओके, इम्प्रेशन है ये बात, ऑलराइट। कुछ कह रहे हैं कंपैरिजन, कुछ नहीं इन्फ्लेमेशन भी लिखा नहीं। देखो, इन्फ्लेमेशन तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, लेट मी बी क्लियर। अब इम्प्रेशन और कंपैरिजन के बीच आपको कुछ एक चुनना है। फिर से सुने क्लू नंबर टू कि मैं खुशियों का चोर हूँ, मैं तब पैदा होता हूँ जब आप अपनी कद्र किसी और के मास्क से नापते हैं। मतलब क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। सो डेफिनेटली इट्स कंपैरिजन। जिन्होंने भी ये जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सारी मुबारकबाद, क्या बात है। क्लू नंबर टू आपने सॉल्व किया और कौन कौन है जिन्होंने हमें सही जवाब देने की कोशिश की है,

सही जवाब दिया है और यूसुफ खान ने सही जवाब दिया है. जमील है फरजान आफ्ताब रफीक, क्या बात. इसी चीज की तो हमें तलाश थी, है कि नहीं, सही जवाब की. अब तीसरे पड़ाव की बारी. अब इस बॉल रूम का म्यूजिक ना एकदम बढ़ते जा रहा है, अपनी एक्सट्रीम्स में पहुंच गया है, अपनी चरम सीमा में पहुंच गया है. अब आखिरी गेट खोलने के लिए किसी एक को हिम्मत करके अपना मास्क सबसे पहले उतारना होगा, मगर ये बड़ा खौफनाक है ना. अगर आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप असल में कौन हैं, अपनी गलतियों और खामियों के साथ, तो शायद लोग आपको एक्सेप्ट ना करें. लेकिन सुनिए, यही राज है. वो असलियत ही एकमात्र चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है. ठीक है, तो यहां पर क्लू नंबर 3 आपकी राहों में आता है कि मैं वो हूं जो दिखावे का उल्टा हूं. ठीक है, मैं वो हूं जो दिखावे का उल्टा हूं. मैं वो चाबी हूं जो आईने को तोड़ देती है और दरवाजा खोल देती है. तो क्या हूं मैं? चलिए आपको ऑप्शंस देते हैं. सच्चाई, अच्छाई या फिर कमाई, इन तीनों में से कौन सी चीज है जो आखिरी एग्जिट डोर को खोलेगी और आपकी एग्जिट की एग्जिट की बनेगी? बताएं, मैं वो हूं जो दिखावे का उल्टा हूं, या यूं कहें झूठ का उल्टा हूं. मैं वो चाबी हूं जो आईनों को तोड़ देती है और दरवाजों को खोल देती है. सच्चाई, अच्छाई या कमाई, इन तीनों में से क्या सही जवाब है? सोचें. 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब देने की कोशिश करें और इस आखिरी पड़ाव को पार करें, वरना एस्केप रूम के इस आखिरी एपिसोड में अगर आप कैद हो गए तो फिर साल भर तक नहीं निकल पाएंगे. सुनिधि चौहान की बेहतरीन आवाज, ये गाना एंजॉय करें. कमली, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: Yes, now, welcome. FM 107 सुन रहे हैं, मैं हूँ आपकी ये फरमीता और आज का एस्केप रूम भाई बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे सीजन का आखिरी एपिसोड है। क्या बात है, द हॉल ऑफ मास्क में, मास्क्स में, नॉट जस्ट मास्क, मास्क्स के अंदर हम पूरी तरह से खो चुके हैं। बेहद खूबसूरत हॉल है ये बॉल रूम, इतना ज़्यादा खूबसूरती के साथ सजा धजा है कि मतलब हमारी भी ना अंदर से आंखें एकदम चौंधिया गई हैं। हमको लग रहा है वाओ यार, मतलब क्या जगह आ गए हैं। हर एक शख्स खूबसूरत लिबास में, लिबास पहने हुए हैं और यूँ कहें तो खूबसूरत मास्क लगे हुए हैं, हम भी उनमें से एक हैं। लेकिन ये जगह हमारी नहीं है, ना ये लोग हमारे हैं, लेकिन कैद तो हम हो गए हैं। वैसे हम पार्टी इंजॉय कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि हमको यहाँ से निकलना है। अगर एग्जिट नहीं किया तो मुश्किल बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो क्लू नंबर वन हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, एंड सही जवाब वॉज इम्पोस्टर। क्लू नंबर टू भी हमने सॉल्व किया, सही जवाब था कंपेरिजन। अब एग्जिट तक पहुँचना है हमको किसी तरह। अब ये हॉल का ये पार्टी म्यूजिक लाउड हो गया है, सुपर लाउड हो गया है और यहाँ से हम बाहर तब निकल सकते हैं जब कोई भी एक शख्स सबसे पहले अपना मास्क उतारेगा, अपनी असलियत, अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएगा। लेकिन ये बड़ा खौफनाक है, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग क्योंकि पता नहीं लोग आपको एक्सेप्ट करें या ना करें। चलो ये सिचुएशन, ये कश्मकश तो हमारे साथ चल रही है, लेकिन क्लू नंबर थ्री अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हम अपने आप बाहर हो जाएंगे, एग्जिट गेट हमारे लिए खुल जाएगा। तो क्लू नंबर थ्री फिर से मैं आपके लिए रिपीट करूंगी, आप ध्यान से सुने ताकि सही जवाब आप दे सकें और आज की सिचुएशन से एस्केप कर पाएं। सो क्लू नंबर थ्री, मैं वो हूं जो झूठ या यूं कहें दिखावे का बिल्कुल उल्टा हूं, ठीक है। मैं वो चाबी हूं जो आईनों को तोड़ देती है और दरवाजों को खोल देती है। तो वो चीज क्या है, मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया, सच्चाई, अच्छाई, कमाई, इन तीनों में से क्या हो सकता है? कम ऑन, थिंक एंड गिव मी द राइट आंसर। 666-22-107, 666-22-107 इस नंबर पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब भेजिए। ये तीसरा पड़ाव हमको पार करना है और बिल्कुल आखिरी मुकाम पर खड़े, एग्जिट गेट यूं हमारे सामने अपीयर हो जाएगा बस और खुल जाएगा, हम आराम से बाहर निकल सकते हैं और एकदम ताज़ी हवा में सांस ले सकते हैं, है कि नहीं? कम ऑन, इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड और स्पेशल चैलेंज। अपनी, वो कहते हैं ना कि अपनी असलियत, अपना असली चेहरा हमें लोगों को दिखाना है, तो कैसे दिखेगा वो असली चेहरा बिना किसी डर के, जब हम क्लू नंबर थ्री सॉल्व करेंगे। सो मैं वो हूँ जो झूठ या दिखावे का उल्टा हूँ, मैं वो चाबी हूँ जो आइनों को तोड़ देती है, दरवाजों को खोल देती है। तो मैं क्या हूँ, सच्चाई हूँ, अच्छाई हूँ, कमाई हूँ, क्या हूँ क्या? Think and give me the right answer. 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ। और अभी के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक आपकी राहों में आ चुका है, सो एंजॉय कीजिए। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: जरा वेलकम वंस अगेन। बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए अपने एस्केप रूम के, और आज यूं कहें तो एस्केप रूम का आखिरी एपिसोड आज के इस सीजन का। सो वेलकम है आप सभी का। तो जनाब, एस्केप रूम की सिचुएशन, आज हम कहाँ कैद हो गए थे? हॉल ऑफ मास्क के बीच, जहाँ हर कोई खूबसूरत लिबासों में था। खूबसूरत मास्क के अंदर हर किसी के जो असली चेहरे हैं वो छुपे हुए थे। अब यहाँ से हमें बाहर निकलना था, क्योंकि हमें डर था अगर किसी ने हमें पकड़ लिया, पहचान लिया, कह लिया कि भाई ये शख्स यहाँ का नहीं है, तो वैसे भी हमारी जान पर बात आ जाती। लेकिन हमने दिमाग का इस्तेमाल किया। क्लू नंबर 1 हमने सॉल्व किया, सही जवाब था इम्पोस्टर। क्लू नंबर 2 का सही जवाब था कंपैरिजन। क्लू नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सिंपल है। मैं वो हूँ जो झूठ और दिखावे का उल्टा है। मैं वो चाबी हूँ जो आईनों को तोड़ देती है, दरवाजों को खोल देती है। तो मैं क्या हूँ? चलिए, आपको मैंने ऑप्शन दिए थे, सच्चाई, अच्छाई, कमाई। और हमारे लिसनर्स ने कुछ ने लिखा है अच्छाई, चलो शुक्र है, कमाई किसी ने नहीं लिखा, अच्छाई लिखा है कुछ ने, कुछ ने लिखा है सच्चाई, रियलिटी। ओके, तो सही जवाब इज सच्चाई। यस, आपकी असलियत, आपकी सच्चाई। जोरदार तालियां भाई हमारे सारे एस्केपर्स के लिए, एस्केप रूम के। आज आप सारे ही विनर्स हो, है कि नहीं? क्योंकि अगर आज आप सही जवाब नहीं देते तो न जाने साल भर के लिए एस्केप रूम की सिचुएशन में कैद हो जाते, है कि नहीं? आइए जरा देखे जिन्होंने सही जवाब दिया है हमको, उनके नाम क्या है। तो उनके नाम है जमील, अफ्ताब, रफीक, आरिफ और अनम रूहान है, सादत अफरीदी है, मोहम्मद यूसुफ खान है। क्या बात है, हमारे सारे लिसनर्स ने कोशिश की जवाब देने की और कुछ ने सही जवाब दिया। चलिए इसी बात पर जानते हैं कि आज के लकी विनर कौन है। आज के हमारे इस आखिरी एपिसोड के, इस आखिरी सीजन के लकी विनर हैं मिस्टर आरिफ अंसारी। जोरदार तालियां भाई, क्या बात है। बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, नॉनस्टॉप हमारे साथ जुड़े। और हमारे उन सारे लिसनर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया जो हमारे एस्केप रूम की जान या शान बने रहे। देखो, जवाब गलत होने से कुछ नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कितनी शिद्दत से, कितने पैशन से एक ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से निकल पाना मुश्किल है। तो आप सभी को सल्यूट है मेरा, हैट्स ऑफ। वेल जनाब, आज यूँ कहें तो हमारे एस्केप रूम का आखिरी एपिसोड था, लेकिन दिल छोटा ना करें, कल आपकी मेरी मुलाकात होगी शाम 4 बजे से। यस, आपका अपना पर्सनल म्यूजिकल शो लेकर आ रही हूँ, दैट इज़ द रिक्वेस्ट शो। तो अपने दिल की बातें अपने पसंदीदा गानों के साथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, 666-22-107, 666-22-107। तो रिक्वेस्ट शो पर सुनिए मुझे कल शाम 4 बजे, मिलिएगा ज़रूर। क्या स्पेशल होगा वो तो थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं, वो तो कल ही बात करेंगे, है कि नहीं? तो कल शाम 4, डू नॉट मिस इट। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपने आर जमीता को भी ढूंढ सकते हैं। और जाते जाते ये कहना तो बनता है बॉस कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। वेल, ये गाना आज की डेडिकेशन है सिर्फ आपके नाम। सो एंजॉय इट विद फुल वॉल्यूम। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल काम है, हमारे बस की बात नहीं। भाई, हम एक ही तो शख्स हैं, हम क्या ही कोई फर्क पड़ेगा अगर हम कुछ करेंगे तो। हमें लगता है कि ग्रीन लाइफस्टाइल अपनाने के लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने होंगे, लेकिन असल में ये बात मुझे नहीं लगता सच है भाई। देखिए, कभी कभी एक छोटा सा चैलेंज, एक छोटी सी आदत और एक छोटा सा डिसीजन भी बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है। अब आप पूछेंगे क्या? तो भाई, ये किया जा सकता है कि एक हफ्ते के लिए प्लास्टिक बॉटल्स अवॉइड करना, घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कम करना या ग्रोसरी शॉपिंग को थोड़ा स्मार्ट बनाना। तो भाई, क्यों ना आज के इको स्विच में हम बात कर लें ग्रीन लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, यानी छोटे छोटे चेंजेस जो हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स अपनाने में मदद करें। पहले तो एक काम करते हैं ना, प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। हम सब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं साथियों, हम सबका ये मामला है, हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये बात है, लेकिन अक्सर कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज होती है। देखिए, हमारी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हम कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देते हैं, पुरानी आदतें बदलना मुश्किल लगता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम शुरू कहाँ से करें। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट कम होना चाहिए, लेकिन शॉपिंग के वक्त रियूजेबल बैग्स भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, लेकिन रूम से बाहर निकलते वक्त लाइट बंद करना भूल जाते हैं, एसी बंद नहीं करते। इसीलिए छोटे ग्रीन चैलेंजेस हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो हमें स्टेप बाय स्टेप बेहतर आदतें बनाने में, बिल्डअप करने में मदद करते हैं। तो भाई, इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको देती हूं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इजी ग्रीन लाइफस्टाइल चैलेंजेस जो आप ट्राई कर सकते हैं बहुत इजीली। 7 डे प्लास्टिक फ्री चैलेंज। एक हफ्ते के लिए कोशिश करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम कम से कम यूज करें, रियूजेबल बॉटल, शॉपिंग बैग्स और कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एनर्जी सेविंग चैलेंज करें। एक हफ्ते के लिए अपने घर में एनर्जी चेक रूटीन बनाएं, रूम से निकलते वक्त लाइट्स बंद करें और अनयूज्ड डिवाइसेस स्विच ऑफ करें प्रॉपरली। तीसरी चीज, फूड वेस्ट चैलेंज। देखिए, चैलेंज लें कि जितना खाना चाहिए उतना ही प्रिपेयर करना है, बचा हुआ खाना वेस्ट करने के बजाय प्रॉपरली स्टोर या रीयूज करना है। चौथी चीज ये कि नो अननेसेसरी शॉपिंग चैलेंज। अरे भाई, इसके ऊपर तो अच्छे अच्छे आके डगमगा जाते हैं। कुछ लोगों को ना शॉपिंग की आदत होती है, शॉपहोलिक होते हैं, तो भाई उनके लिए ये बड़ा यूजफुल हो सकता है। कुछ दिन के लिए सिर्फ जरूरी चीजें खरीदने का चैलेंज लें, इससे पैसा भी बचता है और अननेसेसरी कंजम्पशन भी कम होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर टाइम चैलेंज। ये मेरा सबसे फेवरेट है। हर हफ्ते कुछ वक्त नेचर के करीब गुजारें, प्लांट्स की केयर करें, वॉकिंग करें या ग्रीनरी को अप्रिशिएट करें। नेचर के करीब रहना हमें एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस याद दिलाता है साथियों। अगर इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दी जाए तो दुनिया भर में बहुत से लोग ग्रीन चैलेंजेस के जरिए अपनी लाइफ इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज वेस्ट फ्री वीक ट्राई करती हैं, जहां वो ये सीखती हैं कि कितना कचरा कम किया जा सकता है। कुछ ऑफिसेज एनर्जी सेविंग चैलेंज ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां एम्प्लॉयज मिलकर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और कुछ स्कूल्स स्टूडेंट्स के लिए रिसाइकलिंग और प्लांटिंग चैलेंजेस भी रखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चैलेंजेस का मकसद परफेक्ट बनाना नहीं होता इंसान को, बल्कि अपनी आदतों को बेहतर बनाना होता है। तो भाई लिसनर्स, इको स्विच, हमारा आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज आप एक छोटा सा ग्रीन चैलेंज चूज करेंगे और उसे कम से कम 7 दिन तक फॉलो करने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमें बताइए, अगर आपको सिर्फ एक ग्रीन चैलेंज चूज करना होता तो आप क्या चूज करते? प्लास्टिक कम करना, फूड वेस्ट कम करना या एनर्जी सेव करना? इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, एनवायरनमेंट को

0: अटैक करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस एक छोटा स्टेप लेना जरूरी है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है सोसाइटी में सलाम और अमन फैलाना। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है। सलाम करना सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं बल्कि एक दुआ है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो हम दूसरे के लिए अमन और रहमत की दुआ कर रहे होते हैं। ये छोटा सा अमल रिश्ते को मजबूत करता है और दिल में नरमी पैदा करता है। आज की दुनिया में जहाँ टेंशन और दूरियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ सलाम और अच्छा रवैया एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। हर मुलाकात को सलाम से शुरू करना एक सिंपल हैबिट है जो सोसाइटी को बेहतर बना सकती है। आज का अमल ये है कि हर मिलने वाले को सलाम करें और मुस्कुराहट के साथ बात करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ। रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
2: 2030. Hello and welcome to a very last segment of One Step to 2030.
4: One Step to 2030.
2: अब हमने इतने दिनों तक One Step to 2030 में बात की फ्यूचर स्पोर्ट्स की, फ्यूचर जॉब्स की, ट्रेंड्स की, फ्यूचर करेंसी की, वैल्यूज की, कल्चर्स की, फ्यूचर की तैयारियों की, सस्टेनेबिलिटी की, किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन से हैबिट्स को एडॉप्ट करना है एंड सो मच सो। अब आज इस लास्ट सेगमेंट में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आज से कल के लिए तैयारी शुरू करें। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर के लिए ज़हनी तैयारी, और ये तैयारी बड़ी ज़रूरी है। फ्यूचर के लिए ज़हनी तैयारी क्यों ज़रूरी है? हम अक्सर अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते ही हैं, एजुकेशन प्लान्स बनाते हैं, करियर गोल सेट करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम कभी कभी भूल जाते हैं और वो है हमारी मेंटल प्रिपरेशन। फ्यूचर के लिए ज़हनी तैयारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट है। टेक्नोलॉजी हर रोज़ बदल रही है, नई जॉब्स हर वक्त आ रही हैं, पुरानी स्किल्स की डिमांड हर रोज़ कम हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल टूल्स हमारी लाइफस्टाइल और वर्किंग स्टाइल दोनों को चेंज कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार होते हैं वो ज़्यादा कामयाब और कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। अब ज़हनी तैयारी क्या होती है? देखिए, ज़हनी तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर

0: फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आप को नए चैलेंजेस और नए मौकों के लिए तैयार करें। यानी अगर जिंदगी प्लान के मुताबिक ना भी चले तो आप घबराएं नहीं, बल्कि सिचुएशन का सामना कर सकें। प्रोफेशनल लाइफ में इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और अचानक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती हैं। अगर आप मेंटली फ्लेक्सिबल हैं तो आप नए स्किल्स सीख कर आगे बढ़ सकेंगे, और अगर आप रिजिड हैं तो आपका आगे बढ़ना कितना मुश्किल होगा। अगर आप चेंजेस से डरते हैं तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का आप शिकार होंगे। आज एम्प्लॉयर्स भी उन लोगों को पसंद करते हैं जो अडैप्टेबल हो और लर्निंग के लिए तैयार रहते हो। वही पर्सनल लाइफ में भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जिंदगी हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो नहीं चलती। कभी रिलोकेशन होता है, कभी करियर चेंज करना पड़ता है, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, और कभी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं। अगर इंसान मेंटली स्ट्रांग हो तो वो मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ता है। तो एक चीज़ जो हमारे आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है वो है लर्निंग माइंडसेट। फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी तैयारी ये है कि हम सीखना कभी ना छोड़ें। जो लोग समझते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया, वो अक्सर चेंज के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं ना, उनके लिए फ्यूचर ज्यादा एक्साइटिंग होता है। अब डर भी तो कोई चीज है। अक्सर फ्यूचर का डर अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हकीकत ये है कि किसी को भी फ्यूचर नहीं पता। लेकिन हाँ, उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। उसके लिए फोकस उन चीजों पर करना होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में हैं, आपकी स्किल्स, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप और शायद नए एक्सपीरियंसेस, नए स्किल्स, इन पे फोकस। ये आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल है। फ्यूचर की सबसे बड़े स्किल्स क्या होंगे? मैं नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर का जो सबसे बड़ा स्किल है वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है, वो है अडैप्टेबिलिटी। जो इंसान सिचुएशंस के मुताबिक खुद को बदल सकता है वो हर दौर में अपनी जगह बना लेता है। तो क्या आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं या प्रेजेंट में जीते हैं? या आप फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं या घबराए हुए हैं? बस एक चीज जो आपको जहन में रखनी है वो टेक्नोलॉजी, एआई, ब्ला ब्ला ब्ला नहीं है, वो है अडैप्टेबिलिटी और लर्निंग माइंडसेट। फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो सब कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर उन लोगों का है जो नए सिचुएशन से सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ज़हनी तैयारी हमें सिर्फ मुस्तकबिल का सामना करना नहीं सिखाती, बल्कि उसे कॉन्फिडेंस के साथ वेलकम करना भी सिखाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल जो आपकी और हमारी मुलाकात होगी ना, वो होगी एक नए सेगमेंट में, एक नए टॉपिक पे, एक ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट। यहाँ बहुत मजा आया वन स्टेप टू 2030 में, बहुत कुछ सीखा जाना। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद आपने उसको अप्लाई भी किया होगा। नहीं किया तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आपसे अब इस सेगमेंट से इजाजत लेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिए। और हाँ, देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि हमारी सेहत की बुनियाद है। और अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है तो फिर जिस्मानी तवानाई, वज़न और इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो मुतासिर होती है और फिर सेहत के बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं। कभी आपने सोचा कि आज खाने के बाद आपने आराम किया या फिर फौरन ही आप काम में लग गए? ये बहुत ही अहम सवाल है जो हमें अपने आप से करना है या आपके जो प्यारे हैं उनसे भी ज़रूर कीजिए। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए फाइबर वाली सब्जियां, फल बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से जो पोरेज है, दलिया है, दालें हैं या चावल हैं वो अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए। पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका जो हाजमा है वो ख़राब करने वाली हमारी अपनी ही आदतें होती हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जो फ्राइड चीज़ें उन्हें पसंद करते हैं या चिकनाई वाली जो ग़िज़ा है वो खाना भी पसंद करते हैं, मगर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती हैं। और ये कि बहुत जल्दी जल्दी खाना, इससे भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तौर पर काम नहीं कर पाता। और इसके अलावा रात को देर से खाना, जब आप सो जाते हैं तो फिर ये खाना हजम नहीं हो पाता। एक शख्स जो कि बहुत जल्दी जल्दी खाता और तली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद वो करता था, तो इसी तरह उसे फिर मैदे के जो मसाइल हैं वो शुरू हुए। और खाने को फिर जब उसने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया, अपनी खुराक में सब्जियां इस्तेमाल करनी शुरू की, पानी ज़्यादा इस्तेमाल से उसका हाजमा बेहतर होता चला गया। उसके लिए हमें करना ये है कि अपने खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबाइए और आराम से खाइए। सब्जियां और फल अपनी खुराक में ज़्यादा शामिल कीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए, मगर खाने के दौरान ज़्यादा पानी नहीं पीना आपको। इसी तरह रात का खाना हल्का हो और सोने से कम से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, यानी डिनर जो आपने करना है वो आप सोने से 2 घंटे पहले कर लीजिए। बच्चों और बड़ों के लिए आप एक स्केड्यूल बना दीजिए और उन्हें ये आदत डालिए कि इस तरह से आपने अपना खाना जो है वो खाना है। ये छोटी छोटी बातें अपनाकर हम बहुत बड़े मसाइल से बच सकते हैं, क्योंकि जो हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तवानाई और सेहतमंद जिस्म का जामिन है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।

0: फील कर रहे होंगे और किसी किसी के तो अभी माशाल्लाह बच्चे होंगे, क्या एडवाइस है पेरेंटिंग एडवाइस?
1: बस ये है कि ये तो नहीं कह सकते कि इस जनरेशन के साथ हम कि उनके फ्रेंड्स बन के रहें, क्योंकि एक लिमिट होती है हर रिश्ते की और वो लिमिट हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए. तो बेहतर ये है कि रूल्स सारे समझाएं, उसके बाद ये है कि बच्चे पे कुछ चीजें छोड़ दी जाए कि उसको ऑब्वियसली ये तो नहीं कि हम एकदम से वो इस किसी अंधे उसमें डाल दें कि ठीक है जो तुमने किया इट्स बिकॉज ऑफ यू. लेकिन ये है कि हाँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएं, लिमिटेशंस बनाएं बच्चों के लिए और समझाते रहें, क्योंकि जैसे कुरान में क्या है कि रिपीटेशन अल्लाह हर चीज को बार बार कह रहा है. हाँ. तो वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहना हमारा फर्ज है और कहते रहना चाहिए. बुरा लगता है बच्चों को और लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि बार बार टोकते रहें. अक्सर बच्चों के लिए वो घुटन नहीं बन जाता है टोकना.
0: हाँ.
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मदर के जरूरी है कि समझाते रहें चीजें और जो भी अपने जो हमने जिंदगी से वो सीखा है, जो हमारा जो हमने देखा है आसपास की चीजें वो बताना चाहिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है दुनिया का और अब तक के लिए उस लिहाज से हमें बताना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या.
0: रिपीट टेलीकास्ट करते रहना चाहिए. अच्छा खदीजा, कभी तुमने सुना हुआ किससे? हमारे माँ बाप बताते हैं कि पहले पिटाई बहुत होती थी बच्चों की, है ना? ऐसे किससे सुने पिटने पिटाने के?
1: वो तो हमारे साथ भी होता है.
0: अच्छा हुआ, यू शुड बी थैंकफुल इनफ कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा होना बड़ा जरूरी है. बट तुम जैसे आसपास देखते हो कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, क्या चीज तुम्हें लगती है कि तुम्हारी जनरेशन को चेंज चाहिए? व्हाट इज अ चेंज व्हिच इज रिक्वायर्ड?
2: मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं दैट शुड बी चेंज.
0: कैसे?
2: क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे से डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और हर कोई एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता. क्योंकि मैं देखती हूँ जो हमसे पुरानी जनरेशन है, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल टू ईच अदर और एक दूसरे की सब रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत रखते हैं.
0: बॉन्ड है
2: पर हम लोग की जनरेशन में बहुत कम है. एवरीवन इज लाइक रोड टू ईच अदर.
0: हां ओके. कोई खास दोस्त है जिनको तुम शाउट आउट देना चाहो? प्रोबब्ली उन्हें बताना कि वो सुने तो. कोई खास दोस्त है ऐसे?
2: जी मेरी दो खास दोस्त हैं, तमिया खान और सारा खान.
0: अच्छा.
2: वो हमेशा बचपन से एक साथ हैं, सब एक साथ बड़े हुए हैं, हम सब एक साथ स्कूल जाते हैं एंड वी आर क्लोज.
0: ओके. अच्छा घर में कोई सोशल होता है, कोई एंटी सोशल होता है? जितना मैं आपको जानता हूँ ऑलमोस्ट घर में सारे ही सोशल लगते हैं, आप उनमें थोड़ी सी एंटी सोशल लगती है. एंटी भी नहीं, मैं थोड़ा सा कम. तो आप लगता है ऐसा सच है कि पेरेंट्स को आजकल सोशल होना ही पड़ता है प्रेशर?
1: नहीं, डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस है. मैं तो सोशल नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है बस सोशल होना, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है. मुझे लगता है कि इससे अच्छा टाइम पास कोई नहीं है और किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता. देखिए मेरे हस्बैंड के सोशल हैं, बच्चे भी हैं जैसे कि दोस्त हैं उनके, बेटे के भी हैं, और लेकिन बेहतर है कि आदमी अपने उसमें रहे.
0: पेरेंट्स को एक्चुअली गुड कॉप और बैड कॉप खेलना पड़ता है ना, एक को थोड़ा विलन बनना पड़ता है बच्चों की नजर में और एक को थोड़ा सा इजी वे आउट बनना पड़ता है. तो घर में कौन गुड कॉप और बैड कॉप प्ले कर रहा है?
1: मैं तो बैड कॉप ही हूँ.
0: अच्छा.
1: हाँ. लेकिन कभी कभी शायद कभी तुक्के में गुड कॉप बन जाती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं मेरा जो है विलन वाला ज्यादा है. हाँ.
0: अच्छा ओके.
1: ग्रे शेड ज्यादा है.
0: तो ग्रे शेड मम्मी कह रही है उनका थोड़ा ज्यादा है. कन्विंस करने में कौन आसान है? ज्यादा आसान रहती है?
2: सबसे ज्यादा आसानी बाबा में रहती है, क्योंकि बाबा कुछ मना नहीं कर पाते, उनको बहुत प्यार से जाके बोले तो मान लेते हैं, पर अम्मा नहीं मानती. अम्मा नहीं मुझसे बहुत मुश्किल होती है, फिर बाद में अम्मा मान जाती हैं.
0: तो ये भाई पे भी लागू होता है या भाई का सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि लड़कों का माँ से थोड़ा अलग सिस्टम होता है?
2: अब इट डिपेंड्स, कुछ चीजों पे हम लाइक हम दोनों के लिए सेम हो रहता है. बट देन मुझे लगता है कि साथ ज्यादा फ्रीडम मिलता
0: है, ज्यादा फ्रीडम है
2: भाई को.
0: छोटा है ना इसकी फ्रेंड, वो तो अभी तो हमारे सामने बैठ के हैरान हो रहा है कि ये तो सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा मम्मी माशाल्लाह काफी अच्छी कुकिंग भी करती हैं, ये हम जानते ही हैं. तो ये इनहेरिट मम्मी से किया? ऑनलाइन कितना देखती है, मम्मी की हेल्प कितनी लगती है कुकिंग में?
2: मुझे लगता है कि मैंने अम्मा को देख के सीखा है.
0: अच्छा ओके.
2: क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अम्मा अच्छी बनाती हैं खाने में, और बस मैंने उनको देख देख के बहुत सारी चीजें देखी हैं. ऑनलाइन मैंने ज्यादा नहीं देखा.
0: ओके. अब ये एक दूसरा फेज आता है जहाँ पर बच्चों को बाहर निकलना ही पड़ता है, और आजकल ऐसा हो गया है कि घर में सबको बांध के रखना बड़ा मुश्किल काम है. यू नेवर नो फ्यूचर में इसको अगर बाहर जाना पड़े, फॉर एग्जाम्पल बाहर इज इन कतर, बाहर नहीं बाहर इज इन यूरोप शरोप जाना पड़े, कितना इसके हक में है आप?
1: नहीं, उसके लिए मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ.
0: ओके.
1: हाँ, क्योंकि मैं नहीं भेज सकती. एक तो

0: का मुस्लिम वो दीनी एतबार से भी सही नहीं है लड़कियों का इस तरह जाना. और मेरा सब मानना है कि जो चीज हम अपने पास रह के करवा सकते हैं बच्चों से वो दूर रह के तो फिर बहुत दूर हो जाते हैं. फिर एक तो वैसे जनरेशन गैप है और फिर अगर नजरों के सामने से दूर हो गए तो फिर बिल्कुल ही हाथ से गए बच्चे. तो मेरा मानना है कि बेहतर है कि दीनी तौर से भी और वैसे भी के साथ ही रहे बच्चे, पास रहे कम से कम. बेशक एक साथ ना रहो घर में लेकिन एक शहर में तो हो.
1: आपके दोनों बच्चों में ट्रैक करना किसे मुश्किल पड़ता है, लाइक एक नजर या फिर ट्रैक रखना किसे मुश्किल है?
0: सोशली इनको, बेटी को. और बेटे को अगर ये खेलने गए तो इनको फिर ढूंढना बहुत मुश्किल है, ढूंढते रह जाओगे वाला हो जाता है.
1: अच्छा हो गया. तो ये खेलने में सोशल में ज्यादा सोशल होने का तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में सोशल तुम हो या पापा से मुकाबला है तुम्हारा सोशल होना?
0: नहीं, मुझे लगता है मेरा बाबा का है मुकाबला, कॉम्पिटिशन है दोनों ज्यादा सोशल होने में.
1: तो क्या जिद करनी पड़ती है मम्मी को ले जाने के लिए या फिर लगता है ठीक है मम्मी को घर रहने ही दो?
0: नहीं नहीं, बहुत कभी कभी चाहता है मन कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाएं, पर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी
1: जिम्मेदारी
0: और बहुत सारे दूसरे काम होते हैं तो हम मम्मा को कहीं ले जाना तो बहुत मुश्किल रहता है, बहुत ही ज्यादा. बिल्कुली एंड मोमेंट में कभी कभी प्लान बन जाता है तो हम लोग एक साथ कहीं होते हैं, नहीं हो पाता.
1: तो ये तो मुश्किल काम लग रहा है, मैं समझ गया आपका क्या है. पर जैसे हमारे अब्बा और अम्मा ने हमेशा किया कि कुछ पुरानी चीजों से जुड़ा रखने की कोशिश में कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं ना, बेटा वो दिलीप कुमार थे, ये देखो वो देखो, कभी ऐसी कोशिश करी है ना कुछ दिखाने की?
0: हाँ, ओल्ड मूवीज देखते हैं मगर इनका जो कंसेप्ट ओल्ड मूवीज का वो 90s वाला है बस.
2: अटेंशन स्पैन कम.
0: हाँ एग्जैक्टली. और 80s 70s इनको समझ में नहीं आएगा. पहचानते हैं एक्टर्स को, ऐसा नहीं है, मगर वो बात नहीं है. उनको लगता है कि 90s ही बहुत पुराने जमाना है. हाँ और हाँ बिल्कुल, ये समझ लो कि लेटेस्ट 2020 ही बस सब कुछ है.
1: अच्छा, बस कुछ कुछ याद है कुछ 90s 80s का कुछ दिखाओ मम्मी पापा ने दिखाया हो बिठा के?
0: ये बहुत मूवीज है, सबसे पुरानी मूवी जो मैंने देखी थी जो हो वो है मुगले आजम.
1: क्या बात है. अच्छा,
0: जो जो मेरी ग्रैंड मदर की सब फेवरेट मूवी है वो तो मैंने बहुत बार देखी है. फर्स्ट के बाद मेरी मम्मा को मूवी पसंद है जैसे प्रेम रोग, फिर मोस्टली श्री देवी देवी की बहुत सारी मूवीज हैं, अमिताभ बच्चन की, तो मैं जानती हूँ.
1: अच्छा, तो पुराने इक्विपमेंट याद है कुछ ऐसा? पता VCR क्या होता है पता?
0: और
1: टेप रिकॉर्डर पुराने देखे
0: जी,
1: पुराने कैमरा पता कैसे काम करते थे
0: जी, जी.
1: कैसे काम करते
0: हैं?
1: अरे बहुत आगे चलेगी SD कार्ड रीडर में चलेगी. रील का कॉन्सेप्ट पता है? रील ढूंढने के लिए जाती थी, बताया मम्मी पापा ने? नहीं ना. अरे रे रे रे रे, इनको बताना पड़ेगा आपको कि रील ढूंढने जाती थी, वो नहीं दिखाई इनको रील कभी?
0: हाँ, ये इन लोगों को नहीं पता कि फोटोज कैसे डेवलप होती थी, वो नहीं पता इन लोगों को.
2: वाइड एंड
0: कि वो रेड या ग्रीन लाइट में डेवलप होती है पिक्चर्स, वो अब इतना है भी नहीं कॉन्सेप्ट. ठीक ही है दुकानें वो इंडिया में, लेकिन अब तो सारी चीज डिजिटल है तो उस लिहाज से ही बनती है.
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर. Only on FM 107.
1: Do you find people born in 90s to be old?
0: It depends.
1: Depends on what?
0: बहुत सारी चीजें, बहुत.
1: जैसे?
0: जैसे अब आप देख लिए कि devices हैं electronic, mostly चीजें मम्मा बाबा को नहीं समझ में आता यूज करना भी, ये भी मुश्किल होता है. अब उनको ये भी समझ में नहीं आता कि हम लोग के लिए फोन कितना जरूरी है इस जनरेशन में रह के.
1: कन्विंस कर रही हैं आप? अच्छा, ओके.
0: हम नहीं, एक्चुअली वे बहुत सारी चीजों के लिए फोन इज अ नेसेसिटी फॉर अस इन दिस जनरेशन, बगैर उसके बहुत काम नहीं हो पाते.
1: तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत कन्विंस हमने कर लिया होगा. आई डोंट थिंक शी इज कन्विंस्ड राइट नाउ, बट फिर भी कोई ऐसी मूवी है जो मम्मी को दिखाई है चल के कि मम्मी ये देखो, मम्मी शायद अनअवेयर हो, मीम्स हो, प्रोबेबली कुछ मूवी वगैरह हो
0: जी? ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं.
1: रिसेंटली कुछ याद आ रहा हूं?
0: अब मैंने
1: कुछ दिखाया है कुछ रिसेंट? आई थिंक यू लव लव हॉरर एज वेल ना, तो कुछ मम्मी को दिखाने की कोशिश करे. मम्मी इज इनटू रीडिंग बट फिर भी.
0: मैंने मम्मा को बहुत सारी हॉरर मूवीज दिखाई थी जैसे भूत बुलैया वगैरह, और लाइक जो उसके लाइक सेकंड पार्ट्स वगैरह मम्मा को ज्यादा समझ भी नहीं आई उनको फर्स्ट पार्ट बहुत पसंद आई पर लाइक सेकंड पार्ट उनको नहीं पसंद नहीं सकता पर ज्यादा मैं बाबा के साथ देखती हूँ
1: अच्छा
0: वो हमारे साथ वो लोग वो मेरी वाइब समझ लेते
2: हैं अच्छा
0: हम लोग जो सीजन वगैरह देखते हैं मूवीज है रिसेंट मतलब जैसे एनिमेशन भी है इवन इफ इट्स तो उनके साथ देखने में मजा आता है
1: नाइस ओके ये कुछ पता लगा पर मैं जानता हूँ देखो मम्मा क्योंकि रीडर है रीडर्स का जो इमेजिनेशन है वो कोई हॉरर मूवी क्रिएट नहीं कर सकती तो ये क्रेडिट आपको जाता है डेफिनेटली बट एक और चीज है जो बड़ी खास हो जाती है वो है मैसेजेस में कभी मीम्स वगैरह शेयर किया है मम्मी पापा से
0: जी मैं बहुत
1: बहुत करती हूँ अच्छा हो गया
0: कभी कभी मम्मा आती हैं डांटने या कुछ भी तो मैं इन्हें मीम रिएक्ट करती हूँ उनको तंग करने के लिए उनके समझ में ये नहीं आता पर मैं बहुत यूज करती हूँ मैसेजेस में या कुछ
1: अच्छा कभी मैसेजेस में इनसे कुछ बातचीत हुई कभी लड़ाई तक बात पहुंची मतलब सुनाने का मन किया मैसेजेस में सिर्फ सॉन्ग
4: बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हाँ बहुत बार ऐसा हुआ है कि रिकॉर्ड करके जो है जो भड़ास निकालती देखती हाँ ऐसा अक्सर हुआ है
1: तो लिखने की भी मेहनत नहीं है सीधा वॉइस रिकॉर्ड
4: करके और भेज दिया
1: अच्छा हो गया था इसको क्या दिख जाता होगा ना तो लंबा मैसेज आता होगा recorded 20 minutes if 10 minutes so hawa dard jata hai what do you do first thing kya hota hai mind mein
0: sabse pehle cheez to main apne dost se alag hat jati taki ha main akeli na sun lu mostly voice note jab aata hai jab main kahin bahar hoti hu aur I guess main late ho jati hu wapas aane mein
1: tab okay to ye jo chote wale hain aapke to mujhe lagta hai hamesha back seat mein rehte hain saath बट ये तो खूब मजे लेते होगा आप और इसकी जब बहस होती है खदीजा की he enjoys it, right?
4: हाँ enjoy करता है ना आपस में काफी लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि बहुत age difference नहीं है मगर फिर भी यानी वो ये इतना social नहीं जितना खती
1: right, okay.
4: इसलिए क्योंकि फोन का भी डिफरेंस है और ये इसका दिल ज्यादा स्पोर्ट्स में है तो इसीलिए नाम है इसी
1: Okay, तो खेलने खालने में ज्यादा
4: कनेक्शन इनमें वो वाला नहीं है कि व्हाट्सएप चेक करो कि मैसेजेस हैं वो नहीं है वॉबल है बस
1: ओके तो ये मुझे लगता है आज साबित हो गया कि बेटियां दरअसल बाप पे ज्यादा जाती हैं और लड़के माँ से थोड़ा ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं ये यहाँ पे थोड़ा साबित होता हुआ नजर आ रहा है कभी स्कूल में जैसे पंगा हुआ है कि अभी मम्मी पापा का आना होगा तो फिर पता लगेगा उन्हें
0: कभी कभी
1: होता रहता ही हुआ है
0: होता रहता
1: कोई पीटीएम याद है जहाँ पर पेरेंट्स जब मीटिंग होती है पीटीएम में तो डर लग रहा हो कोई पीटीएम ऐसी याद आ रही जो आज भी नींद से जगा देती है
0: एक है एक्चुअली एक नहीं बहुत बार होता है क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए और उनको कभी कभी हो जाती है गलत फहमी भी अब उनको कोई रोक तो सकता नहीं बताने से तो मेरी तो फुल कोशिश रहती कि अम्मा पापा ना जाएं चीटिंग में
1: ओके ये पीटीएम अटेंड करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमारे टाइम पीटीएम वाज डिफरेंट है ना आज की तारीख में पीटीएम थोड़ा लगा पहले तो कह दिया टीचर को कि पहले उसको पकड़ के मारो कोई टेंशन नहीं पर यहाँ पे ऑब्वियसली सिचुएशंस इज डिफरेंट पीटीएम को आप किस तरीके से परसीव करते हैं
4: नहीं यहाँ पे तो आप मतलब आपको जो भी एक बच्चे की वो बताना है इमेज पेरेंट्स के सामने हुई है कि वो पॉजिटिव वो हो नोट बट इंडियन स्कूल्स में इतना नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी टीचर डिस्कस करती हैं लेकिन मोस्टली ये है कि आप बच्चे को पूरी तरह डेविल नहीं वो कर सकते पेरेंट्स के सामने तो बीइंग अ टीचर हम भी ये करते हैं कि अगर कोई लो अचीवर बच्चा है क्लास में तो उसकी पूरी वो नहीं बताएंगे कि वो सिर्फ खराब ही है बेचारा उसमें अच्छाइयाँ भी हैं ऑब्वियसली होती भी है बच्चों में लेकिन इंडियन स्कूल का जो टीचर्स का पर्सपेक्टिव है वो अलग होता है बहुत उनको ये है कि जैसे जो उन्होंने अपने बचपने में ये जिस तरह हमने जो स्ट्रिक्ट टीचर्स के साथ रही वो वही उनका वो रहता है कुछ एटीट्यूड भी कहने या रवैया वही होता है कि वो चाहती हैं कि सारी चीजें मतलब उतना पेरेंट अवेयर हो कि बच्चा क्या कर रहा है तो एक तरह से अच्छा भी है ये कि अगर बच्चे के सिर्फ अच्छाई नहीं दिखा रहे हैं जो उनके नेगेटिव चीजें हैं जो जिस चीज में वो लैक कर रहा है वो सामने आती है
1: Right. तो काफी टीचर वाला पर्सपेक्टिव मुझे जानने को मिला है ये पता लग रहा है मम्मी के टीचरों ने बहुत फायदा उठाया हुआ तुमने
0: इतना ज्यादा नहीं बट देन हाँ क्योंकि मेरी भी बहुत ज्यादा मदद हो जाती है और लाइक इवन के एकेडमिक्स में मम्मा मदद कर देती हैं मोस्टली सब्जेक्ट्स में जो है
2: तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होती।
1: और डिसिप्लिन मम्मी से इसलिए आ रहा है, वो टीचर वाला डिसिप्लिन के अंदर।

0: अरे माइ डेड, तो मैं करना क्या चाहती, व्हाट डू वांट टू बी, आगे जाकर क्या सोचा है?
1: मैंने सोचा है कि मुझे सिविल डिफेंस में ज्वाइन करना है.
0: अच्छा, ओके.
1: तो फिर क्या, फिर लाइक समथिंग रिलेटेड स्टेट सिक्योरिटी.
0: ओके.
1: लाइक इन द फील्ड ऑफ लॉ या फिर
0: लॉ एनफोर्समेंट
1: या फिर डिफेंस में.
0: अच्छा, तो ये जैसे आजकल ट्रिक अपनाते हैं लोग, पहले भी अपनाते थे कि बच्चे को जिस तरफ डाइवर्ट करना है, माँ बाप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है. कभी कोशिश करी है कि थोपना नहीं, मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी कि इधर की साइड कर देते हैं, हो सकता है इसे अच्छा लग जाए?
2: नहीं, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं वो किया, तो मैं भी नहीं चाहती कि बच्चे को, क्योंकि जो उसका दिल है, जिसको वो कंफर्टेबल है, वो करना चाहिए. क्योंकि पहले था कि डॉक्टर ही बनना है और इंजीनियर ही बनना है, ये हम अब नहीं कर सकते. एक तो हम आप इस जनरेशन को फोर्स भी नहीं कर सकते, और बहुत चीज़ों से अवेयर हैं बच्चे, देखते हैं कि इतनी चीज़ें, इतनी नई अपॉर्चुनिटीज हैं. तो बेहतर है कि जो बच्चे को समझ में आ रहा है, मगर जो कि ठीक हो, और मतलब बच्चा उसमें एडजस्ट हो और आगे जाके उसे रिग्रेट ना हो इस चीज़ का. तो उस तरीके से जो है, मैं साथ, मेरा मानना ऐसा है कि हम फोर्स नहीं कर सकते कि ये सब्जेक्ट लो, ये नहीं पढ़ो, इतना नहीं कर सकते.
0: पर जैसे लोग सोचते हैं ना, भाई हमारे घर में एक डॉक्टर तो होना चाहिए, हमारे घर में एक पुलिस वाला तो होना चाहिए. कभी ऐसा मानना है कि हमारे घर में एक तो ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा है?
2: ऐसा है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि बच्चे वो करना चाहते हैं.
0: क्या क्या क्या क्या बनता, बताओ.
2: डॉक्टर ही है, डॉक्टर तो है वो एक, लेकिन फिर ये कि हो सकता है कि साथ मतलब मेरा बेटा आगे जाके जो है इस चीज को वो करे, लेकिन आई डोंट थिंक सो.
0: डॉक्टर के बारे में कभी ख्याल नहीं है तुम, किसी ने कहा नहीं, मम्मी पापा में किसी ने?
1: नहीं, मुझे कभी किसी चीज के लिए इतना बोला नहीं, किसी चीज पे फोकस करने के लिए. उन्होंने बोला बस जिस चीज में मैं अच्छी हूँ उसी में फोकस करूँ और अपना करियर उसी में डेवलप होगा. तो फिर इतना मुझे डॉक्टर का कभी मुझे इतना शौक नहीं हुआ. मुझे हमेशा से समथिंग इन थिंग की ब्रांचेस में समथिंग फॉर द स्टेट, मैं अपनी स्टेट की मदद कर सकता हूँ.
0: अच्छा, आखिर में तीन बातें से तुम्हें लगता है कि तुम मम्मी वाली जनरेशन से कहना चाहती हो, तीन पॉइंट्स एक रिक्वेस्ट या फिर एक चेंज के तौर पर?
1: पहला पॉइंट मुझे लगता है कि दे हैव टू चेंज.
0: अच्छा, इन व्हाट सेंस?
1: इन मेनी थिंग्स. जैसे कि मुझे लगता है कि अब वो जमाना अलग था इन लोग का जो था, अब ये जमाना बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और कुछ चीजों की फ्रीडम जरूरी है. और दूसरी बात के they don't have to be that strict for phones or electronic devices, क्योंकि कभी कभी वो एक बच्चे की बहुत ज्यादा necessity होती है.
0: अच्छा.
1: कुछ लोग उससे बहुत ज्यादा joined होते हैं अपने फोन से, और मुझे लगता है कि फोन की भी छूट होनी चाहिए.
0: अभी अब्बा खुशपुसा के कुछ गए हैं, तीसरा पॉइंट बता दो जल्दी से, वरना वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे.
1: तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि बस हम लोग की बॉन्ड रहे जाना, और मुझे लगता है कि हम लोग के पेरेंट्स को हम लोग के फ्रेंड बनने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे हर चीज अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते, बाद में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. तो मुझे लगता है दे शुड बी बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ देयर.
0: तो उन्होंने बिल डाल दिया है, अमेंडमेंट होगा नहीं होगा पता नहीं. आपकी क्या तीन बातें हैं इनके काउंटर में, फिर एक इस जनरेशन से क्या कहना चाहते हैं?
2: एक तो ये है कि जो हम कह रहे हैं वो सुने, बेशक उस वक्त नहीं, लेकिन समझें, एटलीस्ट समझें, कहीं जहन में रखें इस बात को कि क्या रीजन है. यानी हर बात के पीछे एक रीजन होता है. दूसरी बात जो कि स्टेबिलिटी हो बच्चों में, कि अपने मतलब जो ऐसा नहीं कि कुछ भी करना है. यानी अगर फ्यूचर भी है, ऑब्वियसली हर चीज अल्लाह के हाथ में है, कि हम जो होता है कि मैन प्रपोजल एंड गॉड डिस्पोजल वाली बात है, वो नहीं होनी चाहिए. मतलब वो जहन में इस तरह से आनी चाहिए कि बच्चे को पता हो कि उसके लिए क्या सही अच्छा है. मगर कभी कभी ऐसा होता है कभी कि कुछ चीजें जो है, जैसे ना कुछ धक्के इंसान खाकर ही फिर सबक सीखता है. तो वो चीज भी है यहाँ इस जनरेशन के साथ, कि समझ नहीं आता है, फिर जब बाद में रियलाइज होता है तो कभी कभी देर हो जाती है. बाकी ये है कि बस जो भी चीज है वो मतलब सच्चाई के साथ जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट करें, अपनी वो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करें, और फिर ये है कि बस मजबूत रहें, यकीन रखें अपने पेरेंट्स पे कि माँ बाप हमेशा गलत नहीं होते, इंसान है, गलती वो भी करते हैं, लेकिन इस बात

0: FM 107. Time check. Time check.
1: ऐसा ना हो यार, इंसान जिंदा रहे उसको पता चले कि आज आखिरी दिन है, बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है यार। टाइम चेक कर लो यार, टाइम तो बड़ा ही खराब हो गया आज का। 4:01 हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोस्त,
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आज मन कर रहा है गाना चला दूं, के वापस कब आओगे, के वापस कब आओगे। यार आज आखिरी दिन है, ये पता हो तो कितना बुरा लगेगा। नहीं, अगर असल में ऐसा हो कि भाई साहब आज आपका आखिरी दिन, कल से आप जो है 6 बजे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: From 107 मिस्टेक वाले दोस्तों, आप सभी का ये शो द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं 4 से लेकर 5 बजे तक। इसमें होता ये है कि आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं, आपको बहुत मजा आता है, आप कहते हैं यार 1 नहीं 2 घंटे का होना चाहिए, आप चाहते हैं अगला आदमी एग्जॉस्ट भी तो हो, है 1 घंटे में नहीं लेकिन आप चाहते हैं 2 घंटे का, लेकिन ये 2 घंटे का तो नहीं रहेगा, बट ये शो ऐसे का ऐसे रहेगा 4 से लेकर 5 बजे तक। कल से आपको अमिता मिलेंगे और मैं मिलूंगा शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त होता है और सवालों के घेरे में आप आएंगे और ये सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, जहां पर आपके खत आएंगे और खत की दुनिया एक बार फिर से हम वापस लेके आएंगे। अगर आपको याद हो, अनप्लग्ड इवनिंग शो करते थे जहां पर सवाल होता था और फिर आप अपने खत हमें भेजा करते थे, तो कल से खत की दुनिया यार एक बार फिर से वापस आएगी और उसमें सवाल होंगे। और मेरे मन में भी एक सवाल था, तो मैंने कहा कल वही वाला पूछूंगा और कल का जो सवाल है वैसे तो कल आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा, लेकिन इंसान ना घर जाता है तो 2 तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं वो वाले इंसान जिनको रेड लाइट और सिग्नल चाहिए ही नहीं, और दूसरे वो होते हैं जिनको सिग्नल चलेगा, बस जल्दी घर पहुंचना, रूट छोटा हो चलेगा। तो ऐसे ही कुछ सवाल जो है कल लेकर आऊंगा और फिर कल ही अपन बात करेंगे इस पर, लेकिन आज का तो शो शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो, आपके अपने मर्जी के गाने। और इतने दिनों में, 3 महीनों में आपने इस शो को बड़ा प्यार दिया, बहुत से गाने रिक्वेस्ट किए, जो बहुत से गाने हमने भी प्ले किए, बहुत मज़ा आया, दिल खोल के हमने रिक्वेस्ट किया और आपके मर्जी के गाने यहाँ पर चलाए, मज़ा भी आया। मैंने कोड़े से बचने की बहुत कोशिश करी, 1-2 बार आप लोगों ने कोशिश ये भी करी कि किसी तरह पड़ जाए इसको लेकिन दोबारा भाई बहुत स्मार्ट बच गया हूँ मैं। बट फाइनली आज कोशिश करेंगे कि आखिरी दिन जो है इस शो का, उसमें मुझे कोड़े ना पड़े, कोड़ा मैन जो है सामने रहता है, अब आज उसके भी आंखों में आंसू, भाई बताओ जल्लाद की आंखों में आंसू, कह रहे फजील भाई जा रहे मुझे भी जाना पड़ेगा, वो भी मेरे साथ अलविदा लेगा। लेकिन आज हम थीम पर आते हैं, आज की थीम है वन एंड ओनली हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की थीम। तो आज ऐसे गाने जिसमें अमिताभ बच्चन फिल्माए गए हैं, ऐसे गाने जो उनके मूवी के हैं, या ऐसे गाने जिसमें वो खुद एज अ सिंगर रहे हो, ठीक है, तो वो गाने हमारे FM 107 पे प्ले किए जाएंगे और आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे। आज आखिरी दिन है, देख लो भाई, ठीक है।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: के घर कब आओगे, के घर कब, अरे देखो मेरे पास मैसेज किया है जल्लाद ने, वो पूछ रहा है कि अरे वो पूछो लोगों से कि मुझको मिस करेंगे। अरे जल्लाद तुमको कौन मिस करेगा भाई, तुम मिस कर गए बल्कि, कोड़ा मारना मुझको वो कह रहा है मुझे मौका मत दो आखिरी दिन है, मार के चला जाऊंगा पीठ सुझा दूंगा, लेकिन पीठ सूझती नहीं है, लाल पड़ती है दोस्त, मैसेज करके पूछ रहा, बता दो बाकी तुम कोड़े मैन को मिस करोगे नहीं करोगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब आ जाते हैं हल्के हाथ से हम मैसेज की तरफ। सलाम आया हिशाम साहब का, वालेकुम अस्सलाम भजील, मिस यू ऑन द शो, थैंक यू, कोई मसला नहीं है, अभी ये शो तो कहीं नहीं जाएगा, बाकी आप शाम को 6 से 7 सुन सकते हैं। सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई कैसे हैं, सुभाष कुमार, उम्मीद है बेहतरीन लाजवाब होंगे, खाई के पान बनारस वाला आया है, ये गाना रिक्वेस्ट कर लिया आसिफ के किसी ने, तो पहला गाना अपन यही ढूंढ लेंगे, बाकी शावा शावा हो शावा शावा खादिम मोहसैन की रिक्वेस्ट पे ये गाना आएगा। सलाम दिखा, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी लास्ट 4 से 5, ठीक है आपको भी हैप्पी 4 से 5, लेकिन हैप्पी गाने प्ले करेंगे अपन, ठीक है। उस साथी तेरे बिना भी क्या जीना, आए है एक रोने का गाना ना आए तो कैसे चल सकता है। फिर उसके बाद अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली, इसमें है सलमान बाबू हैं इसमें। फिर उसके बाद बिल्डिंग नंबर है, ये कौन है भाई, आसिफ आलम कह रहे आपकी डिलीवरी है मेरे पास, मेरी डिलीवरी, बिल्डिंग नंबर तो मोहम्मद फजीर, हाँ थैंक गॉड कहां से ये डिटेल लीक हो गई? अरे स्कैमर आप यहाँ? कितनी ट्रेजेडी हो जाती कि फजील भाई फ्रॉड अवेयरनेस शो करते हैं और उनके साथ खुद फ्रॉड

0: हो गया। फजील भाई आपका एड्रेस मेरे पास है, पैसे लाओ तुरंत की तुरंत।
1: फजील भाई फ्रॉड बता रहे थे, दुनिया को तो बता दिया कि कैसे बचना है फ्रॉड से, आपके साथ खुद फ्रॉड हो गया।
0: बाकी ये मोहम्मद फजील है और फोन से कॉल करना, डिलीवरी कमेंट्स सारी डिटेल दिया बाकायदा। क्या बात है, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, आसिफ आलम, ये सब क्या कर रहे हो आप? मैं देखो, मुझे पता है किस जगह आपका नंबर देना है, फिर देख लो ठीक है। बाकी हल्लू हल्लू आगे बढ़ेंगे। मुमताज़ भाई कहते हैं सलाम अलैकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। क्या थीम है आज की? आज की थीम है अमिताभ बच्चन जी के सॉन्ग। फिर उसके बाद देखा जो एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, सिद्दीक साहब ने भी ऐसा बोला जब आप गाने की रिक्वेस्ट कर दिए। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट है, लेकिन सबसे पहला गाना खाई के पान बनारस वाला। आ जाओ बाबू, किधर है ये गाना? पान बनारस लिखूं तो शायद आएगा। हाँ, तो ये गाना किशोर कुमार का गाया हुआ है, डॉन मूवी का ट्रैक। पुराना वाला प्ले कर रहा हूं, नया वाला नहीं, ठीक है? क्योंकि पुराने वाले में जो चमक है, हालांकि उदित नारायण है उसमें, लेकिन शाहरुख खान भी है, इसलिए वो चमक जो है वो घिसती हुई सी है। बाकी दूसरा सॉन्ग जो है, पहला सॉन्ग तो पहले कर लेते हैं। पहला है आसिफ के सी के रिक्वेस्ट पे, फिर खादिम भाई की रिक्वेस्ट पे है शावा शावा, ये भी बड़ा लाजवाब, और फिर ओ साथी रे FM 107 पे ये तीन गाने एंजॉय करो। आखिरी ये शाम हमारी और आपकी, शाम को 4 से 5 के शो में, कल से एक और नया दिन शुरू, शाम को 6 से 7 है नी?
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, हिर लो पान चबा।

0: रोज साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक सुना आपने एफएम 107 पे।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107, दिल से

0: स्पाइसी।
1: और एक इतनी सच बात है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे करीबी होते हैं, इवन इस कंट्री में हो या आपके अपने मुल्क में हो, उनका साथ ऐसा बन जाता है कि बगैर उनके वो मजा नहीं है। आप जी तो रहे हैं लेकिन उनके बिना भी क्या जीना, जीना तो है लेकिन बगैर उनके वो मजा नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि तेरे बिना भी क्या जीना। बाकी अमिताभ बच्चन के तीन और गाने मैंने रेडी कर लिए और एक से बढ़कर एक ये गाने हैं। सबसे पहले गाना आ रहा है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। लाजवाब ये गाना है, सिद्दीक भाई ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। सिलसिले जो 1981 में मूवी आई थी, बहुत ही बेहतरीन इसके गाने रहे थे और आज भी ये गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे और UPSRTC की बस में ही नहीं कई जगहों पे सुनने को मिल जाएंगे। एक से एक ऐसे रेडियो आ गए जहां आप ये गाना रेगुलर बेसिस पे सुन सकते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ कुछ लोगों की प्लेलिस्ट में आज भी ये गाना टॉप पे रहते हैं। और जो दूसरा गाना है वो मोहम्मद बिलाल की रिक्वेस्ट पे है, मोहब्बत मूवी का ट्रैक, और वो गाना है जिंदा रहती है उनकी मोहब्बत। लता और उदित की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक सुनेंगे मोहम्मद बिलाल की रिक्वेस्ट पे। और फिर मखना जो कि अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज में है, एंड दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय मुमताज अहमद। तो ये जो तीसरा गाना आ रहा है ये है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रैक जिसमें अमिताभ हैं और गोविंदा हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये मूवी भी थी। मुझे उस वक्त के बारे में अगर कहा जाए तो दोनों स्टार बहुत बड़े थे लेकिन गोविंदा के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो लेट पहुंचा करते थे उस वक्त। तो हुआ ये कि यार अमिताभ तो टाइम से पहुंच जाते हैं, गोविंदा इतने बड़े स्टार थे कि अमिताभ को भी गोविंदा की ज़रूरत थी, क्योंकि अमिताभ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाउन से हो रहे थे, लेकिन साथ में मूवी भी करनी थी और ये इतनी बड़ी मूवी और इतनी हिट हो सकती थी इस कैरेक्टर की मूवी, क्योंकि कैरेक्टर दोनों प्ले कर रहे थे, कि ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो ओवरशेडो हो जाए एक दूसरे के काम से। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ बहुत ही लाजवाब निभाया और गोविंदा के लेट आने को अमिताभ ने बर्दाश्त किया। और फिर ये हुआ कि भाई देखो ऐसे अपन डिसाइड कर लेते, जब आप निकलिएगा हमें बता दीजिएगा, उस वक्त मैं भी निकल लूँगा घर से और तब हम साथ में शूटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हुआ करता था। और उस वक्त अमिताभ तो थे बड़े स्टार लेकिन गोविंदा ज़्यादा उनका नाम चल रहा था, और गोविंदा तो गोविंदा थे, चाहे वो एक्सप्रेशन को लेकर हो, चाहे डायलॉग डिलीवरी को लेकर हो, चाहे वो फनी हो, चाहे वो मार पिटाई कुटाई की बात हो, हर चीज़ में वो उस वक्त परफेक्ट थे। और गोविंदा की मूवी, अमिताभ की मूवी का ये गाना छोटे मियाँ बड़े मियाँ का मखना बहुत ज़्यादा चला था। तो सबसे पहले फिलहाल हम इसी गाने पे आएंगे। दूसरे नंबर पे जो गाना है वो बिलाल की रिक्वेस्ट पे है, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। और फिर मखना जो रिक्वेस्ट किया है वो किया है दीवान एंड ओनली मुमताज भाई ने। चलो तो सबसे पहले लता और किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक FM 107 पे दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

खान की आवाज, खूबसूरत सा ट्रैक एफएम 107 पे एंजॉय करा आपने, जबरदस्त गाना। फिलहाल 4:36 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और आखिरी की ये कुछ गाने जो आपके अपने मर्जी के प्ले होने वाले हैं। वेल, एक और गाना है और ये गाना भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अच्छा, ये गाना वो जो जबान पे चढ़ा रहता है लेकिन बहुत कम आपको सुनने को मिलता है, लेकिन यासीन ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। ये गाना है रिम झिम गिरे सावन। वेल, इसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग वॉइस थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पुराना है, बट सही वॉइस मुझे किशोर कुमार का मिला है, तो हम किशोर कुमार का गाना जो है वो प्ले कर रहे हैं। और सबसे पहला जो गाना आने वाला है वो है अलीशा चिनई और शंकर महादेवन का कजरा रे ढुम ढुम ढुम ढुम ढुम। ये भी गजब का और लाजवाब गाना है। ये एक्चुअली ऐसा गाना है जो थोड़ा दिल के करीब भी है। तो शेख साहब जो है, शेख फरहान ने ये गाने की रिक्वेस्ट की है, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड कजरा रे। तो इस गाने को हम एंजॉय करते हैं एफएम 107 पे। और सेकंड जो दूसरा गाना है वो यासीन मुल्ला की रिक्वेस्ट पर रिम झिम गिरे सावन। इन दो गानों को एंजॉय करो और वापस जब हम आएंगे तो गेम खेलेंगे, विच इज पहचान कौन। तो पहचान कौन गेम के लिए हम हैं तैयार और आप भी उम्मीदन तैयार होंगे। गाने का जो, या कह लें शुरुआत गाने की जो है वो कुछ ऐसी है। वापिस आइए जल्दी से और फिर हम खेलते हैं गेम पहचान कौन, दिल से देसी।

रिम जिम गिरे सावन। आ तो नहीं रहा यार, सावन तो आ जाए, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आओ, कब आओगे मेरा भाई, मैं भी रात में निकलना चाहता हूँ। और सिग्नल की वो जो लाइट होती है वो अगर रोड पर पड़ती तो ना खूबसूरत लगता है कतर की, क्या ही बताएं। फिलहाल 4:46 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, एक भाई है उन्होंने सोचा कि अरे कोड़ा है पढ़वा दे फजील भाई को, जाते जाते उन्होंने कहा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ये कौन सा गाना है, ये तो थे भी नहीं अमिताभ इसमें यार, इमरान भाई क्यों कुटवाना चाह रहे हो मेरे को। बाकी आप लोगों के ये गाने ज़बरदस्त रिक्वेस्ट आपकी रही है, और आपके जो आपकी जो प्लेलिस्ट रही है वो गज़ब की रही है इन 3 महीनों में। और जिस तरह के गाने आपने मुझे सुनवाए हैं, वो कई ऐसे गाने थे जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, वो भी मैंने सुन लिए हैं, गज़ब की आपकी पसंद और प्लेलिस्ट। इसी के साथ अब बढ़ते हैं पहचान कौन गेम की तरफ, और ये जो पहचान कौन गेम है इसमें सिंपल सा होता है भाई साहब कि अपन म्यूजिक प्ले करते हैं और आपको गाना पहचानना होता है, और ये म्यूजिक ये गाना बीच से कहीं से भी लिरिक्स जो है वो काट कर यहाँ पर प्ले किया जाता है, आपको पहचानना होता है। हुक भी अगर आपको याद आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, कोशिश करिए कि लिरिक्स ना बताइए कुछ भी लिरिक्स, कई बार लोग लिख देते हैं लिरिक्स सही भी होती है, लेकिन लिरिक्स अगर आप पहचान गए तो आपने पहचाना कहाँ है, आपने तो गाने की लिरिक्स बता दी। कई बार तो मेरे प्ले किए हुए जो गाने हैं उनके ही आप लिरिक्स लिख देते हैं।

चालाक ब्रो चालाक। फिलहाल 666-22-107 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आके गेम खेल सकते हैं। और पहला जो म्यूजिक आ रहा है पहचान कौन गेम का वो है ये।

ये गाने को बताना है, गाने का नाम क्या है, और क्योंकि हमारी और आपकी बस इतना ही मोहब्बत ऐसी है कि यार आज तो इस तरह के गाने हमें प्ले करने पड़ेंगे। पहली रैंकिंग अगर देखा जाए तो आज यूसुफ भाई की है, सबसे सही जवाब इन्होंने दिया, लग रहा कॉपी पेस्ट करके पहले रख लेते, बस नाम नाम लिखना होता है गाने का। बाकी हुसैन साहब ने दूसरी रैंक हासिल कर ली है बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए। और फिर तीसरे नंबर पे आज बिल्कुल नए कोई आ गए हैं, नाम यहाँ पर लिखा तो नहीं है, जुबैर इनका नाम लिखा है, जुबैर बिल्कुल बहुत दिनों बाद या पहली बार आ गए मेरे ख्याल में। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए ये तो कह भी नहीं सकते, बहुत लेट हो गया लेकिन खैर तीन रैंक हमें मिल गई, यूसुफ, हुसैन और जुबैर। बाकी फिर आसिफ के कैसी ने सही जवाब दिया, मुमताज़ ने सही जवाब दिया है, और ये हैं कौन, इमरान है, अरमान ने सही जवाब दिया है, इमरान ने सही जवाब दिया है, फिर ठीक है एक और सही है, खूमी इनका नाम है, बिल्कुल सही जवाब है, और फिर ये हैं आसिफ आलम, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, किशोर कुमार का ये गाना बताया है, अशफाक साहब ने बिल्कुल सही है, शाम ने सही जवाब बताया है, रईस ने सही जवाब बताया, और मुझे लगता है ये तो बहुत आसान है भी। फिर उसके बाद सलाम वालेकुम अस्सलाम, गुलाम शरीफ ने बिल्कुल सही पहचाना है, और गाने का नाम है ये दोस्ती।

और ये दोस्ती जो शाम को खत्म हो गई है आज से, ये शाम को 6 बजे से शुरू होगी अब, तो ये दोस्ती टूटेगी नहीं, ये सिर्फ शो में जो लोग हैं वो चेंज हुए हैं, लेकिन हमारी और आपकी दोस्ती अब कल से शाम को 6 बजे से शुरू होगी। ठीक है, ये यारा ना हमेशा हमारा और आपका साथ रहने वाला है। चलो देखते हैं कि अब रैंकिंग में कोई बदलाव आता है या नहीं, क्योंकि दूसरे नंबर का ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है अमिताभ बच्चन की मूवी का।

हाँ जी, बस इसी के बाद मेन लाइन है, आपको बताना है गाने का नाम, नंबर है 666-22107। और अभी तक मैसेज किसी का मतलब आ तो गया है, लेकिन इधर उधर के मैसेज कर रहा है। नसीम भाई कह रहे हैं, फज्जू भाई आज कितने बेलन से, मेरा मुकाबला ही नहीं है भाई, आजकल मैंने गुड बुक्स में आने लग गया हूं मैं। यूसुफ भाई ने एक बार फिर से पहली रैंकिंग हासिल कर ली है, हुसैन भाई ने दूसरी रैंकिंग हासिल कर ली है, और जुबैर कहीं चले गए हैं, अशफाक ने लेकिन तीसरी रैंकिंग हासिल कर ली है। इसी के साथ मुमताज ने बिल्कुल सही जवाब बताया है, आसिफ के केसी ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया, लेकिन इन्होंने लिरिक्स लिख दी है बीच से। और फिर उसके बाद अरमान साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया, बहुत ही उम्दा। फिर कौन है, नाम नहीं लिखते यार, नाम लिख दिया करो। रईस खान ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया है। फिर उसके बाद जुबैर भाई थोड़ा लेट ज़रूर हुए हैं, सही जवाब बताया है। सरफराज ने भी सही जवाब बता दिया है। आसिफ के केसी और हिशाम ने भी गेम में हाजिरी दे दी है। और फिर ये है गुलाम शरीफ, इन्होंने भी सही जवाब बताया। मुबीन ने भी खेल का मुजाहरा करते हुए बताया कि सुन रहे हैं सब, लेकिन जवाब सिर्फ इसी का दिया है। और गाने का नाम है, अमिताभ बच्चन ने जो गाया है।

हाँ जी, गाने का नाम बताइए, नंबर है 666-22107, 666-22107। अब रैंकिंग हमारे पास आ ही जाएगी कि सही जवाब लोगों ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। सर, ये अमिताभ बच्चन की मूवी का है, सॉन्ग है भाई, आपने ये बता दिया। ऑब्वियसली हम आज थीम जब रखे हैं अमिताभ बच्चन के, तो उन्हीं के गाने प्ले होंगे यार। आपको गाने का एग्जैक्ट नाम बताना है। रैंकिंग में चेंज आ गया है, पहले नंबर पे अब आ गए हैं हुसैन, बहुत ही उम्दा। दूसरे नंबर पे आ गए हैं यूसुफ, और तीसरे नंबर पे एक बार फिर से कमाल करके दिखाया है आसिफ भाई ने, बहुत ही उम्दा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। फिर उसके बाद जुबैर ने बिल्कुल सही जवाब बताया, चौथी रैंकिंग होती तो जुबैर भाई आपको मिल जाती। अशफाक भाई जो दूसरे नंबर पे आ गए थे, थोड़ा लेट जवाब दिया, पांचवें नंबर पे आ गए आप। फिर उसके बाद एक और सही जवाब है जीशान, इनका नाम है, बिल्कुल सही दो जवाब दिए इन्होंने, पहला भी, सॉरी सेकंड नंबर का और तीसरे नंबर का। फिर आसिफ कमाल ने, हिशाम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सैयद ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और गुलाम शरीफ ने भी गेम का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए जीत लिया है आज के गेम, क्या बात है। फिर अरमान खान ने तीनों सही जवाब बताए, बहुत ही उम्दा अरमान खान ने। फिर ये है असद ने तीसरा गाना सही बताया, और ये हुसैन है। अच्छा, इन्होंने लिखा है साथ में कि जाते जाते ये गाना लगा देना, वो तो ये डिसाइड होगा, रुक जाओ। ओएस अहमद ने, यार मैं इस गाने का नाम आपने बीच से कहीं से लिख दिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल सही जवाब मुमताज का। और रायना मलिक ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, गाना है मशहूर गाना जिसे गाया है किशोर कुमार ने, एंड दिस सॉन्ग इज तेरे

फिलहाल जाते जाते इन तीनों में से एक गाना मैं प्ले करने वाला हूँ. वोटिंग करते हैं कि कौन सा गाना आपको इन तीनों में से सुनना है. सबसे जो लाजवाब गाना, या एक तो सारे के सारे लाजवाब है, कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे वो बताइएगा. पहला गाना ये है.

0: दूसरा गाना है
1: अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
0: और तीसरा गाना
2: तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार ना
0: वेल आसिफ फिर उसके बाद वलीद हुसैन फिर आसिफ के किसी इन सब ने कहा है तेरे जैसा यार कहां ये गाना सुनना चाहते हैं वो तो जाते जाते मैं इस गाने को प्ले करूंगा लेकिन जाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया इन तीन महीनों में इस खास शो द रिक्वेस्ट शो में बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बातें करके कोड़े मैन ने भी हमारा बड़ा साथ दिया कि एक भी कोड़ा नहीं चिपकाया आपने बड़ी कोशिश करी कि एक कोड़ा तो फजील को पड़ जाए लेकिन फजील ने भी अपनी पूरी तैयारी करी हुई थी ऑल्दो तेल के साथ भाई साहब हमारे कोड़े मैन ने भी पूरी तैयारी करी थी लेकिन एक भी कोड़ा पड़ा तो नहीं लेकिन बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करते हुए आपकी प्लेलिस्ट को प्ले करते हुए उसके अलावा आपकी प्लेलिस्ट को जाना भी नए गाने भी सुने और ज़बरदस्त ट्रैक के साथ साथ मज़े जो हैं वो भी आए पहचान कौन के गेम में इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे अनप्लग्ड इवनिंग के शो में
2: तेरे जैसा यार
0: और जाते जाते ये तो मैं कहना भी चाहता हूँ कि आप सब जैसा दोस्त यार कहाँ ये यार आना कल शाम 6 से 7 चलेगा FM 107 पे दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दोहा से दोहा की दूरी हम दो घंटे में पूरी करेंगे और 7 बजे ये फ्लाइट शाम की पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन पर। तमाम पैसेंजर्स को ये सूचित किया जाता है कि कल से हमारी फ्लाइट सुबह के 6 बजे से उड़ेगी। सुबह सुबह उठने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ साथ अपनी चाय, बिस्किट, नाश्ता पानी सब लेकर पहुँचें। और फिलहाल जिसको भी इस जहाज़ में सवार होना है मेरे साथ आ सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी सवारी पर ले चलेंगे कि आपको टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ेगा और मजे भी आ जाएंगे। मेरे तमाम क्रू मेंबर्स, भाई गेट बंद कर दो, किसी को यात्री को उतरने मत देना। आप कहीं भाग नहीं सकते। टिंग टिंग टिंग।

0: शाबाशी मिलेगी, पूरी शाबाशी मिलेगी। पांच बज के 3 मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड दूं, हवाला कबीर भाई हाजिर हूँ शाम में। तो ये आज लास्ट शो है, इसके बाद 3 महीने बाद ही नंबर आएगा भाई। अभी 3 महीने सुबह चलेगी, तो कल सवेरे मिलेंगे सुबह 6 बजे। पहले ही बता दूं, मैं पहले ही सूचित कर देना चाहता हूं, इन केस कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं क्लियर आउट कर रहा हूं। जिसको भी सुबह आना है भाई आ जाना। मैं मुझे एक बंदे ने कमेंट किया, तुम तो वीडियो में कह रहे हो आने के लिए, तुम खुद आ जाना। मैं उसके कमेंट का बुरा नहीं माना, बिकॉज ही इज राइट, गलत नहीं कह रहा वो बंदा। भाई साहब अभी जाके सवेरे सवेरे आना पड़ेगा, मेरे तो खुद सोच सोच के मेरे ऐसे दिल धक धकड़ हो रहा है। बाकी मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर। बैन वो जो लुक देखा है आपने, बहुत ही वो साफ सुथरा लुक है सोशल मीडिया पर। मैं भी आपको अपना मैसी वाला लुक भेजता हूँ, जो मुझे वीडियो में लेने नहीं दिया गया वो मैं भेजूंगा। वैसे भाई इस फ्लाइट में हमें भी ले लो, बिल्कुल भाई। और क्या हाल है भाई के? ये मैसेज क्या है सरफराज आलम भाई ने, सरफराज आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और भाई कह रहे हैं व्हाट्सएप पर नंबर करो भाई, वही तो मैं इतना जज्बाती हो रहा हूँ ना इस शाम को सोच के, जिसकी कोई हद नहीं। कह रहे हैं विच फ्लाइट नेम, बंटी एयरलाइंस का टिकट ले लेना, ठीक है, बंटी एयरलाइंस है हमारी, थैंक यू सो मच। और वालेकुम अस्सलाम हीरो भाई, क्या हाल है भाई के? और इनके बाद मैसेज किया है हुसैन भाई ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? भाई आपके लिए दिल से 2 लाइन, हजरात जरूरी सूचना, शाम का आरजी सुबह का मुर्गा बन गया है। पहले लोग शो सुनने के लिए जागते थे, अब तुझे सुनने के लिए उठना पड़ेगा। क्या डायलॉग है यार, क्या डायलॉग है भाई, ओए बेड़े की जान। ये तो मैं यूज़ कर सकता था यार, ये काश मैंने यूज़ किया होता यार हुसैन भाई प्रोमो में। नाजिया बहन लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, पर आपका अंदाज़ हमेशा कितना लाजवाब, जज़ाकअल्लाह बहन, वालेकुम अस्सलाम। और अब्दुल करीम साहब लिखते हैं, कभी कभी मौत का सामना करना पड़ सकता है इस फ्लाइट में, कभी कभी नहीं, हर बादल के बाद। हाँ सैयद हमजा भाई वालेकुम अस्सलाम, इंशाल्लाह विल कैच इन द मॉर्निंग शो टुमारो, थैंक यू सो मच भाई। और एक मैसेज, सलाम, रजिस्ट्री कर लें अटेंडेंस मेरी भी, सरवर भाई ने लगा दी, सरवर भाई ने लगा दी। वो सरवर भाई की फोटो आई ऊपर वाली, शेव करा के घूम रहे हैं वो, दिखे नहीं मुझे, नहीं तो क्लास ले लेता उनकी मैं। जैदी भाई आपकी अटेंडेंस लगा ली, इनकी तो क्लास लेनी पड़ेगी, शेव करा घूम रहा भाई लड़का, एकदम चिकना हो रहा कदी। काशिफ भाई को बहुत सारा प्यार, काशिफ भाई बहुत सारा प्यार। और यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, दिखते हैं कैप्टन कबीर जी, कैप्टन कबीर हाजिर हैं। आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं बहुत प्यार, वैसे आपकी आवाज़ को क्या हुआ आज, आज मेरी आवाज़ को क्या हुआ है आसिफ बेटे, क्या हुआ मेरी आवाज़ को? बच्चे आप अपने स्पीकर ठीक कराए। राशिद साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम हमारे आसिफ साहब। और कह रहे हैं 5 बजे ऑन डॉट हम भी हाजिर हैं आपके साथ, लास्ट दिन है, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। अरे ऐसा थोड़ी है भाई, कतई मतलब मैं गुफा में थोड़ी जा रहा हूँ रियान भाई। रियान भाई ने तो ऐसे लिखा जैसे अभी पता नहीं कहाँ जाएगा ये। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, वालेकुम अस्सलाम हिशाम साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आपको भाई भर के। और आया हमें मैसेज, क्या है, सैड लग रही है आवाज़ भाई, सैड तो है। इसमें शक को नहीं भाई, पता है मैं बहुत, मैं सोचता नहीं हूँ भाई आगे आगे पिछले का, लेकिन अभी सोच रहा हूँ मैं, सुबह उठना है मुझे 4:30 बजे, उठ के नहा धोके तैयार होना एकदम। कोई नहीं याद दिलाएगा इस बारे में मुझे। नसीम साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एक मैसेज आया, गुड टू सी इन द मॉर्निंग, काश ये मैं भी कह पाता अपने लिए। और एक मैसेज है, भाई भाई अभी भेजता हूँ भाई, कह तुम जा रहे हो तुम ना आ जाओ। पाजी मैं हमारे ऐसे भाई, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ। गुड मॉर्निंग एडवांस कह रहे हैं भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुश्मनों की जरूरत थोड़ी है मुझे। महसूस साहब वालेकुम अस्सलाम, हम भी आपके साथ हैं सुबह 4 बजे भाई सलाम। क्या भाई कल सुबह की स्टोरी सुनाओ, कल सुबह स्टोरी सुनाएंगे भाई, क्यों नहीं सुनाएंगे। इकराम साहब वालेकुम अस्सलाम, होप यू डूइंग वेल। ढोल भाई कुछ देर में जाऊंगा, स्टोरी भेजना नहीं भूलना भाई, नहीं भूलूंगा, टेंशन मत लो तुम। यार टुडे लास्ट बिकॉज माय ड्यूटी स्टार्ट 10:30 बजे रहा है मेरा भाई यार। और ढोल पे बजा देंगे भाई, रोने वाला टोन लगा था क्या, 5 रुपये का रोने का टोन लगा दो हुसैन भाई यार। और एक मैसेज, सलामत रहो, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई कौन से लोग थे वो जो कल आके कह रहे थे लव स्टोरी सुननी है, हैं कौन से थे वो बताओ, कौन से थे वो जितने लव स्टोरी वाले थे ना भाई, आज आज तुमको भाई मैं लव स्टोरी सुनाऊंगा। क्योंकि इसके बाद तो सुबह का शो है, तो मैंने कहा भाई आज मैं वो दे ही दूं जो लोगों को चाहिए। आज भाई साहब मैं तुमको लव स्टोरी सुनाऊंगा, ऐसी सुनाऊंगा ऐसी सुनाऊंगा, याद रखोगे भाई। कति मौज आ जाएगी। एक मैसेज है, क्या कह रहा है, अलार्म क्लॉक खराब हो जाए फिर उठे नहीं पाओगे सुबह, तब मजा आएगा। थैंक यू सो मच, ये हौसला अफजाई देख रहे हैं, हौसला अफजाई। अभी दूसरा आरजे होता ना यहाँ पे, तो ये कह रहे होते मुझे दुआ है आपके लिए आप पहुंचे मेरे साथ फ्री है बट आई लाइक इट ऐसी फ्री रहा करो मेरे साथ नहीं भाई अलार्म मैं जो ना दो तीन नहीं 10-20 लगाता हूं मैं एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग बड़ा ही खतरनाक थी कल वाली कहानी वो कहावत है ना कि भाई सही बात है हैप्पी लास्ट इवनिंग मत बोलो यार लास्ट वास्ट कह रहे हैं हैप्पी कबीर आपके फैंस ज्यादा यहाँ तो दुश्मन बड़े हैं जो आपको सुबह आने का इंतजार कर रहे हैं उस्मान औरंगजेब साहब वालेकुम अस्सलाम मेरी जान और हसन रजा साहब ने लिखा है वेटिंग फॉर योर बॉम्बास्टिक स्टोरी एंड हैव अ नाइस गुड इवनिंग फॉर यू बिकॉज लास्ट इवनिंग है आपके साथ खुश रहे अरे यार क्या मतलब विदाई दे रहे हो क्या मुझे डोली उठ रही है मेरी क्या हो रहा है कह रहे भाई आपकी ड्यूटी जब भी है उसका कोई मसला नहीं लेकिन स्टोरी चाहिए वो तो मुझे पता है मतला तो सिर्फ स्टोरी का भाई कबीर भाई ये पैटर्न अच्छा जा रहा है मेरे लिए क्योंकि अब तक वेकेशन थी और आपका इवनिंग शो नेक्स्ट वीक से मेरी इवनिंग में ट्यूशन है सो मॉर्निंग बहना क्या बात है मेरी बहन एकदम सेट हो गया मामला या भाई शो कितने बजे तक होगा मेरी ड्यूटी 10 बजे स्टार्ट होती है भाई शो होगा सुबह के 6 से 9 के बीच में 7:30 बजे गानी आएगी आसिफ भाई के लास्ट मैसेज पढ़ दूँ मैं कह रहा भाई आपकी फ्लाइट के रास्ते में अगर हेलीकॉप्टर आ गया तो भाई भर देंगे हेलीकॉप्टर में क्या टेंशन हो रही है आसिफ भाई दिल्ली से हूँ भाई एक बजे अस्सलाम वालेकुम 4 बजे आएंगे तो सुबह में उठने वाला उठता ही आपको मिस करेगा कबीर भाई आकर चले गए नहीं नहीं भाई सुबह 4 बजे उठूंगा 6 बजे से शो है समझ रहे हैं आप एनीवे 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलेंगे और सुनो मैं आपसे कह रहा हूँ जो मुझसे कह रहे थे ना लव स्टोरी सुननी है भाई साहब आज आपको मैं लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ ऐसी लव स्टोरी सुनाऊंगा ना मोहब्बत में चूर हो जाओगे आप ठीक है तो लव स्टोरी वाले तो जरूर मैसेज करें 666-22-107 नंबर है 666-22-107 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद आपसे हो रही है मुलाकात ठीक है भाई लव स्टोरी के साथ मिलते हैं
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर

भी इस लव स्टोरी से कुछ डिराइव कर चुकी है, समझ रहे हैं आप, ये इतनी इंपॉर्टेंट लव स्टोरी है और इसलिए मैंने बैकग्राउंड स्कोर भी इसके लिए पूरा ही अलग रखा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप उस टाइमलाइन में चलें जिस टाइमलाइन की ये कहानी है, ठीक है। तो मैं ज़रा रिकॉर्डिंग सबसे पहले अपनी तरफ से ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जन प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, एफएम 107 किसी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लव स्टोरी। चलिए, आज का किस्सा सुनाने के लिए, लव स्टोरी सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 1932 में। पहले समझ लीजिए कि माहौल क्या था। सो 1932 में फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। उस टाइम यूएसए गुजर रहा था ग्रेट डिप्रेशन से, बहुत ही बुरा वक्त। 1929 में वॉल स्ट्रीट पूरी तरह से क्रैश हो गया था, सबके बिजनेसेस चौपट हो चुके थे और लोग बौखला गए थे, खाने को खाना नहीं है, फार्मिंग हो नहीं पा रही है, सब कुछ बिखर गया है एंड पीपल वर सुपर पुअर, मतलब गरीबी रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस वजह से बढ़ रहा था क्राइम। चारों तरफ खुलेआम क्रिमिनल्स घूम रहे थे, किसी को किसी पे कोई भरोसा नहीं था और इस बीच पनप रही थी एक लव स्टोरी जो दुनिया याद रखने वाली थी। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है एक लड़का जिसका नाम था क्लाइड। क्लाइड का जन्म हुआ था 1909 में, तो लॉन्ग बैक। क्लाइड का जन्म हुआ था एक ऐसे घर में जो बहुत बहुत गरीब थे, ये फार्मर्स थे सारे के सारे और ये एलिस काउंटी टेक्सास में पैदा हुआ था, साउथ ईस्ट ऑफ डेलिस। और क्लाइड के घर में उसे मिलाकर 7 लोग थे टोटल। क्लाइड का अपने भाई बहनों में 5वां नंबर था और इससे बड़े एक थे। फैमिली जो थी वो 1920 में मेन डेलिस की तरफ आ गई थी और यहीं पर सेटल हो गए थे, मगर जिस तरफ ये आए थे वो स्लम एरिया था। अब है तो नहीं, जेबें खाली हैं, क्या करें, बहुत बहुत खराब जगह पर ये लोग आके सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। अब अंदाजा लगा लीजिए, क्लाइड उसकी इतनी बुरी हालत थी कि ये लोग वैगन, जो बड़ी सी वैगन होती है, उसके पास बेचारे पड़े पड़े सो जाते थे सड़क पे, इतने बुरे हालात थे। और पूरी फैमिली, सारे भाई बहन, और वहीं पर रहे जब तक ये जोड़ नहीं पाए डॉलर्स, और जब कुछ डॉलर्स जोड़ भी पाए तो उससे महज एक टेंट ले पाए, तो टेंट में बारी बारी सोते थे। अब देखो, कुछ नहीं था खोने को, कुछ नहीं था इनके नाम पे, तो फैमिली का हर एक बंदा थोड़ा सा क्रिमिनल बन गया। क्लाइड जो था, जो इस कहानी का मेन आशिक है, क्लाइड को पहली बार अरेस्ट किया गया जब वो सिर्फ 17 साल का था। उसने एक गाड़ी किराए पे ली, रेंटल कार थी, और पेमेंट की नहीं, गाड़ी लौटाई नहीं, ऐसी तैसी में जाए दुनिया, और पुलिस ने कर लिया उसे ट्रैक। 17 साल का दिमाग कहां इतना चलेगा, तो उसे पकड़ लिया गया। क्लाइड नहीं माना, क्लाइड ने कहा नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम खौफ थोड़ा कम था। तो उसका जो भाई था क्लाइड का, उसका नाम बक था, दोनों ने मिलकर दोबारा चोरी करी। चोरी इस बार बड़ी अलौकिक थी, इन्होंने टर्की और मुर्गे चुराए, मुर्गे ऊंचे ऊंचे मुर्गे होते, उनकी चोरी करी, बड़ी अजीब चोरी थी। खैर, इस बार भी पकड़े गए पर छोड़ दिए गए। 1927 से लेकर 1929 तक क्लाइड ने छोटी मोटी इधर उधर गिर पड़ के बेईमानी ईमान से नौकरी जैसे तैसे करी, मगर इस बीच भी अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ा, जो कि था क्राइम करना, छोटी छोटी रॉबरी। और कार थेफ्ट तो मतलब मशहूर था उस टाइम पे, लोग गाड़ियां चोरी करने में बहुत यकीन रखते थे। उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि गाड़ियां चोरी करना बहुत आसान था। इलेक्ट्रिक स्टार्टर जो गाड़ी में अभी आप देखते हैं, वो उस टाइम पे इन्वेंट हुआ था। तो हॉट वायरिंग होती है ना, तारों को तारों से जोड़ के, मैंने घोड़े की आवाज निकाल दी, पर आप समझ गए ना, गाड़ी को स्टार्ट करते थे लोग हॉट वायरिंग करके, एंड इस काम में क्लाइड बन गया मास्टर। अब क्लाइड से तो आप मिल लिए, क्लाइड जो है इस कहानी का मेन आशिक है, मगर लव स्टोरी बिना हीरोइन की पूरी नहीं होती, तो मैं आपको जरा हीरोइन से मिलाता हूं।
तो इस कहानी की हीरोइन जो है उसका

का नाम है बोनी, और बोनी जो थी, बोनी का जन्म हुआ था अक्टूबर की पहली तारीख को 1910 में, मतलब एक साल बड़ी थी क्लाइड से, लेकिन अलग जगह पैदा हुई थी, रोहाना टेक्सस में। बोनी के जो फादर थे वो ब्रिक क्लियरिंग का काम करते थे, और जब वो सिर्फ 4 साल की थी तो वो चल बसे, खानदान मुश्किल में पड़ गया। माँ क्या करती, माँ ने सोचा कि चलो मैं मायके चली जाती हूँ, तो अपने घर पे ले गई वो, इन सीमेंट सिटी डेलिस टेक्सस में, और बहुत ही बुरा इलाका था ये भी। बॉनी जो थी वो छोटे मोटे काम करके बस जी रही थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसको एक्ट्रेस बनना था, सिंगर बनना था, पोएट्रेस बनना था, बड़े बड़े सपने। सेकेंड ईयर में जब बॉनी थी हाई स्कूल के, तो बॉनी की मुलाकात एक लड़के से हुई। इस लड़के का नाम था रॉय थॉर्नटन। अब पता नहीं क्या हुआ, 16 साल की थी सिर्फ बॉनी उस टाइम पे, बॉनी ने डिसाइड किया कि स्कूल छोड़ देती हूं, स्कूल छोड़ के शादी कर ली। बड़ा वियर्ड टाइम था ये, तो दोनों ने शादी कर ली। और बॉनी के साथ एक बड़ी खास बात थी, 1930s में उसके हाथों पर टैटू था। किसी ने सुना भी नहीं था कि टैटू भी होता है, पर लड़की अलग थी। अब शादी तो कर ली, निभानी आती नहीं, रॉय जो था वो बिजी रहता था, और मैरिज मजाक बन गई। दोनों ने कभी डिवोर्स नहीं लिया, बस अपने अपने रास्ते चल दिए। बॉनी जो थी उसने भी छोड़ा इसको कि टाइम ही नहीं दे रहा, साइड हो, परे हो। और बॉनी जो थी वो अपने माँ के पास वापस आ गई। उसके बाद उसने वेट्रेस का काम शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे दोनों अलग अलग जी रहे हैं अभी तक, ये हीरो हीरोइन इस लव स्टोरी के मिलेंगे कब? तो क्लाइड 20 साल का था, बॉनी जो थी वो 19 साल की थी। एक दिन क्या हुआ, बॉनी जो थी वो नौकरी से निकाल दी गई बदतमीजी की वजह से। उसको तो स्टार ट्रीटमेंट चाहिए, सामने वाला दे नहीं रहा, वो तो वेट्रेस कह रहा है। तो उसने कहा मैं तो चली, और लड़ाई झगड़ा कर दिया, उन्होंने ही उसे नौकरी से निकाल दिया। और फिर वो अपने एक दोस्त के घर रहने लगी। उस दोस्त का एक म्यूचुअल फ्रेंड था, और आपस में लोग मिलने लगे। और मिलते मिलते एक दिन हुआ ये कि बॉनी जो थी वो अपने दोस्त के किचन में हॉट चॉकलेट बना रही थी। उसी वक्त दोस्तों के जरिए एक दोस्त घर में आया, वो था क्लाइड। क्लाइड की एंट्री यहां हुई, और ना जाने क्या हुआ, क्लाइड को देख के बॉनी का जैसे दिमाग खराब हो गया। बॉनी ने डिसाइड किया कि यही है मेरी दुनिया। जनवरी की 5 तारीख थी 1930। दोनों के दोनों न जाने एक दूसरे में क्या देख पाए उस पहली नजर में, कि दोनों को बे इंतहा मोहब्बत हो गई, कि मतलब जीना यहां मरना यहां वो वाला सीन हो गया। पर ये मुलाकात बहुत जल्दी दूरी में बदल गई, क्योंकि दोनों का भेजा बहुत अलग था। क्लाइड जो था वो अरेस्ट हो गया मुलाकात के बाद ही, गाड़ी की चोरी कर रहा था, ईस्टर्न प्रिजन में फार्म में उसे डाल दिया गया। इस टाइम वो 21 साल का हो गया था, अप्रैल की 1930 की तारीख थी, 2 तारीख। अब आप सोचेंगे अब तो दोनों अलग हो गए, अरे रुकिए, लव स्टोरी कैसे होगी। सो क्लाइड जब जेल में गया तो बॉनी ने कहा कि यही चाहिए। बॉनी के साथ क्या था, उसे क्लाइड का ये जो, जिसे आज की जनरेशन कहती है ना बैडी, तो उसको लगता था यार ये कितना बढ़िया विलन है, यही है मेरी मोहब्बत। और चंद मुलाकातों के बाद ही बॉनी ने डिसाइड कर लिया मैं तो इसे जेल से निकालूंगी, और उसने गन स्मगल करके, जिससे वो कुछ दिनों पहले मिली है, उसके लिए गन स्मगल करी जेल के अंदर, और क्लाइड ने उसका इस्तेमाल करके बाहर आने का जुगाड़ भी कर लिया, पर ये ज्यादा नहीं चला और वो पकड़ा गया। उसके बाद उसे पकड़ के ऐसी जेल में भेजा जहां हालत बिल्कुल खराब थी, मतलब इस जेल में तो सिर्फ तुड़ाई ही तुड़ाई होती थी। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई किसी को नहीं बख्शा जाएगा यहां, तो जीने के हालात खराब, खाना पीना तो भूल जाओ, पूरे दिन हल जुतवा रहे हैं वो। क्लाइड ऑलरेडी बहुत ही पतला था, और उसकी लड़ाइयां हर दिन होती थी, लोग उसको बुली करते रहते थे प्रिजन में, और बाहर जो बॉनी थी उसे छोड़ के नहीं गई ना, वो बस जुगाड़ कर रही थी कि कैसे मैं अपने क्लाइड को बाहर निकालूं। दूसरी तरफ क्लाइड को एक बंदे ने बुली किया बहुत।

बुरी तरह, और बहुत दिनों तक करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि क्लाइड ने कहा इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने साइड में लिया और उसको मार दिया। मगर यहां पे कहानी में ट्विस्ट आया, जब उसको मार दिया तो सारे के सारे जो कैदी थे वो करने लगे हो, लेकिन बीच में से कैदी निकल के सामने आया और ये ज्यादा उम्र का था, ये बोला तू टेंशन मत ले, तो जवान लड़का है, इसको मारने का इल्जाम मैं अपने सर पे लेता हूं। क्लाइड ने पूछा क्यों, तो बोला अरे मैं उम्र कैद की सजा काट रहा हूं रे, मेरे को क्या इधर ही रहने का है, तू जा। और विद अ वियर्ड ट्विस्ट उस बंदे ने पूरा का पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और क्लाइड को मासूम बच्चा गलतियों से भरा पुतला समझ के जाने दिया और बोला कि तेरा ब्राइट फ्यूचर है। और कुछ सजा काटने के बाद अच्छे बिहेवियर का नाटक करके बॉनी और क्लाइड फिर से मिले 1932 में। दोनों ने सोचा हमारा प्यार जिस तरीके से कामयाब होगा उसका एक ही तरीका है, डेट नहीं, साथ में क्राइम करेंगे। क्लाइड ने बनाया ग्रुप और ग्रुप में बनके इन्होंने खूब लूटा, छोटे छोटे बैंक, छोटे मोटे गैस स्टेशंस, ग्रोसरी की चोरी, शुरुआत हुई ब्रेड चोरी से, पानी की बोतल, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे लेवल बढ़ाता गया। गिफ्ट में बॉनी ने कहीं से चुरा के क्लाइड को बहुत जबरदस्त गन दी, ऐसी गन दी जो पुलिस वालों के पास भी नहीं होती, ऑटोमेटिक गन। ये एक तोहफा था। दोनों उसके बाद डेट पे भी गए। डेट पर जब ये दोनों गए बॉनी और क्लाइड और आजादी को महसूस कर रहे थे तो दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना जाम खा रहे हैं इनको भी लूटा जाए, व्हाई नॉट। और दोनों ने उसी रेस्टोरेंट को खाने के बाद, आराम से खाने के बाद, प्यार भरी बातें करने के बाद लूटा और फिर हंसते खेलते वहां से बाहर चले गए। बॉनी ने कहा कि तुम्हें जो कर रहे हो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई लव यू सो मच। इस पूरे चोरी के सिलसिलों के दौरान बॉनी ने कहा मुझे भी थोड़ी चोरी सिखाओ ना, मुझे भी कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है तुम्हारी तरह, वरना मैं तुम्हारे लायक कैसे बनूंगी। और क्लाइड ने उसे सिखाया चोरी करना, मगर बॉनी जो थी वो सीख नहीं पाई। ये प्रैक्टिस के दौरान एक हार्डवेयर स्टोर में चोरी करती हुई बॉनी पकड़ी गई, मगर उसे मासूम समझकर वार्निंग देकर पुलिस वालों ने छोड़ दिया। फिर आया अप्रैल का महीना 1932, दोनों ने मिलकर एक स्टोर को लूटने की कोशिश करी। यहां पे बहुत ही वियर्ड चीज हुई, ये दोनों आए और अब तक तो प्रैक्टिस हो चुकी थी चोरी की, तो ये स्टोर के सामने खड़े थे और तैयार थे बाहर निकल के हम सीधा लूटेंगे, लेकिन कुछ और लुटेरे आए और उन्होंने ओनर को ही मार दिया इनके नजरों के सामने। और क्योंकि ये ऑलरेडी पहले बदनाम थे, गाड़ी वहां से हटाना भूल गए एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, तो पुलिस वालों ने कहा यही है, और इल्जाम उस पे आया एक और बंदे को मारने का जो जबरदस्ती का था, और उसे सजा भी इस बार सुनाई गई इलेक्ट्रिक चेयर की, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था। अब ये सजा से तो बचना ही पड़ेगा, तो बॉनी ने कहा नहीं हम फिर से भागेंगे, तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी तक तो भाग ही रहे ना। और इन दोनों का ये एडवेंचर आगे बढ़ा। 15 अगस्त 1932 में बॉनी और क्लाइड पार्टी कर रहे थे, इन सब के बीच जहां उसे सजा सुना दी गई है और ये दोनों के दोनों एक क्लब में इन 1930s पार्टी कर रहे थे ओक्लाहोमा स्ट्रिंग टाउन में। एक दूसरे को हजार बार लव यू बोल चुके थे और दोनों इस टाइम पे पत्ते भी खेल रहे थे। उस वक्त जब वो स्मोकिंग करने की कोशिश कर रहा था तो इतने में एक शेरिफ जो वहां पे ड्यूटी पे था उसने देख लिया, वो आया और दोनों उसे यंग लगे तो उसने बोला तुम दोनों कौन हो? मरे दूसरे स्टेट की पुलिस थी। बॉनी और क्लाइड थोड़ी देर के लिए रुक गए, बोले सर वो मैं वो। बॉनी और क्लाइड जानना चाहते थे क्या हमें रोकेंगे, क्या पकड़ तो नहीं लेंगे, मगर उस टाइम का रूल कुछ अलग था। ऑफिसर ने कहा ड्रॉप करो उसे, फेंको उसे सिगरेट को। रूल ये था और बहुत ही वियर्ड था, उस टाइम पे अगर एक स्टेट का क्रिमिनल दूसरे स्टेट में जाता है तो उस पर कोई केस नहीं बना सकता नया वाला स्टेट। अभी ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था।

और क्लाइड ने इसका पूरा पूरा इस्तेमाल किया। उसे समझ में आ गया ये मैं शहर बदलूंगा तो ये मुझे नहीं पकड़ सकेंगे। मार्च 1933, बक जो कि क्लाइड का भाई था वो साथ देने लगा। बक, उसकी वाइफ थी ब्लांच, दोनों ने मिलकर बॉनी और क्लाइड को कहा कि तुम दोनों कब तक क्राइम की जिंदगी जियोगे, जैसे पिक्चरों में होता है, तुम हमारे साथ हाउस कीपिंग का काम करो, अपार्टमेंट साफ करो। मगर बॉनी और क्लाइड काम करेंगे, उन्हें सिर्फ क्राइम और मोहब्बत, इसके अलावा कुछ नहीं आता। दोनों अपार्टमेंट क्लीन करने जाते थे और वहां बैठ के पत्ते खेलते थे। एक दिन अपार्टमेंट में बॉनी और क्लाइड बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस बीच बॉनी ने क्लाइड से कहा कि ये गन को कैसे साफ करते हैं बेबी? तो क्लाइड ने कहा लाओ मैं सिखाता हूं, और वो गन को साफ करने की कोशिश कर रहा था, सिखा रहा था, इतने में गलती से उससे चल गई गोली। और जब गोली चली तो किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन गोली की आवाज पड़ोसियों तक पहुंच गई। पड़ोसियों को शक हो गया कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को इत्तला कर दी। पुलिस वाले फुल एक्टिव, 5 आदमी हथियार बंद, गाड़ियां लेकर यहां पर पहुंचे। बक और क्लाइड दोनों ने दो ऑफिसर पर गोली चलाई, एक डिटेक्टिव था, एक कांस्टेबल था, और बॉनी जो थी जिसने क्लाइड से गोली चलाना सीख ली थी, उसने पेड़ की तरफ देखा एक बंदा खड़ा हुआ है, और उसने कहा आज मैं क्लाइड को प्राउड फील कराऊंगी, और उसने पेड़ की तरफ भी गोली मारी, और वो पेड़ से टकरा के सार्जेंट जो साइड में बैठा हुआ था उसके लगी, और वो सार्जेंट चल बसा। फिर ये कार में बैठे और वहां से भाग गए। उस वक्त की पुलिस के पास स्क्वाड कार्स भी नहीं हुआ करती थी, उनसे बेहतर गाड़ियां बॉनी और क्लाइड के पास थी। जब बाद में अपार्टमेंट पर रेड की गई तो अपार्टमेंट में से कैमरा रोल्स पाए गए, और यहां पर बॉनी और क्लाइड की आपस में लिखे हुए लव लेटर्स जो ये सामने बैठे हुए लिखते थे एक दूसरे के ऊपर, शेरो शायरी, यही सब मिला, और कुछ हथियार जो ये भूल गए थे। और फिर जब बॉनी और क्लाइड थोड़े से बोर हो गए कि कहां कब तक लूटते रहेंगे, ठीक ठाक है, तो उन्होंने किडनैपिंग चालू कर दी। पर बॉनी और क्लाइड की किडनैपिंग और बाकी जगहों पे लोगों के करने में बहुत फर्क था। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सोफिया स्टोन नाम की एक लड़की और उसके हस्बैंड डिलर डार्बी को उठा लिया बंदूक की नोक पे। फिर जब बॉनी और क्लाइड बैठे हुए उनसे बातचीत कर रहे थे तो दोनों को लगा यार ये दोनों तो हमारी तरह प्रेम में है, प्यार में है, हम इन दोनों प्यार के पंछियों को कैसे कैद रख सकते हैं। और फिर ना जाने ये ख्याल कब बड़ा हुआ, दोनों ने उल्टा दोनों को पैसे देकर कहा चलो चलो जाओ जाओ घर जाओ दोनों आजाद हो। और वो दोनों कह रहे पक्का ना गोली तो नहीं मारेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम भी हमारी तरह प्यार करने वाले हो, जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ। और दोनों को आजाद कर दिया। इसके बाद बहुत सारे आमने सामने हुए पुलिस के और इसकी गैंग के 1933 में। ऐसे में ब्लांच और बक को भी गोली लगी। ब्लांच तो बेचारी जो उसके भाई की बीवी थी वो तो बेचारी लेफ्ट आंख से अंधी हो गई, और बक को इतनी खतरनाक गोली लगी क्लाइड के भाई को कि वो हॉस्पिटल जा नहीं सकता, तो बेचारा इधर उधर घूमता रहा, और पुलिस को भी निशान मिल रहे थे, कहीं गिरे हुए बैंडेजेस, गिरे हुए कपड़े, खून में लथपथ, कहीं पर ड्रॉप्स, और पुलिस उसके पीछे चिपक गई। पुलिस ने यहां तक कि पब्लिक में अनाउंस कर दिया कि जहां ये बॉनी और क्लाइड दिखें मार दो हमारी तरफ से, टेंशन फ्री रहो। बक और ब्लांच तो पकड़े गए हॉस्पिटल में, इनफैक्ट बक को निमोनिया हुआ और वो चल बसा, मगर बॉनी और क्लाइड अभी भी आजाद प्यार के पंछी गायब थे। इनकी पूरी गैंग कोलोराडो पहुंची, वहां से मिनेसोटा, वहां से साउथ ऑफ मिसिसिपी, हर जगह घूमते रहे। बॉनी और क्लाइड इस बीच एडवेंचर करने के लिए भी जाना चाहते थे, बोटिंग करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स कपल हैं। बोटिंग करने के लिए जब गए तो जो वहां पे हेड था जो बोटिंग करवाता था उसे अभी तक चेहरा समझ में आ गया था बॉनी और क्लाइड क्या चीज है, और जब वो सामने आए दोनों के हाथ में गन थी,

लगया। जश्न मनाया। बॉनी खुश थी कि क्लाइड की तरह उस पर भी एक वारंट निकल आया है। जनवरी 16, 1934 दोनों ने कई कैदियों को आजाद कराया जहां पे क्लाइड बंद था, क्योंकि वहां पे क्लाइड को लगता था कि उनके साथ जुल्म होता है और इसको ईस्टर्न ब्रेकआउट के नाम से आप पढ़ भी सकते हैं। अब क्योंकि इतना बड़ा फैसला कर लिया, इतना बड़ा काम कर दिया, तो फेडरल गवर्नमेंट पीछे पड़ गई। नेशनल वाइल्ड हंट। एक बंदा था पुलिस महकमे में जिसका नाम था फ्रैंक हैमर। उसने तो डिसाइड किया, इस जोड़े को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 1 अप्रैल 1935 क्लाइड ने अपने एक मेंबर के साथ हाईवे पेट्रोल ऑफिसर और डिटेक्टिव पर गोली चलाई और वहां से भी भाग गया। और साथ साथ क्लाइड के साथ बॉनी भी उतनी ही डेंजरस होती जा रही थी। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर था। इनाम कितना रखा? $1,000। क्योंकि कंट्री गरीबी से गुजर रही थी तो कितने देते? तो $1,000। बॉनी और क्लाइड के ऊपर वांटेड डेड और अलाइव, ये हर अखबार, हर चौक चौराहे, हर खंबे पर एक पोस्टर लगा दिया गया। बॉनी और क्लाइड ने एक पुलिस चीफ को किडनैप कर लिया। एंड दिस वाज फनी, क्योंकि वो पुलिस चीफ है, उसे किडनैप करके अपने घर लिया। बातचीत करी उससे कि सर हमें बताइए आपकी नौकरी कैसे चलती है, घर कैसे चल रहा है। और बड़ा कंफ्यूज था कि ये दोनों क्या क्या कर रहे हैं। और फिर जब उन्हें लगा कि उनकी बातचीत बन गई है, तो फेमसली क्लाइड ने बोला कि सर हम दोनों एक साथ कैसे लगते हैं, जरा हमें बताइए। ऑफिसर ने कहा तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं और अलग अलग मारूंगा। क्लाइड ने कहा सर ऐसे तो नहीं चलेगा। क्लाइड ने उसके पैर में गोली मारी, उसके बाद उस पर मरहम पट्टी कराई, उसे एक क्लीन शर्ट दी, कुछ डॉलर्स दिए और गाड़ी से फेंक के चला गया बाय बोलकर। और बोला यही दुआ है कि हमारे लिए दुआ करना। अब ये पुलिस का चीफ था, ऑब्वियसली बच गया था इन दोनों की बेवकूफी से। ये ऑरा फार्मिंग करने के चक्कर में इन्होंने जिसको छोड़ दिया था उसी ने जाके पूरी पुलिस को इकट्ठा कर लिया। और अब लुइजियाना में ये और भी ज्यादा मशहूर हो गए। ये दोनों अपने एक दोस्त हेनरी के घर चले गए और वहां पर पुलिस वालों को खबर थी कि ये दोनों यहीं पर आएंगे। रात के 9 बजे से पुलिस वहां पर वेट कर रही थी कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। पर उन्हें क्या पता था ये नॉर्मल कपल नहीं है। बॉनी और क्लाइड तो पार्टी करते हुए, इधर से उधर घूमते हुए, कॉफी पीते हुए, एक दूसरे के वारंट्स का क्राइम जश्न मनाते हुए आराम से आए। 24 घंटे बाद सुबह, रात के भी नहीं, सुबह के 9:15 23 मई की तारीख को कार की आवाज पहले ही आ गई, क्योंकि उस वक्त की सबसे तेज गाड़ी क्लाइड के पास थी और पुलिस ने पहले ही कुछ चीजें प्लांट कर रखी थी। जैसे ही बॉनी और क्लाइड नजर आए, पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हैंड्स अप नहीं, कोई अंडर अरेस्ट नहीं। पुलिस ने अनलोड कर दी पूरे के पूरे राउंड्स। 130 राउंड गोलियां चलाई गई बॉनी और क्लाइड पे। बॉनी उसी वक्त मारा गया। बॉनी उस वक्त मारी गई और क्लाइड उसके बिना जी नहीं सकता था। वो भी आ गया, वो भी मारा गया। इनकी कार में बहुत कुछ मिला, 15 लाइसेंस प्लेट मिली, बहुत सारे लव लेटर्स मिले। और ये खबर सुनते ही भर के लोग क्राइम सीन पे पहुंच गए कि बॉनी और क्लाइड को मार दिया। आप कमाल की बात देखिए, जब ये दोनों मर चुके, खत्म हो चुके, तो बॉनी और क्लाइड की बॉडी को मूव करना मुश्किल था क्योंकि भीड़ बहुत थी। लोग यहां पर आ रहे थे और मेमोरी कलेक्ट कर रहे थे जैसे कोई सुवेनियर हो। लोग बॉनी और क्लाइड के बाल काट के अपने पास रखना चाहते थे, उसके वॉलेट को अपने पास रखना चाहते थे, उसके कपड़े के टुकड़े को अपने पास रखना चाहते थे। हर कोई बॉनी और क्लाइड का कुछ हिस्सा अपने साथ घर ले जाना चाहता था एज अ मेमोर, क्योंकि उनके लिए ये मुगले आजम टाइप स्टोरीज बन गई थी इन अ वेरी मॉर्बिड वे। पॉपुलेशन इस टाउन की उस वक्त 2000 थी, लेकिन घंटे भर में 12,000 लोग क्राइम सीन पर पहुंच गए थे। बॉनी और क्लाइड की गाड़ी से एक कागज भी मिला जिस पर दोनों ने लिखा था कि हम दोनों एक साथ साइड बाय साइड दफनाए जाएं, यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन बॉनी की फैमिली राजी नहीं थी।

उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी बेटी का फ्यूनरल माँ और मतलब मामा 26 मई 1934 को किया, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग पहुंचे और मामला यह खत्म नहीं हुआ। बहुत सारी कंपनीज ने फूल भेजे, फूल, विच वॉज वेरी वियर्ड। एंड एक अखबार था डेलस सिटी, उसने तो गुलदस्तों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि बॉनी और क्लाइड की वजह से उनका अखबार 5,00,000 बार बिका है जब से वो छाए रहे, उनकी लव स्टोरी छाई रही। उसके बाद दफनाया गया क्लाइड। इसका प्राइवेट फ्यूनरल था, काफी अलग, फैमिली ने थोड़ा अलग करके किया। 25 मई 1934 और उसे अपने भाई के साइड में दफनाया गया, बल्कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो बॉनी के साइड में दफनाया जाए। बॉनी और क्लाइड की शर्ट और उनकी फेमस गाड़ी एक कसिनो में रखी गई, आज भी है, 2011 में वहां पर रखी गई थी। आई कैन नॉट रिवील द नेम बट दैट इज देयर इन लुइसियाना। 6 लोग जिन्होंने गोलियां बरसाई बॉनी और क्लाइड पे, वो उन दोनों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के हकदार बन गए। गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें जो चाहिए ले लो लेकिन उन्हें मिले सिर्फ $200 पर हेड। कहा गया कि चलो ये कम पड़ रहे हैं तो बॉनी और क्लाइड के पास जो भी है लूट लो, पर ऐसा कुछ था ही नहीं सिवाय खतों के। वो जो चोरी करते एक दूसरे पे उड़ा देते थे। फरवरी 1935 दोनों की माएं, बेसिकली बॉनी और क्लाइड की, दोनों को और बाकी 20 मेंबर्स को दोनों के घरों से पुलिस ने उठाया, सजा देने की कोशिश करी, लेकिन एक एक घंटे में सब बाहर आ गए। और आप जानते हैं जो मैंने शुरुआत में कहा था कि साइंस किस तरह से इस लव स्टोरी से जुड़ी हुई है, बिकॉज एक टर्म है बॉनी एंड क्लाइड सिंड्रोम। जानते हैं क्या बीमारी है बॉनी एंड क्लाइड सिंड्रोम? है जब एक शख्स को सामने वाले की बुराइयों से बेइंतहा प्यार हो जाता है, स्पेशली द वुमन, दैट इज बॉनी एंड क्लाइड सिंड्रोम। तो ये थी लव स्टोरी बॉनी एंड क्लाइड की, जिनके ऊपर कई सारी मूवीज, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज, कई सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। एंड दे बिकेम सो पॉपुलर कि वीडियो गेम्स का भी हिस्सा बने बॉनी एंड क्लाइड। This was the love story. अब आपको कैसी लगी ये आप बताइएगा। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। आपके मैसेजेस के तलाश में मैं ही दुहा वाला कबीर। मुझे प्लीज प्लीज बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों को लव स्टोरी सुननी थी भाई तो मैंने सुना दी। और इन दोनों के लिए मैं एक गाना प्ले करना चाहता हूँ, बॉनी और क्लाइड के लिए। ये गाना इस कहानी के नाम है।

0: अब मिलते हैं सीधा आसान के ब्रेक के बाद, मगर हाँ कहानी कैसे लगी जरूर बताइएगा, बिकॉज आई नो ये याद रहेगी आपको. स्टे ट्यून्ड.
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: हाँ तो जी भाई, तमन्ना पूरी हो गई लव स्टोरी सुनने की, आज मैंने लव स्टोरी सुना दी आपको। कुछ मैसेजेस से बड़े कमाल के, पहले मैं एक भाई साहब को कॉल कर लूँ क्योंकि उन्होंने बोला था कॉल करने के लिए। एंड इफ़ यू हैव हर्ड द स्टोरी तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, बिकॉज मैंने कहा लव स्टोरी सुनानी है तो फिर अपने ही स्टाइल की कोई कहानी सुनाते हैं। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था बॉनी और क्लाइड के बारे में, मैंने कहा चलो आज निकाल के सुना ही देते हैं। तो आज की जो प्यार भरी कहानी थी, नॉट सो प्यारी, कैसी लगी आपको बता सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। पहले तो मैंने एक कॉल लगाई क्योंकि भाई ने मुझे बोला था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम
0: जी भाई, बताइए।
1: अरे समझ लीजिए, कहानी सुन के हर एक जो आने वाला मिनट का नाम वो और एक्साइटिंग होते जा रहा था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी,

0: एकदम समझ लीजिए कि हाई होते जा रहे थे हम लोग और फिर उसके बाद में जब जैसे जैसे मालूम चला और उसमें मतलब जैसे जैसे चोरी सुन रहे थे एक से एक चीजें सुनाई दे रही थी तो उसमें मुहावरे भी याद आ रहे थे कि सुना था पहले कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, अभी सुन लिया कि चोर चोर जो है वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है और फिर उसके बाद में हमें सबसे ज्यादा पूरी स्टोरी में आपकी एक बात बार बार याद करके हंसी आ रही थी, गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हो वाली आवाज निकाल
1: भाई घोड़े की आवाज निकली
0: कह रहे गाड़ी की स्टार्ट करते हैं जैसे वो वायर कनेक्ट करके ऐसे स्टार्ट नहीं करते क्योंकि अरे सॉरी घोड़ी की आवाज निकल गई बार बार सोच सोच के इतना हंसी आ रही थी बीच
1: बीच थैंक यू भाई।
0: फिर उसके बाद में मोहतरमा जो थी वो भी एकदम समझ लीजिए कि प्यार में इतना पगला गई थी, उनको कहीं गन ले आके दे रही है गिफ्ट में, ये सब कोई लाने वाली चीज है बोलना सोचने वाली बात है कि एकदम मगर मजा आ गया एकदम बहुत मस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थी प्लस थोड़ा हट के थी लास्ट दिन के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छी थी।
1: जज़ाक अल्लाह मेरे भाई, ये मैं सोच रहा था मैंने कहा लास्ट में आई हैव टू मेक श्योर कि बहुत बढ़िया सी कहानी मिले
0: और बड़ी इंटरेस्टिंग थी माशाल्लाह।
1: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: मजा आया सुन के और मतलब टाइम एकदम फील ही नहीं होता है कि कैसे 30 मिनट कैसे 35 मिनट गुजर जाते हैं, ऐसा लगता है अभी स्टार्ट हुई कहानी फिर लगता है यार इतनी जल्दी खत्म हो गई, फिर टाइम देखो तो पता चलता है 30 मिनट हो गए।
1: नहीं भाई जजाक अल्लाह, आपकी मोहब्बत मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छी लगी इस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, थैंक यू।
0: और बस यही दुआ रहेगी कि आप सुबह में जल्दी उठ पाए और अपने चाय का चम्मच लेके टाइम पे आ पाए।
1: बिल्कुल भाई, सुबह को भाई एकदम टाइम पे,
0: क्योंकि नींद जो है इतना, हम खुद हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है 9 बजे, हमें उठना पड़ता है 8 बजे, 8 बजे हमारी आंख नहीं खुलती है, समझ लीजिए 2-2, 3-3 अलार्म बज जाता है, फिर उसके बाद भी कितना अपने आप को रेडी करके और क्या क्या मोटिवेशन अपने दिल दिमाग में लाता रहता हूँ तब जाके उठ पाता हूँ 8 बजे।
1: भाई विश्मिलक, विश्मिलक
0: बुखार आ जाता है।
1: थैंक यू सो मच मेरे भाई,
0: चलें देखें।
1: ओके मेरा भाई।
0: हाँ फिर उसके बाद में मगर स्टोरी भेजते रहिए क्योंकि अब मैंने आपको टाइमिंग अपनी बताई दी, इतनी जल्दी तो उठ नहीं पाता।
1: डन डन मिलेगा भाई, मिलेगा डन डन मेरा भाई। ओके मेरा भाई, ओके अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई के बाद कुछ मैसेज हैं, फरद भाई ने मैसेज किया है बर्थडे वाले दिन बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, नहीं आज नहीं कल था बर्थडे और क्या आफ्टर ऑल कबीर भाई की स्टोरी जबरदस्त, थैंक यू सो मच भाई, कह रहे हैं ये प्यार में क्यों होता है, ऐसा ही होता है भाई। एक भाई ने मैसेज किया है वेल डिजर्व्ड एंड बंटी और बबली इससे इनसे इंस्पायर्ड होगी। हाँ हाँ हाँ एक्चुअली मैंने आपको गलत मैसेज कर दिया, लेट मी डिलीट इट, मैंने इनको बोल दिया उल्टा। हाँ भाई एक्चुअली मुझे लगता है कि आने वाली जितनी भी लव स्टोरीज रही हैं वर इंस्पायर्ड फ्रॉम बॉनी एंड क्लाइड, बहुत सारी बंटी और बबली फॉर एग्जाम्पल वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है कनेक्टेड इनसे स्टोरीज। और एक और मैसेज है फयाज भाई का, भी कहते हैं ये बंटी और बबली की कहानी है ब्रो, बंटी और बबली कहानी नहीं है, बॉनी और क्लाइड कहानी है, बंटी और बबली इससे इंस्पायर्ड है और वो भी कम इंस्पायर्ड है। और मैसेज, अल्लाह का शुक्र है इंडियन लव स्टोरी नहीं थी अरे भाई पहले तो इंटरेस्टेड नहीं था बाद में मजा आया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज की स्टोरी ट्राई करी पूरी सुनने की, थोड़ी मिस हो गई, माशाल्लाह बहुत अच्छे थी ये समर के 3 महीने आपके साथ, आपको और सारे आर्जेस को हमेशा खुश, अल्लाह आपको सलामत रखे, एंड सॉरी आप लोगों को परेशान करने के लिए। हैं कौन परेशान कर रहा है? नहीं भाई मैं तो परेशान नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं किया आपने, करने वाले हो गया एक सलाम वालेकुम, सलाम अहमद फराज साहब। और मैसेज किया अरबाज भाई ने, कह रहे माशाल्लाह सर कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन सर मैं ये कह रहा था कि एक तो हमारे गांव की लड़कियां होती हैं अगर ऊंची आवाज़ में ज़रा सी बात कर लो तो बस रिश्ता ख़त्म। अरे तो हर जगह बोनी क्लाइड चाहिए क्या? हसन रजा साहब लिखते हैं दिल लगाकर सुनी मैंने स्टोरी कबीर भाई, एकदम मस्त लव स्टोरी थी, ऐसी लव स्टोरी होती है तो फिर औसम है, और सुनाया करो ऐसी वाली, कमाल की चॉइसेस है। वैसे बॉनी के लिए क्या, जितनी देर के लिए मज़े से जिए बॉनी और क्लाइड, और आपसे सुन आपके सुनाने का अंदाज़ सुपर डुपर, लव यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार। तबसुम मैंने मैसेज किया और उन्होंने बाकायदा फोटो भी निकाली है वो, हाँ इंटरनेट पर अवेलेबल है दोनों की फोटो गंध के साथ, वो कहती है बेहतरीन बेहतरीन स्टोरी कबीर भाई, थ्रिलिंग वेस्टर्न मुगले आजम लिखते हैं कि बस लास्ट में थोड़ा दिल टूटा, इतना सब कर ही चुके थे तो साथ में दफना भी देते, हाँ वो गुस्से में उन्होंने नहीं दफनाया, बेचारों की लास्ट विश पूरी कर देनी चाहिए थी, बेचारे तो नहीं थे मगर लास्ट विश पूरी कर देनी चाहिए थी। और लिखते हैं आई एम मोर अटैच टू दिस स्टोरी व्हेन फाउंड आउट दे वर राइटिंग लव स्टोरीज फॉर ईच अदर बींग टुगेदर ऑल्सो, इंटरनेट पर देखती हूँ बिल्कुल वो दोनों एक दूसरे, मतलब बॉनी स्पेशली क्लाइड के लिए पोएट्री लिखा करती थी, तो दोनों अलग ही मोहब्बत।

0: में थे भाई, उनका अलग ही सीन चल रहा था। एक मैसेज है बख्त अदास साहब का, लिखते हैं भाई आपकी स्टोरी फुल लाइव HDR में चल रही थी मेरे माइंड में और मैं देख रहा था, सुन भी रहा था, मजा आ गया। थैंक यू सो मच भाई, दिस इज सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। और एक मैसेज है भाई का, कहते हैं भाई इस कहानी मूवी बननी चाहिए। तीन मूवीज हैं भाई, जाके देखो, तीन तीन मूवीज है बॉनियर क्लाइड पे। रिसेंटली OTT प्लेटफॉर्म पर भी एक चीज रिलीज हुई है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता बट इट हैज बीन रिलीज देयर। एक मैसेज है, बंटी और बबली की स्टोरी लगी कॉमेडी एंड रोमांटिक। बंटी और बबली की कहानी इससे इंस्पायर्ड है, इससे इंस्पायर्ड है। याया भाई लिखते हैं क्या लव स्टोरी थी विद अ ट्विस्ट। थैंक यू सो मच भाई। अब्दुल अमजद साहब को चली गानी, उमर अली भाई लिखा है बेहतरीन स्टोरी, मजा आया सुन के और वेरी नाइस एंडिंग। एक शख्स ने मुझे भुला, इनका नाम है सैयद साहब, सैयद साहब थैंक यू। एंड तौखीर अहमद भट्ट साहब वालेकुम सलाम, कहते हैं मॉर्निंग के लिए एडवांस। आ गए ना अपनी बहन, एक वैसे स्टोरी सेंड करना भाई, फिर से सुननी है ज़रूर भाई ज़रूर। कबीर भाई कल सुबह मिलेंगे, बिल्कुल सुनो भाई। और एक मैसेज, स्टोरी में बाबू तो नहीं था ना, बाबू तो नहीं था, अरे लव स्टोरी थी, बहुत तगड़ी वाली फराज भाई, बॉनी और क्लाइड की मशहूर कहानी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग थी, मैं कहूँ अनइंटरेस्टिंग थी। और आपके लिए बहुत अप्रिसिएशन है और बहुत मिस करूँगा, हैप्पी बर्थडे ब्रदर। थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार हैदर भाई को, जजाकल्ला। नसीम साहब थैंक यू, अभी से उन्होंने गुड मॉर्निंग लिख दिया है। और क्या स्टोरी आपकी सेटिंग ये स्टोरी भेजने का किसी को फ़ायदा नहीं है भाई, किसी को फ़ायदा नहीं है भेजने का। ये बॉनी और क्लाइड का ज़माना अलग था मेरे भाई, आज की तारीख में कुछ भी अप्लाई नहीं होता। सो या ये थी स्टोरी जो आज मैंने सुनाई, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। आप इनफैक्ट कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर, 4434377 पर। एंड मैं ये कह रहा था कि जो मॉर्निंग का हमारा प्रोमो है, क्योंकि वो आप सुनेंगे, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा था, वो सुनेंगे आप, क्योंकि कुछ लोगों ने कल नहीं सुना था। एक पहले मैं जरा कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
1: हैदर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से।
0: जी हैदर भाई बताइए, मेरी जान बताइए।
1: सारी खैरियत है यार, स्टोरी तो आपकी सुनते रहते हैं और बड़े ज्यादा खुश भी रहते हैं आपके साथ जितनी देर सारे, यानी ऑफिस की जो थकावट है ना वो आपकी स्टोरी के चक्कर में और आपको सुनने के खास तौर पे चक्कर में जब बहाना लगा के निकलना होता है ना कि मेरा कबीर क्लाइंट है, मैंने वो उसको मिलना है, लेट हो रहा हूँ, मैं निकल जाऊँ,
0: क्या खूबसूरत।
1: तो यकीन माने वो एक बड़ा मोमेंट को हम मिस करेंगे और खास तौर पे आपको बहुत ज्यादा मिस करना है, क्योंकि मैं तो सुबह 9-10 बजे उठने वाला बंदा हूँ, 11-12 बजे काम, तो 5 बजे तक तो फिर बिजी।
0: नहीं भाई मैं कहानी भेज के हर किसी को डिस्टर्ब करूंगा मेरा। हाँ बोलो ना।
1: आपसे ना एक मैंने क्वेश्चन करना था।
0: पूछो ना प्लीज।
1: बड़ी देर से मेरे जहन में भी था और मेरे एक दो दोस्तों ने भी पूछा था। अच्छा। कि आपको वो स्कूल टाइम वाली फीलिंग आती है वो जब आप घर जाते हैं और स्टोरी के बारे में सोचते हैं, जैसे हम लोग
0: भाई बहुत तगड़ी आती है, मैं बताऊं लिटरली मैंने बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कल मेरा पेपर है, अगर कहानी जल्दी मिल जाए तब तो ठीक है, और रात भर वरना जो कोशिशें चलती है ना भाई, ऐसी नर्वसनेस रहती है ना कि मुझे कुछ सुनाना है।
1: हाँ। कि मेरे दोस्त और हम लोग ना ऑफिस में आपको डिस्कस भी करते रहते हैं
0: जी।
1: तो हम लोग यही सोच रहे थे कि यार ये बंदा जो है ये घर जाता होगा बाद में जाके वो स्कूल टाइम की तरह, जैसे हम लोग जाके स्टोरीज याद करते थे लाइक दिस के सारी मूवीज वो याद करते होंगे, फिर उनको जाके सुनाते होंगे सब हमें आके सुनाते हैं
0: भाई, लिटरली होमवर्क हो जाता है।
1: आपके लिए बड़ा क्वेश्चन था हमारा।
0: बिल्कुल भाई ऐसा ही होता है, और मैं इसलिए फ्राइडे मेरे लिए बहुत खास होता है क्योंकि मुझे थर्सडे को सुनाने के बाद कोई कहानी सोचनी नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे एग्जाम खत्म हो गए तो वो 2 दिन ऐसे ही जाते हैं, वरना हर रोज एग्जाम है भाई, हर रोज का एग्जाम है। और पता क्या है, वो लगता है कि बहुत आसानी से मिल जाती है कहानियां, लेकिन जब आप ढूंढने निकलोगे ना तो भाई साहब समुद्र तो, है और उसमें से आपको मोती निकालना है, तो वो
1: बिल्कुल आपको रेडी टू प्रिंट भी कोई चीज मिल जाए ना उसके लिए भी एक बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ। आप तो फिर भी ढूंढ ढूंढ के लाके हमारे आगे जो है हमें सुनाते हैं। हाँ। तो ये आपकी डबल एप्रिसिएशन है, एक तो ढूंढना ऊपर से सुनाना और याद करना
0: भाई। तकलीफ पता है तकलीफ कहाँ होती है, कि तकलीफ ही होती है जब कोई एक कहानी मिलती है और उसका एंड सुन के मजा नहीं आता, फिर लगता है अरे बाप रे मैंने 1 घंटा लगा दिया इस पे और ये क्या एंड था तो ये प्रॉब्लम बहुत खतरनाक होती है भाई, मैं इस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूँ। बट ये बॉनी और क्लाइड की स्टोरी मुझे थोड़ी बहुत पता थी, 60% पता थी, बाकी बनाने में मुझे आसानी रही तो इसलिए मैंने सुना थी। पर बहुत अच्छा लगा भाई, और आपके दोस्तों को भी सलाम भाई,
1: बहुत आपकी मेहनत आपकी लगन के लिए हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और यकीन माने आपके साथ मैं तो पहले नहीं था इतना, लेकिन मेरे दोस्तों के कहने की वजह से ना मुझे उन्होंने वो सेव करके दिया 107 और फिर सुनना शुरू

0: किया। मेरी से सर यूएसबी प्ले होती थी, लेकिन जब घर जा रहा हूँ मेरा घंटे का रास्ता है वो पूरा घंटा यूएसबी नहीं लगी होती, सिर्फ 107 चलता है।
1: मेरा भाई यार बहुत प्यार, आपके दोस्तों को भी बहुत सारा प्यार है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, ये इट्स एन अवार्ड फॉर मी, और ये समझ लीजिए कि अवार्ड आपने दे दिया मुझे, मैं ये घर लेके।
0: यकीन मानिए आपसे दिल से मोहब्बत होगी यार, इस टाइम पे इस चीज का सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि यार आप बिल पे जा रहे हो, हम क्या करेंगे, आप हमारा गरीबों का कौन सा, हम अब किस क्लाइंट को जाके कबीर को मिलेंगे, किसको ढूंढे अब हम।
1: भाई मैं आपको कहानी बेच बेच के डिस्टर्ब कर दूंगा, धनिया बो दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, वादा रहा
0: मैं। डिस्टर्ब तो नहीं, हम बड़े खुश होंगे कि आप हमें याद रखते हैं, कसम से बहुत बहुत आपके लिए मोहब्बत है दिल में, ऐसी आपके लिए वो आपने जगह बना ली है यार, अब आपका वेट ही हमने करना है, कब आप दोबारा हमारे पास आओ।
1: बहुत प्यार भाई, दिल से अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे मेरे भाई, और मैं आपको जरूर भेजूंगा कहानी, बेफिक्र रहिए, वो जरूर
0: लाजमी। पता नहीं आपको कभी किसी ने, किसी लड़के ने या बंदे ने कहा कि नहीं, वो कहते हैं ना आई लव यू यार।
1: अरे आई लव यू मेरा भाई, बहुत प्यार मेरे भाई को, थैंक यू सो मच मेरा भाई, अदर भाई थैंक यू सो मच,
0: जज़ाकअल्लाह
1: मेरे भाई, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम भाई। भाई ने बहुत मोहब्बत दिखाई भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, दिस इज सो स्वीट ऑफ हिम हैदर भाई, जज़ाकअल्लाह भाई, दिस इज सच अ बिग थिंग फॉर मी। सुना मुझे पता नहीं था, सब कहानी हमने स्टार्ट करी थी 2021 में आई थिंक शुरू करी थी, और मुझे नहीं पता था कि ये इसका असर इतना हो सकता है, बट आई एम रियली रियली हैप्पी दैट इट हैपन्ड। एक वैसे आप पहले एंड फिर किया करो, नहीं मैं आपको बताता हूँ एंड, अगर मैं कहानी ढूंढते हुए एंडिंग पहले सुन लूँगा ना तो हो सकता है एंड बहुत बढ़िया हो, लेकिन उसका जो कहानी का पूरा बीच का हिस्सा है वो कत ही बोरिंग हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट एंड भी नहीं सुन सकता, और हो सकता है एंड में सुन लूँ मज़ेदार हो पर उसका बिल्डअप मुझे नहीं पता, तो इसलिए पूरी कहानी सुननी ही सुननी पड़ती है, ढूंढनी ही ढूंढनी पड़ती है। तो दैट्स हाउ इट इज़। एक मैसेज है भाई, अरे भाई मोहब्बत है, ये आरिफ भाई जल रहे हैं, हैदर भाई ये जल रही है, एक मैसेज डोंट फॉरगेट भाई, आप बेफिक्र रहे हो मुरली भाई, सबके पास कहानी पहुंच जाएगी। एक मैसेज है, गुड इवनिंग भाई, कहानी प्लीज़, बिल्कुल मिलेगी कहानी। अच्छा एक और मैसेज है, सेंड मी स्टोरी, मिल जाएगी अहमद सलीम साहब। तो मॉर्निंग आई डोंट नो आपने प्रोमो सुना है नहीं सुना है, बट देर इज़ दिस प्रोमो जो हमने सुबह के लिए बनाया वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक मैसेज है, सर ये क्या, सर वो जवाब नहीं, गाड़ी की आवाज़ किया था ना मैं भूल गया था, अभी मेरे क्या शहर में कहानी के बीच वही, अरे भाई वो गाड़ी की आवाज़ निकालते, मैंने घोड़े की आवाज़ निकाल दी थी। एक रुको कॉल आ रही है भाई, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, क्या हालचाल भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार मेरे भाई, आप सुनाएं।
2: मुबारक हो भाई, मैंने लास्ट स्टोरी आधी सुनी।
1: अच्छा तो आज की कहानी पूरी सुनने वाली थी मेरे भाई।
2: भाई आज मैं वही तो आधी सुन रहा था, जब तक मैं सुन रहा था सिर्फ रॉबरी हो रही थी या चोरी हो रही थी। अच्छा। मुझे लगा कि रॉबरी वाली स्टोरी है।
1: नहीं नहीं रॉबरी,
2: लेकिन आगे क्या हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं
1: भाई, लव स्टोरी थी भाई।
2: भाई सुनी नहीं ना, वो तो आप भेजोगे।
1: मैं जरूर भेजूंगा भाई, मैं जरूर भेजूंगा, जरूर जरूर सुनना
2: यार भाई। इसलिए मैं कॉल किया हूँ, बस खुसूसी मकसद के लिए कॉल किया हूँ।
1: हाँ,
2: मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कबीर भाई। हाँ। स्टोरी मिस नहीं करना भेजना
1: भाई,
2: प्लीज।
1: भाई बिल्कुल मिस नहीं होगी, बिल्कुल मिस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी।
2: मैं बोल रहा हूँ मेरा नंबर आप 5 बार सेव कर लो।
1: नहीं मैं बताऊँ क्या करूँ,
2: चलेगा
1: मेरा
2: आई एक्सेप्टेड, मेरा स्टोरेज आपकी स्टोरी से फुल हो जाए, मुश्किल नहीं है, मुझे चलेगा।
1: मैं अभी पता क्या करूंगा, मैं अभी एक चैनल या फिर एक पूरा वो कम्युनिटी का बना लेता हूं, ताकि मैं इजीली कहानी भेज सकूं, दैट विल बी इजीयर फॉर मी,
2: वैसे बेहतर रहेगा।
1: ठीक है, मैं मकसद नहीं भूलूंगा भाई।
2: नहीं बिल्कुल, हमारा मकसद ये खुशी भाई, एडिक्ट हो गए भाई, उसके बिना नहीं रहा जाता।
1: डन भाई डन, बिल्कुल अब तक कहानी पहुंचेगी, बेफिक्र रहे आप, वो जरूर जरूर पहुंचेगी।
2: कितने बार तो मैंने कस्टमर्स को छोड़ दिया है भाई, क्या बताऊं।
1: नहीं भाई ऐसा नहीं करो भाई, भेजूंगा मैं कहानी, जरूर भेजूंगा भाई, छुट्टी पर भी जाऊंगा तब भी कहानी आती रहेगी, बेफिक्र रहिए आप, उसकी टेंशन ही नहीं।
2: बिल्कुल, आपका बर्थडे आया चला गया, अगस्त मंथ आया चला गया, मैं इंस्टाग्राम पे मैं देखते रह गया, लेकिन आई नहीं अभी तक स्टोरी भाई।
1: भाई एक मेल की दूरी है बस, वो एक मेल आ गया ना भाई। तो फिर
2: आएगी भाई
1: बस अभी बस शुरू कर रहा हूँ, बस मैं आ जाएगा।
2: नहीं अब लगता है मुझे भी भारी भारी कमेंट्स करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा।
1: नहीं नहीं नहीं जरूर जरूर भाई, जरूर पहुंचेगा, जरूर जरूर, टेंशन नहीं लो, मैं खुद
2: भी टेंशन। और ये कहानी भी भाई प्लीज
1: मैं भेजता हूँ
2: बिल्कुल
1: ओके मेरा भाई,
2: चले भाई ओके
1: मेरा भाई, ख्याल रखिए मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और एक मैसेज आया है, क्या लिखा है उन्होंने, आप कितने साल से कतर है भाई, 9-10 साल हो गए। और एक और मैसेज है इनका ही, क्या कह रहा है भाई, कबीर भाई ग्रुप में हमें भी ऐड कर लो।

0: भाई सबको अभी मैं बनाऊंगा मैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं सैयद इस्लाम साहब। एक मैसेज है मकसूद भाई का, या कह रहे हैं भाई टुमारो मॉर्निंग योर अलोन और अदर आरजे विद यू। भाई मैं अकेले ही हूँ, डोंट वरी वी आर विद यू। भाई कल ही काफ़ी हो जाता है ना आपका भाई, दिक्कत को नहीं भाई, एक लास्ट कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
0: क्या हाल है भाई? क्या बढ़िया भाई, आप सुनाइए।
1: अरे मजे आ रहा है भाई।
0: और शुभ भाई क्या कर रहे हो भाई, मच्छी उच्छी पकड़ो क्या?
1: अरे भाई यार मछलियों का नाम मतलब कसम से दो वीकेंड ऐसे निकल गए खाली हाथ आया।
0: अरे रे रे रे रे, ये हमारी वो तो नहीं लग गई आपको, गरीब की हाय बहुत लगती है। मैंने आपको मैसेज में हाय बोला होगा, बैड जोक यार।
1: मुझे ऐसे ही लग रहा है सच में। कल मेरा ऑफ था तो मैं कल फिशिंग के लिए गया।
0: अच्छा।
1: मैंने तकरीबन 5 घंटे तक पूरे सबर के साथ फिशिंग की। सच मानो एक शहरी का बच्चा आया, उसको भी मैं छोड़ के आ गया। मैंने जा भाई जी ले अपनी जिंदगी
0: भाई, बहुत मतलब अफसोस के साथ खुशी हो रही है भाई, मैं क्या बताऊं। भाई बिल्कुल भाई, भाई कोई दिक्कत नहीं शिव भाई, वैसे आज तो आपने कुछ सुना नहीं होगा, कुछ नहीं सुन पाया ना?
1: नहीं, मैंने सुना। पता मैं सोच रहा था यार ये कहीं तुम वो अपना इंडियन लेके बैठ जाओ, रोना धोना बाबूश होना, और मैं कहीं वो ना हो जाए ना हीर रांझा वाला काम।
0: नहीं आपने मिस कर दिया भाई।
1: नहीं मैंने सुनी ना पूरी, फिर अमेरिकन निकला मामला तो समझ में आया। ये एकदम अलग थी।
0: हाँ।
1: ये एकदम क्रेजीनेस था।
0: हाँ,
1: एकदम एक दूसरे के लिए पागल।
0: हाँ।
1: सारी हदें पार कर देना वो नहीं अपना इंडियन इंडियन वर्जन, अगर इंडियन वर्जन होती तो कसम से मैं बंद कर देता रेडियो।
0: कोई बात नहीं, मैं अभी भेजूंगा, आराम से सुनना इसे, इसका इंडियन वर्जन अपने दिमाग में चला के सुनना इसे, मजा आ जाएंगे आपको। ठीक है
1: नहीं, वो मैंने इमेजिन किया।
0: अच्छा इमेजिन
1: वो नहीं बन पाता, वो स्टोरी नहीं बन पाती भाई साहब।
0: तो क्या लगता है आपको, दोनों मिलते ही नहीं क्या आपके हिसाब से?
1: ना अच्छा मैंने लास्ट का थोड़ा सा मिस कर दिया।
0: अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ फिर आपको।
1: बिल्कुल थोड़ा सा जो आपका क्लाइमेक्स था ना,
0: जी
1: वो मैंने थोड़ा मिस कर दिया।
0: कोई बात,
1: क्योंकि मुझे एकदम बहुत जरूरी कॉल आ गई थी तो मुझे वो उठानी पड़ी।
0: डन डन, मैं भेजता हूँ भाई, सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं।
1: ओके बॉस, थैंक यू बॉस,
0: थैंक यू। अरे रे रे रे रे रे, मुझसे कॉल कट गई। अच्छा मैं कह रहा था कि कल का जो प्रोमो है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ, बिकॉज कल सुबह आप एक प्रोमो सुनेंगे लगातार। वो किस तरीके का है सुनाऊं? रेडी हैं आप? आर यू रेडी? ओके, सो 3, 2 एंड 1, यह है कल सुबह का प्रोमो।

0: wake up. हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: हाँ तो भाई ये था सुबह का प्रोमो. आपको कैसा लगा अभी इस बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये बनाते बड़ा मजा आता है. आजकल रैप करने का मौका मिलता नहीं, बट वेन एवर वी गेट टाइम तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं. सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट प्रोमो. ये रैप जो है सुबह के शो वेकअप के लिए बनाया गया है और इसी का म्यूजिक अब पूरे पूरे टाइम सुनाया जाएगा. तो यू विल लिसन टू दिस मैसेज. भाई अगर कल सुबह वाली स्टोरी मेरे उठने के बाद नहीं आई तो क्लाइड को आपकी सुपारी दे दूंगा. क्लाइड को सुपारी दे देगा भाई. ऐसा ना आसान भाई, ऐसा नहीं करो. ऐ बॉनी छोड़ दूंगा आप. मैं मिल जाएगा वो कहीं. डोंट वरी. एक भाई कह रहे वंस मोर. भाई वंस मोर चला दूंगा. ठीक है वंस मोर चला दूंगा. बाकी मेरे पास फोन में नहीं अभी भाई. मैं मेरे पास होगा तो भेजूंगा जरूर मोहसिन भाई. राइट नाउ आई डोंट हैव इट इन माई फोन. अभी ये हमारे सिस्टम में है तो इसलिए था. बट एक और बार चलाता हूँ उसके बाद में गाना चलाऊंगा. ओके यू रेडी. वैसे भाई सुबह सुबह 6 बजे क्या तुमने मेरे को सलाम नहीं करे तो बाय मैं जवाब नहीं दूंगा. ये क्या ये हो क्या रहा है ये. हो क्या रहा है ये. क्या कतर 2026 वाला रैप फनी लगता है मुझे. कौन सा कतर 2026 वाला. मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कतर 2026 वाला. भाई मुझे याद दिलाओ कौन सा रैप था जो मैंने किया जो आपको फनी लगा. आई डोंट नो बट दिस वन इज फॉर मॉर्निंग. येट अगेन एलोजी.

0: रूम करे शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हाँ तो भाई ये था रैप, आप बता सकते हैं कि इफ यू लाइक दिस नॉट, क्योंकि सुबह आप उठेंगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा और इसी की बीट पे हम बात भी कर रहे होंगे। सो आई होप यू लाइक इट। 666-22-107 नंबर है। काइंडली लेट मी नो, ईमेल लिखूंगे, डियर सर काइंडली लेट मी नो इफ यू लाइक द रैप और नो। बागीदा जी गीता दी मशीन करण ओजले दा गाना।

हाँ तो भाई कुछ मैसेजेस हैं, फेयरवेल दे रहे हैं मुझे लोग फाइनली। कबीर भाई थैंक यू सो मच यार, मैं ये गाना सुबह है सुनने की कोशिश में था। कौन सा गाना आशिक बनाया आपने? एक मैसेज है भाई, आपको सोशल मीडिया पर लाने के लिए होम मिनिस्टर सिफारिश करनी पड़ेगी, मीनिंग आपकी बेगम या हमारी भाभी जी। नहीं भाई, इस बार मुझे मुझे पता है कि हाउ सीरियस द मैटर इज। शाहिद भाई आए, एक मैसेज है, ये आवाज़ सुन के कहीं इमरान हाशमी की याद तो आती है क्या? भाई बिल्कुल आती है भाई, फैन है हम, आई लव यू भाई। एक मैसेज किया भाई, लव यू टू मेरे भाई। एक मैसेज किया है मोहम्मद बशारत भाई ने, थैंक यू सो मच भाई। और तब तो मैं लिखती हूँ बिग फेयरवेल कबीर भाई आपके लिए, और ऑल द बेस्ट कल सुबह के प्रोग्राम के लिए। स्कूल बैग उठाइए, वेकेशन खत्म। यार बहन मेरे लिए बैक टू स्कूल हो गया सच में। मेरे लिए बैक टू स्कूल, अरे यार क्या करूँ मैं। पर ठीक है, कल से उठना ही पड़ेगा, चाय के थर्मस के साथ तैनात हम भी आ जाएंगे भाई, टेंशन को नहीं।

0: भाई सवा सीधे का टाइम आ गया है। चलो बच्चों स्कूल तो शुरू हो ही चुका है, मेरे भी स्कूल कल से लग जाएगा, सुबह सुबह आऊंगा मैं। अरे भाई साहब ये सोच सोच के, बट ठीक है आदत डालनी पड़ेगी। और लोग मुझे दिलासा देते रहते हैं, अरे पूरा दिन पड़ा है तुम्हारे लिए, तो उससे कुछ नहीं होता, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, पूरे दिन का क्या करूंगा मैं, नींद आवेगी ना भाई, पूरे दिन कौन सा मुझे कबड्डी खेलने जाना है। बात हो गई, एक कॉल आ रही है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम
1: भाई। वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे भाई साहब क्या हाल है भाई के?
1: भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुम्हारे से।
0: पूछ लो।
1: कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ में, तुम्हारी ड्यूटी मॉर्निंग 6 बजे की है और तुम काम करते करते एक दिन तुमने काम की छुट्टी मार दी बिना बताए, तो शो कौन चलाएगा भाई?
0: कभी देखा है ऐसा होते हुए, ये बताओ।
1: भाई मेरे सवाल का जवाब दो ना भाई, तुम देते नहीं मेरे सवाल का जवाब।
0: भाई देखो अगर अगर छुट्टी लेनी पड़ेगी ना तो उसके लिए किसी और आरजे को सुबह आना पड़ेगा भाई, इसमें हो जाती है दुश्मनी।
1: और अगर जनता, और अगर जनता ये चीज को नहीं मानती है कि नहीं हमको कबीर भाई चाहिए सुबह के शो में, तो क्या करेंगे भाई? तुमको आना ही पड़ेगा ड्यूटी पे।
0: फिर कुछ नहीं करने का, घर पे बैठने का भाई, ऐसे ख्याल नहीं लाने का दिमाग में। ये सब खैर मत ला करो दिमाग में, किसने बोला?
1: समझ रहे भाई, खुराफा दिमाग हो गया है, समझ रहे? बैठे बैठे सोच रहा हूँ मैं कबीर भाई को ऐसा बोलूंगा कि कबीर भाई कल से मेरा नंबर ब्लॉक मार।
0: ये एक तो ये आसिफ भाई मेरे नाम की गुड़िया के साथ खेलना बंद करो, ठीक है? मेरे नाम की जो गुड़िया बना के पिन करते रहते हो ना, ये बंद करो, ठीक है?
1: आज ही देखा उस चीज में दिल्ली वाला।
0: हाँ तो मुझे वही लग रहा है कि मेरे नाम की गुड़िया बुड़िया बना रखी है उन्होंने, पिन चुबाते रहते हैं, सुबह आएगा सुबह आएगा।
1: नहीं नहीं नहीं भाई कबीर भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, सूरज निकल तो सकता है भाई, डूब नहीं सकता भाई।
0: क्या बात है, क्या बात है, डायलॉग कवर नहीं कर पा रहा मगर क्या बात है।
1: नहीं नहीं भाई तुम कभी भाई।
0: हाँ भाई
1: फाइनली भाई तुमने जो गाना बजाया ना,
0: हाँ
1: दिल खुश कर दिए भाई।
0: कौन सा वाला, ये आशिक बनाया आपने?
1: हाँ आशिक बनाया।
0: किसके याद आ रही है आसिफ भाई, क्या बात है? बता
1: है भाई, बस है अपना भी है ना भाई, क्या मतलब अपन, क्या मतलब ऐसी फ्री मोड क्या है क्या इधर?
0: नहीं भाई मैं समझ रहा हूँ भाई, बिल बहुत आ रहा है फोन का भाई।
1: मेरा कौन सा पैसा, मैं कौन सा पैसा भरता भाई, मुदीर भरता अपने।
0: अच्छा ऐसा है क्या? अरे
1: ऐसा दिन है, फुल खर्चा करो
0: तो बैटरी तो जाती होगी।
1: अरे भाई चार्जर लेके घूमता हूँ।

0: अरे चार्जर में लगा के फोन की बैटरी तो ऐसी तैसी कर रहे हो तुम यार।
1: कबीर भाई मेरे को एक और चीज आपसे पूछने का है।
0: हाँ।
1: गाड़ी चालू करते वक्त घोड़े की आवाज कैसा निकलती है?
0: भाई वो मेरे मुंह से निकल गई।
1: नहीं भाई मैं लव स्टोरी का तो मैं सुनता नहीं हूँ, मगर मैं कसम से वो तुम्हारे लिए सुना, मैं बस ये सुना घोड़े की आवाज निकाले मतलब ये कौन सा
0: लव स्टोरी कैसी लगी? पहले बताओ लव स्टोरी कैसी लगी बताओ
1: भाई, पर्सनल बताऊंगा ना अकेले में।
0: अच्छा इतनी अच्छी लग गई। अच्छा नहीं घोड़े की आवाज़ तो क्या है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था इंजन का स्टार्टर कैसे निकालूंगा, तो वो ऐसे ही हो गया भाई, वो मुंह से घोड़े की आवाज़।
1: मैं थोड़ा कंफ्यूज था ये घोड़े की आवाज है या बकरे की आवाज है?
0: बकरा नहीं था यार वो, हद्दू गई, ऐसे पहचानने में गलती मत करो ठीक है, बकरा ही फैलाएगी 2027 में, क्या कर रहे हो ये? और फीडबैक देने का कहानी पे पर्सनली देने का
1: देने? मुबारक हो, मुबारक हो।
0: किस खुशी में
1: भाई? मुबारक हो भाई, बोल दिया दिल किया, बोल दिया मुबारक हो, अभी तुमको सब मुबारक हो, मुबारक हो।
0: ठीक है भाई, कूल है, कोई टेंशन नहीं भाई। सूरज निकल तो सकता है पर डूब नहीं सकता, फिर दूसरा डायलॉग था हमारे पास भी, हम क्या कहीं से उठ के आए हैं क्या भाई? बिल्कुल भाई, आपका गुस्सा जायज है रिहान भाई, हल्का रिहान भाई, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं। मैसेज है कबीर भाई, सुबह का प्रोग्राम कैसे सुनेंगे उठ के? करण भाई उठ के सुनेंगे और कैसे सुनेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं। अच्छा मैं कुछ खबरों की तरफ बढ़ता हूँ, सबसे पहले तो कतर की नेशनल लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। तो एक जो नया एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है, तो कतर नेशनल लाइब्रेरी ने एक इनविटेशन तैयार किया है तमाम बच्चों के लिए, रिसर्चर्स के लिए, और जो पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, किताबों में किताबें उनकी साथी हैं, तो लाइफ लॉन्ग जो लर्नर्स होते हैं बेसिकली, तो उनके लिए एक डायनेमिक महीना तैयार किया गया है जिसमें प्रोग्राम्स रखे गए हैं, उसमें मेंटोरशिप है, टेक्नोलॉजी है, लिटरेचर है, और ये पूरा जो कैलेंडर है ये 5 सितंबर से पूरी तरह से किक ऑफ हो जाएगा। इसका इन्होंने नाम भी रखा है बाकायदा, इसका नाम है द मुर्शिदी प्रोग्राम एकेडमिक एंड करियर मेंटरिंग। एक इनिशिएटिव है जो कनेक्ट करता है हाई स्कूल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और फ्रेश जो फ्रेश अभी ग्रेजुएट हुए हैं उनको, और इन सबको कनेक्ट करता है लीडर्स से फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशन सेंटर्स एंड एजुकेशन सिटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो कतर में मुकीम है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी मेजर थिंग विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 5th of September, और इसी दिन जो है स्किल हब भी शुरू हो रहा है एम्पावरिंग वुमेन, और ये 3 पार्ट की सीरीज होगी विच इज़ डिज़ाइंड बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, और ये 5 तारीख 12 तारीख और 19 तारीख को होने वाली है। सो दिस इज़ देयर। इसके अलावा एक और चीज़ की अनाउंसमेंट आपने पता नहीं देखी नहीं देखी बट देख लेनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एग्रीकल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट, उन्होंने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ 2026 लोकल डेट्स परचेजिंग सीजन। खजूर खरीदने का सीजन शुरू हो चुका है। तो लाला ऐसा है कि ये शुरू होगा 17 सितंबर से, इसकी जानकारी जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी दी गई है, और इसको एक इनिशिएटिव को नाम भी दिया गया है रिफ्लेक्ट्स इनिशिएटिव विच रिफ्लेक्ट्स द मिनिस्ट्रीज कमिटमेंट टू सपोर्ट लोकल फार्मर्स। तो ये भी आप जाके देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर ऑब्वियसली। सो 666-22107 पर मैसेज भी कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था, कल से हवाएं थोड़ी तेज चलने वाली है और टेम्परेचर में थोड़ी सी आधा एक डिग्री की गिरावट होगी, पता नहीं लगेगी लेकिन आपके मोबाइल फोन में वेदर रिपोर्ट में वो फर्क पता लगेगा। बाकी ऐसे तो भाई गर्मी है अभी तो रहने वाली है। और एक मैसेज है कतर म्यूजियम की तरफ से, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। सो कतर म्यूजियम ने रिलीज किया है 2026 का पब्लिक प्रोग्राम जिसमें बहुत कुछ है, इसमें वर्कशॉप्स हैं, इसमें टॉक्स रखी गई हैं, इसमें स्टोरी टेलिंग सेशन है। अरे मेरे को बुला लो भाई प्लीज़, कतर म्यूजियम वालों मे आई कम, उर्दू में कुछ करो तो मेरे को प्लीज़। क्रिएटिव कोर्सेज हैं, फैमिली एक्टिविटीज़ हैं, और इसके साथ साथ सारे म्यूजियम में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगी जो क्रिएटिव हब्स की तरह काम करेंगी। सो ये कुछ खबरें थी, बताना ज़रूरी है। एक मैसेज है, ये तो सुनो भाई, अभी वॉइस नोट आपको सुनता हूं मैं। और एक मैसेज है, कोई मिल गया हमें, कौन मिल गया एक सेकंड, ये कहां का फोटो है भाई, ये कब खींचा था फोटो भाई आपने, ये मेरा फोटो है क्या? थैंक यू भाई। और एक मैसेज है, कबीर भाई सुबह उठ जाना। हाँ भाई उठ जाते, किसी को मुझे भरोसा ही नहीं है कि ये उठेगा। ये गाना चल नहीं पाया था टेक्निकल एरर की वजह से, तो अभी पूरा चला रहा हूँ मैं, आराम से सुनो, अब नहीं कटेगा ना।

say Charlie by the Clock. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई. एक दो मैसेजेस हैं. क्या है, एक मैसेज आया मेरे पास कि भाई अब मैं कल शाम से क्या करूँगा. कौन आ रहा है शाम में? कल शाम में मेरे ख्याल में इस वक्त आपको फजील भाई मिलेंगे इस टाइम पे, पर मुझे पता है उनको भी मैसेज आएंगे कहानी भेज दो. वो बेचारा कल कन्फ्यूज़ होने वाला, भारी वाला, बहुत भारी कन्फ्यूज़ होने वाला है वो.

0: तो भाई एक मैसेज आया बहुत जरूरी है, ये भाई ने बताया कि ईस्ट इंडस्ट्रियल रोड पे हैवी ट्रैफिक है एक्सीडेंट होने की वजह से, अल्लाह हाफिज़ ना मेरे भाई, प्लीज़ ड्राइव सेफली। और आगे लिखा है कि ड्रैगन मार्ट के पास हमद पोर्ट की तरफ जाते हुए वहाँ पे भी ट्रैफिक है, बाप रे यार इस जगह पे भी हो गया। और एक मैसेज है, भाई ने अच्छा दिमाग दिया, कल फजील भाई को बोलूंगा भाई कहानी भेज दो सब बेचारे के पीछे पड़ जाओ। एक अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है तुम्हारे?
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार। आप सुनाए भाई।
1: मैं बढ़िया, मनी बोल रहा हूँ।
0: हाँ मनी भाई, क्या चल रहा है भाई की हाल?
1: बढ़िया बढ़िया, तो ये सब किदा?
0: बस जी नींद आ रही है, नींद कल का सोच
1: भाई, कल खेलने चले
0: भाई, कल का सोच के ना ऐसा खौफ है मेरी आंखों में नहीं अब तो बिलियर्ड्स का मन बनेगा भाई, अब तो बनेगा सीन, क्योंकि ये अब सीन थोड़ा ठीक हो जाएगा।
1: सही है। मैं तो सोच रहा था कि ये सोच के सुबह 6 बजे आपको आना है तो नींद नहीं आएगी, आपको नींद आ रही है
0: भाई, लानी पड़ेगी नींद जबरदस्ती, मुझे मोटिवेट करो मैं मोटिवेट होना चाहता हूँ
1: ऑप्शन ही आ जाएगा सुबह
0: अरे यार मैं भाई चाय का पूरा लोडेड थर्मस लेके आता हूँ सुबह सुबह, लाल रंग का चाय भर के।
1: मैं आपको 4:30 कॉल करूंगा कबीर भाई, जाओ जाना है। 4:30 मैं फोन

0: मैं इधर था वेस्ट
1: ब्लॉक। अच्छा ओ भाई, ऐसी ऐसी लाइफ चाहिए भाई, ऐसी लाइफ चाहिए। क्या करना पड़ेगा भाई मनी भाई इसके लिए?
0: इसके लिए आपको आना पड़ेगा, कॉफी पीनी पड़ेगी साथ में।
1: अच्छा ऐसा है क्या? आपके तो नाम में मनी है, वो कहाँ टेंशन भाई।
0: नहीं वो बोलते ना कि मनी पैसा पैसा है, लेकिन बोलते हैं वो डायलॉग में पैसा है लेकिन बाप के पास है।
1: अच्छा। ये सारे के सारे पंजाब हरियाणा दिल्ली के बेल्ट की दिक्कत है भाई।
0: पैसा बहुत है लेकिन बाप के पास है, देते नहीं है, ये वो वाला सीन है। तो ठीक है,
1: डन मेरा भाई, थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई,
0: मिलेंगे फिर। ठीक है,
1: डन बड़ी भाई।
0: जो आपके बारे में बाप से बात करनी थी वो उसके लिए
1: बात करी उनसे आपने,
0: जो हम बाद में करते हैं,
1: मुझे बता देना।
0: मेरी उनसे बात होगी है तो हम बाद में आपका शो खत्म होगी, उससे बात करते
1: हैं। डन मेरा भाई,
0: ठीक है। ओके
1: ओके मेरा भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तो मणि भाई के बाद एक मैसेज आया, क्या एक गेम कितने रियाल की है? कौन सी बिलियर्ड से गेम भाई? अलग अलग जगहों पर है, 30 रियाल पर घंटे होता है, कहीं पे 35 रियाल एक घंटे होता है, ऐसे कुछ चल रहा है हिसाब किताब जहां तक मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
1: बढ़िया भाई, एकदम शानदार। आप सुनाए
2: कबीर भाई, माजरत यार, आपको आखिरी समय मिस कर दिया मैंने यार।
1: अरे भाई इसका तो जुर्माना देना पड़ेगा भाई,
2: बहुत दिल दुख रहा है। मैंने टाइम मैंने देखा, मैंने बोला अंधेरा तो हो गया, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या
1: हुआ, अंधेरा तो हो गया। अरे भाई कौन से जमाने में अंधेरा होगा, तभी मानूंगा 6 बजे ये 7 बजे।
2: मैं असल में फोन पे बात कर रहा था तो मेरा इधर उधर ध्यान नहीं था, तो इस वजह से।
1: नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहानी तो फिर भी भेजूंगा आप बस अभी।
2: भाई आपने कहानी तो ठीक है, आपने क्यों सुबह 10-11 बजे तो आ सकते, सुबह 6 बजे क्या ही मतलब के?
1: भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, हम भी मामूली एम्प्लॉई है भाई।
2: अभी मैं एक तो मैं सुबह सुबह एक तो मैं इतनी सुबह उठता भी नहीं हूँ, फिर पता नहीं कब शाम में मुलाकात होगी और कब बात होगी, कब बात होगी, कब मैसेज होगा, कब स्टोरी होगी, पता नहीं क्या होगा
1: भाई। यही हो जाता है मेरे साथ भी यार, 3-3 महीने का साइकिल होता है ना हमारा, ऐसे काम करता है मेरे भाई, तो मेरा भी साइकिल।
2: आपको शाम में सुनने वाला है वो आपको सुबह भी मिलते हैं कि नहीं मिलते मेरे?
1: कुछ कुछ मिलते हैं भाई, कुछ कुछ मिलते हैं भाई, कुछ कुछ होते हैं, इनकी ड्यूटी सुबह होती है तो मिल जाते हैं, कम होते हैं लेकिन सुबह के थोड़े लग होते हैं। कोई बात नहीं भाई, इंशाल्लाह मिलते तो रहेंगे, बात होती रहेगी इंशाल्लाह।
2: और बताएं सब खैरियत है?
1: बस भाई सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: क्या चल रहा है आज स्टोरी?
1: बिल्कुल भाई 7:30 बजे सुबह को, 7:30 बजे कम्युनिटी बनाता हूँ, बताता हूँ मैं भी उसके बारे में, मैं कुछ करता हूँ उसका जुगाड़ करता हूँ मैं।
2: हाँ ये
1: भाई अभी करता हूँ भाई काम, ठीक है मैसेज कर देना लेकिन, ताकि मैं लिंक भेज सकूँ। डन है भाई, डन है, ओके
2: ओके
1: ओके, ठीक है ठीक है। तो जैसे मैंने कहा अभी एक कम्युनिटी सेट कर देता हूँ मैं इनविटेशन का लिंक दूंगा आप सबको, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपके पास वो एक, जब आप उस कम्युनिटी का मेंबर रहेंगे व्हाट्सएप पे, सो आई कैन शेयर द स्टोरी और सबको एक साथ मिल जाएगी, ऐसा करते हैं ना। तो आई विल डू इट आफ्टर द शो, वो मैं कर लूँगा, टेंशन नहीं है। फिलहाल तो भाई एक गाने की सख्त ज़रूरत आ रही है और वो ये चाहे, हाँ मैं ऐड कर लूँगा, जो जो भी जितने मैसेज मेरे पास अभी हैं उनको तो ऐड करूँगा ही, बाकी जिन्होंने नहीं किया जिन्हें मैं लगता है जानता हूँ तो आई विल श्योर।

मैं क्या कह रहा था, क्योंकि अभी 6:50 हो चुके हैं, आप जानते हैं ये वक्त कैसा होता है। तो इसके बाद हमारी मुलाकात मॉर्निंग शो में होगी, अगर होगी, वरना फिर जब शाम का मौका आएगा। दिस इज़ दैट मोमेंट जब ये कहने का वक्त आ गया है, मगर मैं व्हाट्सएप पे आप कम्युनिटी भी क्रिएट कर देता हूँ ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। एंड ऑल्सो याद करते रहना, वैसे याद तो आएगी, वो ऐसी बात तो नहीं है। क्यों 5 से 7 बजे याद तो करोगे 2 घंटे में, यार लड़का यार। बट नॉनदलेस आई मेक द कम्युनिटी। अभी मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, व्हाट्सएप की लिंक होगी, वो कम्युनिटी की लिंक होगी, ठीक है? तो उस लिंक पे क्लिक करके जस्ट ज्वाइन द कम्युनिटी, ठीक है? कुछ देर में वो बना के मैं आप सबको सेंड कर दूंगा, जो भी अभी सुन रहे हैं या जिनके नंबर्स मेरे पास अभी आ गए हैं कहानी के लिए, आई विल सेंड इट। जो लोग सुबह आने वाले हैं उनके लिए मैं ये प्रोमो चला रहा हूँ, क्योंकि ये जो है सुबह का प्रोमो होगा। दिस इज द रैप विच वी हैव क्रिएटेड सुबह के लिए, वो ये रहा।

0: फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड मकर के आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: एक भाई कह रहा है रियान भाई रेडियो के फुप्पा हो जी हाँ जी हम फुप्पा हैं जी रेडियो के क्या बात हो गई भाई तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में अगर आप ऐड होना चाहते हैं करम भाई ने मैसेज किया जी मेरे भाई तो अगर आप कहानियाँ चाहते हैं तो आई आप मैसेज कर दीजिएगा स्टोरी लिख के या फिर डॉट लगा के मैं समझ जाऊंगा एंड मैं अभी कुछ देर में सबको एक कम्युनिटी का लिंक भेजूंगा ताकि आप सब लोग उसमें ऐड हो सके ठीक है लेट्स मेक इट ईजियर ताकि सबको कहानी मिल सके ठीक है साइलेंट बट बिग लिसनर मेरा भाई आपका आपकी मोहब्बत करम भाई बहुत प्यार तो जस्ट सेंड मी सॉरी सेंड मी कह रहा हूँ जो मैं लिंक भेजूँ बस उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दैट इज इट ठीक है ये कह रहे हैं ग्रुप बना लो पंगा क्या है ना आसिफ भाई कि बहुत सारे लोग एक दूसरे का नंबर देख सकते हैं हो सकता है किसी को अपना नंबर नहीं शेयर करना हो किसी और के साथ तो कम्युनिटी इज अ बेटर ऑप्शन जिसमें एक दूसरे का नंबर नहीं दिखेगा लेकिन स्टिल यू कैन गेट द स्टोरी ये कह रहे हैं मुझे भी ऐड करो ऑफकोर्स भाई जिनके मैसेज अभी आए हैं शो में उनको तो मैं जरूर ऐड करूंगा सो डोंट वरी अबाउट इट एक स्टोरी लिख के बस मैसेज कर देना ताकि यू नो आई गेट ऑल द नंबर्स फाइनली आपसे इजाजत देने का वक्त आ गया अब मुलाकात होगी सीधा सुबह को 6 बजे मिलेंगे भाई जो लोग सुबह आ रहे हैं सुबह मिलते हैं 6 बजे और 7 बजे अभी आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ फॉर द लास्ट टाइम इवनिंग शो से याद रखिएगा नाम को मुझे भी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है मां सलामा

0: को रोक लिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई मुहादे के तहत कायम की गई सियासी और दिफाई स्ट्रेटेजिक कमेटी का पहला इजलास शुरू हो गया है। वाज़ेह रहे, तुर्की इस तीन मुल्की कमेटी के पहले इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें तीनों ममालिक के वज़राए खारजा, वज़राए दिफा और मुसल्ला फ़ौज के सरबराहान शरीक हैं। इस इजलास का मकसद मक्का दिफाई मुआहदे के तहत अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करना और तीनों ममालिक के दरमियान सियासी और दिफाई तआवुन को मज़ीद मज़बूत बनाना है। गज़ा पट्टी में इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में मज़ीद 5 फ़िलिस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। वाज़ेह रहे, इसराइली हमलों में गज़ा शहर के मगरबी इलाके में वाक़े बल्दियाती पार्क के अतराफ़ और शहर के जुनूब मगरब में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 10 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं और दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज़ इसराइली हुकाम ने जनीन के मशरक़ी इलाके में फ़िलिस्तीनी अराजी पर नौआ के नाम से एक नई यहूदी बस्ती कायम की है। वाज़ेह रहे, इकदाम मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों की तौसीअ और ज़मीन पर नई सूरत हाल मुसल्लत करने की ताज़ा कोशिश है। इस तनाज़ुर में अरब लीग ने इसराइल की इम्तियाजी पॉलिसियों और गैर कानूनी आबादकारी में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि ये पॉलिसियाँ फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम की बुनियादों को ख़त्म करने के लिए की जा रही हैं। अरब लीग ने आलमी बरदारी से मुतालबा किया है कि वो इन इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ मुअस्सर इकदाम करे और फ़िलिस्तीनियों के इस हक़ का तहफ़ यकीनी बनाए कि वो 4 जून 1967 की सरहदों पर मशरक़ी अलकुद्स को दारुल हुकूमत बनाते हुए अपनी एक आज़ाद रियासत कायम करें। और आखिरी खबर, रूस और यूक्रेन के दरमियान ड्रोन तैयारों के ज़रिए एक दूसरे के खिलाफ हमलों का सिलसिला ताहाल जारी है। सियासी महाज पर रूसी सदारती महल क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को अब भी तुर्की में रूसी और यूक्रेनी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए तैयार है। ताहम उन मुज़ाकरात के लिए दरकार बुनियादी शरायत अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं। दूसरी जानिब पेस्कोव ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमिर जेलेंस्की के दरमियान सरबराही इजलास उसी सूरत में मुमकिन है जब उसका मकसद पहले से तय पाने वाले मुआहदों की तौसीक करना हो। सामीन, नशरी के अख्तिताम से कबल एक बार फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने तालीमी साल 2025-2026 के नुमाया कामयाब तलबा को एज़ाज़ से नवाजते हुए उनकी हौसला अफजाई की और मुल्क की तरक्की में नई नस्ल, ख़ानदान और तालीमी इदारों के अहम किरदार को उजागर किया। कतर ने उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी, कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया है और दोनों ममालिक के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। और तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे के तहत कायम सियासी और दिफाई स्ट्रेटेजिक कमेटी का पहला इजलास इस्तांबुल में शुरू हो गया, जिसका मकसद तीनों ममालिक के दरमियान सियासी और दिफाई तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाना है। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का नशरिया अपने इख्तिताम को पहुँचता है। स्टूडियो से तकनीकी मामिन अब्दुल्ला सुवैदी और मुझे फुरकान शाहिद को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: सामिन कराम, अरब दुनिया में कहा जाता है अलहाजा तकसर अलबदा, इसका मतलब है जरूरत इंसान को अपनी कीमती चीज भी कम दामों में बेचने पर मजबूर कर देती है। ये कहावत उस वक्त कही जाती है जब कोई शख्स अपनी शदीद मजबूरी या हालात जिंदगी के दबाव के तहत अपनी चीज असल कीमत से कहीं कम में फरोख्त कर देता है। वह हाजत और तंगी इंसान को असल कद्र कीमत से महरूम कर देती है। कहते हैं ना, मजबूरी में शेर भी घास खाता है। तो दोस्तों, ये कहावत हमें सिखाती है कि जरूरत और मजबूरी इंसान की असल कीमत को तोड़ देती है। इसलिए अगर कभी किसी को मजबूरी में कम दामों पर बेचते देखें तो उसका मजाक ना उड़ाएं बल्कि उसकी मदद करें, क्योंकि अलहाज तकसर अलबदा का मतलब है कि जरूरत सबसे बड़ी कीमत चिकन है।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस के बारे में जो हमारे दिल को मजबूत बनाने, ब्लड प्रेशर को काबू में रखने और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। दिल हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है, ये हर लम्हे खून को पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। अगर हम अपने दिल की अच्छी देखभाल करें तो दिल की बीमारियों, फालिज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे मसाइल के खतरे को कम किया जा सकता है। कार्डियो या एरोबिक्स वो एक्सरसाइजेस हैं जिनसे दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार कुछ देर के लिए बढ़ जाती है। ये एक्सरसाइजेस दिल और लंग्स को मजबूत बनाती हैं। दिल के लिए जो बेहतरीन एक्सरसाइजेस हैं उनमें सबसे पहले वॉक है कि रोज़ाना 30 मिनट तेज रफ्तार में चलना दिल की सेहत के लिए बेहतरीन और आसान एक्सरसाइज है। साइकिलिंग करना जोड़ों पर कम दबाव डालता है और दिल को मजबूत बनाता है। स्विमिंग पूरे जिस्म की एक्सरसाइज है और दिल और फेफड़ों की कारकर्दगी को बेहतर करती है। जॉगिंग सेहतमंद

तक आपस में गुफ्तगू भी करते, कभी जमाना जाहिलियत के वाकयात का जिक्र छिड़ जाता जिस पर वो हंसते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबस्सुम फरमाते। जिस तरह सामने किराम कल फजर से एक छोटा सा तजुर्बा आप कर सकते हैं, नमाज खत्म होने के फौरन बाद उठने के बजाय कुछ देर अपनी जगह पर बैठ जाएं, मस्तून अज़कार मुकम्मल करें, सुबह के अज़कार पढ़ें, कुरान का कुछ हिस्सा तिलावत करें, अल्लाह से अपने दीन, घर, रिज्क, वालिदैन, औलाद और आने वाले दिन के लिए दुआ करें, और अगर फुर्सत हो तो सूरज तुलू होने तक उसी मुबारक माहौल में रहने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें सुबह के मुबारक अवकात को गफलत से बचाने, अपने दिन का आगाज जिक्र तिलावत से करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके को अपनी जिंदगी में कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. They'll say, they see. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host, Nazia.
0: One Step to 2030.
1: आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फ्यूचर स्पोर्ट्स की. क्या खेलों की दुनिया बदलने वाली है? देखिए, आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जहां बच्चे शायद इस टॉपिक पे इंटरेस्ट भी लेते हैं. और ये टॉपिक है फ्यूचर स्पोर्ट्स का. क्या आपने कभी सोचा है कि 20 से 30 साल बाद स्पोर्ट्स कैसा होगा? क्या फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस वैसे ही रहेंगे जैसे आज है? क्या आपको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेलों की दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी? चलिए मिलकर इस मुस्तकबिल का तसव्वुर करते हैं. देखिए, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी का रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग है. आज से कुछ साल पहले तक रेफरीज और एम्पायर्स के फैसले फाइनल समझे जाते थे, लेकिन आज हम VAR, गोल लाइन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कैमराज का इस्तेमाल

0: इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल प्लेयर को मैच से पहले एआई सिस्टम बता रहा हो आज आपका राइट लेग जो है वो ज्यादा स्ट्रेस में है ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम रखिए इस तरह इंजरीज कम और परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है ना क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या रोबोट्स स्पोर्ट्स खेलेंगे ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कहने को तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आज भी रोबोट फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स और ड्रोन रेसिंग इवेंट्स मौजूद हैं होते हैं फ्यूचर में भी हो सकते हैं कि रोबोट लीग्स भी पॉपुलर एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाए लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानी इमोशंस पैशन और क्रिएटिविटी की वजह से ह्यूमन स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस हमेशा से रहेगी लोग सिर्फ हार या जीत देखना नहीं चाहते वो प्लेयर्स की कहानियां उनकी स्ट्रगल्स भी देखना चाहते हैं वैसे ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी काफी ब्राइट होगा एक जमाना था जब वीडियो गेम्स सिर्फ हॉबी समझी जाती थी आज ई स्पोर्ट्स दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है प्रोफेशनल गेमर्स स्टेडियम्स भर देते हैं और मिलियन लोग ऑनलाइन टूर्नामेंट्स देखते हैं फ्यूचर में भी हो सकता है कि ई स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बराबर पॉपुलैरिटी हासिल कर ले स्कूल्स यूनिवर्सिटीज भी कॉम्पिटिटिव गेम्स को करियर ऑप्शंस के तौर पर देख सकती हैं लेकिन स्पोर्ट्स हर किसी के लिए होगा ये भी एक अपने आप में दिलचस्प सवाल है देखिए टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को ज्यादा इंक्लूसिव बना रही है वर्चुअल रियलिटी की मदद से लोग घर बैठे ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए एडवांस प्रोस्थेटिक और इक्विपमेंट्स नई अपॉर्चुनिटीज और इक्विपमेंट्स नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं यानी फ्यूचर स्पोर्ट्स का मकसद सिर्फ कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा इसका मकसद होगा पार्टिसिपेशन अब एक और टर्म आपने सुन रखी है और वो है सस्टेनेबल स्पोर्ट्स हाँ जी फ्यूचर में एनवायरमेंट भी स्पोर्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा स्टेडियम सोलर एनर्जी से चल सकेंगे इको फ्रेंडली मटेरियल से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स का मकसद होगा कि इस तरह से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिससे एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे यानी फ्यूचर का चैंपियन सिर्फ फास्ट नहीं एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है वहीं एक और स्पोर्ट होगा जिसे लोग बहुत पसंद करेंगे वो है स्पेस स्पोर्ट्स अब थोड़ी इमेजिनेशन की बात हम करें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये स्पेस स्पोर्ट्स क्या होगा अगर इंसान मून या मार्स पर कॉलोनीज बनाता है तो वहां पर स्पोर्ट्स कैसे होंगे कम ग्रेविटी में बास्केटबॉल कितना डिफरेंट होगा हाई जंप कितनी हाई हो सकती है यानी ये साइंस फिक्शन लगता है लेकिन कुछ डेकेड्स पहले वीडियो कॉल्स भी फैंटेसी ही लगती थी अब एक और बड़ा सवाल आता है कि क्या ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स खत्म हो जाएंगे शायद हाँ या शायद नहीं कुछ कह नहीं सकते हम लेकिन हाँ फुटबॉल हो क्रिकेट हो या स्विमिंग और भी दूसरे गेम्स उस तरह की पॉपुलैरिटी को कायम कर पाए ये अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी बट मुझे लगता है इनमें चेंजेस जरूर आएंगे फिर भी जैसे मैंने कहा कि 100% ह्यूमन स्पोर्ट्स की अहमियत रहेगी टेक्नोलॉजी उन्हें मॉडर्न बना सकती है लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मार्टफोन्स आने के बाद भी आज भी लोग बुक्स पढ़ते हैं उसी तरह नए स्पोर्ट्स आने के बावजूद भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की अहमियत रहेगी ऐसा मुझे लगता है वैसे टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को बदल रही है और बदलेगी भी लेकिन इंसानी जज्बा मेहनत और कॉम्पिटिशन की रूह को कभी भी रिप्लेस करना मुश्किल ही होगा फ्यूचर के स्पोर्ट्स स्मार्ट जरूर होंगे लेकिन उनका दिल हमेशा इंसानी पैशन ही रहेगा चलिए आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों पे जा सकते हैं देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2030
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

जी बिल्कुल, जैसे कि आप सुन रहे हैं हमारा ये हफ्तावार प्रोग्राम पुलिस और आवाम, और आप हमें बिना देखे सुन रहे हैं। तो इसी तरह आज एक बड़ी ज़िंदगी, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन के पीछे मुंतकिल हो चुका है। बैंक अकाउंट मोबाइल में है, ख़रीदारी ऑनलाइन है, ऑफिस की कम्युनिकेशन ईमेल जो भी है ना ईमेल पर है कम्युनिकेशन, ख़ानदान और दोस्त सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, उनका रابطہ यानी अक्सर बेशतर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, और बहुत सी सरकारी वाणिज्यिक सर्विसेज भी इस तरह जो है ना अब इस दुनिया में, स्क्रीन की दुनिया में मुंतकिल हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी लोग यूज़ कर रहे हैं, और हुआ ये कि साथ साथ इसी डिजिटल वर्ल्ड में यानी जहाँ तक इंसान की रसाई है वहाँ कुछ ऐसे मनफी रवैये के लोग भी होते हैं। तो जुर्म ने भी अपना लिबास बदल लिया, अब पहले जैसे यानी दरवाज़ा तोड़कर सिर्फ ये जुर्म और जरायम के इर्तिकाब नहीं किया जाता, अब कभी लिंक बनकर आपके फ़ोन तक पहुंच जाता है, और कभी किसी मोतबर इदारे के नाम से मैसेज आता है, या फिर ये प्राइस के नाम से कुछ कहा जाता है। अब जो उसके झांसे में आ जाए, अपने झांसे में आकर कुछ ना यानी फ्रॉड के शिकार हो जाए तो मसाइल बन जाते हैं, इस वजह से अवेयरनेस की बात आ जाती है। और साइबर सेफ्टी के हवाले से एक अहम

0: हालांकि ये है कि अवेयरनेस, आप जैसे भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो इस सिलसिले में आपने कुछ ऐसे एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने हैं। अच्छा जी, जो चलें हम हमारी गुफ्तगू होगी वज़ारत दाखिला के तरफ से जो मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो हमें साइबर जो जराइम हैं और एहतियाती जो कार्रवाई है सिलसिले में हमें यानी हिदायत देंगे। तो चलें हम इस्तकबाल करते हैं हमारे मेहमान का। मेहमान है हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट शाहीन मोहम्मद रबिया अल कवारी। इनका ताल्लुक है इक्तसादी इलेक्ट्रॉनिक जराइम से निमटने का जो इदारा है इदारत मुकाफ़हत अल जराइम अल इक्तसादी अल इलेक्ट्रॉनिया, इससे इनका ताल्लुक है। तो अस्सलाम वालेकुम, चलें हम उनके इस्तकबाल करते हैं। सियादतुल मुलाज़िम अव्वल शाहीन मोहम्मद रबिया अल कवारी मिन इदारत मुकाफ़हत अल जराइम अल इक्तसादी अल इलेक्ट्रॉनिया तबअ अल वज़ारत दाखिलिया बिदौलत क़तर, अहलन व सहलन बिकुम मअना في إذاعة الأردو، ونشكركم على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه الحلقة التوعوية التي تمس بصورة مباشرة حياة المستمعين وكل مستخدم للتقنيات الرقمية.
1: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وتشرفنا احنا بحضورنا إليكم ونقوم واجبنا بتوعية العالم.
0: الله يسلمك.
1: بخصوص وش هي أصلاً جرائم الإلكترونية الاقتصادية وشن الجرائم اللي تجينا وكيف تتجنبها. فأول شيء تم إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وهي من أحدث إدارات وزارة الداخلية وفي أواخر العام 2018 لمجابة التزايد الكبير لاستخدامات التكنولوجيا. تخبرك الحين إحنا حالياً إحنا في عصر التكنولوجي
0: صح،
1: والكل يستعمل التليفون ولا الانترنت ولا اللابتوب، وهاي ينعكس بدوره في تنامي ظهور الجرائم في العالم الرقمي، حيث أصبحت لا تخلو جريمة من أن يكون جزء منها إلكترونيا.
0: صحيح صحيح. سامعين الكرام، جالس كي همارة مهمان فست ليفتيننت شاهين محمد ربيع الكواري، إنك تعلق اقتصاد الإلكترونيك جرائم سي نمرني كي إدارة سهم. तो उन्होंने जैसे कि हमें कहा कि दरअसल यहाँ उनके तशरीफ़ आवरी का मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस को अहम करना, बिलखसूस इक्तसादी और इलेक्ट्रॉनिक जो जराइम हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है इक्तसादी और जराइम इक्तसादी इलेक्ट्रॉनिक जराइम से निपटने का जो इदारा है, ये वज़ारत दाखिला के नस्बता जदीद डिपार्टमेंट में से एक है और 2018 के आखिर में क़ायम किया गया। और जैसे कि उन्होंने कहा कि आजकल टेक्नोलॉजी में लोग यानी दुनिया काफ़ी तरक्की कर गई है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी तेज़ रफ्तार इजाफा है। जो जैसे जैसे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी यानी हम डिजिटल चीज़ों के आदि होते गए और इनको हम इस्तेमाल करने लगे, वैसे वैसे जराइम की बहुत सी शक्लें भी जो है ना अब दिख रहे हैं। तो यानी उन्होंने ये कहा कि सूरत हाल ये है कि बहुत से रिवायती जराइम में भी किसी न किसी मरहले पर इलेक्ट्रॉनिक जो मादा है एलिमेंट है ये शामिल हो जाता है। नाम से
1: احنا كاداره بشكل اساسي بجمع الاستدلالات والتحري والتقصي والبحث عن الجناح، حيث يتم استخدام احدث الادوات والبرامج والاساليب في تعقب الجناح والتواصل لهواياتهم الحقيقيه عبر شبكه الانترنت. كما تخص الاداره بمتابعه كل ما شانه ان يمثل خرقا للقانون او الامن في القضاء السبراني. وتستقبل الإدارة الشكاوي من الجمهور والشركات، ومن ثم تباشر أعمالها الشرطية في جميع الاستدلالات والتواصل للفاعل.
0: جميل جميل. سامعين الكرام، जैसे कि हमारे मेहमान ने कहा कि उनके जो इदारा है इक्तसादी इलेक्ट्रॉनिक जराइम से निपटने का जो इदारा, इसके दायरे कार में बुनियादी तौर पर जो डिपार्टमेंट जिम्मेदारियाँ हैं, इसमें बुनियादी तौर पर एविडेंस और मालूमात जमा करना है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी मुलज़मान का सुराग लगाना और इंटरनेट के ज़रिए उनकी हकीकी शनाख्त तक पहुंचने के लिए जो जदीद इन्वेस्टिगेशन टूल्स और प्रोग्राम्स हैं मेथड्स वो इस्तेमाल करते हैं। तो

वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम के आज के सेगमेंट में, जहां हमारी गुफ्तगू हो रही है इदारतुल मुकाफहतुल जराइम इक्तिसादी इलेक्ट्रॉनिक और इक्तिसादी जराइम से निपटने के इदारे के नुमाइंदे से। और हमारे यहां तशरीफ फरमा है फर्स्ट लेफ्टिनेंट शाहीन अल कुवारी, जिनका जो हमें बता रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे क्रेडिट कार्ड की हिमायत में हमें क्या कुछ इकदाम करने हैं। और अहम बात जो उन्होंने बताई हमें कि भाई कार्ड इंफॉर्मेशन को, यानी कार्ड नंबर या दूसरे जो आपके फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, ईमेल के ज़रिए किसी के साथ शेयर ना करें। तो किसी शख्स को ये ना बताएं ईमेल के ज़रिए कि भाई कार्ड का पिन क्या है। इसी तरह ऐसी जगह

0: कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ कहीं किसी को किसी का हाथ लग जाए कि भाई हाँ इसका पिन ये है, वो लिख के रखना ये भी सही नहीं है। मज़ीद उन्होंने एक अहम नुक्ता जो हमारे साथ शेयर किया है वो ये कि रेस्टोरेंट के शॉप में पेमेंट के हवाले से वो जो पोर्टेबल पेमेंट डिवाइस है ना वो आपके पास लेके आए फिर आप पे करें। ओवरऑल ड्राइव थ्रू वगैरह में जो मसला रहता है कि बाज़ औक़ात, उन्होंने कहा कि उनके मुशाहदे में ये बात आई है कि देखा गया कि लोग जो है ना कार्ड दे देते हैं मौज़फ़ को, स्टाफ को, फिर वो जाकर अंदर पे करके दोबारा वापस लाता है, तो ये हरकत गलत है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अगर वो आपके जो तमाम डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ वो रख सकता है एक कार्ड वगैरह किसी भी डिवाइस के ज़रिए, तो इस वजह से आपने आपके पास वो डिवाइस लेके आए, अपना आप अपना कार्ड अपने पास ही रखें, इसी में एहतियात है और इससे गुरेज करें कि आप उस कार्ड उसके हवाला कर दें। तो पिन यहाँ तक कि कार्ड दूसरे का हवाला करना, पिन दूसरे को कह देना, तो ये सही नहीं। मैं उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से आपने ट्रस्टेड और सिक्योर जो वेबसाइट्स हैं कैसे इस्तेमाल करना है, ऐसे कोई साइट जो वहमी हो, ठीक है, तो इन साइट्स आप बचने की कोशिश करें और इन्हें इस्तेमाल न करें, बचने की कोशिश क्या कभी भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह लेके रख देंगे और फिर मामला आगे बिगड़ जाएगा। तो बहुत ही कुछ अहम नुक्ते जो उनकी तरफ से यानी इदारत मुकाफ़ात जरायम इक़्तिसादी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक और इक़्तिसादी जरायम से निपटने के इदारे के नुमाइंदे की तरफ से आप लोगों की खिदमत में ये नसीहतें पेश की गई कि कैसे आप अपने कार्ड बैंक कार्ड को यानी मास्टर कार्ड को या फिर क्रेडिट कार्ड को आप कैसे महफूज रखें। अब एक मशहूर टर्म है फिशिंग, तो फिशिंग के हवाले से हम अपने मेहमान से पूछेंगे फिशिंग है क्या, ठीक है। سيادة الملازم أول شاهين الكواري من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم أول كثر ما نسمع مصطلح التصيد الاحتيالي اللي إحنا نقوله في الإنجليزية فيشينج، فماذا يعني هذا المصطلح عمليا؟ ما هو التصيد الاحتيالي؟
1: نعم صحيح، أولا مثل ما قلت فيشينج هو مصطلح إلكتروني وهو نوع من الهجمات الإلكترونية الاحتيالية التي تهدف إلى خداع الأشخاص لكشف عنهم معلومات الحساسة مثل كلمات المرور أو تحميل برامج ضارة، ويتم ذلك عبر وسائل اعتيادية مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو الروابط المزيفة. ودائما لا تثق بما تراه، تحقق قبل أن تضغط. حاليا يعني في بلاغاتي اليومية تجيني أنا بلاغات يكون المحتال يتصل على الشخص ينتحل شخصية البنك وعلى أساس أنه هو البنك ويطلب منه معلومات حساسة ورمز OTP.
0: أوكي.
1: وهذا هو أهم شيء، رمز OTP. رمز OTP لا تعطي أي حد.
0: أوكي.
1: لأي إن كان من. وهذا الرمز.
0: صحيح.
1: إن خذا المحتال.
0: كأنك أعطيت زمام،
1: أعطيت استوليت حق كل شيء.
0: صحيح صحيح، بصراحة نقطة مهمة جدا، و المفروض الواحد ما يتعامل مع هذه الـ OTP والأشياء.
1: نعم صحيح، ومرات المحتال يتصل على أساس هو الجرائم الإلكترونية.
0: أوكي.
1: وهذا يشوف البلاغ قام يزيد عندي بزيادة. حطوا علم اليقين ان اذا الجرائم الالكترونيه اتصلت ما راح تطلب منكم الا شيء واحد وهو حضوركم الشخصي الى المركز.
0: اوكي اوكي تمام تمام تمام، كلام واضح. مشكورين سامعين الكلام، جيسي كيف فصل عشان شاهين الكواري من تعلق اتصال الكتروني جرائم سنه ورنه كده لسه، انه ما بتاعي كي فيشنج کیا ہوتی ہے، فیشنگ کسے کہتے ہیں، تصيد الاحتيال جس عربی میں کہا جاتا ہے، तो फिशिंग ये कहने के साथ साथ वो मछली पकड़ने के जो हुक है ना, तो तो इस हुक पर कोई चीज़ लगाकर उसे पुरकशिश बनाया जाता है। तो इसी तरह साइबर क्रिमिनल एक फेक लिंक फेक वेबसाइट को हकीकी शक्ल देकर विक्टिम के सामने पेश करना है। तो इसका मकसद ये होता है कि आपसे पासवर्ड हासिल करें, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन लिए, बैंक डिटेल

0: देखिए, हमारे मेहमान ने कहा कि आपने जो है ना इस तरह के आप किसी वेबसाइट से ख़रीद रहे हैं कोई चीज़, तो आपने ज़रूर ये यकीनी बनाना है कि आप इंश्योर करें कि भाई ये सिक्योर है, और आपके कोई दोस्त वगैरह इन्होंने भी ख़रीदा है, आप जान पहचाने लोगों में से, और इस तरह वहाँ फीडबैक भी सही है। तो इस तरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा जांच करने के बाद फिर आप ये इकदाम करें कि भाई हम ये चीज़ें ख़रीदनी है, ये वो करनी। वैसे अगर आपको लगे कि ये मशबूह है तो आप इससे दूर रहें, इसी में अफजल है। और वसीला जो उन्होंने बताया कि आपने उस तरह के यानी वेबसाइट ही से लेना है, या फिर आपने वो वसीला ही इख्तियार करना है जो मौसूक हो, ठीक है। पेमेंट के हवाले से भी उस तरह की एप्लीकेशन आप यूज़ करें, उस तरह के मद यूज़ करें जो आजकल हर किसी को पता है कि ट्रस्टेड है, तो उस पेमेंट मेथड पे आप इसको परचेस करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हम अपने मेहमान से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने आईडी कार्ड वगैरह किसी दूसरे को मैनी कभी भी आपके आईडी कार्ड किसी दूसरे से शेयर ना करें। इसका मतलब है आप आईडी कार्ड किसी दूसरे को ना दें, तो ये नसीहत क्यों दी जाती है। سيد المرازم أول لماذا نقول دائما بعدم تسليم البطاقة الشخصية لأحد والتأكد من أرقام الهواتف بصفة عامة؟ يعني لماذا نقول هكذا
1: بصفة عامة؟ أنت لازم تحمي معلوماتك الخاصة،
0: صحيح.
1: ممكن الحين أنا كمحتال أخذ اسمك ولا صورة من بطاقتك الشخصية واحتال على العالم باسمك أنت. فبعدين لما الضحية يفتح بلاغ راح يطلع للمتهم أنت وأنت لا مالك أي علاقة بالموضوع،
0: تمام،
1: بس لأنه وصل لمعلوماتك الشخصية واسمك الشخصي معلوماتك الشخصية لك وخذ صورة من بطاقتك الشخصية ويمكن أيضا يطلع أرقام باسمك أنت من أريدو فودافون ويروح بسوي جرائم على الأرقام اللي مسجلها باسمك أنت.
0: صحيح.
1: فدائما لازم بشكل عام تشوف شو الأرقام اللي عندك، وإن عندك رقم غريب يعني مثلا رحت فودافون وحصلت رقم غريب باسمك أنت بلغ الشركة تلغيه.
0: صحيح صحيح، مهم جدا هذه النقطة.
1: من أهم
0: النقاط هذه. يحصل البطاقة ويطلع.
1: يطلع
0: على الخط، ممكن يسوي أي شيء به.
1: نعم صحيح.
0: بعدين يجي التهمة، تجي التهمة على ال يعني.
1: وأنت ضحية آخر اليوم.
0: مسجل بس.
1: تعتبر ضحية آخر اليوم.
0: صحيح. سامي كم جالس كي هماري مهمان فسلفتن شاهين الكواري هنا ما بتاعي كي. ये जो आईडी कार्ड वगैरह आप किसी दूसरे को यानी सुपर्द न करें, उनके हाथ में न दें, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि इस सिलसिले में आजकल ये काफ़ी यानी कुछ भी कर सकता है आपकी आईडी कार्ड वगैरह लेकर। हो सकता है कि वो आपके बयानात ले लें, या आपके नाम पे, जैसे कि हमारी कन्वर्सेशन गुफ्तगू में ये बात कर रहे थे कि कोई आपके आईडी लेकर कोई सीम वगैरह परचेस करें, तो फिर आगे उस सीम के जरिए कुछ भी वो कर सकता है, तो पर लेकिन इल्ज़ाम आएगा किस पर, जिसके नाम पर ये सीम है। तो इस वजह से आप फ्रॉड के शिकार होने से बचने की कोशिश करें, और इस तरह के आईडी कार्ड वगैरह आप दूसरों को ना दें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अहम आइडेंटिफिकेशन सोर्स है, आपकी आइडेंटिटी है, तो आप इसे महफूज रखें अपने पास, और अपने जो भी आपकी जो शनाख्त है, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये आपको पता है कि इसके साथ आईडी कार्ड के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके आईडी कार्ड से आपके दूसरे नंबर वगैरह भी वो पता कर लें। उन्होंने मज़ीद हमें ये बताया कि आप कहीं मुस्तकिल जो जो कॉल वगैरह के सिलसिले में सीम्स के जो कहते हैं इदारे हैं, कतर में मारूफ इदारे हैं सिलसिले में, तो आप उनसे राबता करके ये भी जान सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड पर कोई दूसरा सीम तो नहीं, कोई तीसरा सीम तो नहीं, चौथा सीम तो नहीं, तो इस सिलसिले में आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि भाई मेरे नाम पर और कोई दूसरा सीम नहीं, तो ये भी एक एहतियाती इकदाम है।

0: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ हो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक ऐसा शो जहां हम दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज राजों को खोलते हैं आपके सामने। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो लिटरली लाइट ईयर्स अहेड है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रोशनी की जो सीधा चलने की बजाय टेढ़ी मेढ़ी चलती है। हाँ जी साथियों, आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अच्छा चलें इसको समझना आपके लिए इजी बनाती हूँ। ये बात तो हम सबने ही सुन रखी है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन साथियों स्पेस में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ लाइट भी कहती है भाई मैं सीधा नहीं चल सकती, यहाँ तो ग्रेविटी ने ट्रैफिक जैम लगा रखा है। तो भाई साथियों जरा सोचिए एक ऐसा मंजर जहाँ एक दूर का सितारा किसी और मैसिव गैलेक्सी के पीछे छुपा हुआ हो, लेकिन हम फिर भी उसकी लाइट देख लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बीच वाली गैलेक्सी या ब्लैक होल अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से उस लाइट को बेंड कर देती है, जैसे किसी ने आसमान में एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया हो। और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है साथियों, ये प्योर साइंस है। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था हमारे साइंस के लेजेंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी मशहूर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। भाई उस वक्त आइंस्टाइन ने ये स्टेट किया था कि ग्रेविटी सिर्फ चीजों को नीचे नहीं खींचती, ये स्पेस और टाइम को ही झुका देती है। लोगों ने पहले कहा कि भाई ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन आज जब हबल टेलीस्कोप और मॉडर्न सैटेलाइट्स ने प्रूव कर दिया है कि भाई आइंस्टाइन बिल्कुल ठीक थे, यानी कि उनकी कही हुई बात हकीकत थी। आज साइंटिस्ट इसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए यूनिवर्स के सबसे पुराने और दूर दराज गैलेक्सीज तक झांक रहे हैं। जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल या गैलेक्सी क्लस्टर किसी पीछे के ऑब्जेक्ट के सामने आता है तो वो एक नेचुरल लेंस की तरह काम करता है। लाइट उसके इर्द गिर्द झुकती है और हमें लगता है कि जैसे एक ही स्टार के कई वर्जन हमारे सामने हैं, यानी एक कॉस्मिक इल्यूजन। तो साथियों तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां लाइट झुकती है, स्टार्स डबल दिखते हैं और गैलेक्सीज अपने ही मिरर इमेज बना देती हैं। ये वो फिनोमिना है जहां साइंस और उसकी थ्योरीज मिलकर एक बन जाते हैं और हमारे सामने खुल जाता है एक नई दुनिया का दरवाजा, एक नया नजरिया। तो भाई आज हम ये जानेंगे कि कैसे ग्रेविटेशन लेंसिंग ने हमें ये बताया है कि यूनिवर्स कितनी पुरानी है और कैसे हम इसके जरिए डार्क मैटर तक का अंदाजा लगा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम खोलने जा रहे हैं ग्रेविटेशन लेंसिंग के राज, उसका मैकेनिज्म और ये स्पेस का मिरर इफेक्ट होता कैसे है

के बारे में जानेंगे। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक साथियों, और ब्रेक के बाद वापस आकर जानेंगे और भी बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 पे सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन एफएम 107। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती क्या है। सोचिए आपके पास एक बड़ा सा ग्लास लेंस है। अगर आप उस लेंस के सामने एक लाइट रख दें तो वो लाइट बेंड हो जाती है और इमेज थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी लगती है। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम कुछ स्पेस में भी होता है साथियों, बस यहाँ लेंस को

ग्लास नहीं बल्कि ग्रेविटी का होता है। जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कोई गैलेक्सी या ब्लैक होल किसी दूर के ऑब्जेक्ट के लाइट के रास्ते में आ जाता है तो वो लाइट को बेंड कर देता है और ये बेंडिंग इतनी स्मूथ और प्रिसाइज होती है कि हम एक ही स्टार या गैलेक्सी को मल्टीपल इमेज में देख लेते हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे यूनिवर्स ने अपनी ही मैजिक ट्रिक दिखाई हो। जरा सोचिए आप टेलीस्कोप में एक स्टार को देख रहे हैं ठीक है और अचानक उस स्टार का डबल या ट्रिपल वर्जन आपके सामने आ जाता है। साथियों ये कोई ग्लिच नहीं है सिस्टम का, ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कमाल है और ये बेंडिंग इतनी एक्यूरेट है कि साइंटिस्ट्स इसको एक नेचुरल कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज करते हैं। आइंस्टाइन ने इस फिनोमेना को आइंस्टाइन्स रिंग का नाम दिया था। ये तब होता है जब एक स्टार के आसपास की लाइट बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर शेप में हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है। वाह भाई क्या कॉस्मिक ज्वेलरी है ना, एकदम शाइनिंग रिंग इन द स्काई जैसी। और साथियों ये सिर्फ एक विजुअल ब्यूटी नहीं है, ये साइंटिफिक ट्रेजर भी है। यकीन जाने कि कुछ गैलेक्सीज इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट नॉर्मली हम तक कभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग उसकी लाइट हम तक ले आती है, जैसे कोई कॉस्मिक कुरियर सर्विस होना बिल्कुल वैसे। और इस इफेक्ट के जरिए ही हम यूनिवर्स के उन छुपे हुए कॉर्नर्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं जिन्हें नॉर्मली हमारी आंखें नहीं देख सकती। और ये सिर्फ लाइट को देखने का तरीका नहीं है साथियों, साइंटिस्ट्स इस इफेक्ट का यूज डार्क मैटर का मैप बनाने के लिए भी करते हैं। डार्क मैटर यानी कि वो मिस्टीरियस सब्सटेंस जो ना दिखाई देता है ना ही महसूस होता है, लेकिन यूनिवर्स के ज्यादा हिस्से इसी से बने हुए हैं। जब हम टेलीस्कोप में एक गैलेक्सी के आसपास ट्विस्टेड और बेंड लाइट देखते हैं तो हम फौरन समझ जाते हैं कि आहा यहाँ कुछ हैवी है, कुछ इनविजिबल लेकिन जरूर कोई प्रेजेंस है। साथियों ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें एक नई नजर देती है यूनिवर्स को देखने के लिए। हम यूनिवर्स के उन राजों को देखते हैं जो नॉर्मली हमें कभी नहीं दिखाई देते। ये कॉस्मिक स्पाई ग्लास है जो स्पेस के खोए हुए ट्रेजर्स हमारे सामने लाता है और यही तो साइंस का मैजिक है भाई, जहाँ एक सिंपल बेंडिंग ऑफ लाइट हमें यूनिवर्स के गहरे राज तक ले जाती है। चलिए भाई यहाँ तक तो मैंने आपको काफी इन्फॉर्मेशन दे दी। साथियों अब हम आते हैं कहानी के सबसे मैजिकल और इंटरेस्टिंग हैरत अंगेज हिस्से पर। सोचिए कई सालों तक साइंटिस्ट को लगता था कि कुछ गैलेक्सीज और स्टार्स हमेशा के लिए खो गए हैं। उनकी लाइट इतनी फेंट या दूर थी कि वो टेलीस्कोप की पकड़ में आते ही नहीं थे, जैसे यूनिवर्स ने एक हाइड एंड सीक गेम शुरू कर दी हो और हमारी आंखें बस उन्हें ढूंढती ही रह जाती थीं। लेकिन फिर एक दिन जैसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भाई उस दिन से लेकर आज तक सब कुछ बदल गया। एक जबरदस्त एग्जाम्पल उसकी दूं आपको, एक डिस्टेंट गैलेक्सी जिसका नाम है MACS 0647 JD। ये गैलेक्सी इतनी दूर है कि इसकी लाइट हम तक पहुंचने में तकरीबन 13 बिलियन साल लगाती है। जी हाँ 13 बिलियन years, मतलब जब ये लाइट निकल रही थी तब अर्थ पे डायनासोर्स भी नहीं थे। लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने क्या तो कमाल दिखाया भाई, उसने इस गैलेक्सी को मैग्नीफाई कर दिया जैसे किसी ने टेलीस्कोप के सामने एक कॉस्मिक जूम बटन दबा दिया हो। और हमने एक ऐसी गैलेक्सी देखी जो प्रैक्टिकली यूनिवर्स के चाइल्डहुड में थी। सोचिए जरा हम अपनी आंखों से यूनिवर्स के बचपन की फोटो देख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं साथियों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मैजिक और भी हैरत अंगेज है। कुछ केसेस में तो एक ही स्टार मल्टीपल जगह पे दिखाई देता है, जैसे 2018 में साइंटिस्ट ने एक स्टार देखा जिसका नाम रखा गया था इकरस। ये स्टार नॉर्मली इतना दूर और फेंट था कि हमारी आंखों को तो दूर की बात, मॉडर्न टेलीस्कोप्स के लिए भी ये प्रैक्टिकली इनविजिबल था। लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने क्या तो कमाल दिखाया, उसकी ब्राइटनेस 2000 टाइम्स बढ़ा दी, मतलब एक इनविजिबल स्टार बन गया एक शाइनिंग सेलिब्रिटी। वाह वाह वाह, जहाँ यूनिवर्स की ग्रेविटी ने उसके लिए स्पॉटलाइट लगा दी। भाई इस टेक्निक ने एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस डिटेक्टिव्स के लिए एक गोल्डन गिफ्ट तैयार कर दिया। भाई देखिए आप अगर कोई गैलेक्सी हाइड एंड सीक खेल रही हो

ग्रेविटी उसे छुपने नहीं देती, ऐसे जैसे कह रही हो कि लाइट छुप सकती है लेकिन ग्रेविटी से नहीं। और साथियों, ग्रेविटेशन लेंसिंग सिर्फ स्टार और गैलेक्सीज को देखने का तरीका नहीं, ये डार्क मैटर का प्रूफ ही प्रोवाइड करता है। डार्क मैटर वो मिस्टीरियस चीज है जो ना दिखाई देती है ना महसूस होती है, फिर भी यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा इसी से बना हुआ है। हम जब टेलीस्कोप में बेंड और ट्विस्टेड लाइट देखते हैं तो हमें फौरन समझ आ जाता है, आहा, यहाँ कुछ हैवी चीज है, कुछ इनविजिबल लेकिन दिखाई नहीं देती, हाँ प्रेजेंट जरूर है। इसी तरह लेंसिंग ने साइंटिस्ट को डार्क मैटर का एक रोड मैप भी दिया। और साथियों, यही नहीं, ग्रेविटेशन लेंसिंग से हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन के क्लू भी मिलते हैं। जब हम डिस्टेंट गैलेक्सीज के लाइट को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे बेंड और डिस्टॉर्ट हो रही हैं, हम समझ पाते हैं कि यूनिवर्स का साइज कैसे बढ़ रहा है भाई, और वो कितनी तेजी से एक्सपेंड हो रही है। मतलब हम बेसिकली स्पेस के डिटेक्टिव बन जाते हैं, और हर बेंड लाइट हमारे लिए एक न्यू क्लू लेकर आती है। साथियों, इस लेंसिंग का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं है, ये एक कॉस्मिक आर्ट फॉर्म भी है। जब लाइट और ग्रेविटी मिलते हैं तो वो स्पेस के कैनवास पर एक मास्टरपीस क्रिएट करते हैं। गैलेक्सीज और स्टार्स की ट्विस्टेड और मैग्निफाइड इमेजेस एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करती हैं जो नॉर्मली हमारी आंखें कभी नहीं देख पाती। जरा ऐसे सोचिए ना कि स्पेस ने हमें एक नेचुरल गैलरी दिखा दी है जहाँ यूनिवर्स के हिडन ट्रेजर्स हमारे सामने अनफोल्ड हो रहे हैं। साथियों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए हम सिर्फ स्टार्स और गैलेक्सीज को नहीं देखते बल्कि यूनिवर्स की खोई हुई कहानियां भी वापस लौट आती हैं। हर बेंड रे ऑफ लाइट एक हिडन स्टोरी बताती है, जैसे हम स्पेस की डायरी पढ़ रहे हैं। कभी कभी ये बेंड लाइट हमें यूनिवर्स की अर्ली हिस्ट्री तक भी ले जाती है, कभी ये हमें उन इनविजिबल और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स तक गाइड करती है जो अदरवाइज कभी भी नहीं दिखते। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है, वो ये है कि ये लॉस्ट एंड फाउंड और यूनिवर्स सिर्फ देखने का मैजिक नहीं बल्कि समझने का भी एक पावरफुल टूल है। हर ट्विस्ट, हर कर्व, हर मैग्निफाइड स्टार हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर, मास डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्ट्री के बारे में इंसाइट देता है। हम बेसिकली एक कॉस्मिक आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, और ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें वो क्लूज देती है जो नॉर्मली इनएक्सेसिबल होते हैं। तो भाई, हम इसके बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि ग्रेविटी ने खोई हुई कहानियां वापस ला दी हैं। यूनिवर्स के वो स्टार्स, गैलेक्सीज और मिस्ट्रीज जो हमेशा के लिए छुप गए थे, अब हमारी आंखों के सामने आ गए हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है साथियों, अब देखना ये है कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप्स और एडवांस टेक्निक्स यूनिवर्स के और भी गहरे राज हमारे सामने लेकर आएंगी। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जहाँ हर बेंड रे ऑफ लाइट एक नई कहानी सुनाती है और हर खोई हुई गैलेक्सी वापस अपनी जगह दिखाई देने लगती है।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफएम 107 पर। अब हम आते हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी के उस जगह पर जहां हम फ्यूचर की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, और बिलीव इट और नॉट, ये जर्नी आपकी आंखों को लिटरली यूनिवर्स के परे ले जाएगी। साथियों, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग की। ग्रेविटेशनल लेंसिंग सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं, ये एक विंडो है आने वाले कल के यूनिवर्स तक की। जरा सोचिए, वो लाइट जो बिलियंस ऑफ इयर्स ट्रेवल करके हम तक आई है, अब हम उसे यूज करके यूनिवर्स के सबसे दूर और पुराने सीक्रेट्स देख सकते हैं। साथियों, नासा और ESA के नए और एडवांस टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज करके उन जगहों तक देख रहे हैं जहां हम पहले कभी नहीं पहुंच पाए थे। ये टेलीस्कोप्स हमें यूनिवर्स के ऐसे रीजन्स दिखाते हैं जहां स्टार्स की पैदाइश हो रही है और गैलेक्सीज अपनी पहली रोशनी फैला रही हैं। इसके जरिए हम देख पाएंगे पहली गैलेक्सीज कैसे बनी, कैसे ग्रो की, और उनके आसपास क्या एनवायरमेंट्स थे, क्या वहाँ लाइफ के लिए कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं? जी हाँ साथियों, ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये अब रियलिटी में हो रहा है। साथियों, आपको याद है ना कि आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इक्वेशंस लिखी थी जो शायद उस वक्त सिर्फ थ्योरेटिकल लगती थी, लेकिन आज उनके इफेक्ट्स लाइव कैप्चर किए जा रहे हैं। एवरी बेंड रे ऑफ लाइट, एवरी मैग्निफाइड स्टार एंड गैलेक्सी हमें दिखाता है कि कैसे यूनिवर्स अपनी स्टोरी खुद लिख रही है और हम बस उस स्टोरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और साथियों, फ्यूचर में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के यूज से हम ब्लैक होल्स के अंदर के रीजंस तक भी विजुलाइज कर सकते हैं, वो जगह जहां टाइम और स्पेस दोनों डिस्टॉर्ट होते हैं। इमेजिन कीजिए, हम उस रीजन को देख रहे हैं जहां लाइट इटसेल्फ और जहां ग्रेविटी का रूल यूनिवर्स के हर फंडामेंटल लॉ को ट्विस्ट कर देता है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस नहीं, ये एक डायरेक्ट विंडो है उन कॉस्मिक मिस्ट्रीज के लिए जो हमेशा थ्योरेटिकल और अनसीन रहती हैं। और साथियों, यही नहीं, एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्सोप्लैनेट्स को भी लेंसिंग के जरिए डिटेक्ट कर लें, वो डिस्टेंट वर्ल्ड्स जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये चीज भाई सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करती, बल्कि हमें ये भी दिखाती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग का स्कोप इन्फिनिटी तक एक्सपेंड हो सकता है। तो भाई, हम बेसिकली यूनिवर्स के ब्लूप्रिंट को रीड कर रहे हैं एक बेंड रे ऑफ लाइट के थ्रू। और साथ ही आपको बताएं, सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि ग्रेविटेशन लेंसिंग सिर्फ साइंस का टूल नहीं है, ये आर्ट का मीडियम भी है। एक तरफ ये हमें हार्ड डाटा और मेजरमेंट्स देता है, जैसे डार्क मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट और मास और ग्रेविटी के मैप्स। और दूसरी तरफ ये हमें यूनिवर्स को एक पेंटिंग की तरह दिखाता है जहां लाइट कर्व्ड स्ट्रोक्स बनाती है, गैलेक्सीज ट्विस्ट और मैग्निफाई होती हैं, और हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक यूनिक ब्रश स्ट्रोक का काम करता है। जरा सोचिए, आप टेलीस्कोप

से यूनिवर्स देख रहे हैं और साइमल्टेनियसली एक कॉस्मिक मास्टरपीस एंजॉय कर रहे हैं। साथियों, शायद एक दिन हम कह सके कि हमने सिर्फ यूनिवर्स को देखा नहीं, हमने उसे समझा भी है। हर डिस्कवरी एक नई इनसाइट, एक नई स्टोरी और एक नई कहानी हमारे सामने लेकर आती है। ग्रेविटेशन लेंसिंग ने हमें ये दिखाया है कि लाइट सिर्फ सीधी लाइन में नहीं चलती, वो कहानियों के रास्ते भी मोड़ सकती है। और शायद इसीलिए साइंस इतनी ब्यूटीफुल लगती है भाई, क्योंकि हर नई डिस्कवरी एक सरप्राइज, एक सेंस ऑफ वंडर हमारे सामने खोलती है। साथ ही फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, एडवांस टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस के साथ हम यूनिवर्स के सबसे डिस्टेंट और प्योर स्टार्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स को रियल टाइम में ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे गैलेक्सीज इंटरैक्ट करती हैं और कैसे कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। हर बेंड रे ऑफ लाइट एक मैसेज लेकर आती है साथियों, और हम बस उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साथियों, आज हमने ये जाना कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग सिर्फ एक साइंटिफिक फिनोमेना नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन और आर्टिस्टिक विंडो है। ये हमें यूनिवर्स के हिडन कॉर्नर्स, अनऑब्जर्व्ड स्टार्स और डिस्टेंट गैलेक्सीज तक ले जाती है, और साथ ही साथ हमारी इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग को भी एक्सपेंड करती है। हर बेंड और ट्विस्टेड लाइट हमारे लिए एक कॉस्मिक स्टोरी, एक मिस्ट्री और एक पॉसिबिलिटी लेकर आती है। तो साथियों, आज हमने बात की एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो पहले सिर्फ थ्योरी था और अब रियलिटी का हिस्सा बन चुका है, यानी ग्रेविटेशन लेंसिंग। इस फिनोमेना ने हमें ये दिखाया कि लाइट भी एक ट्रैवलर है, कभी सीधी कभी उलझी हुई, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचती हुई। साथियों, जैसे यूनिवर्स के हर राज को एक्सप्लोर करने के लिए लाइट यहाँ वहाँ सफर कर रही होती है ना, वैसे ही हमारी क्यूरियोसिटी हमें नए होराइजन की तरफ ले जाती है। और साथियों, इस सफर में हम एक और चीज जरूर महसूस करते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत। और इंसान आखिर में यही कहता है कि सुभान अल्लाह। हर बेंड रे, हर शाइनिंग स्टार और हर मैग्नीफाइड गैलेक्सी एक सबूत है कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को जिस परफेक्शन और ब्यूटी के साथ बनाया है वो वाकई में लाजवाब है। और सबसे जबरदस्त बात ये है कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को भी ये एबिलिटी दी है कि हम इस खूबसूरत क्रिएशन को एक्सप्लोर कर सकें, समझ सकें और अप्रिशिएट कर सकें। साथियों, आइंस्टाइन की इक्वेशन से लेकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक इंसानी क्यूरियोसिटी ने साबित किया है कि जब हम सवाल करते हैं ना क्यों, तो यूनिवर्स जवाब देती है, जैसे कि वो कह रही हो कि देखो जरा मैं क्या हूँ और मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जरा सोचिए, ये जो बेंड और मैग्नीफाइड लाइट हमारी आंखों तक आती है, ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है बल्कि अल्लाह की डिजाइन और विजडम का एक आईना है। हर ट्विस्टेड लाइट हमें यूनिवर्स के हिडन ट्रेजर्स और मिस्ट्रीज दिखाती है, और हर ऑब्जर्वेशन हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इतनी नॉलेज और इंटेलेक्ट दी है कि हम अपने आसमान और स्पेस को समझ सकें। भाई सुभान अल्लाह। तो भाई, आज की बात सिंपल है, हर चीज जो आपको इम्पॉसिबल लगे वो शायद सिर्फ एक नए नजरिए से देखी जा सकती है। जैसे लाइट बेंड होती है और नए पैटर्न्स क्रिएट करती है, वैसे ही जिंदगी के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी एक न्यू पर्सपेक्टिव से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर लाइट झुक कर ब्यूटी और इनसाइट्स क्रिएट कर सकती है, तो भाई हम अपनी सोच और अप्रोच क्यों नहीं बदल सकते भाई। और साथियों, ग्रेविटेशन लेंसिंग सिर्फ साइंस का टूल नहीं, ये कुदरत के आर्ट का कॉम्बिनेशन भी है। ये हमें डाटा और मेजरमेंट्स देता है, जैसे डार्क मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट और मास और ग्रेविटी के मैप्स। साथ ही ये हमें यूनिवर्स को एक कॉस्मिक पेंटिंग की तरह दिखाता है, जहां लाइट कर्व्ड स्ट्रोक्स बनाती है, गैलेक्सीज ट्विस्ट और मैग्नीफाई होती हैं, और हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक यूनिक ब्रश स्ट्रोक का काम करता है। साथियों, ये सब सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत से मुमकिन हुआ है। हमारे पास नॉलेज और इंटेलेक्ट है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है, और हम इस कुदरत को समझकर और अप्रिशिएट कर सकते हैं। हर बेंड लाइट, हर शाइनिंग स्टार और हर गैलेक्सी हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया और यूनिवर्स को जिस परफेक्शन और ब्यूटी के साथ क्रिएट किया है वो वाकई में लाजवाब है। तो साथियों, आज हमने बहुत कुछ जाना बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में। याद रखिए, जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, स्टार्स की ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हैं और यूनिवर्स के वंडर्स इमेजिन करते हैं, ये सिर्फ साइंस का मैजिक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत

और नेमत का सबूत है। हर बेंड रे ऑफ लाइट, हर शाइनिंग स्टार और हर गैलेक्सी हमें ये बताती है कि दुनिया और स्पेस की कुदरत कितनी जबरदस्त है। सुभान अल्लाह। तो भाई ये था हमारा आज का एपिसोड एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी का। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। देसी
2: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है। और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। विदारत दाखला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है।
4: मेरे लिए है।
3: कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: ख्वाब के टूटने का दर्द हो, इंसान रोएगा, उदास होगा, कमज़ोर महसूस करेगा। ये लाजमन पैथोलॉजी नहीं। कभी तो अगर इंसान किसी बड़े नुकसान पर गम ही महसूस न करे तो वो खुद एक सवाल पैदा करता है, यानी अरे इतने बड़े नुकसान पर उसे गम क्यों नहीं हो रहा। तो सैडनेस इंसानी फितरत का हिस्सा है। कुरान में याकूब अलैहिस्सलाम का गम बहुत वाज़ेह है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई के बाद वो बरसों गमगीन रहे। कुरान बयान करता है कि उनकी आंखें गम से सफ़ेद हो गई। लेकिन क्या हम उन्हें डिप्रेस्ड कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका गम गहरा था, मगर उनकी पूरी ज़िंदगी कलप्स नहीं हुई। वो अल्लाह से कटे नहीं, उन्होंने अपने फ़राइज़ नहीं छोड़े, औलाद की तरबियत जारी रखी, दुआ जारी रखी, उम्मीद ख़त्म नहीं की। तो ये फ़र्क नहायत अहम है। अगर सैडनेस बढ़ते बढ़ते उस मकाम तक पहुँच जाए कि इंसान अल्लाह के बारे में मनफी गुमान करने लगे, अपने बारे में होपलेस हो जाए, लोगों से ताल्लुक़ तोड़ दे, रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियाँ बुरी तरह मुतासर हों, काम, इबादत, घर और सोच में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाए, तो यहाँ तवक्कुफ और वक्फा ज़रूरी है। कि अब मसला सिर्फ सैडनेस नहीं रहा, ये डिस्पेयर या होपलेसनेस की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ सैडनेस और डिस्पेयर के दरमियान फ़र्क ज़रूरी है। सैडनेस में दिल ज़ख्मी होता है, डिस्पेयर में उम्मीद मरने लगती है। इसी तरह फेयर भी हमेशा पैथोलॉजिकल नहीं। अगर इम्तिहान है तो थोड़ा खौफ आपको पढ़ने पर मजबूर करता है। अगर सड़क है तो खौफ आपको गाड़ी देखकर रुकने पर मजबूर करता है। अगर ख़तरा है तो फेयर ये सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है। यानी अगर खौफ सही माने में हो तो इंसान को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर खौफ इतना बढ़ जाए कि वो ग्रोथ रोक दे, इंसान को घर से निकलने न दे, काम करने न दे, ताल्लुकात तोड़ दे या बार बार पैनिक की कैफियत पैदा कर दे, तो वो अनहेल्दी टेरिटरी में दाखिल हो चुका है। यहाँ खौफ पैनिक अटैक्स या क्लिनिकल एंग्जाइटी की सूरत इख्तियार कर सकता है। तो इमोशन बजाते खुद कोई डिजीज़ नहीं। इस इमोशन का पैटर्न, शिद्दत, ड्यूरेशन और असर अहम है। अब जरा एक शख्स की मिसाल लीजिए जो हर वक्त ये समझता है कि लोग उसे देख रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, बॉस उस पर नज़र रख रहा है, कोई उसकी बात सुन रहा है। इब्तदाई मरहले में मुमकिन है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी भी चला रहा हो, ऑफिस जाता हो, मीटिंग्स अटेंड करता हो, बाहर से फंक्शनल दिखाई देता हो, लेकिन फिकुनस का जाविया उसे यह बताता है कि बदगुमानी अभी से डिजीज़ है। उसे अभी एड्रेस करो, उससे कहो अपने इस्लाह पर तवज्जो दो, लोगों के जहन पढ़ना बंद करो, हर नज़र को अपने खिलाफ सिग्नल न समझो, हर खामोशी को साजिश न बनाओ। तो इस तरह ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है जब रूट पैटर्न पैदा हो रहा है, न कि उस वक्त जब क्राइसिस मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाए। तो सामने कराम, ये पूरी गुफ्तगू दरअसल हमें एक ज़्यादा जामे तारीफ की तरफ ले जाती है कि नफसियाती सेहत सिर्फ ये नहीं कि इंसान काम पर जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, बल्कि सवाल ये भी है क्या उसके दिल में तकब्बुर है, क्या वो हसद में जल रहा है, क्या बदगुमानी ने ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, क्या वो हकीकत कबूल कर सकता है, क्या वो गलती मान सकता है, क्या अल्लाह के बारे में उसका गुमान दुरुस्त है। तो यहाँ काफ़ी हेल्थ सिर्फ फंक्शनिंग नहीं बल्कि इनर बैलेंस भी है। तो जैसा कि हमने सामने कराम प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा था कि रूहानी और अखलाकी बीमारियों की अहमियत तस्लीम करने का मतलब ये नहीं कि क्लिनिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या दीगर नफसियाती बीमारियों को सिर्फ कमज़ोरी मान कर नज़रअंदाज कर दिया जाए। जिस्म की बीमारी का इलाज होता है, दिमाग और जहन की बीमारी का भी इलाज होता है, और दिल और किरदार की बीमारियों की इस्लाह भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये तीनों डायमेंशंस आपस में जुड़े होते हैं। इसलिए हिकमत यह है कि न रूहानी पहलू को इग्नोर किया जाए और न मेडिकल या साइकोलॉजिकल केयर को। तो सामने कराम, आज के इस प्रोग्राम का, आज के इस हल्के का मरकजी पैगाम ये है कि इंसान की बीमारी सिर्फ वो नहीं जो लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक मैनुअल में दिखाई दे। कभी बीमारी तकब्बुर, कभी हसद, कभी बदगुमानी, कभी अपनी गलती मानने से इनकार, कभी होपलेसनेस, और कभी लोगों के सामने खुद को प्रूव करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी खो देना। इसी तरह हर गम डिप्रेशन नहीं, हर खौफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं। गम कभी मोहब्बत की निशानी है, खौफ कभी हिफाजत करता है। लेकिन जब यही कैफियत उम्मीद, इबादत, ताल्लुक, काम और हकीकत को डिस्टॉर्ट करने लगे तो फिर वो अटेंशन मांगती है। और शायद यहाँ फिकुन्नफ्स की असल दावत ये है कि सिर्फ ये ना देखो कि तुम बाहर से कितने फंक्शनल हो, ये भी देखो कि तुम्हारा दिल अंदर से कितना हेल्दी है। क्योंकि कभी इंसान दुनिया के सामने बिल्कुल कामयाब दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो रही होती है जिसने उसके सुकून, ताल्लुकात और आखिरत तीनों को खतरे में डाल रखा होता है। बस एक सामीन, आज के इस हलके से तकनीकी मामिन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी,
2: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
3: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना न भूलें शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से RJ नासिया के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
5: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
6: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर RJ सफा और RJ महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
5: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
7: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतरी आर्चर रीम अल साई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कतर की टैलेंटेड आर्चर हैं और रीम अल साई ने रिकर्व आर्चरी में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से अपना नाम बनाया है। वन ऑफ द वेरी फ्यू आर्चर जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करके दिखाया। रीम ने दोहा में होने वाले GCC गेम्स और अरब वीमेंस क्लब्स गेम्स में रिकर्व आर्चरी के मुख्तलिफ इवेंट्स में कई गोल्ड मेडल जीत कर कतर का नाम रोशन किया। उनकी कामयाबी सिर्फ मेडल्स तक महदूद नहीं दोस्तों, बल्कि ये कतर में वीमेंस आर्चरी के बढ़ते हुए स्टैंडर्ड का भी सबूत है। रीम अपनी कंसिस्टेंसी, फोकस और प्रेशर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की सलाहियत के लिए पहचानी जा रही हैं। रीजनल लेवल पर उनकी परफॉर्मेंसेज ने उन्हें कतर की प्रॉमिसिंग आर्चरी टैलेंट्स में शामिल कर दिया है। दोस्तों अब नजरें रीम अल साई पर हैं कि वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी अपनी इस काम

0: कामयाबी को कैसे आगे बढ़ाती हैं। एक बात तय है, कतर की आर्चरी में रीम अल साई एक ऐसा नाम है जिसे मुस्तकबिल में जरूर फॉलो करना होगा। कतर स्पोर्ट्स लेजेंड में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा।
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
1: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
0: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस के बारे में जो हमारे दिल को मजबूत बनाने, ब्लड प्रेशर को काबू में रखने और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। दिल हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है। ये हर लम्हे खून को पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। अगर हम अपने दिल की अच्छी देखभाल करें तो दिल की बीमारियों, फालिज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे मसाइल के खतरे को कम किया जा सकता है। कार्डियो या एरोबिक्स वो एक्सरसाइजेस हैं जिनसे दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार कुछ देर के लिए बढ़ जाती है। ये एक्सरसाइजेस दिल और लंग्स को मजबूत बनाती हैं। दिल के लिए जो बेहतरीन एक्सरसाइजेस हैं उनमें सबसे पहले वॉक है कि रोज़ाना 30 मिनट तेज़ रफ्तार में चलना दिल

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल काम है, हमारे बस की बात नहीं। भाई, हम एक ही तो शख्स हैं, हम क्या ही कोई फर्क पड़ेगा अगर हम कुछ करेंगे तो। हमें लगता है कि ग्रीन लाइफस्टाइल अपनाने के लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने होंगे, लेकिन असल

0: में ये बात मुझे नहीं लगता सच है भाई। देखिए कभी-कभी एक छोटा सा चैलेंज, एक छोटी सी आदत और एक छोटा सा डिसीजन भी बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है। अब आप पूछेंगे क्या? तो भाई ये किया जा सकता है कि एक हफ्ते के लिए प्लास्टिक बॉटल्स अवॉइड करना, घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कम करना या ग्रोसरी शॉपिंग को थोड़ा स्मार्ट बनाना। तो भाई क्यों ना आज के इको स्विच में हम बात कर लें ग्रीन लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, यानी छोटे छोटे चेंजेस जो हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स अपनाने में मदद करें। पहले तो एक काम करते हैं ना, प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। हम सब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं साथियों, हम सबका ये मामला है, हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये बात है, लेकिन अक्सर कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज होती है। देखिए हमारी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हम कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देते हैं, पुरानी आदतें बदलना मुश्किल लगता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम शुरू कहाँ से करें। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट कम होना चाहिए, लेकिन शॉपिंग के वक्त रियूजेबल बैग्स भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, लेकिन रूम से बाहर निकलते वक्त लाइट बंद करना भूल जाते हैं, एसी बंद नहीं करते। इसीलिए छोटे ग्रीन चैलेंजेस हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो हमें स्टेप बाय स्टेप बेहतर आदतें बनाने में, बिल्डअप करने में मदद करते हैं। तो भाई इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको देती हूं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इजी ग्रीन लाइफस्टाइल चैलेंजेस जो आप ट्राई कर सकते हैं बहुत इजीली। 7 डे प्लास्टिक फ्री चैलेंज। एक हफ्ते के लिए कोशिश करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम कम से कम यूज करें, रियूजेबल बॉटल, शॉपिंग बैग्स और कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। अच्छा दूसरी चीज ये कि एनर्जी सेविंग चैलेंज करें। एक हफ्ते के लिए अपने घर में एनर्जी चेक रूटीन बनाएं, रूम से निकलते वक्त लाइट्स बंद करें और अनयूज्ड डिवाइसेस स्विच ऑफ करें प्रॉपरली। तीसरी चीज फूड वेस्ट चैलेंज। देखिए चैलेंज लें कि जितना खाना चाहिए उतना ही प्रिपेयर करना है, बचा हुआ खाना वेस्ट करने के बजाय प्रॉपरली स्टोर या रीयूज करना है। चौथी चीज ये कि नो अननेसेसरी शॉपिंग चैलेंज। अरे भाई इसके ऊपर तो अच्छे अच्छे आके डगमगा जाते हैं। कुछ लोगों को ना शॉपिंग की आदत होती है, शॉपहोलिक होते हैं, तो भाई उनके लिए ये बड़ा यूजफुल हो सकता है। कुछ दिन के लिए सिर्फ जरूरी चीजें खरीदने का चैलेंज लें, इससे पैसा भी बचता है और अननेसेसरी कंजम्पशन भी कम होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेचर टाइम चैलेंज। ये मेरा सबसे फेवरेट है। हर हफ्ते कुछ वक्त नेचर के करीब गुजारें, प्लांट्स की केयर करें, वॉकिंग करें या ग्रीनरी को अप्रिशिएट करें। नेचर के करीब रहना हमें एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस याद दिलाता है साथियों। अगर इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दी जाए तो दुनिया भर में बहुत से लोग ग्रीन चैलेंजेस के जरिए अपनी लाइफ इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज वेस्ट फ्री वीक ट्राई करती हैं, जहां वो ये सीखती हैं कि कितना कचरा कम किया जा सकता है। कुछ ऑफिसेज एनर्जी सेविंग चैलेंज ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां एम्प्लॉयज मिलकर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और कुछ स्कूल्स स्टूडेंट्स के लिए रिसाइकलिंग और प्लांटिंग चैलेंजेस भी रखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चैलेंजेस का मकसद परफेक्ट बनाना नहीं होता इंसान को, बल्कि अपनी आदतों को बेहतर बनाना होता है। तो भाई लिसनर्स, इको स्विच हमारा आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज आप एक छोटा सा ग्रीन चैलेंज चूज करेंगे और उसे कम से कम 7 दिन तक फॉलो करने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमें बताइए अगर आपको सिर्फ एक ग्रीन चैलेंज चूज करना होता तो आप क्या चूज करते? प्लास्टिक कम करना, फूड वेस्ट कम करना या एनर्जी सेव करना? इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस एक छोटा स्टेप लेना जरूरी है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देश में।
1: Qatar's most heard radio station FM 107, FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है सोसाइटी में सलाम और अमन फैलाना। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है। सलाम करना सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं बल्कि एक दुआ है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो हम दूसरे के लिए अमन और रहमत की दुआ कर रहे होते हैं। ये छोटा सा अमल रिश्ते को मजबूत करता है और दिल में नरमी पैदा करता है। आज की दुनिया में जहाँ टेंशन और दूरियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ सलाम और अच्छा रवैया एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। हर मुलाकात को सलाम से शुरू करना एक सिंपल हैबिट है जो सोसाइटी को बेहतर बना सकती है। आज का अमल ये है कि हर मिलने वाले को सलाम करें और मुस्कुराहट के साथ बात करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilse Desi.
2: One step to 2030.
3: Hello and welcome to our very last segment of One Step to 2030.
2: One Step to 2030.
3: अब हमने इतने दिनों तक One Step to 2030 में बात की future sports की, future jobs की, trends की, फ्यूचर करेंसी की, वैल्यूज की, कल्चर्स की, फ्यूचर की तैयारियों की, सस्टेनेबिलिटी की, किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन सी हैबिट्स को एडॉप्ट करना है एंड सो मच सो. अब आज इस लास्ट सेगमेंट में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आज से कल के लिए तैयारी शुरू करें. आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर के लिए ज़हनी तैयारी, और ये तैयारी बड़ी ज़रूरी है. फ्यूचर के लिए ज़हनी तैयारी क्यों ज़रूरी है? हम अक्सर अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते ही हैं, एजुकेशन प्लान्स बनाते हैं, करियर गोल सेट करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम कभी कभी भूल जाते हैं और वो है हमारी मेंटल प्रिपरेशन. फ्यूचर के लिए ज़हनी तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट है. टेक्नोलॉजी हर रोज़ बदल रही है, नई जॉब्स हर वक्त आ रही हैं, पुरानी स्किल्स की डिमांड हर रोज़ कम हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल टूल्स हमारी लाइफस्टाइल और वर्किंग स्टाइल दोनों को चेंज कर रहे हैं. ऐसे में जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार होते हैं वो ज़्यादा कामयाब और कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं. अब ज़हनी तैयारी क्या होती है? देखिए, ज़हनी तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आप को नए चैलेंजेस और नए मौक़ों के लिए तैयार करें. यानी अगर ज़िंदगी प्लान के मुताबिक ना भी चले तो आप घबराएं नहीं, बल्कि सिचुएशन का सामना कर सकें. प्रोफेशनल लाइफ में इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है. मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और अचानक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती हैं. अगर आप मेंटली फ्लेक्सिबल हैं तो आप नए स्किल्स सीख कर आगे बढ़ सकेंगे, और अगर आप रिजिड हैं तो आपका आगे बढ़ना कितना मुश्किल होगा. अगर आप चेंजेस से डरते हैं तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का आप शिकार होंगे. आज एम्प्लॉयर्स भी उन लोगों को पसंद करते हैं जो अडैप्टेबल हो और लर्निंग के लिए तैयार रहते हो. वहीं पर्सनल लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है. जिंदगी हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो नहीं चलती. कभी रीलोकेशन होता है, कभी करियर चेंज करना पड़ता है, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, और कभी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं. अगर इंसान मेंटली स्ट्रांग हो तो वो मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ता है. तो एक चीज़ जो हमारे आप के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है वो है लर्निंग माइंडसेट. फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी तैयारी ये है कि हम सीखना कभी ना छोड़ें. जो लोग समझते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया वो अक्सर चेंज के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल महसूस करते हैं. लेकिन जो लोग हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं ना, उनके लिए फ्यूचर ज़्यादा एक्साइटिंग होता है. अब डर भी तो कोई चीज़ है. अक्सर फ्यूचर का डर अनसर्टेनिटी की वजह से होता है. हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हकीकत ये है कि किसी को भी फ्यूचर नहीं पता. लेकिन हाँ, उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है. उसके लिए फोकस उन चीज़ों पर करना होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है. लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, आपकी स्किल्स, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप और शायद नए एक्सपीरियंसेस, नए स्किल्स, इन पे फोकस. यह आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल है. फ्यूचर की सबसे बड़े स्किल्स क्या होंगे? मैं नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल. बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर का जो सबसे बड़ा स्किल है वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल

0: हैं वो है अडैप्टेबिलिटी। जो इंसान सिचुएशंस के मुताबिक खुद को बदल सकता है वो हर दौर में अपनी जगह बना लेता है। तो क्या आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं या प्रेजेंट में जीते हैं, या आप फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्या आप एक्साइटेड हैं या घबराए हुए हैं? बस एक चीज जो आपको जहन में रखनी है वो टेक्नोलॉजी, एआई, ब्ला ब्ला ब्ला नहीं है, वो है अडैप्टेबिलिटी और लर्निंग माइंडसेट। फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर उन लोगों का है जो नए सिचुएशन से सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ज़हनी तैयारी हमें सिर्फ मुस्तकबिल का सामना करना नहीं सिखाती बल्कि उसे कॉन्फिडेंस के साथ वेलकम करना भी सिखाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल जो आपकी और हमारी मुलाकात होगी ना, वो होगी एक नए सेगमेंट में, एक नए टॉपिक पे, एक ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट। यहाँ बहुत मजा आया वन स्टेप टू 2030 में, बहुत कुछ सीखा जाना। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद आपने उसको अप्लाई भी किया होगा, नहीं किया तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आपसे अब इस सेगमेंट से इजाजत लेंगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिए, और हाँ देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: सर, पेमेंट रिसीव करने के लिए QR स्कैन करें और जैसे ही आप QR स्कैन करते हैं आपका बैलेंस जीरो। QR स्कैन करने से पहले जरा सोचें आप कहां का QR स्कैन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस। QR कोड रिसीव करने के लिए होता है, QR कोड रिसीव करने के लिए होता है, पेमेंट देने के लिए नहीं। कई स्कैमर्स शॉपकीपर बाय डिलीवरी बॉय बन जाते हैं और आपसे पैसे आंट के चले जाते हैं। तो किसी भी अननोन QR कोड को स्कैन ना करें, अननोन QR कोड से बच के रहिए। स्कैन करने से पहले सोचना जरूरी है।
2: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
0: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं एक एहसास है कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है कभी नए सपने दिखाता है मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द रिक्वेस्ट शो चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक हम बनेंगे आपकी आवाज डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास

0: शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
2: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

आखिरकार हमने उनकी आंखें मूंद दी कि चखो अब मेरे आजाब और मेरी तंबीहात का मजा। सुबह सवेरे ही एक अटल आजाब ने उनको आ लिया। चखो मजा अब मेरे आजाब का और मेरी तंबीहात का। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला। और आले फिरौन के पास भी तंबीहात आई थी, मगर उन्होंने हमारी सारी निशानियों को झुटला दिया। आखिर को हमने उन्हें पकड़ा जिस तरह कोई जबरदस्त कुदरत वाला पकड़ा करता है। क्या तुम्हारे कुफार कुछ उन लोगों से बेहतर है, या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफी लिखी हुई है, या इन लोगों का कहना यह है कि हम एक मजबूत जत्था हैं, अपना बचाव कर लेंगे। अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और ये सब पीठ फेर कर भागते नजर आएंगे, बल्कि इनसे निपटने के लिए असल वादे का वक्त तो कयामत है और वो बड़ी आफत और ज्यादा तल्ख साथ है। ये मुजरिम लोग दर हकीकत गलत फहमी में मुबतला है और इनकी अक्ल मारी गई है। जिस रोज ये मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, उस रोज इनसे कहा जाएगा कि अब चखो जहन्नम की लपट का मजा। हमने हर चीज एक तकदीर के साथ पैदा की है और हमारा हुक्म बस एक ही हुक्म होता है, और पलक झपकाते वो अमल में आ जाता है। तुम जैसे बहुत सों को हम हलाक कर चुके हैं, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला। जो कुछ इन्होंने किया है वो सब दफ्तरों में दर्ज है और हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है। नाफरमानी से परहेज करने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे। सच्ची इज्जत की जगह बड़े जी इक्तदार बादशाह के करीब।

अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में दो चश्मे रवां, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में हर फल की दो किस्में, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे।